आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: भी जाती
1: सूख भी जाती हैं। तो मैम अब इनका प्रबंधन कैसे करें हम?
0: जी हाँ, प्रबंधन के लिए या कोई भी जो ये नीम आधारित दवा है, नीम आधारित दवा जैसे निम्बिसिडीन, नीमार्क, नीमागोल्ड या नीम का तेल, इन 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से थ्रिप्स का नियंत्रण हो जाता है। और यदि बहुत अधिक अगर इसका प्रकोप हो जाए तो रासायनिक दवाओं में इमिडाक्लोप्रिड या एसीटामीप्रिड का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से इस थ्रिप्स कीट से बचाव हो सकता है।
1: अच्छा मैम, अभी यहाँ पर हमने थ्रिप्स किट के बारे में जाना और दूसरी जो किट के बारे में आपने बात की थी वो थी प्याज का मैगेट किट, तो इसकी पहचान, हानि और प्रबंधन के बारे में बताएं।
0: जी, प्याज का मैगेट जो है इसका वयस्क तो मक्खी की तरह होता है, लेकिन इसका जो मैगेट है यानी शिशु को ही मैगेट कहा जाता है
1: जी।
0: और यह शिशु उजले रंग का होता है।
1: अच्छा,
0: और ये जो मक्खियाँ होती हैं वो जमीन के सतह पर मतलब मिट्टी में ये अंडे देती हैं।
1: अच्छा।
0: और इस तरह से इन अंडों से फुटकर जो शिशु निकलते हैं वो पहले तो ये प्याज का जो वो जड़ है फिर वहाँ पर होते हुए ये पत्तियों तक पहुँचते हैं और वहाँ पत्तियों को खाकर हानि पहुँचाते हैं। और जब बल्ब बनने लगते हैं, जब प्याज का जो गोला बनने लगता है जिसे बल्ब कहते हैं, उस गोले में ये शिशु छेद कर खाते हैं। और जब बल्ब में छेद कर खाने लगते हैं तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं। इस तरह से ये
1: हानि पहुँचाते
0: हैं। हाँ, जो शिशु हैं ये हानि पहुँचाते हैं।
1: तो इन्हें दूर कैसे किया जाए?
0: जी हाँ, इसके मैगट से बचाव के लिए डाइमेथोएट दवा का कीटनाशी है, जिसे कि इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इससे बचाव हो सकता है। या दूसरी जो कीटनाशी है वो है एसीफेट 75 WP दवा का 0.5 ग्राम यानी आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव किया जा सकता है, जिससे कि इससे बचाव हो सकता है। और जब इस कीट का प्रकोप बल्ब में हो जाता है और जब बल्ब तैयार होने को होता है यानी हार्वेस्टिंग से पहले, और उसके बाद हम ये जो है किसान भाई वो स्टोरेज करते हैं, घर में ले आते हैं स्टोर करने के लिए या गोडाउन में जहाँ भी ले जाएं, तो फिर वहाँ पर इस ये जो मैगट है यानी शिशु वो तो उस बल्ब में वो रहता है और इस तरह से वो फिर से जो स्टोरेज में भंडारण में ये हानि पहुँचाने लगता है, मतलब बल्ब में फिर छेद करके खाना शुरू करता है, जिससे कि फिर बल्ब सड़ जाते हैं, कई तरह के उस पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी शुरू हो जाता है, इससे प्याज सड़ जाते हैं। तो यही नहीं कि ये जो है मैगट केवल खेतों में ही फसल को हानि पहुंचाता है, बल्कि यह प्याज का भंडारण होने पर भी
1: अच्छा
0: यह कीट हानि पहुंचाता है।
1: अच्छा, तो यहाँ पर इसके प्रबंधन की बात हुई और हानि कैसे पहुंचाता है और पहचान की भी बात हमने की, और इसके बाद दीमक कीट के बारे में हम जानना चाहेंगे मैम कि इसके पहचान को कैसे जाना जाए और हानि और प्रबंधन के बारे में बताएं।
0: जी, दीमक तो ऐसे भी बहुत छोटे कीट होते हैं, लगभग 3 mm का, और ये जो है इसके इसमें तो ऐसे इस उजले रंग के देखने में होते हैं और मिट्टी में इसके जो है वो कॉलोनी के रूप में रहते हैं, जिसमें कि वो एक ग्रुप में समूह में रहते हैं।
1: हाँ,
0: जिसमें उसमें उनके काम का बंटवारा के अनुसार उसमें एक रानी होती है, राजा भी होता है, प्लस सिपाही होता है, कुछ श्रमिक होते हैं। तो मेन जो श्रमिक हैं वही हानि पहुंचाते हैं।
1: अच्छा,
0: और वो जो है जड़ों को किस तरह से हानि पहुंचाते हैं, तो वो जो प्याज के जो जड़ हैं उनको

0: चूंकि ये जो है दीमक मिट्टी में रहती है, इसलिए जड़ को काट कर वो हानि पहुंचाती है। जब जड़ों को काट देती हैं तो पौधे ही सूख जाते हैं
1: जी,
0: तो इस तरह से हानि पहुंचाते हैं। और कभी कभी ये जो दीमक मिट्टी में वो पूरा ऊपर की तरफ वो गुफा जैसे बनाया जाता है, उस तरह से वो पूरा मिट्टी को ऊंचा कर देते हैं, जिससे वो पता चल जाता है कि यहाँ पे दीमक है,
1: लग चुका है जी। प्रबंधन कैसे किया जाए मैम?
0: जी हाँ, इसके दीमक के प्रबंधन के लिए यदि खड़ी फसल पर दीमक का प्रकोप हो गया हो तो क्लोरपाइरीफॉस दवा का 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और यदि हर एक साल दीमक का प्रकोप खेतों में हो रहा है तो बीज लगाते समय बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार के लिए इसी दवा से क्लोरपाइरीफॉस दवा का 4 ml प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। और बीज में 4 ml, 1 किलो बीज में 4 ml दवा मिलाकर फिर उसमें दवा में 15 ml पानी भी मिलाकर के पूरे 1 किलो बीज को मिलाकर इस तरह से बीज उपचार कर लगाना चाहिए
1: जी,
0: बुआई करनी चाहिए
1: जी। तो किसान भाइयों, आपने प्याज के प्रमुख कीटों के बारे में जाना, प्याज के कौन कौन से कीट प्रमुख है, जैसे कि थ्रिप्स कीट, प्याज का मैगेट कीट, दीमक कीट, और साथ ही आपने जाना कि इन्हें हम कैसे पहचान पाएंगे और साथ ही इसका प्रबंधन कैसे कर पाएंगे। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, और आशा करूंगी कि आप प्याज के कीट का प्रबंधन ज़रूर करें, क्योंकि आपको बाज़ार में इसके अच्छे दाम मिल पाएँ, आप अपनी जीविका चला पाएँ सही ढंग से। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
6: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के,
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: ಕೃಷಿ. आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि. तो श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी हम आपसे कुछ उपयोगी बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे जिससे आपको लाभ होगा. जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूबी रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और इनसे आज हम बात करने वाले हैं. हमारा जो आज विशेष विषय है वो है फल वृक्षों को लगाने की विधि. तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद.
0: और मैम, जब बात आ रही है हमारे विषय की, तो आज जैसे कि हमने बताया कि फल वृक्षों को लगाने की विधि, और कहीं ना कहीं इसे बागवानी से भी जोड़ा जाता है. कई लोगों को बागवानी करने का शौक भी होता है. कई लोग चाहते हैं कि उनके बागों में फल के वृक्ष दिखें, पौधे दिखें, कोई चाहते हैं कि फूलों के पौधे दिखें. तो लेकिन यहाँ पर फल वृक्षों की बात हो रही है मैम, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नए बाग की स्थापना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
1: सबसे पहले बता दूं किसान भाइयों कि फल वृक्ष बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन ये फल वृक्ष जो है आपको लगाने के सात साल आठ साल बाद आपको फल देंगे, और इसलिए ये चूंकि लंबे समय का ये कार्यक्रम होता है, लंबे समय के बाद आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा. इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इसको लगाने के पहले पूरी तरह से सावधानी बरतें, और लगाने के नए बगीचे लगाने के पहले आप सारी बातों की जानकारी रखें, अन्यथा आपको 6 साल 7 साल के बाद पछताना पड़ेगा कि मैंने सही तरीके से नहीं लगाया, इसलिए हमारा उत्पादन सही ढंग से नहीं मिल पाया. इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप नए बगीचे लगाने के पहले, या आप एक दो फल के भी पेड़ अगर लगाना चाहते हैं अपने गृह वाटिका में आगे या पीछे, तो भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है. सही जानकारी होनी चाहिए कि पौधे हम कैसे लगाएं, किन चीज़ों का चुनाव करें, किन किस्मों का चुनाव करें, छोटी जगह है तो उनमें किन फल वृक्षों का चुनाव करें, अगर बड़े बाग लगाने हैं तो हमारा एरिया में, हमारे क्षेत्र में किन फलों की ज़्यादा डिमांड है उसका चुनाव करें, न कि हमारे यहाँ डिमांड के अनुकूल नहीं है उसका चुनाव करने पर आपको आगे समय में मुश्किल हो सकती है उसको बेचने में, या उसको सही मुनाफा आपको नहीं मिल सकता है. इसलिए इन सभी बातों की जानकारी रखनी बहुत ही आवश्यक है कि आप किन तरह के वृक्षों का चुनाव करें, कैसे उसको लगाएं, और किन जगहों में अपने नए बगीचे की स्थापना करें. अगर आपको व्यावसायिक खेती करनी है उसकी, तो आप ऐसे जगह में लगाएं कि वो सड़क के किनारे हो, और ताकि आपके जो भी उत्पाद प्राप्त हो 7 साल 8 साल 10 साल के बाद, वो आसानी से आप अपने बाजार में आप ले जा सकें. दूसरी बात, सबसे पहले कि किस तरह की भूमि का चुनाव करें. आपको अगर नए बगीचे लगाने हैं तो उसमें आपको ऐसी भूमि का चुनाव करना है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, लगभग समतल हो, 2 से 3% ढलान तक आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ढलान जो है वो भूमि नहीं लेनी चाहिए. सिंचाई की सुविधा हो, और इसमें लेबर फोर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, श्रमिक की उपलब्धता कभी कभी ज़्यादा होती है, तो आप उसको ये भी देखना पड़ेगा कि अब श्रमिक की उपलब्धता आपके पास है या नहीं है. और सड़क के किनारे हो, सड़क से जितना पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है. हालांकि सड़क के किनारे की ज़मीन भी बहुत महंगी होती है, उससे थोड़े अंदर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन
0: मतलब बाजार से उनके डिस्टेंस
1: हाँ
0: कम होनी चाहिए,
1: मतलब हाँ कम से कम हो, लेकिन वो आर्थिक रूप से आपको नुकसान ना दे. दूसरी बात, आप जहाँ भी बगीचे लगाएं आपके आवागमन का साधन होना चाहिए. इन सब बातों को देख करके आपको बगीचे का स्थल का चुनाव करना है.
0: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि जो भूमि की चयन की बात कही मैम ने, जैसे कि समतल होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नीचा आप जहाँ पे आप बागवानी करना चाहते हैं वहाँ की भूमि नहीं होनी चाहिए. साथ ही मैम ने बताया कि आपका जो वृक्ष लगाने का जो स्थान है वो जहाँ पर आप बिक्री करते हैं फलों की, उससे नज़दीक

0: होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में भी पैसे ना लगें और आसानी से आप आ जा सकें और अपने फलों की जो बिक्री है वो कर सकें। इसके बाद मैम, जब बात आती है यहाँ पर ध्यान, किन किन बातों को ध्यान रखने की बात तो आपने कह दिया उसके बारे में, और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि फल वृक्षों को, पौधे जो हम लगाते हैं फल वृक्षों के, उसकी किस्मों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए?
1: सबसे पहले मैं बता दूँ कि किस्मों का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सभी किसी भी चीज़, किसी भी फल वृक्ष के सभी किस्में सभी क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम क्रीन, और मैं हूं आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं हमारे हर रोज के इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम उन्नत कृषि है। इसमें हम बातें करते हैं उन्नत बातें खेती बाड़ी की, और आज एक ऐसा ही खास विषय जिसे जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो विषय है हमारा आज का, सुगंधित धान की वैज्ञानिक खेती। जी हाँ, सुगंधित धान का नाम सुनते ही कुछ ऐसे चावल आपके दिमाग में उसके नाम आ रहे होंगे जिसकी खुशबू आपको यूं ही अपनी ओर खींचती होगी कि चलो हम इसे पकाएं घर में और खाएं। तो कुछ ऐसे ही सुगंधित धान की बात करेंगे हम, और उसकी वैज्ञानिक खेती की बात करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बता दूँ कि इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद जी। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हैं सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: सर, अगर हम सुगंधित धान की बात करें तो इसकी क्या खासियत है और इसकी खेती कहाँ होती है?
1: मैडम, धान की विभिन्न किस्मों में सुगंधित धान का विशिष्ट स्थान है, जो उसमें विद्यमान खास गुणों के कारण है। यूँ तो सुगंधित धान की किस्मों में भी काफ़ी विविधताएं हैं, परंतु इसके चावल की क्वालिटी, खुशबू और महक लोगों के आकर्षण का मुख्य वजह बन जाता है। वैश्विक स्तर पर सुगंधित धान के उत्पादन एवं निर्यात में भारत का प्रमुख स्थान है, और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अधिकांश सुगंधित धान का मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप है। भारत में सुगंधित धान की खेती कहाँ होती है, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में सुगंधित धान की खेती प्रायः हिमालय के तराई क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में की जाती है, और खासकर ये सुगंधित धान जो है ये अपनी खुशबू के कारण काफी
0: प्रसिद्ध है,
1: प्रचलित है, और इसी खुशबू के वजह से ये लोगों की चाहत भी बनी हुई है, और हर लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इसकी हम खेती करें।
0: बिल्कुल सर, आपने कहा कि इसकी खुशबू जो है वो आकर्षित करती है लोगों को, और इसकी खुशबू ही इसे अन्य धानों से अलग करती है, तो वो किस वजह से है इस सुगंधित धान में खुशबू?
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न है, चूँकि खुशबू से तो लोग वाकिफ हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसमें खुशबू क्यों होती है।
0: जी,
1: तो मैं आपको और किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में महक या खुशबू का होना ही उसका सबसे प्रमुख गुण है, और इस खुशबू के लिए बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स उत्तरदायी होते हैं, जिनमें 2-acetyl 1-pyrrolin कंपाउंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसके अलावे बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, जो लगभग 12-13 की संख्या में हैं, लेकिन 2-acetyl 1-pyrrolin, जिसको संक्षेप में 2-AP भी कहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सुगंधित धान में इस 2-AP की मात्रा असुगंधित धान से लगभग 15 गुना ज़्यादा होती है।
0: अच्छा।
1: और सुगंधित धान में यह 2-AP 0.14 PPM होती है, जबकि असुगंधित धान में इसकी मात्रा 0.009 PPM होती है।
0: जी।
1: और अच्छी मात्रा में ये 2-AP

0: का निर्माण हो, इसके लिए धान की खेती, खासकर सुगंधित धान की खेती का जो उपयुक्त तापक्रम है और उसका रेंज है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है।
1: तो सर, अगर किस्मों की बात करें हम कि सुगंधित धान की हम अच्छी किस्म लगाना चाहते हैं, तो इन्हें किस्मों के हम नाम जानना चाहेंगे और साथ ही हम उसे कब लगाएं ये भी जानना चाहेंगे सर।
0: जी हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सुगंधित धान की जो अनुशंसित किस्में हैं, प्रभेद हैं, उसमें सुगंधा, टाइप 3, भागलपुर कतरनी जैसी अच्छी प्रभेद है जो प्रकाश संवेदी है, और इनमें एक खासियत है कि इनका जो पुष्पन होता है वो खास तापक्रम आने पर ही होता है, और ये किस्में लंबाई में ज़्यादा होती है, मतलब इनकी लंबाई, ये लंबी लंबे पौधे वाली किस्में हैं। और दूसरे किस्म हैं जो प्रकाश असंवेदी हैं, और उन किस्मों में राजेंद्र सुभाषिनी, राजेंद्र कस्तूरी, सबौर सुरभित आदि श्रेष्ठ हैं, जिनके पौधे बौना किस्म के होते हैं।
1: तो सर, अगर स्वस्थ बिचड़े की हम बात करें तो इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए?
0: देखिए, सुगंधित धान को खासकर खुशबू के मकसद से ही लगाते हैं, तो उसका बिचड़ा तैयार करने के लिए भी किसान भाई को काफ़ी सावधानी की काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और किसान भाइयों को चाहिए कि सुगंधित धान की खुशबू का संबंध जो है, चूँकि वायुमंडलीय तापमान के साथ है, इस

0: इसके लिए सुगंधित धान के बिचरा हेतु बीज की नर्सरी में बुआई को सोच समझ कर करनी चाहिए और सुगंधित धान के बीजों की बुआई नर्सरी में जून के अंतिम सप्ताह से 10 जुलाई तक करना ज़्यादा अच्छा होता है और खासकर भागलपुर कतरनी का जो बिचरा डालना है उसके लिए थोड़ा आगे का समय आपको लेना है। और भागलपुर कतरनी का बिचरा आप या हमारे किसान भाई 15 जुलाई से 30 जुलाई तक अगर डालते हैं तो उसमें अच्छी खुशबू प्राप्त होती है।
1: तो कितने दिनों के बिचड़ों की हमें रोपाई करनी चाहिए और कितने दूरी पर?
0: मैडम यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बिचड़ा को रोपने से पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि बिचड़े की

0: बीज बोने से पहले आपको लगभग 2 क्विंटल सरी गोबर की खाद को 10 से 15 दिन पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला देना होगा, और अंतिम कदवा के समय आपको खेत में यानी 400 वर्ग मीटर की नर्सरी वाले प्लॉट में 3 किलो यूरिया, 2 किलो डीएपी एवं 1.5 किलो एमओपी यानी पोटास को समान रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिट्टी या राख में मिलाकर नर्सरी प्लॉट में आपको डालना है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बिचरा जब लगभग 15 दिनों का हो जाए तो उस समय फिर आपको उसमें एक बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको नर्सरी वाले प्लॉट में लगभग 2 से 3 किलो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। और बिचरा उखाड़ने से पहले यानी जब बिचरा आप उखाड़ने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको नर्सरी वाले प्लॉट में पानी लगा देना चाहिए, ताकि उखाड़ते समय बिचरे के जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। तो ये सावधानी आपको स्वस्थ बिचरा तैयार करने के लिए बरतनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि बिचरे की रोपाई कब करेंगे और कितनी दूरी पर करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान का बिचरा जब 20 से 25 दिनों का हो जाए तब उसकी रोपाई करनी चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि बिचरा उखाड़ने से पूर्व नर्सरी वाले प्लॉट में पानी लगा देना चाहिए, ताकि बिचरा आसानी से उखड़ जाए और जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। और बिचरा की रोपाई आप 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी पर लगाएं, और एक स्थान पर 1 से 2 बिचरा को ही लगाएं, इससे ज़्यादा बिचरा नहीं लगाएं, अन्यथा फिर टिलरिंग में कमी आ जाएगी। और बिचरे को रोपने से पूर्व उसकी जड़ों को जैव उर्वरक जैसे एजो एस्पिरिलम, पीएसबी और केएसबी कल्चर के घोल में 15 से 20 मिनट तक आप डुबो कर रखें, यानी धान के बिचरे के जड़ों को इन जैव उर्वरक दवा के कल्चर के घोल से उपचारित करके ही रोपाई करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।
1: सुगंधित धान के लिए ज़रूरी है खाद और उर्वरक की मात्रा जानना, तो कितनी मात्रा दें और इन्हें हम कब डालें?
0: तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में जैसे आप राजेंद्र सुवासिनी या सवोर सुरभित जैसे प्रभेद को लगा रहे हैं, यानी सुगंधित बौनी किस्मों को लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो उर्वरक डालना है उसे अंतिम कदवा के समय 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 35 किलोग्राम डीएपी, 15 किलोग्राम पोटास को मिलाकर समान रूप से आपको खेत में बराबर रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो उसके लिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट को राख या मिट्टी में मिलाकर अकेले डीएपी के साथ नहीं मिलाना है, इसको अकेले इस्तेमाल करना है, तो मिट्टी या राख में मिलाकर उसको कदवा के समय खेत में समान रूप से छींट देना है। और जब फसल 25 दिनों का हो जाए मतलब रोपनी के 25 दिनों बाद आपको पुनः 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से पहला टॉप ड्रेसिंग करना है, और दूसरा टॉप ड्रेसिंग करना है जब गाभा निकलने की अवस्था आवे तो उस समय फिर 20 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। और यूरिया के टॉप ड्रेसिंग के समय कोशिश ये करना चाहिए कि खेत में पानी लगा हुआ नहीं रहे, और बेहतर हो कि खेत में अगर पानी ज़्यादा लगा है तो पानी को निकाल दें, टॉप ड्रेसिंग करें, और टॉप ड्रेसिंग करने के तीसरे दिन फिर खेत में पुनः पानी लगा दें। यहाँ मैं किसान भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो पूर्व में जो हमने बताया है उर्वरक की मात्रा, वो राजेंद्र सुवासिनी और सवोर सुरभित के लिए था, लेकिन अगर आप भागलपुर कतरनी लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए कदवा के समय आपको डीएपी देना है 25 किलोग्राम, यूरिया देना है 10 किलोग्राम और पोटास देना है 15 किलोग्राम। और जब इसकी टॉप ड्रेसिंग प्रथम टॉप ड्रेसिंग करेंगे 25 दिनों के बाद तो उसमें मात्र 10 किलोग्राम यूरिया से टॉप ड्रेसिंग कर

0: करना है पहला, और दूसरा जो टॉप ड्रेसिंग फिर गाभा वाली अवस्था में करेंगे तो उसमें भी मात्र 10 किलोग्राम यूरिया का ही टॉप ड्रेसिंग करेंगे। अगर ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो धान में लॉजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है तो धान के गिरने की संभावना प्रबल हो जाएगी, तो ये सावधानी आपको बरतनी है।
1: तो ये बातें हो गई सावधानियों की, और डॉक्टर साहब अब ये जानेंगे हम, सिंचाई प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होती है, तो किस तरह हमें सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था करनी चाहिए सुगंधित धान की खेती में?
0: मैडम ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जैसा कि हम जानते हैं कि धान को कहते हैं कि जल ज़्यादा प्रिय होता है, धान के लिए जल प्यारा होता है, और एक कहावत भी है कि धान के खेत में दरार नहीं पड़ना चाहिए। तो धान के खेतों की सिंचाई में ये किसानों को पहले से पता है और उन्हें सावधानी भी बरतनी है। तो किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि रोपाई के बाद लगातार 2 सप्ताह तक खेत में पानी लगा कर रखें, ताकि खरपतवार का अंकुरण ना हो, और अगर आप खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल किए हैं तो उस दवा का भी प्रभाव सही ढंग से हो सके। उसके बाद यह ध्यान रखें कि 2 दिनों से ज़्यादा खेत पानी के बिना ना रहे, अर्थात किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार ना पड़ने पाए। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पुष्पन के समय मतलब फ्लावरिंग के समय खेत में पानी की बिल्कुल कमी ना हो, और धान कटाई के 2 सप्ताह पूर्व यानी 15 दिन पहले अगर खेत में ज़्यादा पानी है तो उस पानी को आप बाहर निकाल दें, और ऐसा करने से बाद की जो रबी फसल की बुआई आप करने जा रहे हैं उसकी बुआई भी समय से संभव हो पाएगी। बस सावधानी ये बरतनी है कि आपके खेतों में किसी भी परिस्थिति में दरार न पड़े। पानी मतलब अगर 2 दिन तक अगर खेत खाली है तो आपको 3रे दिन हर हाल में पानी खेत में डाल देना अनिवार्य है।
1: तो इस प्रकार से सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था आपको रखनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, अगर खरपतवार की समस्या हो जाती है तो उसका निदान कैसे करेंगे?
0: जी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और खरपतवार की समस्या से हर किसान रूबरू होते हैं। तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए आपको प्रारंभ से ही तैयारी करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले आपको सावधानी ये बरतनी है कि अगर खेत में आप गोबर की खाद या FYM डाल रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि गोबर की जो खाद आप डाल रहे हैं वह पूर्ण रूपेण सड़ा हुआ हो, ताकि उसमें खरपतवार के बीज जीवंत रूप में ना रहे, वो बिल्कुल गोबर के साथ ही वो भी सड़ जाएं। तो आपको पूर्ण रूपेण सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। दूसरा कि आप जो बिचरा डाले हैं या बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीज भी जो है खरपतवार से मुक्त हो, तो आपको ऐसे संस्थान से बीज लेना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो और उसमें खरपतवार के बीज ना हो। तीसरी बात कि कदवा के समय बहुत किसान भाई लापरवाही बरत जाते हैं, जैसे तैसे कदवा कर देते हैं, तो उस वजह से भी बहुत सारे खरपतवार खेतों में जिंदा रह जाते हैं। तो कदवा करते समय किसान भाइयों को चाहिए कि हम कदवा ठीक से करें, ताकि खेत में जो भी खरपतवार हैं वो अच्छी तरह से उनका जड़ उखड़ जाए और मिट्टी में पूरा लिपट के वो सड़ जाए। तो कदवा की तैयारी भी आपको ठीक से करनी है। और इसके अलावे अगर आपके खेतों में खरपतवार की समस्या आती है तो धान रोपाई के 2रे या 3रे दिन ब्यूटा क्लोर 50 EC या प्रेटिला क्लोर 50 EC का 1 से 1.25 लीटर दवा को आप 15 से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर 1 एकड़ खेत में समान रूप से छींट दें। और कंडीशन ये है कि जिस समय आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हों उस समय आपके खेत में कम से कम 1 से 1.5 इंच पानी लगा हुआ रहे, ताकि पानी के लेयर के ऊपर ये दवा का लेयर आ जाए और जो भी नीचे से खरपतवार निकलने वाले हों उसको निकलने ना दे, वो खरपतवार नाशी दवा के संपर्क में आकर वहीं मर जाए।
1: जी
0: तो ये सावधानी बरतनी है। और अगर उसके बाद भी आपको या किसान भाई को खरपतवार की समस्या नजर आती है

0: धान की रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद पुनः 20 पायरीवैक्स सोडियम 10% के नाम से दवा आती है और इस दवा का 80 से 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में छिड़काव अगर किसान भाई करते हैं तो उनको खरपतवार से निजात मिल जाएगी और फिर उनका फसल स्वस्थ हो जाएगा और अच्छी टिलरिंग जब हो जाएगी, उसके पौधे जब घने हो जाएंगे तो फिर उसके फसल को कोई तरह का नुकसान नहीं होगा।
1: जी, तो ये तो बातें हो गई खरपतवार की जो समस्या उसका निदान कैसे करें। और डॉक्टर साहब, अगर कीट और रोगों की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख कीट और रोग हैं जो धान, सुगंधित धान में लग सकते हैं और उनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं?
0: देखा जाए सुगंधित धान, जैसा नाम है सुगंध, तो सुगंध सबको प्यारा होता है
1: जी,
0: तो सुगंधित धान में कीट और रोग के प्रकोप भी काफ़ी होते हैं
1: जी।
0: और खासकर यह देखा जाता है कि सुगंधित धान में धर छेदक जो कीट हैं उसका ज़्यादा प्रभाव देखा गया है और इसके लिए फसल की देखभाल किसान भाई को नियमित रूप से करनी चाहिए और जैसे ही उनको ये नज़र आए कि 2% से ज़्यादा मृत मूल कल्ले अथवा सफ़ेद बालियाँ नजर आ रही है खेत में तो शीघ्र उन्हें उचित कीटनाशी दवा का प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए। इसके लिए किसान भाई आप क्लोरपाइरीफॉस्ट 20 EC की 1 लीटर मात्रा को अथवा फिप्रोनिल 80% WG की 15 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में छिड़काव करेंगे तो धर छेदक कीट से फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावे किसान भाई अपने खेतों में फेरोमन ट्रैप, 5 फेरोमन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं या ट्रैको कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्ड पर्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कीड़े के प्रवेश को या कीड़े के भक्षण में या कीड़े को मारने में ये कारगर सिद्ध होगा। और दूसरा कीट है गंधी कीट। दूध बनने की अवस्था में गंधी कीट दानों से रस चूस लेते हैं जिस कारण दाने खखरी हो जाते हैं, तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि मालाथियान 5% धूल या मिथाइल पाराथियान 2% धूल की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से सुबह के समय जिस समय पौधे पर ओस होते हैं उस समय इसका अगर भुड़काव करेंगे तो ये गंधी कीट जो हैं आपके खेतों से भाग जाएंगे और फिर आपके फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप कीट से अपने फसलों की बचाव कर सकते हैं। और रोग भी सुगंधित धान में लगते हैं जिसमें खास करके पत्र लांछन जिसे लीफ स्पॉट कहते हैं, झोंका जिसे ब्लास्ट भी कहते हैं और जीवाणु पत्र झुलसा जिसे BL भी कहते हैं और आवरण झुलसा जिसे शीत ब्लाइट कहते हैं, ये काफ़ी नुकसानदायक है सुगंधित धान के लिए। तो किसान भाइयों इन रोगों से बचाव हेतु सबसे पहले तो बीजोपचार और बिचरा उपचार करें, अपने खेतों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और रोग के लक्षण दिखते ही उपचार हेतु संबंधित विभाग के वैज्ञानिकों से अथवा विश्वविद्यालय के किसान हेल्पलाइन से संपर्क करें। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके फसल में पत्र लांछन रोग लगा है तो इसे बचाव हेतु आप डाइथेन Z78 या मैनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर खरीफ फसल में 3 से 4 बार छिड़काव करें और शीत ब्लाइट से बचाव के लिए वैलिडामाइसिन नाम की दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 3 बार खरीफ फसल में छिड़काव करें और BLB से बचाव के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा की 20 ग्राम मात्रा के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 किलो को 400 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में 12 दिनों के अंतराल पर खरीफ फसल में 2 बार छिड़काव करेंगे तो BLB से भी आपके फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को कुछ और बताना चाहूँगा, चूँकि फसल की कटाई और तैयारी भी सुगंधित धान के लिए बहुत महत्वपूर्ण

0: विषय होता है तो सुगंधित धान की गुणवत्ता, खुशबू और उत्पादन पर कटनी के समय का काफ़ी असर पड़ता है और विलंब से कटाई करने से दाने झड़ जाते हैं, चावल की मात्रा में और उसकी खुशबू में भी कमी आती है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि सुगंधित धान के फसल की कटाई 50% फूल आने के 30 से 35 दिनों बाद, जिस समय दाना में लगभग 20-24% नमी हो, उसी समय उसकी कटाई कर लें और खेत का पानी कटाई के 10-15 दिनों पूर्व बाहर निकाल दें। कटाई के दूसरे दिन ही कोशिश करें कि उसकी हम थ्रेसिंग कर लें और जो थ्रेसिंग करने के बाद आपको धान मिला है उसको सीधा धूप में ना सुखाकर उसको छाया में तब तक सुखाएं जब तक कि उसमें 12-14% नमी ना आ जाए। ऐसा करने से मिलिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव कर जाती है और भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। और जब इसका भंडारण आप करेंगे तो भंडारण करने से पूर्व आपको ये एश्योर कर लेना चाहिए कि सुगंधित धान का भंडारण हम उस समय करें जब धान में नमी का स्तर 12-14% तक आ जाए और भंडारण गृह की सही ढंग से सफाई और कीटनाशक दवा से अच्छी तरह से वो उपचारित हो, तभी आपको भंडारण करना चाहिए। और इस प्रकार से अगर सारे सही तरीके को अपनाकर किसान भाई अगर सुगंधित धान की खेती करते हैं तो उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त होगी और ये पैदावार लगभग 30-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की हो सकती है और जिसका बाजार भाव भी उनको अच्छा मिल सकता है।
1: तो जैसा कि किसान भाइयों और श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर इस तरीके से आप सही तरीके से सुगंधित धान की खेती करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार और बाज़ार में इसका अच्छा मूल्य भी मिल सकता है। तो ये वैज्ञानिक खेती और इसकी तैयारियाँ पूरी यहाँ पर बताई गई हैं, आपको किस तरीके से बिचड़े को तैयार करना है और इसके साथ ही खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसे कब लगाना चाहिए, कौन सी किस्में सही हैं और सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं खरपतवार प्रबंधन के बारे में, कीट और रोग नियंत्रण के बारे में। तो वैज्ञानिक खेती आपको यहाँ पर बताई गई पूरी की पूरी सुगंधित धान की। तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को सुने और ज़रूर इसे अपनाएं और जब आप खेती कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए खेती करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
6: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब।

0: आप कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
1: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से

समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो

0: दीदिया स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 23 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। मौसम आधारित चेतावनी ये है कि जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों के गिरने की आशंका है। किसान भाई बहनों को खेत के कार्य स्थगित करने और फसल और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, RU8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। किसान भाई बहनों जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की सुगंधित किस्मों की रोपाई इस महीने में पूरी कर ले। धान रोपित खेतों में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्गी कल्चर का प्रयोग करें और खेत में जल जमाव बनाए रखें। जुलाई महीने में रोपे गए धान में नेत्रजन यानी कि यूरिया का ऊपरी निवेशन करें यानी कि यूरिया डालें। धान की रोपाई के 45 से 50 दिनों बाद यूरिया का ऊपरी निवेशन करना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन की शेष मात्रा को खरपतवार निकालने के बाद यूरिया के रूप में दे देना चाहिए। मक्के की क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, जो मिर्च की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अगस्त महीने में उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर लेनी चाहिए। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोणकन, कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगीति और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का विशेष ध्यान रखें, खुरपका और मुंह पका रोग होने की संभावना होती है तो उन्हें टीके जरूर लगवा लें और अगर रोग के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें, उन्हें संतुलित आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

0: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
3: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी वाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
3: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में या तो जहां से वो रस चूसते हैं जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है।
0: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
3: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
0: और इससे बचने का कोई तरीका जिसे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
3: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं, जैसे किसान

0: किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसिड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
1: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और सर, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें।
0: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
1: अच्छा।
0: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह, फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे।
1: जी, तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
0: यस, तो उड़द, मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है, और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
1: सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി.
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन. टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो. टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान. घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे. खांसी खोखो खांसी. बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो. खांसी खोखो खांसी. टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए.
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा.
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान.
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ. सुनो

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
5: हर

0: लगा रहे हो?
1: प्रणाम चाचा, खेसारी लगा रहे हैं।
0: खेसारी?
2: हाँ चाचा, खेसारी के साग और दाल जब बनाई तो तोहरो खिलाई।
0: हे ललनुआ, समझा रे अपन मेरी के, खेसारी खाए से लूल लंगड़ हो जाई।
2: कौने जमाना के बात कर रहे हैं चाचा, अब खेसारी के नई किस्म आ गई है, वो भी हानि रहित।
1: हाँ चाचा, खेसारी के नया किस्म रतन और प्रतीक बिना कोई नुकसान वाला है। ई किस्मों के उगावे खातिर सरकार प्रोत्साहन भी दे रहा है।
3: जी हाँ, अब आप अपना मन पसंदीदा खेसारी बेरोक टोक उगा सकते हैं। भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में बायोटेक किसान हब परियोजना का लाभ उठाकर आप भी खेसारी की नई किस्म रतन और प्रतीक उगा सकते हैं।
2: खेसारी के नए किस्म रतन और प्रतीक, अब न खेती पर रोक और न खाने पर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
0: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता, जो हर पल का सम्मान करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है, समय बहुत अनमोल है उसकी कद्र करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
0: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल।

0: गए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
0: जी।
1: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
0: जी,
1: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
0: जी।
1: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
0: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
1: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द, और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
0: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
1: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
0: जी।
1: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
0: जी।
1: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
0: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
1: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
0: जी।
1: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
0: जी।
1: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
0: जी।
1: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
0: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
1: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
0: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
1: मार्केटिंग गुरु
0: या म्यूजिक गुरु।
1: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
0: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: जी
1: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र।
2: खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खो खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण

0: तो जानो खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो आओ।
4: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
0: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
4: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।

0: जाएगी। मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन

0: अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें। और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतः रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
0: तो मैम, खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी

0: सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
1: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
0: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटाश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की 1/3 तथा स्फूर, पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में 2 बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी 2 बारिश के मध्यम ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30%

0: सी का 3.5 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से एक बार निराई गुराई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नतजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काट कर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूं।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाज

चाही पर नियंत्रण रखें, पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

these first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही, और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है, तो ऐसा

में जरूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही ले। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही ले। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते हैं। इस भीषण गर्मी में भी बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं और खास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है। जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफी मददगार साबित होता है और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, दो चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है? तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं और खास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है। तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती है, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो
सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस

फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है, और साथ ही सोने पे सुहागा ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले, अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो ले। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे, जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है उसके साथ आप स्टिक रहे। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए, और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द

0: ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं विषय आप सभी के लिए खास, और वो है जलवायु अनुकूल खेती में तिल एक अच्छा विकल्प। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा सिन्हा, जो कि वैज्ञानिक हैं पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैडम स्वागत है आपका।
8: धन्यवाद मैडम। सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगी तिल की खेती जलवायु अनुकूल कैसे अच्छा एक विकल्प है, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है कुछ 5-7 सालों से, कि हमारा जलवायु बहुत निश्चित तौर पे नहीं होता है। कभी थोड़ी बारिश जल्दी हो जाती है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, या जिस समय में जो हो रहा था पहले वो अब नहीं हो रहा है। ऐसे मौसम में हम कौन सा खेती करें जिसमें हमको किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, और उनका जो जीवकोपार्जन का एक साधन कृषि है जो खास के उनको वो मेंटेन कर सकें और उसमें वो काम कर सकें। तो उसी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि तिल एक अच्छा विकल्प है जलवायु अनुकूल। आखिर ऐसा क्यों? उसका कारण है कि तिल गर्मा के अगर मौसम में थोड़ा आपको इरिगेशन देने में लेट हो जाए, कोई बात नहीं, वो मौसम आपका तिल जो है पौधा कुछ उस पर असर नहीं होगा, वो आराम से सह लेता है। वो तिल एक थोड़ा हार्डी टाइप का प्लांट है। साथ ही तिल एक ऐसा चीज़ है जिसको आप थ्रू आउट ऑफ द ईयर ग्रो कर सकते हैं, मतलब पूरे मौसम में, खरीफ में, गर्मा में, और हम रबी की बात तो बिहार में नहीं करेंगे, लेकिन जैसे साउथ बिहार में होता, साउथ में होता है, वहाँ पे गर्मा में भी, रबी में भी ये फसल उगाया जाता है। तो गर्मा हमारे बिहार क्षेत्र के लिए, खरीफ और समर 2 समय में हमारा तिल की खेती की जाती है मुख्य रूप से। और अभी किसान भाइयों को मैं गर्मा तिल के बारे में बताऊंगी, बिकॉज अभी गर्मा तिल जो लगा चुके हैं किसान भाई 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, उनका अभी हार्वेस्टिंग का समय आ रहा है। तो वो सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि किसान भाइयों, तिल में आप लोग मुख्य रूप से उजले तिल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे

देखते हैं काले तिल की तरफ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुणवत्ता के ख्याल से काला तिल उजले तिल से ज़्यादा बेहतर है। उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है, वो न्यूट्रिशनली मेडिसिनली ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा अच्छा है। और सफ़ेद तिल देखने में ज़्यादा अच्छा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है। काले तिल को आप अगर रखना चाहेंगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, किसी तरह का कीटाणु नहीं लगेगा, वो काफ़ी दिन तक चलता है। लेकिन आप अगर सफ़ेद तिल रखेंगे तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है, उसके रख रखाव में ज़्यादा व्यवस्था की बात है। और दूसरी बात जहाँ तक आपके सामने है कि हम लोग समर तिल जिसको गर्मा तिल कहते हैं उस पर ज़्यादा आजकल ध्यान दे रहे हैं। खरीफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ बारिश ज़्यादा हो गया तो फसल का काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है, कुछ कीट आ जाते हैं, कुछ रोग व्याधि आ जाते हैं, उससे फसल का उतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। तो हम लोग आजकल गर्मा तिल के, आज के दिन में हम लोग गर्मा के बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, आप लोग जो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में तिल लगाए हैं उनका काटने का समय आ चुका है, और वो सभी किसान भाई अपने खेत पे देख पा रहे होंगे कि उनकी फसल किस तरह से है। अगर ज़रूरत है तो एक सिंचाई लगा के उसको छोड़ दें बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर वो अपना उसको हार्वेस्टिंग करा लें। दूसरा जो बात है कि गर्मा तिल लगाने का समय, अभी बहुत किसान भाइयों को पता नहीं है तो वो मैं बताना चाहूँगी, जो नहीं लगाए हैं इस बार वो अगली बार अवश्य लगाएं, और 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में लगाएं। साथ ही इस तिल की खेती के पहले जो आप खेत की तैयारी करते हैं उसको तैयारी में आप की मिट्टी कैसी है वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। साथ में आप देखें तिल जो है, आपको अगर जल जमाव वाली स्थिति जहाँ है ज़मीन में वहाँ तो बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि थोड़ा ये जल जमाव से, वाटर लॉगिंग से जल्दी अफेक्टेड हो जाता है, पौधा का बढ़वार उतना अच्छा नहीं होता है, उतनी अच्छी फसल नहीं होती है, या कभी कभी तो जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ मर भी जाता है पौधा और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो हम लोग पहले ऐसे जगह में लगाएंगे गर्मा तिल भी जहाँ की जल जमाव नहीं होता है। तो पहले हम लोग खेत को तैयार कर लेंगे, उसमें आप लोग 5 kg बीज अगर उपलब्ध है तो 1 hectare के लिए अच्छी तरह से वो 1 hectare ज़मीन को कवर कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में इसको ये भी ध्यान रखना है कि बीज जो है बहुत गहराई में ना रोपें, ज़्यादा गहराई होने से छोटा बीज है दब गया मिट्टी से ज़्यादा तो फिर उसको निकलने में समस्या आ सकती है। तो इस दो चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है कि वाटर लॉगिंग नहीं हो, ज़मीन में पानी का ये नहीं जमाव नहीं हो, दूसरा ज़्यादा ज़मीन के नीचे तिल की बुआई नहीं हो। तीसरी बात हम लोग आते हैं कि इसमें खाद, ये तो जनरली मुख्य रूप से जो बचे हुए ज़मीन या मार्जिनल लैंड होते हैं उसी में अभी तक किसान भाई करते आ रहे हैं, कोई अपने मुख्य ज़मीन में नहीं करते हैं। तो इसमें थोड़ा खाद, हम लोग ज़्यादा खाद देते भी नहीं हैं, 40 kg आपको नेत्रजन, 20 kg फॉस्फोरस एंड 20 kg पोटास देते हैं 1 hectare ज़मीन के लिए। और ये इसमें गर्मा मौसम में तो कीड़ों का और कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन एक हमारे यहाँ आपको मुख्य रूप से आपको बताना चाहेंगे कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में थोड़ा सा आपको भुआ पिल्लू जिसको बोलते हैं वो, उसका प्रकोप आता है। अगर आप शुरू के दिनों में देख लिए और आपकी ज़्यादा रकवा नहीं है तो हम तो नहीं चाहेंगे कि आप कोई रासायनिक का उपयोग करें और उसको हाथ से तोड़ के डिस्कार्ड कर दें, कुछ प्लांट ज़्यादा जो डैमेज है उनको हटा दें, यही सबसे अच्छा है जो आपको ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाएगा और रसायन का उपयोग कम से कम हो पाएगा। तो इसकी उत्पादकता भी हमारे यहाँ गर्मा में आप कोई भी प्रभेद लगाएं 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। और इसकी जहाँ तक बिक्री की बात है और जहाँ तक इसके मार्केटिंग की बात है तो आप लोग सभी जानते हैं हाथों हाथ कैश क्रॉप की तरह है, और ये करीब 140 रुपये पर केजी मतलब ये बिक्री हो जाता है मार्केट में। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा आमदनी है। कुछ किसान तो गया क्षेत्र के लोग काफ़ी मात्रा में लगा रहे हैं गर्मा तिल, और वो लोग काफ़ी खुश हैं अपने तिल के बेचने

0: के बाद जो उनको आमदनी हो रही है तो उनके चेहरे पे खुशी है कहीं भी। और कुछ मैं प्रभेद की बात करूं तो कुछ प्रभेद हैं जो अच्छे साबित हो रहे हैं। अगर काला प्रभेद आप लोग उपयोग करना चाहते हैं, मैं तो कहूंगी काला आप लोग कम से कम अपने खाने के लिए या तेल के लिए ज़रूर करें, बहुत न्यूट्रिशियस है। अपने बच्चों को मालिश के लिए या घर में खाने के लिए उपयोग करें। तो सबौर तिल वन एक प्रभेद हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया ही प्रभेद है, उसका उपयोग करें। उसके उसके भी वही गुणवत्ता है। तिल 5 kg प्रति हेक्टेयर इसका बीज दर लगेगा आपको, और उत्पादकता 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और ये कुछ किसान भाइयों के द्वारा ही पता चला है, GJT5 एंड GJT6 जो गुजरात की वैरायटी है, ये उजला तिल है और ये कुछ जगहों पे लगाया जा रहा है। और हमने भी पाया है काफ़ी अच्छा इसका भी उत्पादन है और इसको लोग लगा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आप लोग के लिए तो तिल की खेती अब वरदान की तरह है। इस पर सरकार का भी काफ़ी ये सरकार का काफ़ी ध्यान है और सरकार इसके लिए चाह भी रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएं और इसको लगाएं। और ये हमारे तेल अपने खाने के लिए या मार्केट में ये भेजने के लिए, और इसके कई तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं जो हम लोग हर वर्ष खासकर ठंड के मौसम में उपयोग करते हैं। नवंबर दिसंबर से फरवरी तक जो गया का तिलकुट, नरसा और भी कई उत्पाद हैं। और आजकल तो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े दुकानों में भी इसका उपयोग हो रहा है, मिठाइयों को बनाने में, चिक्की बनाने में। तो ऐसे आप लोग अब मार्केटिंग से ना घबराएं कि मार्केटिंग नहीं होगी या इसकी बिक्री नहीं हो पाएगी, हमारी आमद आमदनी घट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसान भाइयों, आप लोगों से मेरा आग्रह है कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पौष्टिक चीज़ है। इस तिल के तेल को आप लोग खाएं, तिल का उपयोग करें अपने खाने में और अपने बच्चों को दें, इससे उनके भी न्यूट्रिशंस का भी पूरा होगा। तो आप लोगों को किसान भाइयों, इस तरह से एक मैंने तिल की बताया।
1: किसान भाइयों, यहाँ पर आज आपने जाना जलवायु अनुकूल खेती में तिल की खेती एक अच्छा विकल्प, और इसमें बहुत सारी बातें मैडम ने बताई हैं। तो आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी के लिए लाभदायक होगा। अगले दिन आप सभी से मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र

0: तैयारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
1: किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं। यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से, कैसे इसे उगाते हैं, उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है। वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियाँ जो हैं, जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियाँ हैं, उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की, उस समय नहीं, उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, और आज हम जानेंगे कि क्या हैं बेमौसमी सब्जियाँ और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है। तो आज का विषय है हमारा, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें। तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर आर बी वर्मा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं।
2: देखिए, सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं। जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में, और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं। परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियां। जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें। तो जो अपने सीजन से हटके अगर हम कोई चीज उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है। मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता, जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता उस सीजन में, और ज़्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
1: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाजार सब्जियों को खरीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में खरीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं हम उन्हें खरीदने के लिए तो दाम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके।
2: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं, और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत, हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी।
2: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज भारत जो है विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा सब्जी उत्पादक देश है।
1: जी।
2: इसके दूसरा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो है इसकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन में अभी हम पीछे हैं, और देश की बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या, भी आप समझ रहे हैं कि 132 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है।
1: जी जी।
2: इनके सब्जी की खपत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारी खेती का जो है आंकड़ा जो है सिकुड़ रहा है, हमारे सारे संसाधन जहां सिकुड़ रहे हैं वहां, और एक तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सीमित संसाधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी, एक ही सब्जी की भरमार हो जाती है।
1: जी जी।
2: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
1: प्राइस कम,
2: हाँ, उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं, कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे

0: ज्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता, जैसे कॉलीफ्लावर फूल गोभी है, फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर अगेती कर लेते हैं
1: पहले,
0: तो ये हाँ थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं, मौसम से थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि 50 रुपए 60 रुपए गोभी बिक जाती है।
1: हाँ, यानी कि उसके मौसम आने से हाँ, थोड़े महीने
0: थोड़ा
1: पहले।
0: सा पहले आपने कर लिया तो भी आपको जो उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में, मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है, तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाजार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये जरूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाएं। और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है। इस संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की जरूरत है और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को, जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए, और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन, पर डे, पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है, और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पे जाना हमारा जो है वो ज्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
0: बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं, तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीजन बेस्ड होती हैं। गर्मी के समय गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां, और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियां उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए, वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी, और वो तकनीकी एक तरह से जो आपका जो संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ ले जाती है। और वो तकनीकी अपना करके, जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें, बेमौसमी सब्जियों का एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे, तो उसमें हमारे अनुकूल, अब तक हम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो है आधारित हैं, जैसा वो चाहता है वातावरण, जैसा हमको प्रोवाइड करता है वैसे हम सब्जी उगाते हैं। लेकिन अभी जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और हम जैसा
1: चैलेंजिंग हो जाता है,
0: बिल्कुल चैलेंजिंग होता है, और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है, और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंजेज है, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जैसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है, वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, और जिस क्रॉप के लिए, जमने के लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
1: ज्यादा होती है।

0: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ड कर सकते हैं तो उसको एफर्ड मतलब उसको एडाप्ट करें, जो किसान भाई उसको एडाप्ट नहीं कर सकते हैं, एफर्ड नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सकें, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली और जो कूलिंग, हाँ ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर से हम उसको ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर हम उसको हटा देते हैं। अच्छा। तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
1: लो
0: हो जाती है। तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं तो उसको ले जा करके अपना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा जो होता है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो इस
1: हमारे छोटे किसान,
0: हाँ, छोटे किसान है, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का।
1: अच्छा।
0: एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अभी हमने फूल गोभी की बात की,
1: हाँ।
0: वैसे हम अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी कद्दू की, जिसकी हम बात करते हैं, कद्दू को
1: ठंडी के,
0: हाँ ठंडी का मौसम
1: आने से पहले, कुछ
0: गर्मी आने से पहले।
1: अच्छा।
0: कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च में तो सबके, मार्च से अप्रैल में जो है सारा का सारा कद्दू जो है मार्केट में आ जाता
1: जी
0: है
1: जी।
0: जब सारा का सारा कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में कद्दू का रेट जो है 2 रुपए 1 रुपए हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीने तक अगर निकल गया फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए लौकी तक,
1: मौसम में उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती है।
0: तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें,
1: हाँ,
0: थोड़ा सा हमने
1: हाँ।
0: किया कि ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया, दिसंबर में ही लगा लिया
1: जी।
0: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस, जो किसान भाई जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उसको आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
1: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उस ज्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज्यादा उचित रहेगी?
0: हाँ, ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई है उनके लिए सबसे ज्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये लो टनल पॉली हाउस को इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और इस लो टनल पॉली हाउस को अडॉप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम, उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
1: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या फिर उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को उगाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में, और उस इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु के, जैसा कि हमारे सर ने बताया पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है, कहें तो दुगुना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें,
0: हाँ,
1: तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई प्रोटेक्टेड या संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहते हैं, बेमौसमी सब्जियां उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत तो दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की, थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
1: मिट्टी चाहिए।
0: हाँ, अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है, या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

0: दूसरी चीज
1: नर्व सीखिए नहीं होनी चाहिए, बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए नर्व
0: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
1: जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हें उगाइए
0: उगाइए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, हाई प्राइस वैल्यू जिसको कहते हैं, लो वैल्यू हाई कॉस्ट जो है जो वैल्यू कहते हैं, जिसको इसे मान लिया आपका इसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफ़ी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है, टमाटर है, तो कुछ मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
1: जी, जी, जी।
0: नहीं मिलता है, तो ऐसे हाई
1: हर साल मतलब पूरे साल वो बिकती है,
0: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों को कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
1: नहीं है,
0: नहीं होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे, और सीमित बढ़वार वाली सब्जियां में वो आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा, तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं, और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इसे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप जा रहे हैं या उसको बेमौसमी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप पूरी तरह से ले लें। जब तक आप पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान नहीं लेंगे तो बात वही होगी कि आप जो है कुछ भी मतलब आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको
1: नहीं
0: कुछ
1: हुआ।
0: नहीं हुआ। तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है, या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहां भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है गवर्नमेंट संस्थानों में भी आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है।
1: जी जी।
0: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, को आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है।
1: जी।
0: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं बेमौसमी सब्जी, कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहां लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपए का उस पर खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी।
1: जी।
0: 15,000 रुपए आपको लगाना है, जहां 2-2.5 लाख रुपए खर्च आते हैं
1: 50% सब्सिडी सरकार की, 50%
0: सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको,
1: तो
0: बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
1: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है, 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहां जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी कि बेमौसमी सब्जियां अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हैं इसके।
0: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है, जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती है, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले आते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गई, दूसरी उसी सब्जी से सेम सब्जी को अगर आपने बेमौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है, और कम क्षेत्रफल से देखिए ना आप कितना जो है
1: लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट,
0: हाँ लो वॉल्यूम हाई क्रॉप तो लेते, हाई वॉल्यूम आप जो है और लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं, और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना कम क्षेत्रफल में

0: आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर 1 एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है। 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पोली हाउस बनाया है उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है, उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती है,
1: जी जी,
0: बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं तो मेन सीजन में हमारे फूड की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं तो इसमें आपका जो है क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज्यादा होता है। जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके प्रोडक्ट का जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल गया। आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त
1: पैसा
0: निकाल लिया जो है। ये तमाम सारे फायदे हैं इसके जो है।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना ना क्या क्या फायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फायदे हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं, और उन्होंने फायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना, जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाइयों और हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय-बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के
9: अब 0 रुपए।

0: कैसे तू?
1: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर,
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
0: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
0: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक

0: का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
1: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
1: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
1: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं के, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय।
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनकी कम

0: बीमारी के बगल में ठहरे हुए
1: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
0: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
1: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
1: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिद्धि तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको, मैं बताती हूँ।
1: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
1: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
2: टैथिस महासागर।
1: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
1: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
1: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई।
3: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
1: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
1: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार

0: यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुलफाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
6: ये किस तरह की मूर्ति है?
7: ऐसी मूर्ति तो मैंने
8: वंडरफुल।
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे लेकिन हाथों

0: की जगह दो पंख लगे हुए थे।
1: लोग सोचने लगे, भलाई कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
0: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
2: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
3: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
1: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
0: उस मूर्तिकार ने बताया,
4: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैला कर उड़ जाता है।
1: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
5: ग्रेट, मार्वेलस।
3: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
5: वंडरफुल।
6: हाँ हाँ हम सहमत हैं।
1: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
4: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है। यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
1: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
0: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
1: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
0: कहीं ऐसा ना हो कि
1: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: कार्यक्रम समाप्त होता है तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: FM ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज उन किसान भाई

0: बहनों के लिए बातें होने वाली है जो श्री अन्न की खेती करते हैं, और वो परेशान होते हैं कि श्री अन्न में बहुत अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं और किस प्रकार से उन कीटों को पहचाने, उनका प्रबंधन कैसे करें। ये सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण कुमारी। आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम आप हमें ये बताइए कि श्री अन्न के कौन कौन से कीट होते हैं।
1: श्री अन्न में जो कि काफ़ी ही पोषक अनाज है और इसमें जो है ज्वार, बाजरा, रागी और कंगनी इत्यादि फसल आते हैं और लगभग इन सभी पर एक ही प्रकार के कीट लगते हैं। और ये जो कीट हैं वो ज्वार का तना छेदक, प्ररोह मक्खी, बाली बग, पत्र लपेटक, गुलाबी तना छेदक, लाही एवं बाली मिर्च, ये जो कीट हैं और ये सारे कीट जो हैं जितने भी श्री अन्न हैं वो उन पे इसका प्रकोप होता है।
0: जी मैम, तो जो आपने अभी कीटों के नाम बताए उन कीटों के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। और मैम शुरुआत करते हैं ज्वार के तना छेदक कीट के बारे में, आप हमें बताइए शुरुआत में।
1: ज्वार का तना छेदक कीट वो उसका भी जो वयस्क होता है वो मौत होता है, जिसे पतंगा भी कहते हैं, और ये हल्के पीले भूरे रंग का होता है। इसके अगले पंख तिनके के रंग के होते हैं यानी क्रीम कलर का, और इसके जो पंख होते हैं उसके अंतिम छोर पर दो पंक्ति में काले बिंदु पाए जाते हैं, और इसका जो नर है उसके पिछले पंख पर जो धुएंधार कलर का मतलब थोड़ा डल कलर का होता है और मादा में सफ़ेद कलर का होता है, और मादा के उदर भाग के अंतिम भाग में बालों का एक गुच्छा होता है। इस तरह से इसकी वो पहचान करते हैं कि ये ज्वार तना छेदक है। और इसका ये जो ज्वार तना छेदक है उसका जो पिल्लू है वही इसको हानि पहुंचाता है, और इस जो ये पिल्लू है वो पत्तियों को खुरच खुरच कर खाता है, बाद में फिर यही सुई के समान छेद करके खाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे जो तना है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ज़मीन के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से बीच का जो होता है भाग उसको खाते हैं, और जिससे कि पत्तियां सूख जाती हैं, और जिसे खींचने पर सूखी हुई जो पत्ती होती है बीच वाली उसको खींचने पर वो आसानी से खींचा जाता है। ये इसको डेड हर्ट कहते हैं या मृत कल्ला भी इसको कहते हैं। और ये जो इस तरह से जो डेड हर्ट बन जाता है और तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये गांठ के से टूटकर गिर जाते हैं, और इसके बचाव हेतु जो है कीट ग्रस्त पौधों को जिसमें डेड हर्ट दिखाई दे रहा है उसको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। फिर फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए ठूठ हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसी में उसके जो पिल्लू हैं और पीपा हैं वो उसमें रहते हैं। इसलिए कटाई के बाद जिस खेत में अगर इसका प्रकोप हो गया है तो कटाई के बाद जो बचा हुआ रेजिड्यू है ठूठ है उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो इसके वयस्क हैं उस पर आकर्षित हों, और वो चूँकि लाइट ट्रैप के नीचे पानी आप रख दें तो उसमें वो गिरकर मर जाएंगे। फिर तना छेदक का जो ये कीट से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप भी जो 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, और प्रकोप अधिक हो जाए तो 2 से 3 पत्ती का जब पौधा हो जाए तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करें, या फ्लुवेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, और इस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं।
0: जी मैम, अब मैम आप हमें प्ररोह मक्खी के बारे में बताइए कि प्ररोह मक्खी की क्या पहचान होती है और इसके प्रबंधन के लिए क्या करें।
1: हाँ, ये जो प्ररोह मक्खी है इसे सूट फ्लाई भी कहते हैं, और ये एक तरह की मक्खी है जो घरेलू मक्खी होती है उससे आकार में थोड़ी छोटी होती है, और इसमें जो है इसके बॉडी के ऊपर स्पाइन नहीं होता है, थोड़ा मोटा बाल, घना बाल पाया जाता है, और इसका

0: जो नर होता है उसका एंटीना जो है पीला कलर का होता है, ये इसकी पहचान है। और ये इसका जो पिल्लू होता है वो तना में छेद कर वो खाता है, और ये भी तना में अंदर जाकर बीज के पार्ट को खाता है, और जिससे कि ऊपर वाली पत्ती सूख जाती है, जो ऊपर में जो बीज की पत्ती है, तो इसलिए ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, ये ज्वार तना छेदक जो है वो भी डेड हर्ट काउज करता है, और प्ररोह मक्खी ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो प्ररोह मक्खी है वो जब पौधे करीब 6 से 8 इंच तक के रहते हैं तभी तक उसका प्रकोप होता है, उसके बाद नहीं होता। और ज्वार तना छेदक का थ्रू आउट द पूरे फसल तक इसका प्रकोप होता रहता है। दोनों में यही अंतर है। और इस कीट से बचाव हेतु जिन पौधों में जो डेड हर्ट पाया गया हो तो उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, और बीजोपचार भी करना चाहिए इस कीट से बचने के लिए। तो क्लोरपाइरिफॉस 3 ml या इमिडाक्लोप्रिड दोनों में से कोई एक कीटनाशी से बीजोपचार कर सकते हैं। तो अगर इमिडाक्लोप्रिड लेंगे तो इमिडाक्लोप्रिड का 48 FS का 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। और प्रकोप खड़ी फसल पर अधिक हो जाए तो रासायनिक कीटनाशी में फ्लुविंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में, या डेल्टा मेथ्रिन का 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम ज्वार बाली कीट से क्या हानि होती है और इससे कैसे बचा जाए?
0: ज्वार बाली बग ये जो है ये पतले हरे रंग का होता है, कभी कभी ये धान के ऊपर भी दिखाई देता है, और इसका शरीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है। और ये जो है ज्वार धान पे भी, मक्का रागी इत्यादि को भी हानि पहुंचाते हैं। और ये जो है इसके वयस्क और जो इसके शिशु होते हैं निम्फ इसको बोलते हैं, वयस्क और इसके जो वयस्क होते हैं और निम्फ तो दोनों एक समान होते हैं, केवल निम्फ में इसके पंख नहीं होते हैं और वयस्क में पंख हो जाते हैं, बाकी रंग दोनों का हरा ही होता है। और ये जो है दोनों वयस्क और निम्फ यानी शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूस कर इसको बर्बाद करते हैं, और जिससे पत्तियां सूख जाती हैं। और किसी किसी में बाली में तो दाने ही नहीं लगते हैं। और इसके बचाव हेतु फसल पर नीम बीज चूर्ण, जो नीम का बीज है उसका पाउडर बनाकर भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml या थायोमेथेक्सम 25 WG का 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम पत्र लपेटा कीट किस प्रकार के होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या करें?
0: पत्र लपेटक कीट जो है ये भी इसका वयस्क जो है वो मौत पतंगा होता है, और जिसके पंखों पर भूरी धारियां होती हैं और सफ़ेद जो शरीर इसका सफ़ेद होता है और उस पर भी जो है हल्की भूरी धारियां होती हैं, यानी इसके पंख और शरीर दोनों पे धारियां होती हैं। और ये भी ज्वार है, मक्का है, बाजरा, इवन जो गन्ना है उसको भी हानि पहुँचाते हैं। और इसके जो पिल्लू हैं वो भी शुरू में इसके पत्ती को खुरच खुरच कर खाते हैं, बाद में जैसे जैसे ये जो पिल्लू के साइज मतलब बढ़ते हैं, इस पिल्लू में जो इसका जैसे विकास होता है तो पत्तियों को क्या करते हैं कि मोड़ करके रेशम सी डोरी जैसा पत्तियों को मोड़ देते हैं और उसके अंदर घुसकर खाते रहते हैं, और पत्तियों की जो नोक होती है वो सूख जाती हैं और पत्तियाँ सफ़ेद भी पड़ जाती हैं, और देखने से जैसे मालूम होता है कि वो कागज़ हैं, क्योंकि अंदर अंदर वो क्लोरोफिल को खा जाते हैं। और एक पिल्लू लगभग 5 से 6 पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाती हैं। और इस कीट से बचाव हेतु जो मुड़ी हुई पत्तियाँ हैं, जो लपेटी हुई जो पत्तियाँ दिखाई देती हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और अगर ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में नीम बीज चूर्ण का भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में फिप्रोनिल 1 ml का 3 प्रति 3 लीटर पानी

0: मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम। मैम एक और कीट लगता है जिसे कहते हैं गुलाबी तना छेदक कीट।
0: हाँ, ये भी तना छेदक जो है वो जैसे ज्वार का जो तना छेदक कीट है उसी की तरह ये भी हानि पहुंचाता है। अंतर ये है कि इसका जो पिल्लू होता है वो गुलाबी रंग का होता है और ये भी उसी तरह से शुरू में तो इसके जो हैं पिल्लू पत्तियों को थोड़ा सा खुरच कर खाते हैं, जैसे ये बड़े हो जाते हैं तने के अंदर घुसकर उसके बीच वाले पार्ट को खाते हैं और इस तरह से पत्तियां सूख जाती हैं और डेड हार्ट ये भी काउच करता है। तो इसका ये भी जो है ज्वार मक्का बाजरा रागी जई गेहूं में भी दिखाई देता है कभी कभी, वो तो धान में भी ये इसको भी हानि पहुंचाता है। और ये जो है जहाँ से ये प्रवेश करता है वहाँ पर इस पिल्लू का मल दिखाई देता है और इस तरह से ये जो जिस पौधे पे वो खाते हैं वहाँ वो पीले पड़ जाते हैं, पौधों की बढ़वार जो है वो भी रुक जाती है और जब अंदर के पार्ट को खाते हैं तो ये भी जो है डेड हर्ट जो मृत केंद्र बनाते हैं जिसे खींचने से आसानी से खींचा जाता है, ये इसकी पहचान है। और इसका बचाव के लिए मई जून महीने में गहरी जुताई कर देना चाहिए और ये लाइट ट्रैप जो है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक से बचाव हेतु ट्रैप भी लगाना चाहिए जो 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से इसको लगाना चाहिए। और अगर कीटनाशी का प्रयोग करना हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर में या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो मिक्सचर कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम। मैम लाही कीट की पहचान कैसे करें?
0: लाही कीट ये हरे काले रंग का जू जैसा उसको कहते हैं, ये पौधों का जू है और ये माहू मेचा एफिड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है अचानक से 6-7 दिन के अंदर में इसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि जो है ये 6 से 7 दिन में इसके वयस्क बन जाते हैं और फिर ये इस तरह से वो इसकी जो है वो अंडे नहीं देती है बल्कि मतलब शिशु ही पैदा करते हैं, इसलिए इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये तनों के निचले हिस्से में समूह में रहते हैं, तनों से रस चूसते हैं, पत्तियों से भी रस चूसते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। विकसित अवस्था में जब इसका प्रकोप होता है तो जब दाने सिकुड़ कर छोटे रह जाते हैं, दाने कभी कभी लगते भी नहीं हैं, इस तरह से इसका जो है वो हानि करते हैं। और इसका बचाव के लिए ये एक लेडी बर्ड बिटल जो कि नारंगी रंग का होता है, इस पे काले धब्बे भी होते हैं या काले लहरदार धब्बे होते हैं, ये इस एफिड को खाते हैं। यानी ये लेडी बर्ड बिटल जो है वो मित्र कीट है, ये जो एफिड है लाही है जो चूसकर जो खा रहे हैं हानि पहुंचा रहे हैं उनको ये खाते हैं। तो इनको देखने जब भी खेत में अगर रहे तो इसका बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए रासायनिक कीटनाशी का कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मित्र कीट ये जो लेडी बर्ड बिटल है जो इन लाहियों को खाते हैं वो मर जाएंगे। तो इसके लिए अगर छिड़काव करना भी है तो कोई भी नीम आधारित दवा का 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए या येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए। ये कोई डब्बा हो उसको पेंट करके और उसको लकड़ी गाड़ कर खेत में और उसके उस पर उल्टा लगा देना चाहिए जिससे कि उस पर ग्रीस पे वो आकर जो है लाही सट जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा उपाय है।
1: जी मैम। मैम बाली मिर्च ये श्रीअन्न के फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: हाँ, ये जो मिर्च है वो ये भी छोटी मक्खी के जैसा होता है, छोटी मक्खी या मच्छर कहें दोनों के बीच का जैसा वो छोटा होता है और इस कीट का जो उदर भाग होता है वो चमकीला नारंगी रंग का होता है और पंख मक्खी जैसा पारदर्शी ही होता है।

0: और ये जो मिज हैं वो फूले फूलों पर अंडे देते हैं और फूलों के पराग गिर जाते हैं, दानों से उजले पीपा के कोश दिखाई देते हैं, मतलब इस जो पिल्लू होते हैं वो बाद में पीपा बनते हैं तो उसका जो कोश होता है वो भी दानों की जगह दिखाई देता है, और जो पिल्लू दानों को खाते हैं वो दाने खकरी हो जाते हैं। और बाली मिर्च से बचाव के लिए लाइट ट्रैप भी लगाना चाहिए, नीमाधारित कीटनाशी नीम बीज चूर्ण अर्क का 5% का छिड़काव करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशी में इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC का 0.5 ml यानी आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% दवा का जो कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, तो ये आपने जिस प्रकार से बताया कि श्री अन्न में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा।
1: तो उम्मीद है हमारे किसान भाई बहन जो श्री अन्न की खेती करते हैं उनके लिए हमारी आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, जो भी बातें मैम ने बताई उन बातों का आप ध्यान रखें, और साथ ही जिस प्रकार से मैम ने कहा कि हमारे कुछ जो कीट होते हैं वो मित्र कीट भी होते हैं, तो उन कीटों का बचाव करते हुए ही आपको प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की वीएलएम 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 FM ग्रीन पर और मैं हूं ईश्वर चंद्रा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभकारी। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसे हम आयुष्मान PMJAY के नाम से भी जानते हैं। यह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 9 करोड़ से ज्यादा परिवार इसके दायरे में आते हैं और हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। आयुष्मान PMJAY योजना गरीब परिवारों को महंगे इलाज के कर्ज से बचाती है और समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराती है। आज के एपिसोड में हम खास तौर पर जानेंगे कि बुजुर्गों के लिए इस योजना में क्या क्या सुविधाएं हैं, साथ ही बात करेंगे कि आशा और ANM जैसी स्वास्थ्य कर्मी इसमें क्या भूमिका निभा सकती हैं, अस्पतालों में क्या सहूलियत मिलती है और मरीजों को किस किस तरह की फॉलोअप केयर दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं टीकन भाभी।
1: आरजे ईश्वर, धन्यवाद। आज बुजुर्गों की बात हो रही है तो हमारे गांव के केदार बाबा की याद आ गई। बाबा की उम्र होगी 72-73 साल। कुछ समय पहले तक खेती करते थे पर अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता था। कुछ महीनों से सीने में दर्द रहता था, सांस भी जल्दी फूल जाती थी, पर बाबा सोचते रहे कि इलाज कैसे कराए, पैसा कहाँ से आएगा। एक दिन हालात ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। अस्पताल पहुँचते ही कार्ड स्कैन हुआ और तुरंत जांच शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि दिल की नसें ब्लॉक हो रही है। समय रहते उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई और 1 रुपया भी नहीं लगा। पूरा खर्च आयुष्मान योजना ने उठाया। बाबा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बिना पैसे के भी इतना बड़ा इलाज हो सकता है।
0: अरे टीकन भाभी, यहाँ एक बात और साफ कर दीजिए कि आयुष्मान PMJ में 70 वर्ष से उम्र की ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति को देखकर शामिल किया जाता है और बगैर शर्त इसका इलाज होता है।
1: देखिए, आयुष्मान PMJY में 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति देखे बिना ही लाभ दिया जाता है। मतलब चाहे बुजुर्ग गरीब हो या ठीक ठाक हाल वाले, उनकी उम्र 70 साल पार हो गई तो उन्हें सीधे आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल सकता है। तो 70 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों के लिए ये योजना किसी सहारे से कम नहीं है। बस उनका इलाज जल्दी और अच्छे अस्पताल में हो जाए, यही इस योजना का मकसद है।
0: टीकन भाभी, बुजुर्गों की इस योजना में किन किन बीमारियों का इलाज होता है, साथ ही ये भी बताएं कि क्या इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में या फिर निजी अस्पताल में भी कराया जा सकता है।
1: आरजे ईश्वर, आयुष्मान PMJY में बुजुर्गों का सिर्फ बुखार खांसी वाला इलाज ही नहीं होता, बल्कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की खराबी, मोतियाबिंद, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे कई गंभीर रोगों का भी इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। प्रोस्टेट का कैंसर, घुटना बदलवाना हो, कुल्हा रिप्लेस करना हो या फिर न्यूरो की बड़ी सर्जरी, ये सब भी इस योजना में शामिल है। और जहाँ तक अस्पताल का सवाल है तो इस योजना में देश भर के हजारों निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। मरीज को बस आयुष्मान कार्ड लेकर जाना होता है। अस्पताल में कार्ड स्कैन हुआ नहीं कि कैशलेस और पेपरलेस इलाज शुरू हो जाता है।
0: टीकन भाभी, एक खास बात तो पूछना ही भूल गया, छोटे बच्चों का आयुष्मान PMJAY में इलाज कैसे होता है, क्या उनके लिए भी अलग कार्ड बनवाना पड़ता है?
1: अरे नहीं आरजे ईश्वर, छोटे बच्चों का

0: अलग कार्ड नहीं बनवाना पड़ता। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे अपने माता पिता के आयुष्मान कार्ड पर ही इलाज करवा सकते हैं, यानी इस उम्र के बच्चे के लिए अलग कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती है। बस माता या पिता अपना आयुष्मान कार्ड दिखाएं और बच्चे का पूरा इलाज आराम से हो जाता है।
1: तो टीकन भाभी, अब अगला सवाल ये है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कौन कौन सी चीजें इस योजना में शामिल है? क्या सिर्फ दवाइयां मिलती हैं या टेस्ट, खाना, बेड वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत आता है?
0: असल में इस योजना की खासियत यही है कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो इलाज से लेकर दवा तक सब कुछ कवर होता है। मान लीजिए किसी को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई, अब भर्ती होने से 3 दिन पहले डॉक्टर का परामर्श, जरूरी टेस्ट और दवाई, ये सभी योजना के अंदर आ जाते हैं। मतलब मरीज को भर्ती होने से पहले जो जाँच करानी होती है उसका भी पैसा नहीं लगता। फिर जब अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं तो उसका पूरा इलाज योजना के तहत ही चलता है। टेस्ट हो, एक्सरे हो, खून की रिपोर्ट हो, दवाइयां हो, इंजेक्शन हो, सब आयुष्मान PMJY में शामिल है। अस्पताल का बेड, ICU या सामान्य वार्ड में रहना, नर्सिंग चार्ज, खान पान सब फ्री है। तो सीधी बात ये है कि PMJY योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले, भर्ती के दौरान और इलाज चलने तक हर जरूरी खर्च उठाती है।
1: वाह, बहुत बढ़िया टीकन भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब एक बात और कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी क्या ये योजना मदद करती है?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल करती है। मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक फॉलो अप इलाज भी आयुष्मान PMJY में ही मिलता है, जैसे दोबारा चेकअप, दवाइयाँ या कोई छोटी मोटी जाँच। यानी इलाज के बाद भी चिंता की कोई जरूरत नहीं है।
1: तो भाभी, क्या आयुष्मान योजना पूरे देश में चलती है? मतलब अगर कोई अपने राज्य से बाहर चला जाए तब भी इलाज संभव हो सकता है क्या?
0: अरे हाँ आरजे ईश्वर, बिल्कुल, यही तो इस योजना की खास बात है। आयुष्मान कार्ड वाले लोग भारत के किसी भी लिस्टेड अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, चाहे वे अपने राज्य में हो या किसी दूसरे राज्य में। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर या फिर जो रिश्तेदारों से मिलने बाहर जाते हैं और वहाँ बीमार पड़ गए। मसलन अगर उत्तर प्रदेश का कोई परिवार दिल्ली, महाराष्ट्र या तमिलनाडु कहीं भी हो तो वहाँ भी इलाज फ्री में करवा सकता है।
1: बिल्कुल। तो टीकन भाभी, एक और बात मेरे भेजे में आ रही है कि सेहत की रक्षा में ANM और आशा की अहम भूमिका होती है, तो क्या आयुष्मान PMJY में भी उनकी कोई भूमिका होती है?
0: देखिए, आशा और ANM की आयुष्मान PMJY में खास जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले तो ये अपने इलाके के सभी परिवार का रिकॉर्ड बनाती है जो आयुष्मान योजना के दायरे में आते हैं। ई कवच ऐप में एक परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रजिस्टर होता है, उसमें परिवार का नाम, उसकी आयुष्मान कार्ड वाली जानकारी सब कुछ भरना पड़ता है। फिर ANM और आशा दीदी घर घर जाकर लोगों को आयुष्मान PMJY योजना के बारे में समझाती है, कौन पात्र है, कार्ड क्यों जरूरी है, इसे इलाज कैसे मिलेगा, सब एकदम आसान भाषा में यही लोग समझाती हैं और लोगों को बताती हैं इनके महत्व के बारे में। गांव की मीटिंग में भी अक्सर ये बातें बताती रहती हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ANM और आशा का सबसे जरूरी काम तो तब शुरू होता है जब किसी मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। ये दीदियां एक हफ्ते के अंदर किसी भी मरीज से मिलने जरूर पहुंच जाती है। डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी है, विजिट की जो तारीख बताई गई है, सब चेक करती है और मरीज को ठीक से समझाती है सब कुछ। अगर किसी नवजात को स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट से डिस्चार्ज किया गया हो तो उसकी देखभाल में आशा दीदी तो और भी ज्यादा सतर्क रहती है। माँ को हर छोटी बड़ी बात समझाना बेहद जरूरी होता है। यदि मरीज को अचानक कोई समस्या हो जाए तो तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुँचाने का इंतजाम भी आशा दीदी ही करती है। इनका काम यहीं खत्म नहीं होता, ये हर मरीज का रिकॉर्ड रखती हैं, जैसे नाम, आयुष्मान कार्ड नंबर, किस अस्पताल में भर्ती था, कब छुट्टी मिली, अगला फॉलो अप कब करना है, सब लिखकर रखती हैं ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। वैसे भाभी, आजकल सब कुछ मोबाइल पर हो जाता है, तो आयुष्मान योजना में भी क्या कोई ऑनलाइन सुविधा है जिससे लोगों को घर बैठे मदद मिल सके?
0: हाँ आरजे ईश्वर, आयुष्मान योजना तो ऑनलाइन सुविधा में भी बहुत आगे है। इसमें ऑनलाइन समाधान बहुत आसान बना दिया गया है। सबसे पहले तो 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर 1455 यानी कि 1455 किसी भी समय कॉल करिए और अपनी समस्या बता दीजिए, तुरंत जवाब मिल जाता है। फिर इसकी एक वेबसाइट भी तो है, www.pmjy.in।

0: gov.in। आदमी घर बैठे मोबाइल से ही चेक कर सकता है कि उसका नाम इस सूची में है या नहीं है और कौन कौन से अस्पताल इसमें जुड़े हैं। वेबसाइट पर एक चैट बॉट भी है जिसमें बस आप अपना सवाल टाइप कीजिए और तुरंत जानकारी सामने आ जाती है, जैसे किस अस्पताल में इलाज मिलेगा, कौन सी बीमारी कवर की जाती है, आपके कार्ड की स्थिति क्या है, सब मिनटों में पता चल जाता है। यानी अब लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मोबाइल उठाइए और जरूरी जानकारी वहीं मिल जाएगी।
1: अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात। तो टिकन भाभी, अगर किसी को अपने आसपास आयुष्मान PMJAY का अस्पताल खोजना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है?
0: इसके लिए आयुष्मान सारथी मोबाइल ऐप है ना, ये सबसे बढ़िया ऐप है इसके लिए। इस ऐप में सब कुछ है। पहले ऐप खोलें, इसके बाद अपनी पसंद की भाषा चुन लें, फिर जिस तरह की बीमारी के लिए विशेषज्ञ चाहिए वो विशेषज्ञता चुन लें। अब आप चाहें तो जिले के आधार पर खोजें या फिर अपने आसपास की दूरी के आधार पर अस्पताल चुन लें। जैसे ही आप अस्पताल चुनते हैं तुरंत गूगल मैप्स खुल जाता है। अब आप रास्ते का पालन कैसे करेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, ये मैप आपको बता देता है। आयुष्मान सारथी ऐप हर समय हर जगह नजदीकी अस्पताल दिखाकर लोगों की मदद करता है।
1: हाँ, तो भागलपुर से जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें लागू होती है। वो भी अपने आसपास के कौन से अस्पताल इसमें रजिस्टर्ड हैं, कौन से अस्पताल तक उनको सुविधा मिल सकती है, किस इलाज का कहाँ पर आयुष्मान कार्ड के तहत आपको इलाज संभव है, ये सब कुछ इन्हीं विधि द्वारा आप देख सकते हैं। तो टिकन भाभी, एक और बात कि आयुष्मान PMJAY तो बड़ी अच्छी योजना है, जैसा कि आपने इसके पूरी व्याख्यान की। आप तो रोज लोगों से मिलती हैं, तो लोगों को इससे क्या फायदा हुआ, मतलब जमीनी स्तर पर इस योजना से क्या बदलाव आया, कुछ इसके बारे में बताएंगे क्या?
0: हाँ, इस योजना ने गरीब लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां दूर कर दी। सबसे पहले तो जो परिवार महंगे इलाज के डर से अस्पताल जाने की सोच भी नहीं पाते थे, आज वही लोग बिना झिझक बड़े अस्पताल में जाकर आराम से इलाज करवा रहे हैं।
1: सही बात भाभी, गांव में तो लोग पैसे की चिंता में इलाज टालते रहते थे और आज के समय में बड़े बड़े अस्पताल चाहे मेदांता हो, पारस हो, पटना तक जाकर के इलाज करवा रहे हैं।
0: ठीक कहा आपने आरजे ईश्वर, और अब वही लोग समय पर ऑपरेशन करा लेते हैं, दिल का हो, कैंसर का हो या हड्डी का हो। बहुत से बुजुर्ग जिनका सालों से इलाज अटका था अब अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आराम से इलाज करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार कर्ज में डूबने से बच गए। आयुष्मान PMJAY ने भरोसा दिया है कि गरीब आदमी भी सम्मान के साथ बिना डर के बड़े से बड़ा इलाज करवा सकता है।
1: तो दोस्तों, आयुष्मान PMJAY योजना ने वाकई लाखों परिवारों की मदद की है। कई लोग जो पहले महंगे इलाज के नाम सुनकर ही घबरा जाते थे, आज बिना पैसे बड़े अस्पतालों में भर्ती होकर शान से सर्जरी करवा रहे हैं। और तो और, जिन अस्पतालों को देखकर जी घबराता था कि ये होटल है या हॉस्पिटल, आज उन्हीं बड़े अस्पताल में आप वहां पर सीना तान कर जाते हैं और अपना PMJAY के तहत आयुष्मान कार्ड निकालकर इलाज कराते हैं। तो श्रोताओं, हमारा मकसद भी यही है कि आप तक वो सारी बातें पहुंचे जो आपकी जिंदगी में काम आए, आपकी सेहत सुरक्षित रखे और वक्त पर सही फैसला लेने में मदद करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड के साथ, भरोसेमंद और काम की जानकारी लेकर। पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: माँ कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
5: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार, मैं आरजी अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ स्वस्थ रहे हम में। जी हाँ, स्वस्थ रहे हम में हम बातें करते हैं स्वस्थ रहने की, आपके फिट एंड फाइन रहने की, ताकि हमारे श्रोता खुश रहेंगे तो हम रहेंगे खुश और लेकर आएंगे उनके लिए नए नए कार्यक्रम। जी हाँ, कुछ ऐसे ही कार्यक्रम हम आपके लिए पेश करते हैं। तो आज की इस कड़ी में आइए, आज स्वस्थ रहे हम कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मशरूम की कुछ बातें। जी हाँ, मशरूम का नाम सुनते ही मुझे पता है कि आपके मुंह में पानी ज़रूर आया होगा, क्योंकि मशरूम एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके नई नई रेसिपीज़ हम बना सकते हैं। सिर्फ रेसिपीज़ ही नहीं, टेस्ट ही नहीं, बल्कि इसके स्वास्थ्य के लिए कई फ़ायदे हैं। जी हाँ, हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदे हैं। तो आज का हमारा विषय ही है मशरूम और उससे जुड़े हमारे हेल्थ के फ़ायदे। तो आपको मैं बता दूँ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शारदा मैम, और ये हैं वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र बाट से। मैम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में स्वस्थ रहे हम में।
1: थैंक यू।
0: और इसके साथ ही मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि मशरूम जो है डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जब हम जाते हैं तो प्रोटीन की कमी रहती है तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई तुम ये मशरूम लिया करो डाइट में। हम संतुलित आहार लेते हैं तो उसमें भी शामिल करने के लिए कहते हैं डॉक्टर साहब हमें मशरूम को। तो सबसे पहले मशरूम के फ़ायदों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले उसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो ये मशरूम कितने प्रकार के होते हैं?
2: वैसे तो मशरूम की करीब 200 प्रजातियाँ हैं, लेकिन 200 जो इसकी प्रजातियां हैं उसकी खेती जो प्रयोगशाला स्तर पर भी की जाती है। और जहां तक हमारे बिहार की बात है तो बिहार में 4 तरह के मशरूम उगाए जाते हैं और पाए जाते हैं, जिसमें जिसको पहला बटन मशरूम, जिसको आप हर चौक चौराहे पे देखती होंगी, बटन के आकार का होता है यह बटन मशरूम,
0: हमारे इर्द गिर्द भी ये मतलब पाया जाता है।
2: और इसकी खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये टेम्परेचर जो तापमान इसके लिए चाहिए वो 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड उगने के लिए चाहिए, और ऐसा तापमान खास करके नवंबर से फरवरी तक ही हो पाता है। इसलिए बिना कंट्रोल, बिना नियंत्रित वातावरण के नवंबर से फरवरी, या ज्यादा आप कह सकते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती की जा सकती है।
0: अच्छा, तो ये हुई बटन मशरूम की बात।
2: और दूसरा जो हुआ वो प्लूरोटस मशरूम या ढींगरी मशरूम या एस्टर मशरूम के नाम से जाना जाता है। और ये इस एस्टर मशरूम की खेती आप अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक, या यूं कहें कि इसकी विशेष जो प्रजातियां होती है उसकी खेती आप पूरे साल तक कर सकती हैं।
0: अच्छा,
2: जैसे कि प्लूरोटस सजार काजू है, फ्लोरिडा है, फ्लेविलेटस है, CO2 है, डायजामोर है, तो ये कई प्रजातियाँ हैं जो तापमान का कुछ कम और कुछ ज्यादा पर। तो आप ढींगरी मशरूम या प्लूरोटस मशरूम या जिसको एस्टर मशरूम भी कहते हैं, इसकी खेती आप पूरे साल कर सकते हैं बिना किसी खास व्यवस्था के।
0: अच्छा, और मशरूम की एक खास बात है मैम कि जो भूमिहीन किसान है हमारे,
2: हाँ,
0: वो भी इसे उपजा सकते हैं।
2: और एक और है तीसरे तरह का जो मशरूम, जो दोनों के बीच में, जिसको उगाने का तरीका जो है वो बटन मशरूम और ढींगरी मशरूम या प्लूरोटस मशरूम के बीच का है, क्योंकि लगाने का तरीका उसका एस्टर मशरूम या ढींगरी मशरूम वाला होता है। और उसमें खास बात है कि केसिंग की जाती है।
0: अच्छा, ये केसिंग क्या?
2: केसिंग की जाती है, मतलब उसका जो सबस्ट्रेट जो होता है उसको कवर कर दिया जाता है। केसिंग मतलब कवर कर देना। क्यों? जब तक केसिंग नहीं करेंगे तब तक ये दूधिया मशरूम या मिल्की मशरूम, या जिसको बोटेनिकल नेम उसका कैलोसाइबी इंडिका है।
0: अच्छा,
2: तो ये तीसरा तरह का मशरूम हुआ। और इसको उगने के लिए 25 से 38 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और ये हमारे यहाँ अप्रैल से लेकर के अगस्त तक इसकी खेती की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के हम जो ये तीनों प्रकार का मशरूम बहुतायत में उगाया जाता है। और एक और मशरूम है जो पैडी स्ट्रॉ मशरूम जिसको कहते हैं, या धान पुआल मशरूम कहते हैं, या उसी को चाइनीज मशरूम भी कहा जाता है
0: जी।
2: और उसकी खेती ज्यादा तापमान पर की जाती है, 35 से 45 डिग्री जब तापमान होता है तब भी उसकी खेती हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में ये बिहार में इसकी खेती नहीं होती है। खास करके ये जो बटन मशरूम जो एगेरिकस बायोस्पोरस है, दूसरा प्लूरोटस मशरूम या ढींगरी मशरूम, और तीसरा जो मिल्की मशरूम या दूधिया मशरूम या जिसको कैलोसाइबी इंडिका कहते हैं, इसकी खेती होती है। और ये तीनों प्रकार की खेती जो होती है हमारे यहाँ, वो इसके लिए आप मशरूम तो जान रहे हैं आप लोग कि ये एक

0: कवक है और जी ये जी। खाने योग्य कवक है और इसकी खेती जो होती है वो जिसमें सेलुलोज या लिग्निन पाया जाता है वैसे पदार्थ पे इसकी खेती की जाती है, उस सबस्ट्रेट पे इसकी खेती होती है। और इसके लिए ना तो बहुत लागत की जरूरत है, ना ही बहुत कौशल की जरूरत है,
1: भूमि की जरूरत,
0: और ना ही भूमि की जरूरत है। और इसीलिए इसको हवा की खेती भी कहते हैं, बिना खेत की खेती भी कहते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि खेती बिना खेत का, तो ये मशरूम के लिए ही कहा जाता है। तो इसकी खेती की जाती है और घर बैठे जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं वो भी इसको रोजगार का जरिया बना सकते हैं।
1: अच्छा मैम, आपने एगेरिकस मशरूम के बारे में बात की थी, तो मैंने सुना है कि एगेरिकस मशरूम के औषधीय फायदे भी हैं।
0: हाँ,
1: तो उसके बारे में
0: जहाँ तक मशरूम की बात है, ये मशरूम में और कुछ औषधीय मशरूम भी होता है, जैसे
1: जी, उनके नाम बताएं, उनके बारे में बताएं।
0: हाँ, जैसे शीताके मशरूम जिसको कहते हैं, और ये खाया भी जाता है, ये बहुत स्वादिष्ट भी होता है। और दूसरा एक ऋषि मशरूम है जिसको गैनोडर्मा लुसिडम कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और लेकिन इसका सिर्फ औषधीय उपयोग होता है, जो कैप्सूल बनाया जाता है, दवाइयां बनती है, या फोर्टिफिकेशन में काम में आता है।
1: जी जी।
0: तो ये ऋषि मशरूम है। और जहाँ तक आप एगेरिकस बायोस्पोरस मतलब बटन मशरूम की बात कर रही थी, तो हम ये कहेंगे कि प्रोटीन का ये मुख्य स्रोत होता है,
1: भंडार
0: जो जो मशरूम है वो प्रोटीन का भंडार है, खास करके सब्जियों में, जिसमें कि 3.1 कच्चा में, और अगर इसको सुखा दिया जाता है तो 28-30% तक प्रोटीन पाया जाता है। और इसके इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी जो शरीर में उपलब्ध होने की अवस्था में होते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा इसमें विटामिन B1 कहिए, जिसको थायमिन कहते हैं, B2, राइबोफ्लेविन या नियासिन जो B3 है, पेंटोथेनिक अम्ल, ट्रिप्टोफान, ये सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं।
1: अच्छा।
0: और जहाँ तक कहते हैं कि सोडियम की मात्रा इसमें कम होती है।
1: अच्छा।
0: और पोटासियम की मात्रा ज्यादा होती है, और यही कारण है कि जो रक्तचाप वाले लोग होते हैं, उच्च रक्तचाप वाले, वो भी इसका सेवन करते हैं, और जो मधुमेह वाले रोगी होते हैं वो भी इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इसमें रेशे की अधिकता होती है। और जैसे सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से विटामिन डी पाया जाता है, जो धूप में कहते हैं ना कि बैठने के लिए विटामिन डी लेने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तो ये विटामिन डी भी इसमें
1: उपलब्ध
0: पाया जाता है। और इसमें कहने का मतलब है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल शून्य होता है, नहीं होता है, और कोलेस्ट्रॉल के बदले इसमें इर्गेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि जब अवशोषण होता है तो विटामिन डी में बदल जाता है। तो ये मशरूम विटामिन डी का भी
1: नहीं खाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा और इसके मतलब खाने में स्वाद भी कुछ ऐसे ही लगते हैं। तो मशरूम के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, और अगर मैं यहाँ पर खाने के फायदे की बात करूँ मैम, तो इससे खाने से हमें क्या फायदा हो सकता है? वैसे हम सभी जानते हैं, लेकिन आप विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं तो और ज्यादा अच्छा होगा।
0: बिल्कुल। तो जैसे ये प्रोटीन का स्रोत हुआ, और आप जानते हैं कि हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और फाइबर
1: जी जी
0: होना चाहिए। और ये जब अब जब ये सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं आहार में, तभी वो संतुलित आहार होता
1: जी
0: है
1: जी जी।
0: और मशरूम में जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, आयरन भी है, और आयरन है तो एनीमिया को
1: दूर कर सकता है।
0: तो ये सारे विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और इसमें कैलोरी, जो मोटापा से ग्रसित होते हैं लोग, इनको कहा जाता है कि कम खाना खाइए, कम कैलोरी वाला खाना खाइए, वो भी 100 ग्राम में सिर्फ 22 कैलोरी ही इससे मिलता है। और जो रेशे हैं वो उनके होने से कम खाइए और लगता है कि पेट भरा भरा है, और कब्जियत तो दूर होता ही है। साथ ही रेशे होने के कारण ये मधुमेह रोगियों के लिए भी लाभदायक होता है।
1: तो मैम यहाँ पर अभी आपने कहा कि इसमें जो है एनीमिया से बचने की शक्ति होती है, तो महिलाओं और बच्चों के लिए कितना हद तक फायदेमंद हो सकता है?
0: बिल्कुल, क्योंकि खास करके जो एनीमिया से ग्रसित होते हैं, जो
1: इसमें आयरन पाया जाता है,
0: जिनमें जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं माहवारी
1: अनियमित होता है,
0: अनियमित होता है नहीं, मतलब माहवारी के दौरान जो खून निकल जाता है वो
1: मतलब

0: ब्लीडिंग जो
1: हैवी ब्लीडिंग जो होता है या प्रेग्नेंट जो है उनमें भी खून की कमी हो जाती है, या दूध पिलाने वाली माँ है उनमें भी खून की कमी होती है, किशोरियां हैं उनमें खून की कमी होती है, तो इन लोगों के लिए ये प्राकृतिक आहार बहुत ही उपयुक्त और संतुलित आहार है जो उनको इस तरह से खून की कमी से, जिसको रक्ताल्पता कहते हैं या एनीमिया कहते हैं, उसको दूर करने में बिल्कुल सहायक है।

0: यानी कि बनने की क्रिया में रहता है, तो इसलिए अगर खून अच्छी मात्रा में उनके अंदर हो तो आपका जो शिशु है वो भी स्वस्थ पैदा होगा। तो इसलिए जब भी आप आहार की बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, तो आप सप्ते में एक या दो दिन मशरूम उन्हें ज़रूर दें आहार में। फिलहाल तो यहाँ पर इसके लाभ की बात हो गई मैम, और इसका उपयोग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं?
1: इसका हर तरह से उपयोग करते हैं, जैसे बटन मशरूम जो है उसको हम जो ताजा है उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसको सुखा करके इस्तेमाल नहीं करते, उसकी कैनिंग की जाती है, मतलब डिब्बाबंदी करके रखा जाता है।
0: हाँ।
1: तो डिब्बाबंदी जो डिब्बाबंद मशरूम है उसका इस्तेमाल करते हैं
0: जी,
1: और जो क्लोरोटस मशरूम है या मिल्की मशरूम जिसको दूधिया मशरूम कहते हैं, ऑयस्टर मशरूम या दूधिया मशरूम जो है उसको हम सुखा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके विभिन्न उत्पाद बना करके और उसको परिरक्षित करके भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि परिरक्षण आप जानती हैं कि जिस मौसम में होता है उसमें तो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको दूसरे मौसम में भी, जैसे इसको अचार के रूप में, चटनी के रूप में, और डिब्बाबंदी तो कर ही सकते हैं, सुखा करके रख ही सकते हैं, और इसको हम लोग जो नमक के घोल में भी, जैसे एक महीने तक हम रख सकते हैं अगर नमक के घोल में रख दें तो हम मशरूम को इस तरह से ताज़ा रूप में और सुखा करके उसका पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब जब पाउडर फॉर्म में हो जाता है तो हम उसे समोसा बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, केक बनाते हैं, और जब ताज़ा होता है तो उसकी हम सब्जियां बनाते हैं, या जो पुलाव बनाते हैं उस रूप में, या कटलेट बना करके, और जो मशरूम है उसका हम रायता के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका खीर बना सकते हैं, उसका पेड़ा बना सकते हैं, कई मिठाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जो मशरूम हम डालते हैं, दूसरे उत्पाद जो बनाते हैं उसमें उसकी मात्रा, जो बेस मटेरियल होता है, जैसे मान लीजिए कि केक बना रहे हैं
0: जी जी।
1: तो केक बना रहे हैं, अगर 100 ग्राम हमको मैदा लेना है तो उसमें 20 ग्राम ही हम मशरूम का पाउडर लेंगे, और ये पाउडर मशरूम जो है वो करीब इसमें 90% पानी होता है, तो हम 100 ग्राम सुखाएंगे तो 10 ग्राम पाउडर तैयार होगा
0: जी।
1: तो ये पाउडर के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस जो मशरूम है, चाहे बटन मशरूम हो या फ्लोरोटस मशरूम हो, आप कोई भी, जो हम तीनों प्रकार के मशरूम की बात करते हैं कि दूधिया मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम, तीनों से हम अचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी चटनी बना सकते हैं, उसकी डिब्बाबंदी कर सकते हैं, और बटन को छोड़कर बाकी मशरूम को हम सुखा करके भी इस्तेमाल करेंगे दूसरे उत्पाद बनाने के लिए, जो अपने यहाँ लिट्टी बनती है
0: जी,
1: उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रोल बनाते हैं, जो ब्रेड रोल बनाते हैं उसके अंदर भी, या पराठे बनाएं तो उसमें भी हम स्टफ करने के लिए, भरने के लिए हम मशरूम का उपयोग कर सकते हैं। और खास करके इसका अचार जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक भी होता है, चूंकि वो नमक और सिरके में मिला करके बनाया जाता है, तो ये बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
0: कहने का मतलब है कि हम इसे संवर्धित तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, मूल्य संवर्धित उत्पाद इसका हम बना सकते हैं, जैसे हम लोग इसका केक बना लें,
0: अचार
1: बना लें, या अचार बना लें, या बिस्किट बना लें, तो इसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे इसका जो पोषक मूल्य है वो भी बढ़ जाएगा और आमदनी भी हो सकती है अगर हम उसको रोजगार के रूप में लें तो।
0: अच्छा मैम, देखा गया है कि हर जो किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है, एक तो लाभ और एक हानि, तो क्या इसके कुछ एलर्जीज हैं या फिर कुछ हानि भी हैं?
1: अभी तक जो रिसर्च हुआ है, जो अनुसंधान हुआ है, उसमें मशरूम की हानि कहीं भी नहीं पाई गई है, कहीं नहीं देखी गई है। सिर्फ जिसको ज़्यादा प्रोटीन न खाने के लिए दिया जाता है वैसे लोग थोड़ा कम
0: से परहेज कर सकते,
1: थोड़ा परहेज करें, लेकिन जहाँ तक यह है मधुमेह वाले, वो इसका इस्तेमाल करेंगे और बहुत आसानी से, और उनका ये रोग रोधी का काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना और हमारे श्रोताओं आपने जाना कि कैसे मशरूम हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो फिलहाल तो इसके कुछ भी हानि नहीं है, इसलिए आप आराम से अगर खाना चाहते हैं इसे तो बिल्कुल घबराएं नहीं, आप अपने घर में इसे लाएं, किचन में लाएं और बनाएं इसके अलग अलग रेसिपीज़। मैम ने जैसे बताया कि आप इसे संवर्धित, मूल्य संवर्धित तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों को अगर जो है आप देना चाहते हैं रोल्स वगैरह तो आप उसमें भी इसे डाल सकते हैं, प्रोटीन के साथ उन्हें अच्छी जो पोषक तत्व है वो भी मिल जाएंगी और साथ ही उन्हें खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहें हमें हर दिन कुछ अच्छी अच्छी बातें, आपकी स्वस्थ रहने की बातें, हेल्दी बातें लेकर मैं हाजिर होंगी

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल 0।

0: प्रयोग करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
3: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आम का मौसम लगभग जा चुका है और फल तोड़ाई भी लगभग हो चुकी है, और फल तोड़ाई के बाद भी जरूरी होता है कि आप बागों का उचित प्रबंधन करें ताकि अगले वर्ष अधिक फल हो, अगले वर्ष भी आपको मुनाफा अच्छा हो। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि फल तोड़ाई उपरांत आम के बागों का प्रबंधन किस प्रकार करें। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर उद्यान विभाग फल से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा।
1: मैम सबसे पहला सवाल यही है कि अभी आम के बागों से करीब करीब सभी किस्मों के फल तोड़ाई हो चुकी है, तो अभी प्रबंधन कैसे करना चाहिए जिससे कि अगले वर्ष अधिक मात्रा में फल हो।
5: सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ कि फल तोड़ाई के बाद पौधों में खाद एवं उर्वरक का कमी हो जाता है एवं पौधों के समुचित विकास एवं फलन के लिए नियमित रूप से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर वृक्षों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनसे कम उपज प्राप्त होता है तथा फलों की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की हो जाती है। पानी के जरिए ही वृक्षों के अंदर पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जल जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन इत्यादि कामों में आवश्यक होता है। इसके बिना ये सब कार्य जो है अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के अभाव में वृक्षों की बढ़वार एवं फलत पर गहरा असर पड़ता है। पौधे भूमि से पोषण एवं जल के माध्यम से ही लेते हैं तथा यह जल पौधों को पाले से भी बचाता है। समुचित सिंचाई एवं उर्वरक से फलों का उपज, स्वाद, मिठास, गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। जल एवं पोषक प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि कब दी जाए, कहाँ दी जाए एवं कितनी मात्रा में दी जाए ताकि जल एवं पोषक का अधिकतम उपयोग तथा मिट्टी एवं पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। जल एवं पोषक प्रबंधन के साथ साथ डालियों की हल्की कटाई छटाई भी आवश्यक है। यह कार्य भी फल तुराई के तुरंत बाद ही करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता युक्त फल एवं अधिक फलन के लिए आवश्यक है कि पौधे के मांग के अनुरूप उसका पोषण प्रबंधन किया जाए। पौधे की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए सभी 16 अनिवार्य पोषक तत्वों की पूर्ति आवश्यक है। सही समय पर सही उर्वरक एवं सही मात्रा का प्रयोग करके गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: तो मैम उचित समय क्या होता है जब आम के पौधों में पोषण की मात्रा देनी चाहिए?
5: आम में पोषण देने का उचित समय जुलाई अगस्त माह है, लेकिन पोषक तत्वों का अधिक वर्षा से होने वाली क्षति को देखते हुए कंपोस्ट की पूरी मात्रा एवं उर्वरक की 75% मात्रा जुलाई में और शेष मात्रा का प्रयोग अप्रैल के प्रथम माह में करना लाभप्रद है।
1: मैम जब हम एक वयस्क पौधे की बात करते हैं तो आम के एक वयस्क पौधे में कुल खाद की कितनी मात्रा होनी चाहिए?
5: आम के वयस्क पेड़ में अनुशंसित खाद एवं उर्वरक की मात्रा इस प्रकार है। इसे प्रति पौधे खाद एवं उर्वरकों की मात्रा में 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास एक वयस्क पेड़ के लिए अनुशंसित है। यह मात्रा 10 साल के बाद स्थिर हो जाता है। 10 साल के ऊपर जो पौधे हैं उसमें यही मात्रा प्रत्येक वर्ष प्रति पेड़ लगेगा। इस तरह से उर्वरक का

0: डोज दिया जा सकता है।
1: अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन की, तो मैम आम के बागों में जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: पौधों की सिंचाई के समय हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई कब करनी चाहिए और कितनी मात्रा में की जानी चाहिए। अब सबसे पहला है सिंचाई कब करें। उद्यान की सिंचाई की आवश्यकता स्थान विशेष की वर्षा के परिणाम एवं वितरण, मिट्टी के प्रकार एवं बनावट, वातावरण की आर्द्रता और तापमान पर निर्भर करती है। चिकनी मिट्टी को बलुई मिट्टी की अपेक्षा एक बार में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, परंतु बलुई मिट्टी में लगे हुए बाग की सिंचाई कम अंतराल पे और कम मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। एक बार में इतना ही पानी दिया जाए जो संपूर्ण जल क्षेत्र को जड़ क्षेत्र को अच्छी तरह नम कर सके। जहां वर्षा कम होती है और इसका वितरण भी अनियमित हो तो सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। सिंचाई जल की आवश्यकता वृक्ष की आयु पर भी निर्भर करता है। आम के वृक्ष फल देने की स्थिति में आने के बाद बाग की सिंचाई का व्यवस्था बदल जाता है। फल देने वाले वृक्षों को नवंबर से मार्च तक आमतौर पर सिंचित नहीं करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह इस अवधि में फूल धारण करने के लिए आवश्यक आंतरिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसलिए इस अवस्था में सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस अवधि में सिंचाई करने से संभव है कि वृक्षों में मंजर कम आए या फूल आने के बाद झड़ जाए। अतः यह जान लें कि फलने वाले वृक्षों की सिंचाई, फल निकलने एवं स्पष्ट रूप से दाने लग जाने के बाद ही करना लाभकारी होता है। फलों के लगने तथा विकास के दौरान किसी भी अवस्था में पानी की कमी से फलों का विकास प्रभावित होता है तथा फल झड़ने की समस्या भी आती है। फल लगने के उपरांत 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि फल पूर्णतया विकसित ना हो जाए। एक बार की सिंचाई में इतना पानी अवश्य देना चाहिए कि वृक्षों का संपूर्ण जड़ क्षेत्र नम हो जाए। आम जैसे बहुवर्षीय वृक्षों की जड़ें काफी गहराई तक जाती है, परंतु प्रभावी रेशेदार जड़ों का अधिकांश भाग मिट्टी की सतह से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक होती है। सिंचाई इतनी अवश्य करनी चाहिए ताकि जड़ क्षेत्र में पर्याप्त पानी बना रहे और पौधे का विकास ठीक प्रकार से हो। आवश्यकता से ज़्यादा या कम सिंचाई पौधे के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब सिंचाई किस प्रकार करें, तो सिंचाई करने का है जैसे कि पारंपरिक सिंचाई विधि है या आधुनिक सिंचाई विधि है। अब पारंपरिक सिंचाई की बात करें तो इसमें फ्लड इरिगेशन है या क्यारी विधि से है, नाली विधि से है और रिंग विधि से है, थाला विधि से जिसको बोलते हैं। इन सबों में थाला विधि सर्वोत्तम पाया गया है। इसके लिए वृक्ष के चारों तरफ 2 से 3 फीट की दूरी पर थाला बनाकर उसकी सिंचाई करनी चाहिए। आधुनिक सिंचाई पद्धति में ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर मेथड से पौधे का सिंचाई किया जा सकता है। इस विधि से करने पर जो सिंचाई जल का बहुत सेव होता है, बचता है। इस तरह से किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं अपने बगीचे का।
1: तो किसान भाई बहनों जो बागवानी करते हैं और आम के फल की तुड़ाई हो चुकी है, तो इस प्रकार से आप अपने बगीचों का प्रबंधन जरूर करें तो अगले वर्ष भी अच्छी गुणवत्ता वाले और अधिक फल आएंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जीरो जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों? क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के

0: सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
5: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड।

रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85% और दोपहर में 50-55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं, उन्हें बता दें कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20-30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले और 20 पायरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20-30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंतशुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350-400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20-25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60-80 किलोग्राम फास्फोरस, 40-60 किलोग्राम पोटाश और 10-15 किलोग्राम बोरेक्स और 1-2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: vary the pace of rolling. On the bottom left of this page, there is an image which depicts a playground in which there are two students. One of them is kicking the football and the other one is trying to catch the tennis ball. Circle time. Share the difficulties you faced while hitting the moving target and how you dealt with them. The teacher will give a target to students to kick the ball into one of the squares.
1: Khel Yog. You were just listening to this audiobook, textbook of physical education and well-being for class 5. Narration, Meha Kheda. Sound recordist, Manju Kumari. Assistance in production, Chetna Sharma. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is presented to you by CIET NCERT, New Delhi,
2: India. Bell dena. इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था. इसकी यही प्रॉब्लम है.
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से.
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं. बुड़बात
2: खांसी.
3: हाँ.
2: इसको तो एक आध महीना हो गया.
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप. चलिए चलिए चलिए.
2: डॉक्टर खांसी तो है.
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए. दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है.
2: टीबी?
3: हाँ. तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए.
2: ठीक है.
3: टीबी किसी को भी हो सकता है. अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए. नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है. समझ गए भाई साहब आप? आइए. दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए.

0: मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं। और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है, तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो,

0: तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
0: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
1: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
0: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
1: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज्यादा पानी क्या मात्रा बारिश हो जाती है तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
0: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
1: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
0: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
1: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो

0: बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भूटा 10 रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
1: जी सर, सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
0: बीज दर जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
1: और बुआई की विधि क्या?
0: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरब पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिम, तो हवा बीच से दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
1: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में।
0: हाँ, देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप चॉइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास 3 चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है बाली आने लगती है वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें

0: क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े, और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें, ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है, फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है, ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पर अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे। तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है, और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
1: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
0: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है, तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, तो एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं, तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं, उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो पौध निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है। उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं, तो पानी निकल ही जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है। नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है, तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी, जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजीरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच

0: में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए। लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें। बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है। और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने 2 दवा बताया, सिर्फ 2 ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवे का उपचार कीजिए। और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को, आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। धन्यवाद
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 के पाठ 7 मेरी किताब के अभ्यास बातें किताबों की पर आधारित ये कार्यक्रम।
1: बच्चों, कहानी सुनना तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? हाँ, रानी को भी बहुत अच्छा लगता है। रानी के दादाजी ने आज उसे राजा रानी की कहानी सुनाई और फिर रानी से बोले,
2: तो बताओ रानी, राजा रानी की कहानी कैसी लगी?
3: बहुत अच्छी लगी दादाजी। दादाजी, एक और कहानी सुनाओ ना।
2: नहीं बेटा, अब तुम मुझे कहानी सुनाओ।
3: नहीं दादाजी, आप सुनाओ।
2: मुझे भी तुमसे कहानी सुनने का बड़ा मन करता है। ठीक है, कहानी ना सही तो अपनी मनपसंद किताब के बारे में बताओ।
3: किताब? हाँ, मुझे अपनी हिंदी की किताब बहुत अच्छी लगती है।
2: अच्छा, ऐसा क्या खास है तुम्हारी हिंदी की किताब में?
3: दादाजी, मेरी हिंदी की किताब में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविताएं और चित्र हैं।
2: अच्छा?
3: हाँ, ये सब मुझे बहुत पसंद है।
2: तो फिर बेटा, किताब से कोई कहानी या कविता सुनाओ ना।
3: ठीक है, कौन से सुनाओ? वैसे तो मुझे सभी कहानियाँ पसंद है।

0: सुना मैं आपको भालू ने खेली फुटबॉल, ये कहानी सुनाऊं?
1: भालू ने खेली फुटबॉल?
0: हाँ।
1: वही ना जिसमें भालू शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लेता है और अपने पैरों से उसे ऊपर उछाल देता है।
0: दादाजी वही वाली।
2: जब दादा और पोती बात ही कर रहे थे तब रानी ने एक मुखौटा पहना जो बादल की तरह बना हुआ था। मुखौटा पहनकर रानी बोली,
0: गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़।
1: अरे ये क्या, मेरा बेटा तो बादल का मुखौटा पहनकर बादल बन गया, ये किसने बनाया?
0: दादाजी ये मुखौटा मैंने बनाया है, किताब में रंग बिरंगे चित्र हैं, उन्हीं चित्रों को देखकर मैंने ये मुखौटा बनाया है। और दादाजी,
1: बेटा,
0: मेरे कई दोस्तों ने भी मुखौटे बनाए हैं।
1: अच्छा
0: दादाजी,
1: बेटा,
0: मुखौटे, मिट्टी के नमूने और खिलौने हम सब बनाते हैं और अभिनय करते हैं तो हमें बहुत मजा आता है।
1: अच्छा ला दिखाओ अपनी किताब, देखो तो कितने मुखौटे बने हैं तुम्हारी किताब में।
0: ये लीजिए दादाजी।
1: अरे ये तीनों मुखौटे बड़े बड़े जानवरों के हैं, हाथी शेर भालू के मुखौटे।
0: अच्छे लग रहे हैं ना दादाजी?
1: अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुखौटा रूपी बादल भी हमें कुछ सुनाए। क्या सुना रहा है मेरा छोटा सा बादल?
0: गड़ गड़ गड़ गड़। मैं हूँ बादल, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसो खूब जमा जम जम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे,
1: काले मेघा पानी दे। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा।
2: तो बच्चों, तुम भी कोई मुखौटा बनाओ और सुनाओ मुखौटे पर आधारित कविता, ठीक है?
3: बातें किताबों की। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आचार्य शिक्षा शास्त्र CIET NCERT, विषय संयोजन सह आचार्य डॉ. रमेश कुमार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग NCERT, आलेख डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा, कलाकार वैभव श्रीवास्तव और सुनील लोहिया, बाल कलाकार रितिका, ध्वनिंकन बटिलैंग लिंगडो और मयंक कुमार, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन

चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम ज्योति D96 पंतशुभ्रा इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आपको अपने स्कूल का पहला दिन तो याद होगा। पता है, मुझे भी अपने स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छे से याद है। आपके स्कूल की भी कुछ यादें आपके साथ होंगी, मेरे स्कूल की भी कुछ यादें मेरे साथ हैं। तो क्यों ना हम आज अपने अपने स्कूल की यादों को साझा कर ले। कुछ आप कहें और कुछ मैं कहूं, और फिर कुछ मैं कहूं और फिर कुछ आप कहें। तो शुरू करें आपके और हमारे स्कूल का पहला दिन। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे नन्हे मुन्ने श्रोता हैं जो अभी तक स्कूल ही नहीं गए। ये लीजिए, ये बात तो मैं भूल ही गई, न जाने कैसे ये दिमाग से बात निकल गई। तो कोई बात नहीं, जो स्कूल कभी नहीं गए वे ये भी जान लेंगे कि स्कूल में होता क्या है और क्या क्या होता है, कौन कौन लोग स्कूल में होते हैं, और टीचर या दीदी बच्चों के साथ कितनी मस्ती मारती हैं। तो हम शुरू करें आपके और हमारे स्कूल का पहला दिन। तो क्या मैं शुरू करूं अपनी बात? ठीक है, तो आपने इजाजत दी है तो फिर आपका हुक्म मैं सिर आंखों पर रखती हूं और शुरू करती हूं अपने स्कूल के पहले दिन से। ये जुलाई का समय था और तारीख मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन शायद 1 या 2 जुलाई रही होगी। नहीं, शायद हमारे जमाने में स्कूल खुलता था शायद 15 या 16 जुलाई से। चले छोड़िए तारीख में क्या रखा है, मजा तो इस बात में है कि स्कूल का पहला दिन कैसा गया। स्कूल का पहला दिन था और मैं अपने पापा के साथ स्कूल गई। मम्मी घर में थी, वो भाई को संभाल रही थी। तो स्कूल के पहले दिन मुझे मेरे पापा ने स्कूल छोड़ा, पैदल पैदल नहीं, साइकिल पर। मुझे अपने पापा के साथ साइकिल पर बैठने में बड़ा मजा आता है, तो जब तब मुझे मौका मिलता है मैं कूद कर उनकी साइकिल में पर बैठ जाती हूँ और फिर हम घूमने निकल जाते हैं। तो पापा और मैं बतियाते गपियाते स्कूल की ढेर सारी बातें करते करते स्कूल पहुंच गए। तो मैं और मेरे पापा क्लास में गए। क्लास में माधवी दीदी बैठी हुई थी। माधवी दीदी ने मुझसे मेरा नाम पूछा, वे मुस्कुराई और उन्होंने मुझे एक टॉफी दी। तो मैंने मन ही मन सोचा कि भाई भी तो घर पर है, तो क्यों ना एक टॉफी मैं भाई के लिए ले लूं। तो मैंने माधवी दीदी से कहा, दीदी क्या आप मुझे एक और टॉफी दे देंगी? पापा ने मेरी तरफ घूर के देखा कि एक टॉफी तो मिली गई है, ये दूसरी टॉफी क्यों मांगी जा रही है। तो माधवी दीदी ने कहा, तो आपको 2 टॉफी चाहिए? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो एक ही टॉफी चाहिए। तो माधवी दीदी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, आपको तो एक टॉफी मैंने पहले दे दी है। तो मैंने कहा, हाँ मेरे पास तो एक है, तो मुझे एक टॉफी अपने भाई के लिए चाहिए। माधवी दीदी खूब जोर से हंसी और उन्होंने हंसते हंसते मुझे एक और टॉफी दे दी। तो ऐसा कुछ था मेरा स्कूल का पहला दिन। तो बच्चों, आपका स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? आपको कौन छोड़ने गया था स्कूल में, कुछ याद है? और आप स्कूल के लिए तैयार कैसे हुए थे? स्कूल जाने के लिए तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं, सुबह का नाश्ता करना पड़ता है, बस्ता संभालना पड़ता है और फिर हम स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर जिनकी अभी उम्र नहीं हुई है स्कूल जाने की, लेकिन सबके मन में स्कूल की कोई ना कोई तस्वीर तो होती ही है। प्यारे बच्चों, आपका स्कूल का पहला दिन कैसा गुजरा,

आप हमसे जरूर साझा कीजिए। तो क्यों ना हम स्कूल में चले? ठीक है, तो हम चलते हैं एक स्कूल में। ये स्कूल पता है किसका है? ये स्कूल है कल्याणी का। कल्याणी कौन? वही कल्याणी जो मेरे पड़ोस में रहती हैं। छोटी सी चुलबुली सी कल्याणी हमेशा इधर उधर न जाने कहां कहां भागती रहती हैं। कहीं टिककर बैठती ही नहीं है। उनकी माँ को ये लगता है कि कल्याणी जब स्कूल जाएंगी तो क्लास में ये बैठेंगी कैसे। पर कल्याणी को स्कूल जाकर खूब मजा आया, क्योंकि दीदी ने कभी टोका ही नहीं कि तुम इधर उधर क्यों दौड़ रहे हो। दीदी ने पता है क्या कहा बच्चों से? कि सारे बच्चे जाकर मैदान में खूब खेलो, जिसको जो करना है वो करो, दौड़ो भागो, एक दूसरे के पीछे दौड़ो, एक दूसरे को पकड़ो, स्टापू खेलो, जो खेलना है वो खूब मजे से खेलो। मैंने तो ऐसा स्कूल कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं तो अपने स्कूल को ही देखकर ये बात कहूंगी ना, लेकिन मुझे मालूम है बच्चों, आपका स्कूल बहुत अच्छा है। वहाँ खेलने की तरह तरह की चीजें हैं जिनसे आप खेलते हैं। झूले भी तो हैं आपके स्कूल में। ये बात तो किसी ने मुझे बताई ही नहीं, लेकिन मुझे तो सब पता है कि आपके स्कूल में क्या क्या है। आपके स्कूल में झूले हैं, आपके स्कूल में खूब सारी खेलने की चीजें हैं, एक खूब बड़ा सा मैदान है, और कल्याणी ने तो मुझे ये भी बताया कि एक ऐसा बड़ा सा कमरा है जहाँ पर खूब सारे शीशे लगे हैं, देखने के लिए आईने लगे हैं, और हारमोनियम है, तबला है, सितार है, ड्रम है, और हम खूब नाचते और गाते हैं। तो कल्याणी ने अपने स्कूल का पहला दिन कैसे बिताया पता है बच्चों? नहीं पता? तो जो मुझे कल्याणी ने बताया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कल्याणी जब अपने पापा के साथ स्कूल पहुंची तो नंदिनी दीदी ने कहा, कल्याणी आपका ही नाम है ना? कल्याणी ने नंदिनी दीदी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद नंदिनी दीदी ने कल्याणी का हाथ पकड़ा और वो उसे प्यार से क्लासरूम में ले आई। पता है क्लासरूम में और क्या क्या था? क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। और क्या कर रहे थे बच्चे? सारे बच्चे आपस में खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे, एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे। आप जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप भी तो नाम पूछते हैं। तो सारे बच्चे एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे, नाम जान रहे थे, कौन कहाँ रहता है ये भी पूछ रहे थे, और वो कहाँ रहते हैं अपने बारे में बता रहे थे। तो कल्याणी ने सारे बच्चों को देखा और सारे बच्चों ने कल्याणी को देखा। सारे बच्चों ने तालियां बजाई कल्याणी के आने पर। तो कल्याणी बहुत खुश हुई और कल्याणी जाकर बैठ गई बबली के पास। बबली उनके पड़ोस में रहती थी। कल्याणी ने बबली को देखा और बबली ने कल्याणी को देखा। तो बबली ने कहा, कल्याणी तुम किसके साथ आई हो? कल्याणी ने कहा, मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। अच्छा, तो अंकल आपको छोड़ने आए हैं स्कूल? कल्याणी ने कहा, हाँ। तो क्या वे चले गए? मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो नंदिनी दीदी क्लास में ले आई थी, शायद चले गए हो, उन्हें ऑफिस भी तो जाना है। देखो कल्याणी, हमारी क्लास कितनी अच्छी है, तुमने देखा इस क्लास में कितनी सारी किताबें हैं? तो बच्चों, उस क्लास में ढेर सारी किताबें रखी हुई थी, तरह तरह की किताबें, रंगीन चित्रों वाली किताबें, और कहानियों की किताबें, कविताओं की किताबें, और कुछ किताबें ऐसी थी जिसमें कोई कहानी कविता तो थी ही नहीं, केवल चित्र ही चित्र थे, केवल तस्वीरें ही तस्वीरें थी। और मुझे तस्वीरों वाली किताबें बहुत पसंद आती हैं। तो सारे बच्चे नंदिनी

दीदी को घेर कर बैठ गए। अच्छा सोचिए बच्चों, आगे क्या हुआ होगा? नंदिनी दीदी ने कोई पाठ शुरू किया होगा पढ़ाने के लिए, जैसा आमतौर पे होता है? नहीं, नंदिनी दीदी की क्लास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंदिनी दीदी ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया, सबका एक एक करके नाम पूछा और फिर उन्होंने अपना नाम बताया। तो इस तरह से बीत रहा था हमारे स्कूल का पहला दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन इस क्लास में तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है बच्चों, नंदिनी दीदी ने सब बच्चों से पूछा, उन्होंने बच्चों की पसंद पूछी कि वे आज क्या करना चाहते हैं। हमेशा नंदिनी दीदी ऐसे ही करती हैं, वे बच्चों से ही पूछती हैं कि अच्छा बताओ हम क्या करें आज। तो बच्चे बताते हैं, नंदिनी दीदी आज हम कोई गीत गाएं। तो बच्चों, नंदिनी दीदी ने सब बच्चों को एक गीत सुनाया। तो हम भी सुने वो गीत। ये गीत कुछ ऐसा था।

गए। कैसा लगा गीत आपको? ये गीत तो मुझे लगता है सब बच्चों ने सुना होगा। नंदिनी दीदी ने सब बच्चों के साथ ये गीत गाया और बच्चों ने भी नंदिनी दीदी के साथ इस गीत में खूब आनंद लिया, खूब मजे किए। और पता है उसके बाद जॉन ने नंदिनी दीदी से क्या कहा? जॉन ने कहा, दीदी दीदी अब हम एक और गीत गाएंगे। अच्छा बताओ कौन सा गीत गाएंगे? वही जो आपने पहले उस दिन सुनाया था। मैंने कब सुनाया था? नन्नी दीदी आपको याद ही नहीं आ रहा, जब आप मुझे स्कूल के बाहर मिली थी तो एक गीत गुनगुना रही थी, वही गीत सुना दीजिए ना। तो नंदिनी दीदी ने अपने दिमाग पे जोर डाला और सोचा उन्होंने कि मैंने कौन सा गीत गाया था, मैं कौन सा गीत गुनगुना रही थी। तभी नंदिनी दीदी को वह गीत याद आ गया। तो बच्चों, नंदिनी दीदी ने बच्चों के साथ मिलकर एक और गीत गाया, तो लीजिए सुनिए आप वह गीत।

कैसा लगा आपको गीत? भाई मुझे तो बहुत मजा आया। तो मुझे मालूम है कि हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं को भी यह गीत बेहद पसंद आया होगा। आप भी ऐसे गीत गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। देखिए भाई, गाना हो तो जी भर के गा लीजिए। अब उसमें सुर है, लय है, ताल है, इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप तो जी भर के

0: गाइए, खूब मजे से गाइए, आनंद के साथ गाइए। अब जब हम अपने दिल से गाते हैं गाना तो वो सबको पसंद आता है, पर हम तो अपने लिए गाते हैं ना गाना, तो बस आपको जो गीत आता है आप गुनगुनाइए। अभी ये गीत खत्म ही हुआ था तो रूबीना ने कहा, नंदिनी दीदी क्या आप एक और गीत सुना सकती हैं? तो पता है बच्चों क्या हुआ, नंदिनी दीदी ने कहा ठीक है हम एक और गीत गाते हैं। तो फिर सब ने मिलकर एक और गीत गाया और ये गीत आप भी सुनिए।
1: घंटी बजती तबला बोले घुंघरू छनके

तो कैसा लगा आपको ये गीत? अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो बस गीतों के सहारे ही आज स्कूल का पहला दिन बीत रहा था। तभी अचानक अमरजीत की नजर गई दरवाजे पर। पता है वहाँ कौन था? वहाँ एक छोटी सी बिल्ली झांक रही थी। कहाँ? अरे भाई, क्लास के अंदर। लेकिन ये बिल्ली क्यों आई क्लास के अंदर? क्लास में तो कोई चूहा नहीं था। कल्याणी ने कहा कि मुझे लगता है ये बिल्ली भी गाना सुनने आई है, तो इस बिल्ली को भी गाने का आनंद लेने देते हैं। तो बच्चों, बिल्ली झांक रही थी, सब बच्चों की नजर नंदिनी दीदी की तरफ थी, लेकिन कल्याणी की नजर कहाँ थी? उस छोटी सी बिल्ली पर। छोटी सी बिल्ली गीत खत्म होते ही भाग गई। तभी दीपक उठा और वह कहानियों की किताब के पास चला गया। उसने अपनी पसंद की खूब सारी कहानियों की किताबें देखी और एक किताब उठाकर वह नंदिनी दीदी के पास ले आया। अच्छा सोचो बच्चों, दीपक ने किताब क्यों उठाई और उसने वह किताब नंदिनी दीदी को क्यों दी होगी? सोचिए, क्यों दी होगी आखिर किताब उन्होंने नंदिनी दीदी को? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पहचाना। दीपक दरअसल वह कहानी सुनना चाहते थे नंदिनी दीदी से। तो नंदिनी दीदी ने कहा, ठीक है, अब हम गीत के बाद एक कहानी कहते हैं। और फिर नंदिनी दीदी ने बहुत मजे से एक कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते सब हूं हूं कर रहे थे। नंदिनी दीदी ने कहानी कहना शुरू किया। एक गांव था, गांव में एक किसान रहता था, किसान के दो बच्चे थे, वे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, बस नंदिनी दीदी कहती जा रही थी कहानी और सारे बच्चे हुंकारा भर रहे थे। ये हमारी आदत ही पड़ जाती है, जब हम कहानी सुनते हैं तो मुंह से ये निकल ही जाता है। इसका मतलब ये भी था कि सारे बच्चे बहुत ध्यान से नंदिनी दीदी की कहानी सुन रहे थे और कोई बच्चा सो नहीं रहा था। सोचिए, जब कोई बच्चा सो जाएगा तो वह हुंकारा कैसे भरेगा, और जब आवाज नहीं आएगी तो नंदिनी दीदी को ये पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कहानी नहीं सुन रहा और उसे नींद आ गई। लेकिन आप सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम सोते हैं, कहानी सुनते हैं और कहानी सुनते सुनते हम गहरी नींद में सो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो खूब जोरदार से खर्रा

डांटे मारना शुरू हो जाते हैं तो दादी नानी को पता चल जाता है कि बच्चा सो गया। लेकिन स्कूल में ऐसा क्यों होता है कि हमसे ये उम्मीद रखी जाती है कि जब हम कहानी सुने तो बहुत अलर्ट होकर सुने, अटेंटिव होकर सुने, हुंकारा भरे और सोए नहीं। लेकिन अगर कहानी सुनते सुनते किसी को नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, तो नींद आनी थी तो हमें आ गई। इसका मतलब है कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुनाई जा रही है। तो बच्चों, स्कूल के पहले दिन यही सब कुछ हुआ। तो आपको याद है स्कूल में क्या क्या हुआ? मेरे स्कूल में नहीं, कल्याणी के स्कूल में। हम तो कल्याणी की बात कर रहे थे ना, तो फिर सोचिए कि कल्याणी का स्कूल का पहला दिन कैसे बीता। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले कल्याणी अपने पापा के साथ स्कूल गई। तो फिर उन्हें कौन मिला? उन्हें मिली नंदिनी दीदी, वही नंदिनी दीदी जो कक्षा एक को पढ़ाती हैं। फिर नंदिनी दीदी कल्याणी को क्लास में लेकर आई। अच्छा बताइए बच्चों, क्लास में क्या था? क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। अच्छा तो बताइए बच्चों कि बच्चे क्या कर रहे थे? शाबाश, सारे बच्चे आपस में हंस बोल रहे थे, एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे। तो बच्चे नाम क्यों पूछ रहे थे? अरे भाई, बच्चे पहली बार मिले थे एक दूसरे से, इसलिए परिचय और दोस्ती बढ़ा रहे थे। फिर क्या हुआ क्लास में? फिर सब बच्चों ने फरमाइश की नंदिनी दीदी से कि हम गीत गाएंगे, आप हमें अच्छा सा गीत सुना दीजिए। तो फिर नंदिनी दीदी और बच्चों ने मिलकर गीत गाया। अच्छा, फिर नंदिनी दीदी ने कहानी क्यों सुनाई? याद है आपको प्यारे बच्चों, नंदिनी दीदी ने दीपक की कहानी सुनाई। वही दीपक जो कहानी की किताब उठाकर लाए थे, उन्होंने नंदिनी दीदी को किताब दी और कहा कि दीदी हमें ये कहानी सुना दीजिए। तो फिर नंदिनी दीदी ने बच्चों को कहानी सुनाई और इस तरह से आज का स्कूल का पहला दिन कल्याणी का समाप्त हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी स्कूल का दिन पहला बीत गया। ऐसा नहीं है, हमने तो आपको सिर्फ नंदिनी दीदी के साथ बिताया हुआ स्कूल का पहला दिन बताया है। अभी तो स्कूल में बहुत कुछ हुआ। टन टन टन टन टन टन घंटी बजी और सब बच्चों ने अपना अपना टिफिन खोला और भोजन किया। जो बच्चा भोजन नहीं लेकर आया था, सारे बच्चों ने अपने हिस्से का भोजन उनको देना शुरू किया। उसमें एक बच्चा था नंदू। तो नंदू आज भोजन लेकर नहीं आया था, तो सब बच्चों ने नंदू से कहा, ये लो नंदू, तुम मेरे साथ भोजन कर लो। कल्याणी ने कहा, अमरजीत ने कहा, रोहित ने कहा, बबली ने कहा, दीपक ने कहा और झुमके ने कहा। तो नंदू सबके साथ भोजन करने लगे और फिर सब बच्चों ने अपने हाथ धोए, खाना खाया और फिर उसके बाद वे खेलने के लिए चले गए। खेलते खेलते एक घंटा बीत गया और फिर टन टन टन टन टन टन की आवाज आई और सारे बच्चे वापस क्लास में आ गए। यहाँ क्या देखते हैं, क्लास में एक बहुत बड़ी सी दरी बिछी हुई है और एक हारमोनियम है, तबला है, नंदिनी दीदी के साथ दो और नए लोग आए हैं। बच्चों, आपको पता है ये नए लोग कौन थे? नहीं पता? तो मैं बता रही हूँ कि दो नए लोग थे उसी स्कूल के संगीत शिक्षक। एक का नाम था गर्वित और दूसरे का नाम था मयंक। तो गर्वित और मयंक ने, एक ने हारमोनियम संभाला और एक ने तबला संभाला। और फिर नंदिनी दीदी ने कहा कि आज हम सिर्फ गीत गाएंगे। तो सारे बच्चे मिलजुल कर गीत गाने लगे, लेकिन इस बार गीत गाने के लिए लय ताल का सारा सामान क्लास में मौजूद था। तो सब बच्चों ने मिलकर तबले की ताल पर गीत गाए और पता है बच्चों क्या हुआ? गीत गाते गाते बहुत सारे बच्चे उठे और नाचने लग गए और इसके बाद जो धमाल मचा क्लास में, सारे बच्चे गीत पर नाचने लगे। नंदिनी दीदी देखकर बहुत खुश हुई, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि आज बच्चे इतना खुश हैं। तो उन्होंने पता है मनी मन क्या सोचा? उन्होंने बच्चों मनी मन ये सोचा
कि ये सारे बच्चे

0: हमेशा ऐसे ही स्कूल में हंसते रहें, गाते रहें, खुश रहें और ऐसे करते करते वे धीरे धीरे पढ़ना लिखना भी सीख जाएंगे। तो ऐसा था कल्याणी का स्कूल का पहला दिन। आपको कल्याणी के साथ स्कूल का पहला दिन बिताया हुआ कैसा लगा? मुझे मालूम है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप भी कल्याणी के स्कूल की बातों को अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, दादी को, नानी को, सबको बताइएगा कि कल्याणी का स्कूल का पहला दिन कैसा रहा। ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं और फिर हम आपके साथ दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को उषा दीदी का नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।
2: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो TB हो सकता है।
2: TB?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया।

0: रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और

कहाँ लगेगा। जी हाँ, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहाँ लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, यानी कि मीठे मक्के के बारे में। मीठा मक्का क्या है और कब इसकी बुआई की जाती है, क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमारी रश्मि। आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: नमस्कार, मैं आज आपको मीठी मक्का की वैज्ञानिक खेती की विधि के बारे में बताऊंगी।
9: तो मैम सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि स्वीट कॉर्न क्या है? मक्का तो हम जानते हैं, पर स्वीट कॉर्न क्या है?
10: मीठी मक्का मीठी और स्वादिष्ट एक विशेष प्रकार की मक्का है जिसका दाना अधिक मीठा होता है। इसे सब्जी और अनेक तरह के पकवान जैसे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है और हरा भुट्टा

0: तोड़ने के तुरंत बाद हरे पौधे को काटकर हरे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए हम स्वीट कॉर्न को गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर आदि के साथ इसका रबी में और मौसम में अंतर्वर्ती फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी जलवायु के बारे में मैं बताना चाहूँगी। स्वीट कॉर्न की बुआई के समय मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और भूमि के चयन को लेकर हम बात करें तो आमतौर पर इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल में इसका उपयुक्त खेती नहीं हो सकता है। खेत में जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। स्वीट कॉर्न की बुआई जिस खेत में करनी होती है उसमें 400 मीटर तक अन्य किसी दूसरी वैरायटी की किस्म नहीं लगानी चाहिए। और जब हम बात करें कि 400 मीटर की दूरी के अंतर्गत मक्का किसी और किस्म का नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी ने लगा दिया है 400 मीटर के सर्कल में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप अपनी बुआई करें, ताकि नर मंजर आने में 15 दिन का इंटरवल होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात हम करें तो खेत की जुताई को पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई के 20 दिन पहले लगभग 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिला देना चाहिए। बुआई के समय को हम लेकर बात करें तो उत्तरी भारत में खरीफ में जून से जुलाई और रबी में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई की जानी चाहिए।
1: और बुआई के साथ मैम ये सवाल भी आता है कि बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए।
0: जी, बीज की मात्रा के बारे में मैं बताऊंगी कि सामान्य मिठास वाली, इसे स्टैंडर्ड स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसके लिए बीज की मात्रा है 9 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, और अधिक मिठास वाली मक्का, जिसे सुपर स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसे 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। जहाँ तक पंक्तियों और पौधों से पौधों की दूरी की बात हम करें बुआई के समय, तो स्वीट कॉर्न की बुआई 60 से 75 सेंटीमीटर कतारों से कतारों के बीच तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों से पौधों के बीच की दूरी रखनी चाहिए। पौधों की संख्या, उपयुक्त पौधों की संख्या 66 से 67,000 प्रति हेक्टेयर मेंटेन करनी चाहिए और बीज उपचारित करके इसे लगाना चाहिए। जहां तक बीज उपचार की बात है, बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को थिरम 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए तथा तना छेदक से बचाव के लिए फिप्रोनिल 6 ml प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई का सही तरीका अगर हम बात करें तो बीज कतारों में और मेड़ों पर बोने चाहिए। स्वीट कॉर्न की सभी किस्मों के बीज की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर की जानी चाहिए, परंतु अधिक मिठास वाली सुपर स्वीट वैरायटीज को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं। आरंभ में प्रत्येक स्थानों पर 2 बीज डालें, ताकि गर्मी में अंकुरण के 10 दिन एवं सर्दी में 15 से 20 दिन के बाद प्रत्येक स्थानों पर एक ही पौधा रहने दें।
1: और मैम बीज की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी बता दीजिए।
0: उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं बताऊंगी। स्वीट कॉर्न की खेती के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र की प्रचलित जो भी वैरायटीज हैं इनका चुनाव करें। जैसे भारत में स्वीट कॉर्न की कुछ प्रचलित किस्में हैं, इनमें माधुरी प्रिया, अल्मोरा स्वीट कॉर्न, विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न और सिंजेंटा की सुगर 75 है, इसे आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी उपज देने वाली किस्में मैंने आपको बताई हैं और इनकी मिठास भी 15 से 20% मतलब सामान्य मक्के से ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए स्वीट कॉर्न को लोग खाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कहाँ लगाई जाती हैं, अनुमोदित क्षेत्र के बारे में मैं बताऊँगी। खरीफ में संपूर्ण भारत में तथा रबी में प्रायद्वीपीय भारत में इसे उगाया जा सकता है।
1: और मैम कटाई का क्या समय होता है, क्योंकि जब हम स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो कटाई का समय बेहद विशेष हो जाता है।
0: खरीफ में इसे 70 से 75 दिन में हम ये तैयार हो जाता है, इसकी हम कटाई कर सकते हैं, और रबी में 80 से 85 दिन में ये तैयार हो जाता है, आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो 110 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे भुट्टे को हम तुड़ाई कर सकते हैं और 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका चारा हम प्राप्त करते हैं, इसलिए ये हमारे अगर आपके पास पशु है तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं स्वीट कॉर्न की खेती करके। और उर्वरक प्रबंधन की बात हम करें तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 से 170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 से 80 किलोग्राम पोटास डालनी चाहिए। खेत में अगर जिंक की कमी हो तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डालना चाहिए। फास्फोरस, पोटास, जिंक सल्फेट की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डालें तथा नाइट्रोजन को 5 भागों में बांटकर विभिन्न अवस्थाओं में डालें और 10% नाइट्रोजन।

0: बुआई के समय 20% नाइट्रोजन 4 से 5 पत्तों की अवस्था पर डालें, 30% नाइट्रोजन 8 पत्तों की अवस्था पर एवं 30% नाइट्रोजन पुष्पन की अवस्था पर डालें जब उसमें नरमंजरी मादा मंजरी आने लगती है, और 10% नाइट्रोजन भुट्टे की दूधिया अवस्था में जिस समय दूध बनता है उस अवस्था में डालें। उर्वरक को बीज के 7 से 8 सेंटीमीटर के करीब डालना चाहिए।
1: और मैम, खरपतवार का कैसे प्रबंध करना चाहिए, उसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
0: जी, खरपतवार प्रबंधन के लिए चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और अन्य खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एट्राजीन 1 से 1.5 kg को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में बुआई के तुरंत बाद, लेकिन अंकुरण के पहले छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है, हल्की मिट्टी में 7 से 8 सिंचाई एवं भारी मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
1: किस तरीके से फसल कटाई करनी चाहिए और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सिंचाई में हमें ये भी ध्यान रखना है कि पौधे के में जब पुष्पन और दाना भराव का समय होता है उस समय हमें नमी बरकरार रखनी है खेत में, और सर्दी में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जमीन में नमी बरकरार रखें। एवं कीट प्रबंधन की मैं चर्चा कर लूँ, कीट प्रबंधन के लिए आप तना छेदक कीट है इसे नियंत्रित करने के लिए पौधा जमने के 10 दिन बाद 85% वेजिटेबल पाउडर वाला कार्बोलिल को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गोब में छिड़काव करें। और अंतर्वर्ती फसलें भी इसमें ली जाती हैं, विभिन्न प्रकार की ये खासियत है। तो इसमें आप सर्दी में स्वीट कॉर्न के साथ गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर, गोभी, पालक, धनिया इत्यादि सफलतापूर्वक आप उगा सकते हैं। और स्वीट कॉर्न को मेड़ के दक्षिणी भाग में एवं अंतर्वर्ती फसल को मेड़ के उत्तरी भाग में लगाना चाहिए। स्वीट कॉर्न के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी अंतर्वर्ती फसल की लगाने की स्थिति में 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अंतर्वर्ती फसलों की खेती शहर के आसपास के क्षेत्रों में करने से किसान भाई काफी लाभान्वित हो सकते हैं। और फसल कटाई की बात आपने छेड़ी थी, तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूंगी कि बीज के अंकुरण के लगभग 45 दिनों के बाद नर मंजरी आती है एवं इसके 2 से 3 दिनों के बाद मादा मंजरी आती है। और गर्मी के मौसम में परागण के 18 से 22 दिनों के बाद स्वीट कॉर्न के भुट्टे की तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद जब आप इसकी तुड़ाई करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसे रेफ्रिजरेटेड वैन में ही हम ट्रांसपोर्ट करें। और सर्दी के मौसम में परागण के 25 से 30 दिनों के बाद भुट्टे की तुड़ाई की जा सकती है। इस अवस्था में तुड़ाई की अवस्था को पहचानने के लिए हम ये देख सकते हैं कि ऊपरी भाग यानी सिल्क के सूखने से मादा मंजरी के सूखने की अवस्था में इसे हम पहचान सकते हैं कि ये मैच्योर हो गया है। और जब हम छिलका हटाते हैं तो दाने में दूध भरा होता है, इसे दबाने से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, तो इस अवस्था में हम इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। हरे भुट्टे के तोड़ने के बाद बचे हुए हरे पौधे के चारे को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। भुट्टे की तुड़ाई सुबह या शाम में करें ताकि जो नमी है वो बरकरार रहे और ये ज़्यादा मॉइस्चर लॉस ना हो, ताकि मिठास बनी रहे। कटाई उपरांत प्रबंधन की बात करें तो भुट्टे की तुड़ाई के बाद इसे तुरंत मंडी में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे लकड़ी के डब्बे या कार्टून आदि में रखना चाहिए। कमरे के तापमान पर 24 घंटे के अंदर स्वीट कॉर्न के भुट्टे का 50% शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रो कूलिंग एवं पैकेजिंग कर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का ही प्रयोग करें। और ये सारी खासियत है स्वीट कॉर्न में। स्वीट कॉर्न की खेती से किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। इसे काफ़ी चाव से खाया जाता है, इसके विभिन्न व्यंजन बनते हैं, तो और इसका सीड भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो किसान भाई इसका बीज को बेच सकते हैं, बीज बनाकर या इसकी खेती करें और इसे काफ़ी लाभान्वित हुए।
1: यानी कि स्वीट कॉर्न उगाने के बाद तो फायदे होते ही हैं और साथ में बीज भी बेचकर किसान भाई बहन बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि जो भी मक्के की खेती करने की सोच रहे होंगे वो स्वीट कॉर्न के बारे में भी सोचेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी।
0: धन्यवाद।
1: आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात

0: कर रहे हैं बुढ़बक?
1: खांसी?
0: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
0: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
0: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दे, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25

0: टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

ഉന്നത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में. आज के समय में मिट्टी की जरूरत और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है हमारी कि हम जैविक खेती को अपनाएं. और बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती को अपना भी रहे हैं और ऐसे में उनके मन में सवाल आता है कि जैविक

0: खेती में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें? आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा। आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैविक खेती क्या होता है।
1: देखिए, आज की जरूरत है। जैविक खेती को विषमुक्त खेती भी कहते हैं, यानी जो बिना जहर वाली जो खेती है, जिसमें ऐसे उत्पाद पैदा हो जिसमें कोई जहरीला चीज ना हो, उसको हम जैविक खेती कहते हैं। हाँ, परिभाषा के रूप में यदि जानना चाहें तो यह है कि कृषि की वह विधि जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कृत्रिम कीटनाशकों या आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जैविक पदार्थ है उसका ही हम प्रयोग करते हैं और उससे जो खेती होती है उसको हम जैविक खेती कहते हैं।
0: जी, तो सर जैविक खेती के फायदे क्या क्या हैं?
1: बहुत समचीन प्रश्न है। जैविक खेती आज की नीड है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है, आने वाली जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है तो मिट्टी को ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम 140 करोड़ के आसपास हैं, उम्मीद करता हूं कि 2050 तक हम बढ़ करके लगभग 170 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। और इस 170 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करवाना, वह भी ऐसी मिट्टी से जिस मिट्टी में कि लगभग 6 पोषक तत्व तो हमारी मिट्टी में कम हो गया है, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वह तो हर एक किसान लगभग प्रयोग कर रहा है। यूरिया, DAP, पोटास तो प्रयोग ही कर रहा है। बहुत सारे किसान जिंक भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं बोरन भी प्रयोग करते हैं बोरेक्स के रूप में। साथ ही साथ यदि आप देखें तो कहीं कहीं सल्फर का प्रयोग करते हैं। यानी 6 तत्व तो किसान भी जान रहा है कि वो लिमिटिंग फैक्टर है। साथ ही साथ जो शोध हुआ है, जो मिट्टी की जांच हुई है, उसे यह भी पता चला है कि हमारा जो लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, मॉलिब्डिनम है, यह भी जल्दी ही कम होने वाला है। और उस सारी चीजों के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि कार्बन हमारी मिट्टी में कम हो गया हुआ है। आज से 70 साल पहले लगभग हमारी मिट्टी में 1% के आसपास कार्बन था, जो घट करके अब बामुश्किल 0.3-0.4% रह गया है। और यह इतना जल्दी कार्बन बढ़ता नहीं, 4-5 साल तक यदि हम ढांचा पलटते हैं तो बामुश्किल 0.1-0.2% कार्बन हमारी मिट्टी में बढ़ता है। हम चाहते हैं वायुमंडल में कार्बन कम रहे, मैं चाहता हूं कि मिट्टी में कार्बन बढ़े, लेकिन हो गया है उल्टा। हमारे वायुमंडल में कार्बन बढ़ता चला जा रहा है, हमारी मिट्टी में कार्बन कम हो रहा है। और यह तभी दूर होगा जबकि हम ऐसी चीजों को अपनी मिट्टी में डालें जिसमें कार्बन हो, चाहे वह हरी कोई चीज, यानी कि कहने का मतलब हरी खाद पलटे, या चाहे जो हमारे जैविक खाद हैं, चाहे वो कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे नाडेप कंपोस्ट हो, इन सारी तरह की चीजों को हम अपने मिट्टी में डालें जिससे कार्बन बढ़े, यह निहायत ही जरूरी है। और आने वाली जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा यदि हम चाहते हैं कि उसका सुनिश्चित हो सके तो इसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें करें।
0: जी सर। सर, अगर हम मिट्टी की उर्वरता के बारे में बात करें तो जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
1: अब यह पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ये है कि जैसे आपने एक चीज पूछा था कि जैविक खेती के क्या फायदे, तो एक तो पहली बात कि हानि रहित शुद्ध और पौष्टिक भोजन हमें मिल सकता है तो जैविक खेती से मिल सकता है। पर्यावरण का यदि संरक्षण होना है, वह भी जो हमने अभी बताया भी, वह भी हो सकता है तो जैविक खेती से हो सकता है। और लंबी अवधि तक यदि उपजाऊ जमीन चाहते हैं तो वह भी हमें मिलेगा तो जैविक खेती से मिलेगा। अब यह है कि जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे होता है, तो एक तो पहली चीज कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पूरी तरह बंद होता है इसमें। हालांकि कुछ रसायन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, ये सारी चीजें अलाउड हैं, कुछ केमिकल्स अलाउड हैं, लेकिन जिसका कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं है वही सिर्फ केमिकल्स हमारे लिए अलाउड हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें पूरी तरह बंद होता है। इससे क्या होगा कि रासायनिक उर्वरकों के चलते जो हमारी मिट्टी में कोई विषाक्त चीजें आ रही हैं वो विषाक्त चीजें नहीं आएंगे। दूसरी बात, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इन सब का प्रयोग उसमें होता है, जिससे क्या होता है कि ये लंबे समय तक हमारी जो है उर्वरता बनी रहती है। साथ ही साथ जो एक चीज है, जो लाभदायक जीव जीवाणु हमारे मिट्टी से कम हो गए हुए हैं उनकी संख्या बढ़ती है। एक चीज मैं बताऊं कि जितने लाभदायक जीवाणु हैं उनको एनर्जी सोर्स के रूप में कार्बन चाहिए, और कार्बन मिलेगा

0: तभी जब कोई कार्बनिक पदार्थ उसमें हम डालेंगे। तो वह कार्बनिक पदार्थ जब उसमें आ जाता है तो उससे वह लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। आपको जान के ताज्जुब होगा, यदि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पिताजी या दादाजी हैं, उनसे पूछिए कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया था, कभी एजोटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग किया था, कभी पीएसबी कल्चर का प्रयोग किया था, तो कहेंगे नहीं, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि ये लाभदायक जीव जीवाणु हमारी मिट्टी में थे। और क्यों थे? क्योंकि इसमें कार्बन था, कार्बन ज्यादा होने से उसकी जल धारण क्षमता भी ठीक ठाक होती है। साथ ही साथ उसमें जो दूसरा फायदा होता है वह यह है कि उसको जो खाने के लिए चाहिए एनर्जी सोर्स जो चाहिए, वह एनर्जी सोर्स भी वहां से मिल जाता था। इसीलिए लाभदायक जीव जीवाणु वहां पर थे। यहां केचुआ आपके मिट्टी में खूब थे, किसानों के मित्र कहे जाते हैं, लेकिन आज या तो तालाब तक सिमट के रह गए हैं या बगीचा तक सिमट करके रह गए हुए हैं। तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उनकी संख्या भी कम हो गई है। और तीसरी बात, जो फसल चक्र हम अपनाते हैं जैविक खेती में, उसमें बीच में कहीं ना कहीं दलहनी फसल को जरूर रखते हैं। और यह दलहनी फसल बड़ी अच्छी चीज है, ये समझिए अपने आप में यूरिया बनाने की फैक्ट्री है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ला करके हमारी मिट्टी में डालता है। भाई हम क्या करते हैं, बूस एंड एबर प्रोसेस से जो हम यूरिया वगैरह बनाते हैं वहां पर भी तो यही करते हैं। और यहां पर यदि हम इस चीज को देखें तो यहां पर भी यह काम जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है और उसके शरीर में जो एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, उसके कारण यह सामान्य तापक्रम में हो जाता है। जबकि यूरिया के फैक्ट्री में देखिएगा तो 300-400 डिग्री टेम्परेचर वहां पैदा किया जाता है और उससे बनता है, लेकिन यहां पर सामान्य तापक्रम पर ही बन जाता है। तो ये सारे फायदे हमारे हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जैविक खेत में मिट्टी की उर्वरता, तो इनसे उर्वरता हमारी काफी बढ़ती है।
1: जी सर। सर अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात करें तो जैविक खेती जब हमारे किसान भाई बहन अपनाते हैं तो उस क्रम में क्या क्या कृषि कार्य करने चाहिए जिससे पोषक तत्व का प्रबंधन हो सके?
0: तो एक चीज तो अभी हमने बताया कि फसल चक्र का चयन बहुत ही बढ़िया करना चाहिए। क्या बढ़िया होगा? जब बीच में हम कोई दलहनी फसल लेते हैं तो फसल चक्र हमारा ठीक ठाक है। तो इसीलिए एक तो पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। अब आप लोग ढैंचा वगैरह वगैरह का प्रयोग करते हैं, आप जान के ताज्जुब होगा कि ये जो है कम से कम 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल देता है, मोटा मोटी 100 किलोग्राम डाल देता है, यानी कि 220 किलोग्राम के आसपास यूरिया हमारी मिट्टी में डाल देता है। जी तो सोचिए कि कितना फायदा का काम कर रहा है। तो पहली तो बात हमने कहा कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। दूसरी बात, खेती में हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, निश्चित रूप में करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम छोटे थे उस समय हल से खेती होती थी, बैल से खेती होती थी, तो उस समय जो बैल का गोबर था वो हमारी खेती में जाता था। लेकिन अब बैल से तो खेती हो नहीं रही है, तो अब क्या है कि हर एक किसान के पास गोबर नहीं है जो गोबर का खाद बनाने की बात करेंगे। तो इसीलिए उनको चाहिए कि कम से कम हरी खाद का प्रयोग करें। तो हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा कि बायोमास, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधा कार्बन को अपने शरीर में रखा और उसको जब हमने मिट्टी में पलट दिया तो वो कार्बन हमारी मिट्टी में आ गया। तो यह भी हमको फायदा हो गया कि कार्बन मिल गया। और साथ ही साथ यदि वो दलहनी फसल है, वह जो हरी खाद वाला फसल है वह भी यदि दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी किया। साथ ही साथ उसकी जड़ नीचे स्तर तक जाती है तो जो नीचे स्तर में हमारे पोषक तत्व हैं उसको भी खींच करके ऊपरी सतह में ला देता है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी है फसल सामान्यतः उसी से पोषक तत्व लेकर के अपना काम चलाता है और आगे बढ़वार करता है।
1: जी सर। सर अभी आपने हरी खाद के बारे में बात की, तो हरी खाद में कौन कौन से फसल हमारे किसान भाई बहनों को लगाने चाहिए और कब लगाने चाहिए, साथ ही उसके फायदे के बारे में आप हमें विस्तार से बता दीजिए।
0: देखिए ऐसा है कि जो हरी खाद के रूप में है सनई का प्रयोग होता है, ढेंचा का भी प्रयोग करते हैं, उर्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, मूंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लोबिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं ग्वार का प्रयोग किया जाता है, ज्वार का भी प्रयोग किया जाता है, बाजरा का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सामान्य रूप से है जो अच्छी बात होगी वह ढेंचा का प्रयोग होगा। ढेंचा का प्रयोग सामान्यतः अप्रैल से जुलाई के महीने में इसकी बुआई की जाती है और इसका बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर आपको बायोमास दे देगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि अभी हमने पहले भी जिक्र किया था कि 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यह स्थिरीकृत करता है। आप वायुमंडल में देखिए तो लगभग 78-79% हमारा

0: नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन फसल के लिए किसी काम का नहीं है। तो अब उस फसल को उसके उपलब्ध रूप में जब तक हम परिवर्तित नहीं कर देते हैं, जैसे हम धान नहीं खाते हैं, धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात पकाते हैं तब खाते हैं, इसी तरह से यह नाइट्रोजन जो वायुमंडल में गैस के रूप में है वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसको जब हम नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में परिवर्तित करते हैं तभी वह पौधे को उपलब्ध हो पाता है। तो यह उपलब्ध करवाने का काम भी करता है, इसलिए ढैंचा सबसे बढ़िया होगा। वैसे तो हमने बताया कि ये कई चीज हैं, सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, लोबिया, ग्वार, ये सब के सब प्रयोग किए जाते हैं।
1: जी सर। सर, जो जैविक खेती अपनाते हैं वो कई तरह के जैविक खादों का भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में, हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि उसमें कितना एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है।
0: देखिए, एक चीज बात बताऊं कि वास्तव में कहीं बाहर से नहीं लाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट ही बनाया तो वह केचुआ कहीं बाहर से नाइट्रोजन को लाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो कुछ भी आप जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं उस सबस्ट्रेट में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, इसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस होगा, पोटास होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, यदि सामान्य जो कंपोस्ट प्रयोग किया जाता है उसमें 0.4 से 2% तक नाइट्रोजन होता है, 0.4 से 1% के बीच में लगभग फास्फोरस होता है, और 0.5% से लगभग 3% तक लेकर के पोटास होता है। इसी तरह से जो नाडेप कंपोस्ट है इसमें आपको 0.75% यानी 0.25% से लेकर के 0.25% तक नाइट्रोजन होगा, 0.7 से लेकर 0.9% तक फास्फोरस होता है, 1.2 से लेकर 1.4% तक पोटास होगा। खली भी प्रयोग में लाया जाता है, तो खली को यदि देखिए तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, 2.5% से 8% तक नाइट्रोजन होगा, 1 से लेकर 3% तक फास्फोरस होगा, पोटास भी 1.2 से लेकर 2.2% के बीच में होगा। कहीं कहीं जो हड्डी का चूड़ा है उसका भी प्रयोग किया जाता है, तो जो हड्डी का चूड़ा है उसमें 3 से लेकर 4% तक नाइट्रोजन होता है, 20 से 25% तक फास्फोरस होता है। जो मछली का खाद बनाते हैं उसमें यदि देखिएगा तो 4 से लेकर 10% तक नाइट्रोजन होता है, और 3 से लेकर 9% तक फास्फोरस होता है, 0.3 से लेकर 1.5% तक पोटेशियम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग चीजों में अलग अलग है, लेकिन जो हमारा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है, सामान्य वर्मी कंपोस्ट में तो उतना नहीं होता है। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वह भी कहता है कि यदि इसमें 1% नाइट्रोजन है तो ठीक है जी, 1% या उससे ज्यादा होना चाहिए, फास्फोरस 0.8% या उसे ज्यादा होना चाहिए, पोटास 0.8% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारा जो विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो बनाता है वह समृद्ध केचुआ खाद बनाता है, और समृद्ध केचुआ खाद में आपको खुशी होगी जान करके कि 2% के ऊपर ही रहता है, 0.25% या उसे ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन होता है, साथ ही साथ इसे फॉस्फोरस भी 2.5% से लेकर 3.5% तक होता है, साथ ही साथ इसे पोटास भी 1% के ऊपर होता है। तो यह जो वर्मी कंपोस्ट है वह चूंकि समृद्ध केचुआ खाद है इसीलिए इसमें ज्यादा होता है, और किसानों को इसका निर्माण भी करना चाहिए और इसका प्रयोग भी करना चाहिए।
1: जी सर। सर, अब हम गोबर की सड़ी खाद की बात करते हैं, और साथ ही इसकी तुलना में अगर हम वर्मी कंपोस्ट, हमारे किसान भाई बहन वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें और उसका प्रयोग करें तो उसके क्या फायदे होते हैं?
0: देखिए, जो गोबर की खाद है, गोबर का खाद कौन बनाता है? जो भी सूक्ष्म जीवाणु है वही बनाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एक्नोमाइसिट्स हो, यही सब बनाते हैं। तो वह बनाया कौन? सूक्ष्म जीवाणु। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है उसको सूक्ष्म जीवाणु भी बना रहा है, साथ ही साथ केचुआ भी बनाता है। तो एक मोटी सी बात समझिए, जो केचुआ के शरीर से जो कुछ भी निकल रहा है, जैसे पेट ट्रॉफिक झिल्ली निकला, तो वह क्या है कि जलवाष्पन को रोकने का काम करता है। तो वह जो आपने बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया तो वह ज्यादा पानी को ऊपर नहीं जाने दिया, वह मिट्टी में ही रखा। इसी तरह से जो उसमें एंजाइम्स या हार्मोन्स इस सब चीज का जो सिक्रीशन करता है, उसका जो श्रावण करता है, वह भी हमारे वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो गोबर के खाद की तुलना में हमारा वर्मी कंपोस्ट ज्यादा बढ़िया होता है। अब यदि हम पोषक मान के आधार पर आते हैं तो गोबर के खाद में देखिएगा तो उसमें लगभग 0.5% नाइट्रोजन होता है, और अभी ही हमने बताया कि वर्मी कंपोस्ट में 2.25% समृद्ध केचुआ खाद में नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस ही उसमें 0.2% यानी 0.25% के आसपास है, जबकि हमारा जो समृद्ध केचुआ खाद है उसमें 2.5 से लेकर 3% है, पोटास भी वहां सिर्फ 0.5% है, यहां पर लगभग 1% के आसपास है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां पर यदि 0.5% है तो 4 क्विंटल मुझे गोबर का खाद का प्रयोग करना पड़ता था, उसके स्थान पर यहां पर मुझे सिर्फ 1 क्विंटल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान को जब कम मात्रा में प्रयोग करना होगा तो वह उसका प्रयोग कर पाएगा। और यदि ज्यादा

0: मात्रा में हम उसको कह दे तो उतना उसके पास उपलब्ध ही नहीं है, तो प्रयोग नहीं हो कर पाता है और इसीलिए इसका प्रयोग घटता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है।
1: जी सर। सर अब हम बात करते हैं जैव उर्वरक के बारे में, तो जैविक खेती में जैव उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और किस किस जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं?
0: देखिए, जैव उर्वरक ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाए। उर्वरक किसके लिए करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करने के लिए करते हैं। तो ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग हो उसको जैव उर्वरक कहते हैं। तो अब इसमें देखिए कि जैव उर्वरक के रूप में जो नाइट्रोजन कौन कौन देगा, तो दलहनी फसल में देता है राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम। राइजोबियम ही समझिए, किसान भाई हमारे ये राइजोबियम के नाम से ही ज्यादा जानते हैं, तो राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसमें दलहनी नहीं है, जिसकी जड़ में गांठ नहीं बन रहा है, उसमें अजोटोबैक्टर या एजोस्पर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी में है। एक है सिम्बियोटिक यानी सहजीवी, तो सिम्बियोटिक में जड़ में गांठ होता है, तो उसका फायदा क्या होता है कि वह जो रहने का मकान है और खाना है उसने दलहनी फसल ने दे दिया, इसके एवज में इसने नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, तो ये ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स करता है, यानी 36 किलो से लेकर के 600 केजी पर हेक्टेयर या वो कर सकता है, उसका फिक्सेशन कर सकता है, स्थिरीकरण कर सकता है। इसी तरह से दूसरा हो गया आपको जो अजोटोबैक्टर या पीएस इसकी एजोस्पर्म की बात किया, तो उसके जड़ से जो रस निकलते हैं उससे करता है। तीसरी बात कि जहां पर मान लीजिए वह भी बात नहीं है तो वहां फ्री लिविंग होता है, यानी जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो उसको खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना। यदि खाने की व्यवस्था खुद कर लिया, जैसे नीलहरी शैवाल हरा होता है तो अपना खाना खुद बना लेता है, तो जो खाने की व्यवस्था खुद कर ले रहा है वह नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा फिक्स करेगा, 25 केजी से लेकर के 40 केजी तक वह नाइट्रोजन फिक्स करेगा। लेकिन जो जैसे ड्रग्सिया है, बजरंगिया है, यह सब खाना नहीं बना सकता है, तो यह बहुत कम मात्रा में करता है। इसी तरह से अजोला है, अजोला जो है यह आपको एक फर्न होता है अजोला नाम का, उसी के बीच में नीलहरी शैवाल रहता है, तो ये काफी नाइट्रोजन आपको फिक्स करता है। तो ये कई तरह के आपके ये हैं। तो ये तो मैंने नाइट्रोजन की बात कहा। इसके अतिरिक्त यदि देखिए तो जो फास्फोरस हमारी मिट्टी में है वो काफी है, लेकिन पौधे उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो फास्फोरस उसका प्रयोग यदि नहीं कर पाते हैं वो जो हमारी मिट्टी में, तो कुछ फास्फोरस घुलनकर जीवाणु आते हैं, पीएसवी या पीएसएम के नाम से लोग कहते हैं, तो ये फास्फोरस घुलनकर जीवाणु जो है वो फास्फोरस को घुलाने का काम करते हैं। इसी तरह से पोटास मोबिलाइजर है, पोटास को घुलाने का काम करेंगे। इसी तरह से जिंक मोबिलाइजर भी आ गया हम मार्केट में, तो जिंक को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखिए तो जैव उर्वरक कई तरह के हैं, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम भी करते हैं, फास्फोरस को घुलाने का भी काम करते हैं, पोटास की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं, जिंक को भी की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं। अब लेकिन सबके प्रयोग का मोटा मोटी तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तरीका क्या अलग है? एक तो बीज उपचार आप करते हैं, तो जब बीज उपचार आप करते हैं, अब मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए राइजोबियम का कोई प्रयोग करता है, तो 50 से 100 ग्राम उसने गुड़ को लेकर के आधा लीटर पानी में उसको घोल लिया, गरम कर लिया, गरम करके फिर ठंडा कर दिया। अब जब ठंडा हो गया तो उसमें 200 ग्राम कल्चर आपने प्रयोग कर दिया, अब प्रयोग करके उसको 10 किलो बीज पर आपने डाल दिया, अब उसको हल्के हाथ आपने मिला दिया जिससे कि वह कल्चर का उसके ऊपर लेप लग जाए, बस यही काम करना है। और लेप लग गया तो छाया में ही उसकी बुआई कर लिया। ये काम आप एजोस्पर्म में भी कर सकते हैं, ये काम आप एजोस्पर्म का थोड़ा तरीका अलग होगा, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, एजोस्पर्म में भी कर सकते हैं, इवन पीएसवी का भी प्रयोग इस ढंग से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मिट्टी में सीधा प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, कम से कम 3.5 से 4 केजी पर एकड़ की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। हाँ, कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि वह बिचड़ा का प्रयोग उपचार करते हैं, तो बिचड़ा का यदि उपचार करना है तो आप 4 लीटर पानी में 1 केजी कल्चर डाल करके उसी में जो बिचड़ा है उसकी जड़ को भिगा करके 15 मिनट आपने रख दिया, और उसको रख करके उसके बाद आप बाहर निकाल करके तब उसको आप रोपाई कर दिए। लेकिन यदि कोई कंद का प्रयोग करता है, जैसे कंद है, आलू ही है, उसको यदि उपचारित करना चाहता है, तो वहां 15 लीटर पानी में आप 1 केजी कल्चर डालिए और उसको डाल करके 15 मिनट के लिए उसको डुबा करके छोड़ दिया, फिर छाया में निकाल करके रख दिया, उसके बाद उसकी आपने रोपाई कर दी। तो ये सब तरीके हैं जो तरीके का प्रयोग करते हैं तो काफी हमारा नाइट्रोजन भी बच जाता है और हमारी मिट्टी में जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या भी बढ़ती है। और विशेष विस्तार में जानने के लिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय उनके बगल में है, उनके लिए हर समय तैयार है, वो यहाँ आए।

0: जो संबंधित वैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में आकर के उसको विधिवत प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली सीखें, तब जाकर के वो ज्यादा विधिवत उसको कर सकते हैं।
1: जी सर। सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: हमने तो संदेश दे दिया कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। भैया मेरे, अब यह बताओ कि यहाँ बीकानेर से एक ट्रेन चल रही है, यहाँ से पंजाब से बीकानेर के लिए, उसमें इतने कैंसर पेशेंट्स रहते हैं कि उसमें उसका नाम ही लोग कैंसर ट्रेन रख दिया है। तो यदि आप खेती करते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपनी पत्नी को यदि बिना जहर की खेती नई फसल दे सकते हैं, ऐसा अनाज नहीं दे सकते हैं जो बिना जहर वाला है, तो खेती करने से क्या फायदा मेरे भाई? कम से कम मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए बिना जहर की खेती करो। यही मेरा संदेश है कि कम से कम यदि अपने लिए भी बिना जहर का यदि नहीं कर सकते हैं तो खेती में फायदा नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं खेती छोड़ दो, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि यदि टाटा बिरला को भी कोई कहता होगा तो विश्वास पर खाता होगा कि ये बिना जहर वाला है, ये जैविक है। लेकिन आपने खुद खेती किया है, आपको मालूम है ये बिना जहर वाला है या नहीं है। यह सौभाग्य टाटा बिरला अंबानी को भी नहीं होगा, जो सौभाग्य आपको है। इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत जरूर करें। कितना खाते होंगे भाई मेरे, छोटा सा परिवार चलता है, पहले के तरह 25-30 आदमी का तो परिवार होता नहीं है, मियां अभी भी दो चारटे बच्चे रहते। यदि आप 10 कट्ठा उपजाऊ जमीन अपने लिए चिन्हित कर लीजिए कि हम अपने लिए बिना जहर का पैदा करेंगे, तो आराम से कितना खाते होंगे, 2-3 क्विंटल चावल खाते होंगे, 3-4 क्विंटल गेहूं खाते होंगे, कुछ क्विंटल 1.5 क्विंटल दलहन तिलहन खाते होंगे, वो 10 कट्ठा जमीन में बहुत अच्छी तरह से उपज हो जाएगा। इसलिए उपजाऊ जमीन अपने लिए 10 कट्ठा चिन्हित करें और जरूर से जरूर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बिना जहर का पैदा कीजिए और उनको खिलाइए। यही मेरा संदेश।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपने जैविक खेती के बारे में बताया, उसके फायदों के बारे में बताया, साथ ही पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी आज हमने चर्चा की, तो हमारे किसान भाई बहनों को आज के इस चर्चा से काफी कुछ जानने के लिए, समझने के लिए मिला होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु का या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें, यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
5: जैसा कि आप, हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नज़र आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
0: संक्रमण होने
5: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नज़र आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2-3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
0: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है?
5: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये, इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
0: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज़्यादातर देखा जाता है,
5: ये ज़्यादातर पाया ही जाता
0: और
5: है।
0: और सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि

0: उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है?
1: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-6 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है और सांस

0: सर एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा तो ये भी गौ वंश में या फिर
1: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
0: तो इसके लक्षण क्या
1: है? ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांघ वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है। और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है। प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है शरीर का तापक्रम वो गिर जाता है। और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है। और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
0: टीकाकरण पर विशेष बल देना है और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग।
0: खुर और मुँह,
1: हाँ, तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशन्स हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
0: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
1: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है।
0: अच्छा।
1: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुर पका और मुंह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है, किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में, खुरपका मुंह पका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशु पालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
0: उनको नुकसान होता है,
1: दूध में काफी कमी आ जाती है और चलने में पैर के, पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है, दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट, शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं। और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
0: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे, वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए।

0: कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मायने रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती है ये?
1: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव, और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता, जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
0: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
1: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी, जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है, जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो, और ऊंचे स्थान पर रखें। वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें, जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें। उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वह नमी की कमी रहती है।
0: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियां हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती है?
1: जी, ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग हैं और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
0: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
1: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
0: अच्छा।
1: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहाँ जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू, लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
0: अच्छा।
1: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है HS, BQ
0: FMD.
1: और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
0: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज्यादा अच्छा होगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु है उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
1: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
0: जहां पर सभी पशु,
1: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में

0: अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल जो जल जमाव है वहाँ का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
1: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
0: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
1: अच्छा।
0: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
1: कृमिनाशक
0: दवा बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
1: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो हैं वो बीमार ना पड़े, और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटे मोटे उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
0: यहाँ तक है जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडीन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडीन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूँकि HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूंकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो इनिशियल सबको सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है, वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई ज़रूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का, तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव।
1: हाँ।
0: तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं, और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें, अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
1: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके

0: बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रख रखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
1: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया,
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
0: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
0: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: 93.8 FM ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की वीएलएम 389, आरयू 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरी बेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरी जोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका मक्का कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में

0: एलोवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटा रीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज अंग उमंग में हम बात करने वाले हैं भागलपुर के बारे में। जी हाँ, भागलपुर के नामों के बारे में। आपको पता तो होगा ही कि भागलपुर को अंग प्रदेश, अंग देश जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी भागलपुर के कई सारे नाम हैं और आज हम उन सारे नामों के बारे में बातें करने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं भागलपुर के बारे में, भागलपुर के नामों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम भागलपुर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भागलपुर बिहार के पूर्वी भाग में बसता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो सभी को पता है, यहाँ गंगा माता को कितना पूजा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और नाले हैं, लेकिन बात करें कोशी की, हालांकि ये सीधे भागलपुर से नहीं गुजरती है पर कोशी का प्रभाव भागलपुर पे जरूर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भागलपुर के अलग अलग नामों के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भागलपुर आज के समय में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी मानी जाती है कि है ये एक लोक मान्यता है

इस नाम को समझे तो इसका मतलब होता है भाग्य का नगर, समृद्धि का नगर। और अभी यानी कि आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई नाम है तो वो भागलपुर ही है। इसके अलावा विदेशों में, देशों में हम एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है सिल्क सिटी। जी हाँ, सिल्क सिटी बहुत ही प्यारा सा नाम है। और सिल्क सिटी इस नाम से क्यों जाना जाता है ये तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सिल्क से जुड़े हुए जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वो हैं। और यहाँ के जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं अपने देश भर में तो जाते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बड़ी डिमांड रहती है। इसी वजह से भागलपुर को लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम की, तो वो है चंपापुरी, चंपा नगरी, चंपावती। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चंपा के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जगह को चंपावती या चंपा भी कहा जाता था। अगर हम बहुत सारी किताबों में, लिटरेचर में देखें तो चंपावती नाम से भी इस जगह को जाना गया था। और अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में चंपापुरी को एक बहुत ही पवित्र जगह माना गया है। और साथ ही संस्कृत की कविताओं में

देश था और यहाँ पर राज कौन करते थे? जी हाँ, यहाँ पर राज करते थे कर्ण। और इन्हीं के राज से जो अभी हमारे भागलपुर का नाम है ना, वो पनपा था, वो बना था। आप सभी को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजा कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। मतलब उनसे उनका कवच मांग लिया गया था तो उन्होंने वो भी दे दिया था, वो भी युद्ध से पहले। जो भी राजा कर्ण के देश में यानी कि अंग देश में आता था उसके भाग्य उदय हो जाते थे। इसी वजह से तब इस जगह का नाम पड़ गया था। जो कुछ बाहर की नगरी से, बाहर के देशों से आकर यहाँ बसे, अंग देश में बसे या उनका यहाँ पर उद्धार हुआ तो उन्होंने अंग प्रदेश को भगदत्तपुरम कहना शुरू कर दिया। भगदत्तपुरम यानी कि जो जहाँ पर किसी का भाग्य उदय हो जाए, भाग्य बन जाए। तो भगदत्तपुरम से बाद में ये भगदत्तपुरम थोड़ा बिगड़ता हुआ, थोड़ा बनता हुआ भागलपुर बन गया और अब हम इसे भागलपुर कहते हैं। यानी कि जहाँ लोगों के भाग्य उदय हो जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नामों की बात करें ना, तो वो जो कुछ नाम है वो मालिनी है। जी हाँ, ये बहुत ही पोएटिक सा नाम है। कवि अपनी कविताओं में भागलपुर को, अंग प्रदेश को मालिनी नाम से संबोधित करते थे। मालिनी एक नदी का नाम है और जिसके किनारे चंपा बसता था, तो इसी वजह से संस्कृत की कविताओं में, ग्रंथों में पोएटिक रेफरेंस के तौर पर मालिनी नाम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मालिनी कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं बना, लेकिन कुछ कवियों ने मालिनी नाम से भी भागलपुर को संबोधित किया। इसके अलावा हम बात करें तो भागीरथपुर, जी हाँ, भागीरथपुर नाम से भी भागलपुर को जाना गया था एक वक्त पे। अगर हम बात करें ना, तो अभी हमारे पवित्र धरती को जो पवित्र बनाती है यानी कि गंगा नदी को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाता है लोक मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में, तो वो भागीरथ ऋषि को दिया जाता है। और इसी वजह से लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना, उन्हें कभी कभी भागीरथपुर भी कहा गया, क्योंकि हमारा जो भागलपुर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और कई बार होता है ना कि हम किसी शब्द को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई और उसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है, लिखता है। उसी का एक उदाहरण है भोगलपुर, जी हाँ, जिसे हम भागलपुर के नाम से जानते हैं ना। मुगल कालीन दस्तावेजों को आप अगर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इसे भोगलपुर के नाम से संबोधित किया गया है, भोगलपुर लिखा गया है, जो कह सकते हैं कि उच्चारण करने का सिर्फ एक भिन्न तरीका है। लेकिन कुछ मुगल के लेखकों ने भागलपुर को भोगलपुर बोला और भोगलपुर लिखा, तो कुछ दस्तावेजों में आप भोगलपुर भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बात करें ना, तो एक ऐसा भी वक्त था जब भागलपुर को प्राची देश भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र था ना, वो प्राची देश के पूर्वी भाग में आता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना, अंग प्रदेश के नाम के पीछे अगर हम कुछ पौराणिक कथाओं को समझें, मान्यताओं को समझें, तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंग, और वो इस जगह पर राज किया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंग प्रदेश, यानी कि राजा अंग का प्रदेश। हमने आपको बताया कि कुछ कवियों ने, लेखकों ने हमारे इस अंग प्रदेश को मालिनी नाम से भी संबोधित किया है। मालिनी नगर का ही मतलब होता है, जहाँ पर सौंदर्य हो, फूल हो, वृक्ष हो। रामायण और महाभारत में भी भागलपुर अंग प्रदेश का बहुत जिक्र मिलता है। तो हमारी ये जो अपनी धरती है, भागलपुर की धरती है, और इसका जो नाम है भागलपुर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग दस्तावेजों में भागलपुर के नाम को दिखाया गया है, लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने भागलपुर के लगभग, जी हाँ, या तो फिर कह सकते हैं कि सारे नामों के पीछे की वजह को समझ लिया होगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि तुम्हारे शहर का नाम अजीब सा क्यों है भागलपुर, तो उसे बहुत अच्छे से बताइएगा। भागलपुर का मतलब होता है जहाँ लोगों के भाग्य उदय होते हैं। आज के अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
8: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा,
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
10: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
12: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ RJ अनु और हाजिर हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। और आज विशेष विषय है हमारे पास, और ये विषय है मुर्गियों का आवास और खाने पीने का प्रबंधन। जी हाँ, यहाँ पर खेती की बात तो हम करते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे पशुपालक भाई हैं और जो समेकित कृषि प्रणाली में भी इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जैद हुदा जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि विज्ञान केंद्र से, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले जहाँ तक हमारा विषय है, वो मेन फोकस चाहता है कि आवास और खाने पीने का प्रबंधन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि मुर्गियों का आवास कैसा होना चाहिए।
13: किसान भाइयों, मुर्गियों के लिए आवास प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप मुर्गियों को आप तीन तरीके से पालते हैं, जैसे आप फ्री रेंज सिस्टम में पालते हैं, जब आप मुर्गी पालन बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के रूप में करते हैं, तो उसमें आपको मुर्गियों की आवाज़ की कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी होती है। आप घर में किसी भी साइड में एक छोटा सा घर बना लेते हैं और शाम में मुर्गियों को उसमें बंद करते हैं और सुबह खोल देते हैं। इस तरह के मुर्गियों के पालन में कोई आवास, विशेष आवास व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। मुर्गी पालन जब हम डीप लीटर सिस्टम में करते हैं और केज बैटरी सिस्टम के अंतर्गत करते हैं, तो इसमें आवास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आप मुर्गी पालन डीप लीटर सिस्टम में करते हैं या आप ब्रॉयलर, मुख्यतः उसमें हम लोग ब्रॉयलर मुर्गी पालन काम करते हैं, तो हम इस बातों का ध्यान देंगे कि हमेशा आवास के लिए जगह का चयन हमेशा ऊंची जगह हो, जहां पानी न जमा होता हो। दूसरा, वो बिल्कुल आप

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको

0: घर बनाएंगे तो कोशिश करें कि वो हवादार हो। दूसरा कि जो अगर आपके पास ज़मीन उपलब्ध है तो आप मुर्गी का घर ऐसे बनाएं कि उसका लंबा सिरा जो है पूरब और पश्चिम की तरफ रखें। कोशिश करें कि वहाँ पर कोई छायादार नहीं हो, हवा पूरी तरह से जाए, आगे एक तरफ से दूसरी तरफ जाए। आवास में आपको ये ध्यान देना है कि इस तरह का प्रबंधन चाहे घर की दरवाजे का हो चाहे खिड़की का हो, जिससे कि कोई जंगली जानवर आपके घर में नहीं जा पाए। आवास में हम लोग जब डीप लीटर सिस्टम में मुर्गियों को पालते हैं तो हम लोग ध्यान रखते हैं, जब हम ब्रॉयलर फार्मिंग की बात करते हैं तो प्रति वयस्क मुर्गी 1 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है ज़मीन को। तो आपको जितनी ब्रॉयलर मुर्गियां पालनी हो उस हिसाब से उतने स्क्वायर फीट का घर आप आसानी से बना सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखें कि मुर्गी पालन चाहे आप अंडा उत्पादन के लिए कर रहे हों चाहे आप मांस उत्पादन के लिए कर रहे हों, तो ये आप ध्यान देंगे कि अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अगर आप अपने आवास के अंदर मेंटेन कर सकते हैं तो ये सर्वोत्तम उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, चाहे अंडा देने की क्षमता हो चाहे उसके मांस की क्षमता हो। तो आप आजकल बहुत सारे ऐसे घर बन रहे हैं जहाँ वातानुकूलित तापमान को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कोल्ड स्टोरेज में कैसे आप तापमान को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह बहुत सारे आजकल मॉडर्न तरीके से घर बन रहे हैं जिसमें बड़ा बहुत सरल विधि से आप तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं, थर्मोस्टेट लगा के पानी का फ्लो दे करके, और एक रहता है वो आप देख लेंगे तो उसमें 25 डिग्री के आसपास से तापमान जहाँ अधिक होता है उसमें पानियाँ चलने लगते हैं और धीरे धीरे एयर फ्लो आवास के अंदर जाता है। तो ऐसा करने से आप बहुत कम खर्च में ये तकनीकी अगर आप सीख लेंगे तो अपने मुर्गियों के घर का जो तापमान है वो 25 डिग्री के आसपास कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी अपनी मुर्गियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर जानते हैं आहार प्रबंधन यानी खाने पीने की जो बात हो रही है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हम मनुष्य की बात कर लेते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कहा जाता है 6 महीने तक दूध पीने के लिए और उसके बाद 6 महीने के बाद जो हल्के फुल्के भोजन है वो देने के लिए। तो जब मुर्गियों की बात आती है तो मुर्गियों के लिए भी मुझे लगता है कुछ ऐसे ही आहार प्रबंधन होंगे, जैसे कि मुर्गी का बच्चा है या फिर वो थोड़ा बड़ा होता है या फिर वो वयस्क हो चुका है, तो उसके लिए क्या कुछ अलग अलग आहार प्रबंधन है?
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुर्गियों के बच्चे जब अंडे से चूजे बाहर निकलते हैं तो उसको लगभग 48 से 72 घंटे तक उसको किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। और क्योंकि जहां वो बच्चे निकलते हैं आप तक आने में कभी 24 घंटे कभी 48 घंटे कभी 72 घंटे तक उनके अंदर जो एक योग सैक होता है उसी से उसको एनर्जी और पोषण मिलता रहता है, लेकिन 48 घंटे या 72 घंटे के बाद आपको ये ध्यान देना है कि उस क्यों जब आपके घर पर आए तो कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है कि आप उसको, वो बिल्कुल भूखा रहता है जब आप लाएं तो कोई अपने लकड़ी के बुरादे के ऊपर फर्श के ऊपर मैंने 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान अगर ठंडा है तो उसको मेंटेन रखें, ऊपर पेपर बिछा दें और उसके ऊपर पहली बार आप बिल्कुल मक्के का दर्रा पतला दर्रा ही प्रयोग करें पहले दिन, और कोई भी अगर गर्मी का मौसम है तो आप उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर हो गुड़ का घोल बनाकर ये ज़रूर दें। और दूसरे दिन से मुर्गियों के खाने में भी 3 तरह के खाने होते हैं, एक प्री स्टार्टर राशन होता है, दूसरा स्टार्टर राशन होता है और तीसरा फिनिशर राशन होता है। तो आप आजकल मुख्य रूप से हमारे मुर्गी पालक मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं या फिर अंडा उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं, तो प्री स्टार्टर भोजन बिल्कुल आवश्यक है दोनों अवस्था में। आप पहले कम से कम 2-3 दिनों तक प्री स्टार्टर राशन आप अपनी मुर्गियों के बच्चों को दें, उसके बाद फिर ग्रोअर या स्टार्टर राशन जिसे हम कहते हैं उसको आप, अगर मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसको 26 से 30 दिन के आसपास आप ग्रोअर राशन दें, और 30 दिन के बाद ब्रॉयलर उत्पादन में आप फिनिशर राशन दें जो ग्रोअर राशन से थोड़ा कम महंगा होता है जिससे आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी होगी और वज़न भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि, और मुर्गी का खाना आप खुद भी बना सकते हैं, मुर्गी का खाना बनाने में बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते होंगे कि मुख्य रूप से मुर्गियों के भोजन में मक्के का बहुत बड़ा रोल है, 45 से 55% तक मक्का लोग मुर्गी के खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सोयाबीन की खल्ली है, राइस

0: चूर्ण है, मछली का चूर्ण है, और ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ हैं जो आप अगर सीख सकते हैं तो आप अपने बगल के विशेषज्ञों से इसको सीख लें। और जो आप बाज़ार से दाना खरीदते हैं उसकी अपेक्षा कम से कम 2 से 3 रुपए प्रति केजी कम से कम आपको ज़रूर सस्ता राशन आप बना सकते हैं, जिससे आपके उत्पादन क्षमता में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यकीनन आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक इनके आवास प्रबंधन की बात है यानी घर बनाने की, तो हम देखते हैं कि कई बार किन्हीं किन्हीं घर में जो बालकोनी है या फिर छत के ऊपर जो छज्जे होते हैं उन पर वो लकड़ियों से घेर कर उनका जो घर है वो बना देते हैं, लेकिन जहाँ तक व्यवसाय के तौर पर अगर इनका पालन किया जा रहा है तो आप बताएं हमें कि घर बनाने के समय जो हमारे किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, घर अगर दो मुख्य रूप से दो वजहों से हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, एक तो मीट के लिए और दूसरा अंडे के लिए। तो अगर मांस उत्पादन के लिए बात करते हैं तो आप जरूर डीप लीटर सिस्टम लकड़ी के बुरादे पर मुर्गी पालन करते हैं और मुख्य रूप से उससे 30 से 35 दिनों के अंदर हम लोग उसको बेच देते हैं। और उसमें हम लोग को बस ध्यान रखना है कि आप घर बनाते हैं तो ऊंची जगह ही हो और 2 फीट के आसपास ज़मीन से नीचे से ईंटे की जुड़ाई कर लें और आप पूरा जाली डाल करके बहुत कम लागत में आप डीप लीटर सिस्टम में ब्रॉयलर उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जब हम केज बैटरी सिस्टम, जब हम लेयर उत्पादन की बात करते हैं तो लेयर उत्पादन और ख़ास करके कॉमर्शियल लेयर उत्पादन, जो अंडा का हम लोग आजकल कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके लिए केज बैटरी सिस्टम काफ़ी माने रखता है। और जो केज बैटरी सिस्टम है और डीप लीटर सिस्टम में, दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। केज बैटरी सिस्टम में आपको इनिशियल लागत ज़्यादा आएगी क्योंकि एक 14x21 इंच के एक केज में आप 5 लेयर बर्ड्स को रख सकते हैं, जिससे में आपको काफ़ी, आप 130x35 फीट के लंबे चौड़े शेड में लगभग 5,000 मुर्गियों को केज बैटरी सिस्टम में आप पाल सकते हैं, लेकिन इतने छोटे से स्पेस में आप इतने ब्रॉयलर मुर्गियों को नहीं पाल सकते हैं। तो शुरुआती लागत तो केज बैटरी सिस्टम में जब हम अंडा उत्पादन के लिए बात करते हैं तो ज़्यादा आती है, लेकिन जब आप लंबी अवधि के लिए उसमें करेंगे तो उसमें लेबर का मैनेजमेंट कम हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रोग के प्रबंधन में कमी आ जाती है, बीमारियों के रोकथाम में आसानी होती है, मेडिकेशन देने में आसानी होती है, वैक्सीन देने में आसानी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लंबी अवधि में जब हम अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो केज बैटरी सिस्टम बड़ा अच्छा रहता है और आप इसको कर सकते हैं, कम जगह में बहुत ज़्यादा मुर्गियों का पालन कर सकते हैं।
1: ओके, तो यहाँ पर आपने जाना है घर बनाने समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके बाद अब आवास प्रबंधन की बात है तो आवास व्यवस्था, जो मुर्गी पालन अगर जो कर रहे हैं वो उन्हें बताएं कि आवास व्यवस्था कितने तरह के होते हैं।
0: देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मुर्गी पालन के लिए आवास व्यवस्था 3 तरह से आप कर सकते हैं। फ्री रेंज सिस्टम में, जिसके लिए कोई विशेष रूप से मुर्गी पालन, जो छोटे किसान हैं करते हैं, 4-5 मुर्गियां रखते हैं, उसके लिए कोई विशेष आवास बनाने की आवश्यकता नहीं होती। डीप लीटर सिस्टम, जो आप लकड़ी के बुरादर पर मांस उत्पादन या फिर अंडा उत्पादन का कार्य करते हैं, तो वो डीप लीटर सिस्टम में आप अपने घर को बना सकते हैं मुर्गी पालन के लिए। और तीसरा, सेमी इंटेंसिव या केज बैटरी सिस्टम, जो बड़े अंडे उत्पादन के लिए हम लोग काम करते हैं, तो केज बैटरी सिस्टम का घर हम लोग बना सकते हैं। घर में हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके पास ज़मीन है तो एकदम, मैंने पहले ही कहा है कि मुर्गियों के लंबा सिरा जो आप घर बनाते हैं वो पूरब और पश्चिम की तरफ हो, सीधे सूरज की रोशनी जाने से आपको दिक्कत होगी। तो ऐसा होगा, घर के अगल बगल लंबे पेड़ ना होने दें, कोशिश करें कि आप अगर गर्मियों का दिन है तो घर के ऊपर थोड़ा पानी का फव्वारा लगाएं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम है तो आप अपने जालियों पर जूट का बोरा लगाकर उसको भिगोएं। और सबसे बेहतर है कि आप अगर कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड आप पोल्ट्री फार्मिंग बड़े स्केल पर कर रहे हैं तो आप अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए तकनीकी सीखें और उसको करें।
1: तो सुना आपने हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों की किस तरीके से आप मुर्गियों का जो आवास प्रबंधन कर सकते हैं, साथ ही आहार प्रबंधन कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, आशा है कि आप इन बातों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, यानी कि अगर आप मुर्गी पालने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर इसे, इन बातों को शामिल करें और ध्यान रखें जिन जिन बातों को कहा गया है यहाँ पर। और आज डॉक्टर

0: साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: और आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़ बात
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया,
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
11: हर

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो।

0: अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करेंगे एक ऐसे अल्प उपयोगी सब्जी के बारे में जो स्वाद, पोषण और स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी बहुत ही मदद करता है, यानी कि बहुत अच्छी संभावना है आय बढ़ाने में। इस फसल का नाम है गार्लिक चाइव। किसान भाइयों, आज के समय में खेती के सामने कई सारी चुनौतियां आती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, तापमान में भी अक्सर आप देखते हैं कि उतार चढ़ाव होता है, पानी की कमी तो बहुत बड़ी समस्या है, और खेती की बढ़ती लागत, बाजार में अच्छी कीमत वाली फसलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। और ऐसे समय में हमें ऐसी फसलों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कम क्षेत्र में उगाई जा सकती है और बार बार उपजते, पोषण से भरपूर हो और बदलती जलवायु में भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन कर सके। और गार्लिक चाइव एक ऐसी ही संभावनाशील फसल है, और इसके बारे में, यानी कि गार्लिक चाइव के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से हमारे

0: बात उमा, ये आज के श्रोताओं के लिए जैसे किसान भाइयों बहनों आपके लिए एक नया क्रॉप है। आपने पहली बार सुना होगा इस गार्लिक चाइव के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम ट्यूबरोसम और यह प्याज और लहसुन वाले कुल जैसे एमिल्डेसी, इसकी एक महत्वपूर्ण बहुवर्षीय सब्जी है। इसकी हम लोग देखा जाए तो पत्तियां इसकी लंबी होती है, पतली होती है और हरी होती है, जिस तरह से लहसुन और प्याज का होता है। बट इसमें क्या होता है, ये हम लोग बार बार इसको काट कर हम लोग खाया जा सकता है और इसका सुगंध एवं एकदम से लहसुन की तरह लगता है, जिसके वजह से इसको गार्लिक चाइव बोला गया है। इसको हम लोग तड़के पे खाते हैं, आलू चोखा में आप डाल सकते हो, सूप में डाल सकते हो, चटनी बना सकते हो, नूडल्स वगैरह में, यानी कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि इसकी पत्तियों की कटाई के बाद पौधे पुनः बढ़ते हैं, तो इसीलिए उचित प्रबंधन के साथ एक ही खेत से कई बार हरी पत्तियों की उपज प्राप्त की जा सकती है।
1: जी मैम, अगर हम पोषण की दृष्टि से बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है?
0: जी बिल्कुल उमा, तो और देखा जाए कि आज उपभोक्ता केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं चाहता, बल्कि ऐसा भोजन चाहता है जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो। इसी कारण पोषण युक्त सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो इनमें से जो गार्लिक चाइफ है, इसकी जो हरी पत्तियां है, इसमें विभिन्न विटामिन, खनिज तत्व, आहार फाइबर तथा जीव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा पे उपलब्ध है, कैरोटीनॉइड्स तथा विभिन्न सल्फर भी भरपूर मात्रा में पाए गए हैं, जिससे हम लोग देखा जाए कि लहसुन के पत्तियों से भी ज़्यादा इसमें मात्रा पाया जाता है।
1: जी, और अगर हम बिहार के दृष्टि से बात करें तो ये बिहार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है?
0: बिहार में सब्जी उत्पादन की अच्छी संभावना है, ये सब हम सब जानते हैं। यह छोटे और सीमांत किसान बड़ी संख्या में है और कम क्षेत्र में अधिक मूल्य प्राप्त करने वाली फसलों की आवश्यकता रहती है। तो गार्लिक चाइव को खेत के साथ साथ हम लोग किचन गार्डन, पोषण वाटिका और छोटे व्यवसायिक प्लॉट में भी उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ताजी विशिष्ट और स्वस्थ वर्धक सब्जियों की मांग बढ़ रही है। यदि किसान स्थानीय बाजार, होटल, रेस्टोरेंट और प्रत्यक्ष उपभोक्ता बाजार से जुड़ते हैं, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे, यहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से विशेष सब्जियों से अतिरिक्त आय प्राप्त करने की संभावना बन सकती है।
1: और मैम, हमने जलवायु अनुकूल के बारे में भी बात की, तो जलवायु अनुकूल कितना है गार्लिक चाइव?
0: जलवायु परिवर्तन के दौर में हमें केवल अधिक उत्पादन देने वाली फसलों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जलवायु सहिष्णु और विविधीकृत फसल प्रणालियों को अपनाना चाहिए। गार्लिक चाइव अपेक्षाकृत मजबूत फसल है और उचित संभव प्रबंध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। इसकी बार बार पत्तियों की कटाई की क्षमता किसान के लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सकती है। हालांकि देखा जाता है कि किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फसल की सफलता के लिए सही किस्म, उपयुक्त मौसम, मिट्टी, सिंचाई, पोषण और स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए बिहार के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसके वैज्ञानिक परीक्षण और स्थानीय उत्पादन तकनीक का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिशा में हमारे बीएयू साबौर में भी इसका शूट शुरू हो चुका है।
1: जी मैम, मैम अब हम इसकी खेती की बात करते हैं, तो अगर हमारे किसान भाई बहन गार्लिक चाइव की खेती करते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: अगर देखिए, जैसे कि गार्लिक चाइफ है, इसके लिए हम लोग को अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त रहती है। खेत में पानी का लंबे समय तक जमाव नहीं रहना चाहिए। जैविक खाद या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग मिट्टी का संरचना और उर्वरता सुधारने में सहायक हो सकता है। पौधों की स्थापना के लिए स्वस्थ रोपण सामग्री का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी के बाद उचित दूरी पर पौधे को स्थापना करनी चाहिए। जैसे हमको पता है कि इसमें क्लोव नहीं बनता है, तो इसका होता है नीचे का जो एक राइजोम रूट्स होता है उसको हम लोग कट करके लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लम्प। तो इससे हम लोग लगाते हैं 15-10 के दूरी में, तो सिंचाई आवश्यकता के

0: अनुसार हम लोग को करनी चाहिए इसमें, और खेत में अधिकतम पानी जमा नहीं होना देना चाहिए। तो फसल में खरपतवार नियंत्रण, संतुलित पोषण और रोग कीट की नियमित निगरानी आवश्यक है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर ही और अनुचित मात्रा में ही करना चाहिए, जबकि इसमें इस फसल में पाया गया कि बहुत ही कम किसी कीटाणु या कोई बीमारी का प्रभाव पड़ता है।
1: जी मैम, आजकल हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई बहन और हम लोग भी जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं और जैविक खेती को ही अपनाना चाहते हैं, तो गार्लिक चाय में जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस हद तक किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, आज किसान खेती की लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में भी सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो गार्लिक चाय की खेती में हम लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक और अन्य जैविक स्रोतों के समन्वित उपयोग पर ध्यान दिया जा सकता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में, पोषण तत्व की उपलब्धता बढ़ाने और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली विकसित कराने में भी मदद मिल सकती है।
1: जी मैम, अगर हमारे किसान भाई बहन आमदनी बढ़ाना चाहें गार्लिक चाय की खेती की मदद से, तो क्या मूल्य संवर्धन भी किया जा सकता है?
0: देखिए किसान भाइयों, केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। आज आवश्यकता है कि हम उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक पूरी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान दें। तो गार्लिक चाय की ताजी पत्तियों को साफ करके छोटे पैकेटों में बाजार में बेचा जा सकता है और इसको हम लोग अलग दूसरे देश में भी भेज सकते हैं। तो स्थानीय मांग, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, इसमें अधिकतम इसका मांग ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर अन्य राज्यों से भी लोग रहते हैं और वहाँ पर इसकी डिमांड जो होता है वो ज़्यादा रहता है। तो इसके अनुसार हम लोग इसको उपयोग मसाला मिश्रण, सूखी पत्तियों या अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों में भी इसको किया जा सकता है। इससे किसान, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे उद्यमी मिलकर स्थानीय स्तर पर रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा कर सकते हैं। और इसको हम लोग इसी में ही नहीं, पोषण वाटिका में भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। गार्लिक चाय केवल व्यवसायिक किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार के लिए उपयोगी है, हो सकता है। इसको हम लोग घर की पोषण वाटिका में लगाया जा सकता है, थोड़ी सी जगह में इसे उगाकर परिवार को ताजी हरी पत्तियां उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे भोजन में विविधता आती है और परिवार के आहार में भी हरी सब्जियां की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
1: जी मैम, तो क्या गार्लिक चाय में अभी भी अनुसंधान की जरूरत है?
0: बिल्कुल, गार्लिक चाय को बिहार में एक संभावनाशील अल्प उपयोगी सब्जी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसके विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। इसी दिशा में हमारे बीएयू साबौर में इसकी शोध शुरू हो चुका है, जिससे बिहार के अलग अलग कृषि जलवायु परिस्थितियों में इसकी किस्मों की मूल्यांकन, रोपण समय, पौध दूरी, सिंचाई, पोषण प्रबंधन, मल्चिंग, जैव उर्वरक, जैविक खाद को तथा कटाई प्रबंधन पर व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही इसके पोषण, गुणवत्ता, बाजार मांग, उत्पादन लागत, लाभ लागत अनुपात और उपभोक्ता पसंद का भी हम लोग अध्ययन शुरू किया गया है।
1: जी मैम, मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी मेरे किसान भाइयों और बहनों, खेती में सफलता केवल परंपरागत फसलों से ही संभव नहीं है। समय की मांग है कि हम फसल विविधीकरण को अपनाएं और बाजार तथा पोषण की मांग के अनुरूप नई एवं अल्प उपयोगी फसलों को अपनी खेती में स्थान दें। गार्लिक चाय ऐसी ही एक फसल है जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन और अतिरिक्त आय, इन सभी क्षेत्रों में संभावनाएं दिखाई देती है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि किसी नई फसल को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले किसान भाई स्थानीय स्तर पर छोटे क्षेत्र में इसका परीक्षण करें, बाजार की मांग को समझे और कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग की सलाह जरूर ले।
1: जी मैम, तो किसान भाई बहन जैसे कि मैम ने कहा, बाजार की मांग को समझना चाहिए और जो नई फसल है उसमें भी आपको चाहिए कि आप बिल्कुल शोध करें, यानी कि नई फसल, नई सोच और नया बाजार, यही भविष्य की टिकाऊ खेती का आधार है। गार्लिक चाय जो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, जैसे अल्प उपयोगी गार्लिक चाइप जैसी अल्प उपयोगी सब्जी

0: फसलें हमारे खेतों में विविधता ला सकती है, हमारे भोजन को अधिक पौष्टिक बना सकती है और किसानों के आय के लिए नए अवसर खोल सकती है। आइए हम ऐसी फसल को बढ़ावा दें जो पोषण से भरपूर हो, बदलती जलवायु के अनुकूल हो और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बने। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हमारे किसान भाई बहनों को एक नई फसल के बारे में जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं।
1: धन्यवाद उमा, मुझे भी आपने ये अवसर दिया है।
0: जी मैम, तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत

तक बने रही, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर

0: बुखार का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए

पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ഭാരത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में. किस प्रकार से परवल की खेती की जाती है और क्या समस्याएं आती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी ही बातों के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आरवी वर्मा. सर आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बीएयू सबौर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: सर. सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि परवल के क्या फायदे होते हैं.
1: देखिए परवल जो है जिसको कुकुरबिटेसी कहते हैं या लतेर वाले जो है फैमिली जो कहते हैं, उस फैमिली का एक ऐसा पौधा है जो लगभग 7 से 8 महीने तक फल देता है. और यह फल समझिए इमरजेंसी पीरियड में भी देता है, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर जब पानी आता है उस समय और अन्य सब्जियां सब खत्म जब हो जाती हैं तो उस समय भी मार्केट में आपको जो है परवल मिलता है. और परवल की उपयोगिता ही बहुत ही ज़बरदस्त है. परवल एक ऐसा फ्रूट है, समझ लीजिए फ्रूट इस वेजिटेबल में आता है ये, कि इसमें जो है एक तो सबसे पहले कि इसमें विटामिन ए बी और सी पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स है जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है. एनर्जी इसमें बहुत कम होती है जिससे आप शुगर फ्री के

0: शुगर वाले पेशेंट को भी आप इसको दे सकते हैं। इस पे फैट की मात्रा बिल्कुल कम 0.3% के आसपास होती है, इसलिए जो मोटापा जो है उसको भी कम करता है। ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी जो होती है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं लो एनर्जी के कारण जो है। तो ये लो एनर्जी कारण ये बहुत सारे रोगों में कभी कभी आप देखते हैं ज्वाइंटिस सब हो जाता है, तो उसमें भी हम परवल का चोखा या परवल की जो है सब्जी हम रिकमेंड करते हैं कि आप परवल की सब्जी लीजिए, तो ये हल्की होती है। इसके तमाम इसके एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी वेट को आपको रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। तो परवल की आप देखते हैं स्वीट्स भी बनते हैं आजकल, जो परवल की मिठाई बनती है, तो परवल की ये तमाम सारी उपयोगिताएँ हैं। और ऐसी फसल भी है जो आपको 7 से 8 महीने तक फल भी देती है, तो इन सब सारी उपयोगिताओं को देखते हुए परवल का स्कोप ज्यादा बढ़ जाता है। और परवल की खेती हमारे ख्याल से किसान भाइयों के लिए ज्यादा लाभदायक है, इसकी खेती सफलतापूर्वक आप करें इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं।
1: जी सर, लाभदायक होती है लेकिन कई बार कुछ समस्याएं भी आती है, तो परवल की खेती में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं?
0: हाँ देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परवल की खेती में। देखिए, एक तो होता है सेक्स की प्रॉब्लम उसमें, कि उसमें जो है नर और मादा दोनों जो अलग अलग होते हैं। ये डायोसियस प्लांट होता है, डायोसियस प्लांट मतलब जिसमें एक पौधे पे होगा तो केवल नर ही होगा और दूसरे पर होगा तो केवल मादा ही होगा, और हमेशा फल जो होता है वो मादा पुष्प पे ही आता है, नर पुष्प पे नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसान भाई के खेत में ऐसा भी पौधा दिखाई पड़ता है कि जिसमें केवल फूल तो आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है, तो किसान भाई क्या करते हैं उसको खेत से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, जब नर पौधा नहीं रहेगा तो पोलिनेशन की समस्या हो जाती है, और पोलिनेशन नहीं होगा तो पता चला आपके पौधे में फूल तो आ रहा है लेकिन वो फूल जो है पीला होकर के फिर से सूख जा रहा है। इसका कारण यही है कि वहाँ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये डायोसियस पौधा है और जब भी लगाना है इसको तो नर और मादा दोनों ले जाके लगाना है, और दोनों को लगाने का एक जो अनुपात होता है वो 9:1 का अनुपात होता है, यानी 9 पौधे अगर मादा आप ले जाते हैं तो 1 पौधे नर आप ज़रूर ले जाइए, इससे उसका रेशियो मेंटेन रहता है और परागण के लिए पौधे को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि इसका जो है बहुत दूर 1.5 किलोमीटर दूर तक इसका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, बट उतना दूर से परागण आएगा और परागित करने में उसको समय लगेगा, फिर जो है नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वहाँ आपकी जो प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि 9:1 का रेशियो आप उसमें रखें। 9:1 रेशियो रखेंगे तो उसका जो है पोलिनेशन अच्छा होगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी और आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरी बड़ी समस्या इसमें ये होती है, एक तो ये आ गई प्लांटिंग रेशियो कि 9:1 में आप प्लांटिंग करिए, इससे आपको नर और मादा का जो है 9 मादा और 1 जो है नर, तो इससे आपके ऊपर। दूसरा ये होता है इसमें कि देखिए इसमें सीड प्रोपोगेशन हम नहीं करते हैं। कभी कभी ये किसान भाई कहते हैं कि हम बीज से ही कर लें, तो बीज से करने में समस्या ये होती है कि जो आप एक तो पहले बीज इसका ऐसा होता है कि आप जैसे पकने के बाद इसको निकालिएगा 2 मिनट के लिए हवा में छोड़िएगा तो फिर जमेगा ही नहीं, तो उसमें ये होता है कि तुरंत उसका फल पका हुआ निकालिए, तुरंत उसको जमीन में लगाना होता है, एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि इसके बीज को अगर लगाते हैं तो उसमें 50% नर आ जाता है और 50% मादा आ जाती है, और ये नर और मादा का अनुपात जो 50-50% जो हो जाता है लगभग जो है, यह आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि उसमें फ्लावर या फूल नहीं आ जाता है। तो फूल आने के लिए आप साल भर इंतजार करिएगा, साल भर आप खेत को फंसा के रखिएगा, तब जब फूल आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो नर है और ये मादा है, तो आपके खेत की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा चीज ये कि ये लंबा समय लेता है, क्योंकि एक साल भर की बताया हमने कि इसको ये पूरा साल भर चलता रहता है, ये बायनियल मतलब ये जो है पेरेनियल पौधा है, एक बार लगाइएगा तो 3 साल तक इससे काटिएगा कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो है लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी जो हमको बीज से इसका जो है प्रोपेगेशन नहीं करना है, इसका प्रोपेगेशन हमेशा कटिंग से करना है जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो उपयुक्त मतलब प्रजाति हो उसी को लेना है, अन्यथा आपकी जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और पैदावार घट सकती है।
1: तो सर हमें विस्तार से बताइए कि प्रवर्धन कैसे करें?
0: हाँ, इसके प्रवर्धन के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमने बता दिया कि एक जो है 9:1 रेशियो में आपको नर और मादा लेना है। अब नर और मादा में अब क्या लेना है, एक तो इससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, सीड से प्रोपगेशन नहीं करते हैं। तो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं

0: है तो इसमें हम उसकी वाइन लेते हैं, और वाइन कैसी होगी, एकदम मेच्योर वाइन हो जो साल भर पुरानी हो गई हो। ऐसा नहीं कि टेंडर वाइन लीजिएगा, टेंडर वाइन लीजिएगा तो वो जो है सूख जाएगा। तो हमेशा आपको मेच्योर, जो मेच्योर वाइन होती है उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा जब मेच्योर वाइन हो जाती है जनरली जो जड़ से निकलती है, देखिए जब खूब मेच्योर हो जाती है तो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, हल्की सी व्हाइटिश हो जाती है, जो ग्रीनिश रहती है उसका रूप बदल के हल्का सा लाइट व्हाइटिश कलर में आ जाता है, तो समझिए कि वाइन पूरी तरह से मेच्योर हो गई है। तो सबसे तो पहले कि आपको वन ईयर ओल्ड मेच्योर वाइन सेलेक्ट करना है। दूसरी बात, उस वाइन को अगर काट लीजिए, काटने के बाद उसको कितना लंबा रखेंगे, तो कम से कम जो है उसको 50 टू 60 सेंटीमीटर उसको लंबा रखिए। और उसको क्या करिएगा, उसको अंग्रेजी का आठ जो होता है उसके आकार में आप उसको मोल्ड कर लीजिए, आठ के आकार का बना लीजिए, और दोनों सिराओं को फिर मोड़ दीजिए, आठ के आकार के जो दोनों लास्ट की सिराएं हैं उसको आपस में मोड़ दीजिए, और बीच में उसे मिट्टी डाल करके जो है बीच में मिट्टी से उसको एक गड्ढा खोद करके, गड्ढा खोदने के लिए एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप इसका कल्टीवेशन करें तो सॉयल आपकी एकदम सैंडी लोम सॉयल हो, जिसमें बालू की मात्रा बढ़िया हो, उसमें इसकी उपज जो है ज्यादा अच्छी होगी। कड़ी मिट्टी लेंगे तो उसमें इसकी उपज थोड़ी कम हो जाएगी, और उसमें अगर बालू कड़ी मिट्टी है या लोमी मिट्टी है तो इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि आपको जो उस मिट्टी में जो है बालू, गंगा बालू अगर मिलता है तो गंगा बालू और आपका जो है बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, थोड़ा सा फ्यूराडान मिला करके उसको बढ़िया से उसका पिट बना लें, फिर उस पिट में लगाएंगे, तो वो जो है आप जो है 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा जो वाइन लिए थे उसको आठ के आकार में बना लिया, और उसके दोनों को वाइन्स को आप ऊपर ले लेते हैं छोर को जो है, और साइड से जो है मिट्टी में दबा करके उसको पूरी तरह से उसको दबा देते हैं, हल्का हल्का सा वो दिखाई पड़ता है जो सूर्य की रोशनी उसको मिलते रहे, हल्का सा ऊपर से दिखाई पड़ता है, उसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दें। लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिट्टी में लगाते हैं तो उसके साथ कोई मरोवत मत करिए, अगर उसमें मान लीजिए आपने प्रेस नहीं किया है, बढ़िया से दबाया नहीं है, तो होता क्या है कभी कभी जब आप पानी देते हैं तो उसमें होल बन जाता है, तो जब होल बन जाएगा तो वहां से हवा चला जाएगा, और हवा जाएगा तो उसके सूखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, पौधा लगेगा, आप कहेंगे कि हमने पौधा लाया था स्वस्थ लगाया लेकिन चला नहीं, तो इससे देखना है लगाते समय उसकी वाइन्स को खूब बढ़िया मिट्टी से दबा दिए, ताकि मिट्टी का संपर्क उससे खूब अच्छी तरह से हो जाए और उसका जो नमी बराबर मिलती रहे। तो ये करना, लगाने के बाद आप उस पर मल्च डाल दीजिए, मल्च डालने के बाद उसको जो हल्की सी सुबह शाम सिंचाई करते रहिए। तो ये तो इससे हम प्रोपेगेशन करते हैं वाइन से, सीड से हम नहीं करते, जैसा पहले बता दिया था, तो इसका प्रोपेगेशन हम वाइन से ही करते हैं। वाइन वन ईयर ओल्ड वाइन्स लेते हैं, मेच्योर वाइन लेते हैं, 50 से 60 सेंटीमीटर लगते हैं, जिसमें 7 से 8 कम से कम नोड हो, इसको ध्यान में रखना है, कि इसलिए कि नोड से ही जो है जड़ें निकलती हैं, तो जब नोट्स नहीं रहेगा तो जड़ें नहीं निकलेंगी। अगर एक नोट्स लगाइएगा तो एक नोट्स मान लीजिए वीक हो गया या खत्म हो गई तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए 6 से 7 उसमें नोट रखिए, जिससे कोई भी नोट्स उसमें चलेगी, रूट्स निकल जाएगी तो पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दूसरी चीज ये थी कि हमने बताई, तो ये बता दिया वाइन से आपको लगाना है तो आप अक्टूबर में लगाइए, अक्टूबर वो भी 15 अक्टूबर के आसपास लगाए जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर स्प्राउट नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने डारमेंट रहती है, अक्टूबर लास्ट अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने डारमेंट रहती है, इसमें आप लगाएंगे तो नहीं चलेगा। दूसरा इसका तरीका एक और है, मान लीजिए आपके पास जो है सैपलिंग, दूसरा तरीका है सैपलिंग तैयार करना, आप कुछ नहीं है, मान लीजिए आपकी वाइन खत्म हो रही है तो आप क्या करिएगा, आप अक्टूबर या सितंबर या जनवरी, सितंबर या अगस्त कभी भी जो है आप उसकी सैपलिंग तैयार कर लीजिए। सैपलिंग तैयार करने के लिए दो तरीके हुए, एक तो आप पोली बैग ले लीजिए, पोली बैग में 2 से 3 नोड लेकर के उसको जो है अंदर जो है पोली बैग मिट्टी भरे रहते हैं उसमें आप उसको दबा दीजिए, तो उससे वो स्प्राउट कर जाएगा, स्प्राउट कर जाएगा तो वो चलेगा। उस आप जो है सैपलिंग को आप रखे रहिए, उसके देख रेख करते रहिए, जैसे मान लीजिए आप नहीं लगा पाए, आपका खेत खाली नहीं है, तो आप फरवरी में आपका खेत खाली हो तो आप उसको फरवरी में सीधे उस सैपलिंग को खेत में ले जाइए और उसमें लगा दीजिए, वो बहुत बढ़िया चलेगा, उसमें स्प्राउटिंग बहुत फास्ट होगी और बहुत फास्ट ग्रोथ कवर करेगा, आपका फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप जो है सैपलिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें 2 से 3 नोट जरूर रखिए, एक नोट पे मत लगाइए उसको, और 2 से 3 नोट रहेगा तो उसमें रूटिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो सैपलिंग से आप जो है फरवरी में भी आप इसको लगा सकते हैं और फ्रूटिंग ले सकते हैं।
1: जी सर, तो अब आप हमें ये बताइए कि प्रबंधन का सही समय क्या है।
0: हाँ, देखिए इसका जो है जब ये हम

0: इसको जो है जून जुलाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो बहुत अच्छा महीना है। इसमें इसमें स्प्राउटिंग बहुत जबरदस्त होती है। अगर काट करके बाइन वैसे भी लगा दीजिएगा, उसको दबा दीजिएगा तो चल जाएगी। लेकिन इस समय चूंकि परवल जो है एकदम अपने पीक फ्रूटिंग स्टेज पे होता है, इसलिए कोई भी किसान अपने खेत से वाइन आपको नहीं देगा। लेकिन ये आपका मार्च से स्टार्ट हो करके और अक्टूबर तक फ्रूटिंग देता है। देखिए 7 से 8 महीने फल देता है। तो जब सितंबर के लास्ट तक जो है, समझिए इसकी फ्रूटिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वीक हो जाती है, इकोनॉमिक नहीं रहती है। अक्टूबर में इसको लगाने का समय जो है सबसे बढ़िया क्या होता है कि अक्टूबर अक्टूबर में आप जो है जो वाइन्स जैसे हमने बताया, लगाने की विधि जैसे हमने बताई है, आप जो इसको खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार करके इसमें दो तरीके से, एक तो आप पंडाल विधि से भी आप लगा सकते हैं, मचान विधि जिसको कहते हैं, पंडाल बना लीजिए, और या तो एक ऐसे पोल गाड़ करके सीधा 2-2 मीटर की दूरी पे आप पोल गाड़ करके उस पर रस्सी तान करके वैसे भी लगा सकते हैं, या ओपन फील्ड कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं। अब ये लगाने के लिए मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2-2 मीटर दूरी पर लगाइएगा, तो 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइएगा। अगर फील्ड में लगाना है तो आप 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइए बेहिचक, इसलिए कि इसकी वाइन जब फैलती है तो जगह जगह पे अपनी रूट्स को जमीन में पकड़ती जाती है, तो जो एरिया खाली रहता है उसको आसानी से वो कवर कर लेता है। लेकिन जब आप जो है पोल पे लगाइएगा तो पोल पे हमेशा जो है 2 मीटर 2 मीटर पोल से पोल की दूरी होगी और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होगी। तो इन दोनों केसेस में अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं तो कम से कम आपको जो है 5,000 कटिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर पोल पे लगाते हैं तो 5,000 कटिंग जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं, इसे ओपन में 2x2 पे लगाते हैं, तो लगभग 2,500 आपके कटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये देख लेना हमको कि किस विधि से आप लगा रहे हैं, उसमें कितनी हमको कटिंग मिल रही है, कितनी अगर नहीं भी मिली है, कम भी मिली है जो है, तो आप फील्ड में लगा दीजिए। आप उससे अगले साल उसको प्रोपगेट कर लीजिए, उससे आप वाइन बना लीजिए अगर अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है तो।
1: जी सर, अब बात करते हैं खाद और सिंचाई की। तो
0: हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है जितनी भी कुकुरबिटेसी सब्जी होती है, लतेर वाली सब्जियां होती है, एक जनरल फंडामेंटल बता दें कि इन सब्जियों में जो है नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में नहीं देते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा देंगे। और लेकिन इसके देने से पहले हम 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद भी इसमें देंगे। उसके अतिरिक्त ये होगा आपका 100-60-60 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा होगी। इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन इसलिए हम जनरली कुकुरबिट्स में 80 के आसपास चलती है, लेकिन इसमें हमने 100 इसलिए कहा कि ये चूंकि ये लंबे अवधि की क्रॉप है। हमने बताया कि एक बार आप मार्च में लगाते हैं या अक्टूबर में लगाते हैं तो चलती है, फिर अक्टूबर तक चलती है, तो ये लंबी अवधि की क्रॉप है, इसलिए मैं थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो 100 किलोग्राम है। इससे ज़्यादा जहाँ भी नाइट्रोजन की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो समझिए उसमें नर पुष्प की संख्या ज़्यादा आती है। हालांकि नर इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि नर अलग ही होता है और मादा अलग होता है, लेकिन जनरल कुकुरबिट्स में प्रॉब्लम आती है। तो आप खाद जो है 20 से 25 टन FYM, 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस या 60 kg पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें देंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास संभव है तो इसमें आप जो है नीम की खली ये थोड़ा सा जो है नहीं ज़्यादा मिलता है, तो 50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास जो है प्रति प्लांट नीम की खली से मिला दें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। खास करके जो है परवल में निमेटोड की एक समस्या आती है, जो लगातार 2-3 दिन तक आप छोड़ दें, 2-3 साल तक छोड़ देते हैं, तो वो सब समस्याओं से समाधान इसका होता रहेगा।
1: सर, अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं?
0: अब देखिए, इसमें वैसे तो बिहार में जो है इसकी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब तमाम तरह की जो है प्रजातियां हम उगाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है उपजाऊ प्रजातियां हैं, जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, उसमें जैसे राजेंद्र परवल 1 अपने यहाँ बहुत ज़्यादा राजेंद्र परवल है, राजेंद्र परवल 2 है, अभी नई वेराइटी अभी गवर्नमेंट से रिलीज हुई अपने यहाँ की जो है सबौर परवलन है, जो सफ़ेद रंग की होती है, उसमें धारी नहीं होता है, उसमें सीड्स कम होते हैं, मिठाई के लिए भी अच्छी है और जो है सब्जी के लिए भी अच्छी है। तो एक सबौर परवल 1 है, दूसरा स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण रेखा है, तो ये सब जो है प्रजातियां जो उन्नतशील प्रजाति

0: प्रजातियां हैं, इन सब उन्नतशील प्रजातियों को लेकर के आप इसका कटिंग प्राप्त कर लें और इनको लगा करके इसकी आप खेती करें, ज्यादा उपजाऊ हैं और ज्यादा आपको उपज देंगी, आपके लिए लाभदायक होंगे।
1: सर अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कीट और व्याधि कौन कौन से होते हैं परवल में और कैसे बचे?
0: देखिए जनरल जो है एक जो है शुरू शुरू में जो सबसे कीट लगता है जिसको हम बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल, ये रेड ये तो सारे कुकुरबिट्स का एक पेस्ट हम इसको बोलते हैं, तो ये रेड पम्पकिन बीटल होता है ये जो जैसे, हालांकि इसमें तो कॉटिलीडर नहीं निकलता है, इससे निकलता है स्प्राउटिंग होती है, तने से स्प्राउटिंग होती है इसके, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुकुरबिट्स में एक प्रॉब्लम होती है, रेड पम्पकिन बीटल आता है जो कॉटिलीडर निकलती है उसी को खा जाता है, पौधा मर जाता है। लेकिन इस खेत में चूंकि हमारा चलता है स्टेम से निकलता है, इसलिए इसमें उसकी इनिशियल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम इसकी नहीं रहती। इसकी प्रॉब्लम फ्रूटिंग स्टेज में आकर के एक फ्रूट फ्लाई की समस्या सबसे ज़बरदस्त रहती है। ये फ्रूट फ्लाई क्या करती है, कभी कभी किसान भाई के प्रश्न आते हैं कि भाई हमारे फल तो लग रहा है लेकिन वो सड़ जा रहा है, पक जा रहा है, तो उसकी समस्या में हमने बताया कि जो फ्रूट फ्लाई है ये भी एक कारण है। एक तो कारण ये है कि हमने बताया कि आपने जो प्लांटिंग रेशियो अगर मेंटेन नहीं किया है, नर और मादा का अनुपात अगर मेंटेन नहीं किया है, तो एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं रहा, वो भी एक समस्या है। और दूसरी समस्या, जैसे ये फ्लावर आपका फ्रूट जब लगता है उसमें ये जो है फ्रूट फ्लाई है उसमें डंक मार देता है और फिर उसमें जो है सड़न पैदा होने लगती है, पीला पड़ जाता है, तो ये दोनों समस्याएं हैं। इसके निदान के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है फिरामोन ट्रैप, एक फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप ले लीजिए, 5-6 ट्रैप ले लीजिए, एक एकड़ के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है, और उसको जो है चारों कोने पे बीच में लगा दीजिए। वो क्या करता है कि जितने भी जो है ये जो है मेल जितने भी आपका जो है फ्रूट फ्लाइज है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, और उस फिरामोन ट्रैप में ल्यूर जो होता है वो जो है पॉइजनस होता है, ये जैसे उसमें मेल जाता है उसी में वो मर जाता है, तो इससे होता क्या उसकी प्रजनन जो है रुक जाती है और फिर बाद में वो फैल नहीं पाता है। तो एक तो फ्रूट फ्लाई की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या उसमें फ्रूट फ्लाई की आती है, दूसरा कभी कभी ये स्टेम ब्लाइट की भी समस्या आती है, स्टेम ब्लाइट कर स्टेम रॉट की जो है कभी कभी उसका तना भी सड़ने लगता है। रोग के बारे में अगर कहें तो कभी कभी उसके गमोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तने निकल जब पुराने हो जाते हैं तो वहाँ से गम जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में किसान भाई जो है कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लें, कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% यानी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उस पर 2-3 छिड़काव कर दें, उसका जो है कंट्रोल हो जाएगा, वो पौधा आपका अच्छी तरह से चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तीसरी इसमें जो है निमेटोड की है, ये हमने बताया कि ये पेरेनियल क्रॉप है, तो पेरेनियल क्रॉप है तो चूंकि एक साल लगाते हैं और ये ऐसी फसल है कि एक साल लगाते हैं और इसको 3 साल तक काटते हैं। देखिए बड़ी अच्छी चीज है कि एक साल लगाइए 3 साल काटिए, लेकिन 3 साल का और पहले साल की तुलना में दूसरे और तीसरे साल फलत ज्यादा अच्छी आती है, तो ये बात हमको ध्यान देखनी है कि जो है अगर पहले साल हम इसको लगाते हैं तो दूसरी साल उसका मेंटेनेंस करें, और दूसरी साल से जनरली जब 2 साल से ज्यादा होता है तो निमेटोड की समस्या शुरू हो जाती है। निमेटोड क्या होता है, उसके अंदर गांठ बना लेता है, उसके जड़ों में गांठ बना लेता है, और पौधे का जो सिस्टम होता है जो उस पर जिससे पानी ऊपर जाता है वो पूरा ब्लॉक कर देता है, जिससे खनिज लौड ऊपर जाता है सब उसको ब्लॉक कर देगा तो पौधे को मिलेगा नहीं, तो अंत में क्या होता है पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो इस तरह की समस्या जब आती है तो ये निमेट तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो नीम वाला जो है हमने बताया कि नीम की खली उसका आप प्रयोग करते रहें, फ्यूराडान भी समय समय पे जो है पर पौधे आप 10 से 15 ग्राम या 2 से 3 ग्राम आप जो है देते रहिए समय समय पे ताकि उसमें इस तरह की समस्या ना आए, और उसके मिट्टी को हमेशा उसके थोड़ा सा कभी जाँच करते भी रहिए कि इसमें निमेटोज की समस्या नहीं आ रही है। तीसरा है उसको रोटेशन भी करते रहे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए तो 3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक वहीं छोड़े रह रहे हैं, आप 3 साल के बाद फील्ड को बदल दीजिए, क्रॉप रोटेशन कर लीजिए। इससे करने से क्या होता है कि वो निमेटोड अपना घर नहीं बना पाता है और उसमें जो निमेटोड की समस्या नहीं रहती है, तो क्रॉप रोटेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये भी हमको देख लेना है। तो ये सब थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो इसमें जो आती हैं, बाकी तो ये जो है पेरेनियल क्रॉप है, चलती रहती है।
1: सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो परवल की खेती करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए परवल की खेती के लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा, पहली चीज तो ये है कि ये पेरेनियल क्रॉप है और एक बार जब लगाते हैं तो 8 से 9 महीने तक ये फसल देती है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहूंगा कि जब भी आप

0: इसको लगाइए, तो इसमें सेक्स रेशियो इसके आप प्लांटिंग रेशियो जो है जरूर मेंटेन रखिए, जो नौ संबंध है एक के अनुपात में होगा। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जब भी आप जो है इसको लगाते हैं तो 3 साल के बाद एक खेत से दूसरे खेत में इसको ट्रांसफर जरूर कर दें, और संभव है तो 100 ग्राम जो है नीम की खली उसमें जरूर दिया करें। इस तरह से अगर आप तकनीकी अपनाते हैं तो आपको जो है इससे लगभग जो है 250-300 के आसपास आपको उपज पैदावार मिल जाएगी, जो आपको 8 महीने तक देती है, और इमरजेंसी क्रॉप के रूप में भी आपको ये फ्रूट देती है, फल देती है, सब्जी देती है, तो इससे आप जो ज़्यादा से ज़्यादा आय कमा सकते हैं।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, अगर आप परवल की खेती करते हैं तो जिस तरीके से सर ने बताया उस तरीके से खेती कीजिए, और कुछ बातों का ध्यान रखें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें। और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो।

0: आसानी से की जा सकती है, परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
1: तो मैम, खरीफ प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
0: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो आसानी से किया जा सकता है, परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
1: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
0: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटाश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की 1/3 तथा स्फूर, पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में 2 बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने

0: प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी दो बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम, किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टिपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काट कर इन्हें छायादार पेड़ या

0: शेड में एक हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है, इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
6: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
5: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरी बेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत

काफी आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंतशुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान

रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते हैं। इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने। और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफ़ी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, दो चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये

दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं और खास तौर से चंदन और एलोवेरा तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती है, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है, और साथ ही सोने पे सुहागा ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जेल। तो गुलाब जेल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले, अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो ले। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे। जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहें। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें, और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है, या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए, और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है।

0: का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
8: कब से?
7: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
8: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
7: खांसी?
8: हाँ।
7: इसको तो एक आध महीना हो गया।
8: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
7: डॉक्टर, खांसी तो है।
8: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो TB हो सकता है।
7: TB?
8: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
7: ठीक है।
8: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। TB हारेगा, देश जीतेगा।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
0: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
9: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
0: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
10: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं विषय आप सभी के लिए खास, और वो है जलवायु अनुकूल खेती में तिल एक अच्छा विकल्प। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा सिन्हा, जो कि वैज्ञानिक हैं पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैडम स्वागत है आपका।
12: धन्यवाद मैडम। सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगी तिल की खेती जलवायु अनुकूल कैसे अच्छा एक विकल्प है, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है कुछ 5-7 सालों से, कि हमारा जलवायु बहुत निश्चित तौर पे नहीं होता है। कभी थोड़ी बारिश जल्दी हो जाती है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, या जिस समय में जो हो रहा था पहले वो अब नहीं हो रहा है। ऐसे मौसम में हम कौन सा खेती करें जिसमें हमको किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, और उनका जो जीवकोपार्जन का एक साधन कृषि है जो खास के उनको वो मेंटेन कर सकें और उसमें वो काम कर सकें। तो उसी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि तिल एक अच्छा विकल्प है जलवायु अनुकूल। आखिर ऐसा क्यों? उसका कारण है कि तिल गर्मा के अगर मौसम में थोड़ा आपको इरिगेशन देने में लेट हो जाए, कोई बात नहीं, वो मौसम आपका तिल जो है पौधा

कुछ उस पर असर नहीं होगा, वो आराम से सह लेता है। वो तिल एक थोड़ा हार्डी टाइप का प्लांट है। साथ ही तिल एक ऐसा चीज़ है जिसको आप थ्रू आउट ऑफ द ईयर ग्रो कर सकते हैं, मतलब पूरे मौसम में, खरीफ में, गर्मा में। और हम रबी की बात तो बिहार में नहीं करेंगे, लेकिन जैसे साउथ बिहार में होता, साउथ में होता है, वहाँ पे गर्मा में भी, रबी में भी ये फसल उगाया जाता है। तो गर्मा हमारे बिहार क्षेत्र के लिए, खरीफ और समर दो समय में हमारा तिल की खेती की जाती है मुख्य रूप से। और अभी किसान भाइयों को मैं गर्मा तिल के बारे में बताऊंगी, बिकॉज अभी गर्मा तिल जो लगा चुके हैं किसान भाई 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, उनका अभी हार्वेस्टिंग का समय आ रहा है। तो वो सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगी कि किसान भाइयों, तिल में आप लोग मुख्य रूप से उजले तिल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, काले तिल की तरफ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुणवत्ता के ख्याल से काला तिल उजले तिल से ज़्यादा बेहतर है। उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है, वो न्यूट्रिशनली मेडिसिनली ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा अच्छा है। और सफ़ेद तिल देखने में ज़्यादा अच्छा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है। काले तिल को आप अगर रखना चाहेंगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, किसी तरह का कीटाणु नहीं लगेगा, वो काफ़ी दिन तक चलता है। लेकिन आप अगर सफ़ेद तिल रखेंगे तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है, उसके रख रखाव में ज़्यादा व्यवस्था की बात है। और दूसरी बात जहाँ तक आपके सामने है कि हम लोग समर तिल, जिसको गर्मा तिल कहते हैं, उस पर ज़्यादा आजकल ध्यान दे रहे हैं। खरीफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ बारिश ज़्यादा हो गया तो फसल का काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है, कुछ कीट आ जाते हैं, कुछ रोग व्याधि आ जाते हैं, उससे फसल का उतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। तो हम लोग आजकल गर्मा तिल के, आज के दिन में हम लोग गर्मा के बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, आप लोग जो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में तिल लगाए हैं, उनका काटने का समय आ चुका है। और वो सभी किसान भाई अपने खेत पे देख पा रहे होंगे कि उनकी फसल किस तरह से है। अगर ज़रूरत है तो एक सिंचाई लगा के उसको छोड़ दें बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर वो अपना उसको हार्वेस्टिंग करा लें। दूसरा जो बात है कि गर्मा तिल लगाने का समय, अभी बहुत किसान भाइयों को पता नहीं है, तो वो मैं बताना चाहूँगी, जो नहीं लगाए हैं इस बार वो अगली बार अवश्य लगाएं, और 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में लगाएं। साथ ही इस तिल की खेती के पहले जो आप खेत की तैयारी करते हैं, उसको तैयारी में आप की मिट्टी कैसी है, वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। साथ में आप देखें, तिल जो है आपको अगर जल जमाव वाली स्थिति जहाँ है ज़मीन में, वहाँ तो बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि थोड़ा ये जल जमाव से, वाटर लॉगिंग से जल्दी अफेक्टेड हो जाता है, पौधा का बढ़वार उतना अच्छा नहीं होता है, उतनी अच्छी फसल नहीं होती है, या कभी कभी तो जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ मर भी जाता है पौधा और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो हम लोग पहले ऐसे जगह में लगाएंगे गर्मा तिल भी जहाँ की जल जमाव नहीं होता है। तो पहले हम लोग खेत को तैयार कर लेंगे, उसमें आप लोग 5 kg बीज अगर उपलब्ध है तो 1 hectare के लिए अच्छी तरह से वो 1 hectare ज़मीन को कवर कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में इसको ये भी ध्यान रखना है कि बीज जो है बहुत गहराई में ना रोपें, ज़्यादा गहराई होने से छोटा बीज है, दब गया मिट्टी से ज़्यादा, तो फिर उसको निकलने में समस्या आ सकती है। तो इस दो चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है कि वाटर लॉगिंग नहीं हो, ज़मीन में पानी का ये नहीं, जमाव नहीं हो, दूसरा ज़्यादा ज़मीन के नीचे तिल की बुआई नहीं हो। तीसरी बात हम लोग आते हैं कि इसमें खाद, ये तो जनरली मुख्य रूप से जो बचे हुए ज़मीन या मार्जिनल लैंड होते हैं उसी में अभी तक किसान भाई करते आ रहे हैं, कोई अपने मुख्य ज़मीन में नहीं करते हैं। तो इसमें थोड़ा खाद, हम लोग ज़्यादा खाद देते भी नहीं हैं, 40 kg आपको नेत्रजन, 20 kg फॉस्फोरस एंड 20 kg पोटास देते हैं 1 hectare ज़मीन के लिए। और ये इसमें गर्मा मौसम में तो कीड़ों का और कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन एक हमारे यहाँ आपको मुख्य रूप से आपको बताना चाहेंगे कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में थोड़ा सा आपको भुआ पिल्लू जिसको बोलते हैं, वो उसका प्रकोप आता है। अगर आप शुरू के

0: इनों में देख लिए और आपकी ज़्यादा रकवा नहीं है तो हम तो नहीं चाहेंगे कि आप कोई रासायनिक का उपयोग करें और उसको हाथ से तोड़ के डिस्कार्ड कर दें। कुछ प्लांट ज़्यादा जो डैमेज है उनको हटा दें, यही सबसे अच्छा है जो आपको ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाएगा और रसायन का उपयोग कम से कम हो पाएगा। तो इसकी उत्पादकता भी हमारे यहाँ गर्मा में आप कोई भी प्रभेद लगाएं 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। और इसकी जहाँ तक बिक्री की बात है और जहाँ तक इसके मार्केटिंग की बात है तो आप लोग सभी जानते हैं हाथों हाथ कैश क्रॉप की तरह है और ये करीब 110 से 140 केजी पर 140 रुपये पर केजी मतलब ये बिक्री हो जाता है मार्केट में। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा आमदनी है। कुछ किसान तो गया क्षेत्र के लोग काफ़ी मात्रा में लगा रहे हैं गर्मा तिल और वो लोग काफ़ी खुश हैं अपने तिल के बेचने के बाद जो उनको आमदनी हो रही है तो उनके चेहरे पे खुशी है कहीं भी। और कुछ मैं प्रभेद की बात करूं तो कुछ प्रभेद हैं जो अच्छे साबित हो रहे हैं। अगर काला प्रभेद आप लोग उपयोग करना चाहते हैं मैं तो कहूँगी काला आप लोग कम से कम अपने खाने के लिए या तेल के लिए ज़रूर करें, बहुत न्यूट्रिशियस है। अपने बच्चों को मालिश के लिए या घर में खाने के लिए उपयोग करें। तो सबौर तिल 1 एक प्रभेद हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया ही प्रभेद है, उसका उपयोग करें। उसके भी वही गुणवत्ता है। तिल 5 केजी प्रति हेक्टेयर इसका बीज दर लगेगा आपको और उत्पादकता 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और ये कुछ किसान भाइयों के द्वारा ही पता चला है GJT5 एंड GJT6 जो गुजरात की वैरायटी है, ये उजला तिल है और ये कुछ जगहों पे लगाया जा रहा है और हमने भी पाया है काफ़ी अच्छा इसका भी उत्पादन है और इसको लोग लगा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों आप लोग के लिए तो तिल की खेती अब वरदान की तरह है, इस पर सरकार का भी काफ़ी ये सरकार का काफ़ी ध्यान है और सरकार इसके लिए चाह भी रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएं और इसको लगाएं। और ये हमारे तेल अपने खाने के लिए या मार्केट में ये भेजने के लिए और इसके कई तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं जो हम लोग हर वर्ष खासकर ठंड के मौसम में उपयोग करते हैं। नवंबर दिसंबर से फरवरी तक जो गया का तिलकुट है, नरसा और भी कई उत्पाद हैं और आजकल तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े दुकानों में भी इसका उपयोग हो रहा है मिठाइयों को बनाने में, चिक्की बनाने में। तो ऐसे आप लोग अब मार्केटिंग से ना घबराएं कि मार्केटिंग नहीं होगी या इसकी बिक्री नहीं हो पाएगी, हमारी आमदनी घट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसान भाइयों आप लोगों से मेरा आग्रह है कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पौष्टिक चीज़ है, इस तिल के तेल को आप लोग खाएं, तिल का उपयोग करें अपने खाने में और अपने बच्चों को दें, इससे उनके भी न्यूट्रिशंस का भी पूरा होगा। तो आप लोगों को किसान भाइयों इस तरह से एक मैंने तिल की बताया।
1: किसान भाइयों यहाँ पर आज आपने जाना जलवायु अनुकूल खेती में तिल की खेती एक अच्छा विकल्प और इसमें बहुत सारी बातें मैडम ने बताई हैं। तो आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी के लिए लाभदायक होगा। अगले दिन आप सभी से मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
7: किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं। यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से, कैसे इसे उगाते हैं उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है। वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियाँ जो हैं, जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियाँ हैं, उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की, उस समय नहीं, उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, और आज हम जानेंगे कि क्या है बेमौसमी सब्जियाँ और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है। तो आज का विषय है हमारा, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें। तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर RB वर्मा है, एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं?
8: देखिए, सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं। जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में, और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं। परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियां। जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें। तो जो अपने सीजन से हटके अगर हम कोई चीज उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है। मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता, जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता है उस सीजन में, और ज़्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको

0: जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
1: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाजार सब्जियों को खरीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज्यादा होते हैं, यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में खरीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं हम उन्हें खरीदने के लिए तो दाम कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके।
0: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं, और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी।
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज भारत जो है विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा सब्जी उत्पादक देश है।
1: जी,
0: इसके दूसरा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो है इसकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन में अभी हम पीछे हैं, और देश की बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या भी आप समझ रहे हैं कि 132 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है।
1: जी जी।
0: इनके सब्जी की खपत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारी खेती का जो है आंकड़ा जो है सिकुड़ रहा है, हमारे सारे संसाधन जहां सिकुड़ रहे हैं वहां, और एक तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सीमित संसाधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी एक ही सब्जी की भरमार हो जाती है।
1: जी जी।
0: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
1: प्राइस कम हो जाता है।
0: उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे ज्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता दी, जैसे कॉलीफ्लावर फूल गोभी है।
1: जी जी।
0: फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर अगेती कर लेते हैं
1: पहले,
0: तो ये थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं मौसम से थोड़ा सा पहले कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि 50-60 रुपए गोभी बिक जाती है।
1: हाँ, यानी कि उसके मौसम आने से
0: थोड़ा सा पहले आपने कर लिया तो भी आपको जो उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाजार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये जरूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को
1: अपनावा
0: दें। और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है। संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की जरूरत है और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को, जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए, और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन पर डे पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है, और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पे जाना हमारा जो है वो ज्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
0: बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीजन बेस्ड होती हैं। गर्मी के समय में गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां, और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियां उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी। और वो

0: तकनीकी एक तरह से जो आपका जो संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ ले जाती है, और वो तकनीकी अपना करके जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें, बेमौसमी सब्जियों का एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे, तो उस

0: जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों की खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और हम जैसा
1: चैलेंजिंग हो जाता है,
0: चैलेंजिंग होता है, और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है, और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंज है, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जिसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है, वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, और जिस क्रॉप के लिए, जमने के लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
1: ज्यादा होती है,
0: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ड कर सकते हैं, तो उसको एफर्ड मतलब उसको एडाप्ट करें, जो किसान भाई उसको एडाप्ट नहीं कर सकते हैं, एफर्ड नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सके, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है, वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली, और जो कूलिंग, हाँ, ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर है, हम उसको ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर है हम उसको हटा देते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
1: लो
0: हो जाती है। तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं, तो उसको ले जाकर के अपना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा ये होता है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो इस
1: हमारे छोटे किसान,
0: छोटे किसान है, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का।
1: अच्छा।
0: एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अभी हमने फूलगोभी की बात की, वैसे
1: हाँ।
0: हम अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी, कद्दू की जिसकी हम बात करते हैं, कद्दू को
1: ठंडी
0: का मौसम
1: आने से पहले, कुछ
0: गर्मी आने से पहले,
1: अच्छा,
0: कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च में, तो सबके मार्च अप्रैल में जो है सारा का कद्दू जो है मार्केट में आ जाता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: जब सारा का कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में कद्दू का रेट जो है 2 रुपए 1 रुपए हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीने तक अगर निकल गया फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए लौकी तक,
1: मौसम में उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती है।
0: तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें,
1: हाँ,
0: थोड़ा सा हमने
1: हाँ।
0: क्या किया, ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया, दिसंबर में ही लगा लिया
1: जी।
0: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस, जो किसान भाई जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उसको आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
1: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उस ज्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज्यादा उचित रहेगी?
0: हाँ, ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई है उनके लिए सबसे ज्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये लो टनल पॉली हाउस को इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और इस लो टनल पॉली हाउस को अडॉप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम, उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
1: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या

0: उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को उगाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में, और इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु के, जैसा कि हमारे सर ने बताया यहाँ पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है, कहें तो दुगुना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें, हाँ, तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई प्रोटेक्टेड या संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहते हैं, बेमौसमी सब्जियां उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत तो दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की, थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
0: मिट्टी
1: और,
0: चाहिए,
1: हाँ, अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है, या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज,
0: नवसिखिए नहीं होना,
1: हाँ,
0: चाहिए बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए
1: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
0: जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हें उगाइए।
1: दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, हाई प्राइस वैल्यू जिसको कहते हैं, लो वैल्यू में हाई कॉस्ट जो है जो वैल्यू कहते हैं, जिसको इसे मान लिया आपका, इसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है तो कुछ, मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
0: जी, जी, जी।
1: नहीं मिलता है, तो ऐसे हाई
0: हर साल, मतलब पूरे साल वो बिकती है,
1: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों को कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
0: नहीं
1: होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे, और सीमित बढ़वार वाली सब्जियां में आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा, तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इसे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप जा रहे हैं या उसको बेमौसमी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप पूरी तरह से ले लें। जब तक आप पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान नहीं लेंगे तो बात वही होगी कि आप जो है कुछ भी, मतलब हाँ कुछ भी, हाँ आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको
0: नहीं हुआ।
1: तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के, कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहां भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, गवर्नमेंट संस्थानों में भी आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है।
0: जी जी।
1: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, को आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है
0: जी।
1: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जी कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहाँ लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपए का उस पर खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी
0: जी,
1: 15,000 रुपए आपको लगाना है। जहाँ 2,00,000-2,50,000 रुपए खर्च आते हैं,
0: 50% सब्सिडी सरकार की,
1: 50% सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा।

0: की जा रही है, आपको बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
1: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है। 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी कि बेमौसमी सब्जियां अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हैं इसके।
0: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है, जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले आते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गई, दूसरी उसी सब्जी से सेम सब्जी को अगर आपने बेमौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है, और कम क्षेत्रफल से देखिए ना आपका कितना जो है
1: लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट,
0: हाँ लो वॉल्यूम हाई क्रॉप तो लेते हाई वॉल्यूम आप जो है और लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं, और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना कम क्षेत्रफल में आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर एक एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है, 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पोली हाउस बनाया है उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है, उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती है,
1: जी जी,
0: बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं तो मेन सीजन में हमारे फूड की क्वालिटी खराब हो जाती है, लेकिन अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं तो इसमें आपका जो है क्वालिटी प्रोड्यूस, क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज्यादा होता है, जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके प्रोडक्ट का जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल गया, आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त पैसा निकाल लिया जो है, ये तमाम सारे फायदे हैं इसके जो है।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना ना क्या क्या फायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फायदे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं, और उन्होंने फायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके, और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना, जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाइयों और हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है।

0: समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
2: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
1: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के,
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर,
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं, उन्हें बता दें कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब

से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर एफएमडी यानी कि खुरपका मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
0: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी

0: शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
1: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
1: कोडागू को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागू जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागू ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागू में हर साल कोडागू हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
1: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
1: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं के, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि विनोद

0: सुंदर कविता से।
1: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
0: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
1: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
0: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
1: कैसे बना हिमालय।
0: आज रिद्धि,
1: नव्या
0: और रिदित
1: सब बहुत खुश है
0: क्योंकि उनका परिवार
1: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
2: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
3: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
2: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
3: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
2: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
3: बहुत मजा आएगा।
0: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
1: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
0: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
1: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
0: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
1: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
0: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
0: नव्या, अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको, मैं बताती हूँ।
0: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
0: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
2: टैथिस महासागर।
0: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो विशाल और शांत महासागर, ये एक प्राचीन महासागर

0: अगर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथित सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई।
2: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे, और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथित सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथित सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस

0: प्रकार का पर्वत है? दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना? कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचान कर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं।

0: तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
1: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
0: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
2: ये किस तरह की मूर्ति है?
3: ये किस तरह की मूर्ति है?
4: ऐसी मूर्ति तो मैंने
5: वाव वंडरफुल।
1: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
0: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
1: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
0: लोग सोचने लगे, भलाई कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
1: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
2: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
3: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
0: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
1: उस मूर्तिकार ने बताया,
6: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैला कर उड़ जाता है।
0: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
7: ग्रे मार्वेलस।
3: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
7: वंडरफुल।
8: हाँ हाँ हम सहमत हैं।
0: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
6: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है। यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
0: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
1: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
0: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
9: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श

वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी। आलेख, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।

0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
1: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज उन किसान भाई बहनों के लिए बातें होने वाली है जो श्री अन्न की खेती करते हैं, और वो परेशान होते हैं कि श्री अन्न में बहुत अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं और किस प्रकार से उन कीटों को पहचाने, उनका प्रबंधन कैसे करें। ये सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण कुमारी। आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम आप हमें ये बताइए कि श्री अन्न के कौन कौन से कीट होते हैं?
6: श्री अन्न में जो कि काफ़ी ही पोषक अनाज है, और इसमें जो है ज्वार, बाजरा, रागी और कंगनी इत्यादि फसल आते हैं, और लगभग इन सभी पर एक ही प्रकार के कीट लगते हैं। और ये जो कीट हैं वो ज्वार का तना छेदक, प्ररोह मक्खी, बाली बग, पत्र लपेटक, गुलाबी तना छेदक, लाही एवं बाली मिर्च, ये जो कीट हैं, और ये सारे कीट जो हैं जितने भी श्री अन्न हैं वो उन पे इसका प्रकोप होता है।
0: जी मैम, तो जो आपने अभी कीटों के नाम बताए उन कीटों के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। और मैम शुरुआत करते हैं ज्वार के तना छेदक कीट के बारे में, आप हमें बताइए शुरुआत में।
6: ज्वार का तना छेदक कीट, वो उसका भी जो वयस्क होता है वो मौत होता है, जिसे पतंगा भी कहते हैं, और ये हल्के पीले भूरे रंग का होता है। इसके अगले पंख तिनके के रंग के होते हैं, यानी क्रीम कलर का, और इसके जो पंख होते हैं उसके अंतिम छोर पर दो पंक्ति में काले बिंदु पाए जाते हैं, और इसका जो नर है उसके पिछले पंख पर जो धुएंधार कलर का, मतलब थोड़ा डल कलर का होता है, और मादा में सफ़ेद कलर का होता है, और मादा के उदर भाग के अंतिम भाग में बालों का एक गुच्छा होता है। इस तरह से इसकी वो पहचान करते हैं कि ये ज्वार तना छेदक है। और इसका ये जो ज्वार तना छेदक है उसका जो पिल्लू है वही इसको हानि पहुंचाता है, और इस जो ये पिल्लू है वो पत्तियों को खुरच खुरच कर खाता है, बाद में फिर यही सुई के समान छेद करके खाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे जो तना है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ज़मीन के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से बीच का जो होता है भाग उसको खाते हैं, और जिससे कि पत्तियां सूख जाती हैं, और जिसे खींचने पर सूखी हुई जो पत्ती होती है बीच वाली उसको

खींचने पर वो आसानी से खींचा जाता है। ये इसको डेड हर्ट कहते हैं या मृत कल्ला भी इसको कहते हैं। और ये जो इस तरह से जो डेड हर्ट बन जाता है और तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये गांठ के से टूटकर गिर जाते हैं। और इसके बचाव हेतु जो है कीट ग्रस्त पौधों को जिसमें

0: जो पिल्लू हैं और पीपा हैं वो उसमें रहते हैं। इसलिए कटाई के बाद जिस खेत में अगर इसका प्रकोप हो गया है तो कटाई के बाद जो बचा हुआ रेजिड्यू है, ठूंट है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो इसके वयस्क हैं उस पर आकर्षित हों, और वो चूँकि लाइट ट्रैप के नीचे पानी आप रख दें तो उसमें वो गिरकर मर जाएंगे। फिर तना छेदक का जो ये कीट से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप भी, जो 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, और प्रकोप अधिक हो जाए तो 2 से 3 पत्ती का जब पौधा हो जाए तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करें, या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, और इस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं।
1: जी मैम, अब मैम आप हमें प्ररोह मक्खी के बारे में बताइए कि प्ररोह मक्खी की क्या पहचान होती है और इसके प्रबंधन के लिए क्या करें।
0: हाँ, ये जो प्ररोह मक्खी है इसे सूट फ्लाई भी कहते हैं, और ये एक तरह की मक्खी है जो घरेलू मक्खी होती है उससे आकार में थोड़ी छोटी होती है, और इसमें जो है इसके बॉडी के ऊपर स्पाइन नहीं होता है, थोड़ा मोटा बाल, घना बाल पाया जाता है, और इसका जो नर होता है उसका एंटीना जो है पीला कलर का होता है, ये इसकी पहचान है। और ये इसका जो पिल्लू होता है वो तना में छेद कर वो खाता है, और ये भी तना में अंदर जाकर बीच के पार्ट को खाता है, और जिससे कि ऊपर वाली पत्ती सूख जाती है, जो ऊपर में जो बीच की पत्ती है, तो इसलिए ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, ये ज्वार तना छेदक जो है वो भी डेड हर्ट काउज करता है, और प्ररोह मक्खी ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो प्ररोह मक्खी है वो जब पौधे करीब 6 से 8 इंच तक के रहते हैं तभी तक उसका प्रकोप होता है, उसके बाद नहीं होता, और ज्वार तना छेदक का थ्रू आउट द पूरे फसल तक इसका प्रकोप होता रहता है। दोनों में यही अंतर है। और इस कीट से बचाव हेतु जिन पौधों में जो डेड हर्ट पाया गया हो तो उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, और बीजोपचार भी करना चाहिए इस कीट से बचने के लिए। तो क्लोरपाइरीफॉस 3 ml या इमिडाक्लोप्रिड, दोनों में से कोई एक कीटनाशी से बीजोपचार कर सकते हैं। तो अगर इमिडाक्लोप्रिड लेंगे तो इमिडाक्लोप्रिड का 48 FS का 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए, और प्रकोप खड़ी फसल पर अधिक हो जाए तो रासायनिक कीटनाशी में फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में, या डेल्टा मेथ्रिन का 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम ज्वार बाली कीट से क्या हानि होती है और इससे कैसे बचा जाए?
0: ज्वार बाली बग ये जो है ये पतले हरे रंग का होता है, कभी कभी ये धान के ऊपर भी दिखाई देता है, और इसका शरीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और ये जो है ज्वार धान पे भी, मक्का रागी इत्यादि को भी हानि पहुंचाते हैं, और ये जो है इसके वयस्क और जो इसके शिशु होते हैं निम्फ इसको बोलते हैं, वयस्क और इसके जो वयस्क होते हैं और निम्फ तो दोनों एक समान होते हैं, केवल निम्फ में इसके पंख नहीं होते हैं और वयस्क में पंख हो जाते हैं, बाकी रंग दोनों का हरा ही होता है, और ये जो है दोनों वयस्क और निम्फ यानी शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूस कर इसको बर्बाद करते हैं, और जिससे पत्तियां सूख जाती हैं, और किसी किसी में बाली में तो दाने ही नहीं लगते हैं। और इसके बचाव हेतु फसल पर नीम बीज चूर्ण, जो नीम का बीज है उसका पाउडर बनाकर भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml या थायोमेथेक्सम 25 WG का 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम पत्र लपेटक कीट किस प्रकार के होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या करें?
0: पत्र लपेट

0: कीट जो है ये भी इसका वयस्क जो है वो मौत पतंगा होता है, और जिसके पंखों पर भूरी धारियां होती हैं और सफेद जो शरीर इसका सफेद होता है और उस पे भी कुछ जो है हल्की भूरी धारियां होती हैं, यानी इसके पंख और शरीर दोनों पे धारियां होती हैं। और ये भी ज्वार है, मक्का है, बाजरा, इवन जो गन्ना है उसको भी हानि पहुंचाते हैं। और इसके जो पिल्लू हैं वो भी शुरू में इसके पत्ती को खुरच खुरच कर खाते हैं, बाद में जैसे जैसे ये जो पिल्लू के साइज मतलब बढ़ते हैं, इस पिल्लू में जो इसका जैसे विकास होता है तो पत्तियों को क्या करते हैं कि मोड़ करके रेशम सी डोरी जैसा पत्तियों को मोड़ देते हैं और उसके अंदर घुसकर खाते रहते हैं। और पत्तियों की जो नोक होती है वो सूख जाती हैं और पत्तियां सफ़ेद भी पड़ जाती हैं और देखने से जैसे मालूम होता है कि वो कागज़ हैं, क्योंकि अंदर अंदर वो क्लोरोफिल को खा जाते हैं। और एक पिल्लू लगभग 5 से 6 पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाती हैं। और इस कीट से बचाव हेतु जो मुड़ी हुई पत्तियां हैं, जो लपेटी हुई जो पत्तियां दिखाई देती हैं, उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और अगर ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में नीम बीज चूर्ण का भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में फिप्रोनिल 1 ml का 3 प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम एक और कीट लगता है जिसे कहते हैं गुलाबी तना छेदक कीट।
0: हाँ, ये भी तना छेदक जो है वो जैसे ज्वार का जो तना छेदक कीट है उसी की तरह ये भी हानि पहुंचाता है। अंतर ये है कि इसका जो पिल्लू होता है वो गुलाबी रंग का होता है और ये भी उसी तरह से शुरू में तो इसके जो है पिल्लू पत्तियों को थोड़ा सा खुरच कर खाते हैं, जैसे ये बड़े हो जाते हैं तने के अंदर घुसकर उसके बीच वाले पार्ट को खाते हैं और इस तरह से पत्तियां सूख जाती हैं और डेड हार्ट ये भी काउज करता है। तो इसका ये भी जो है ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, जई, गेहूं में भी दिखाई देता है कभी कभी, वो तो धान में भी ये इसको भी हानि पहुंचाता है। और ये जो है जहां से ये प्रवेश करता है वहां पर इस पिल्लू का मल दिखाई देता है और इस तरह से ये जो जिस पौधे पे वो खाते हैं वहाँ वो पीले पड़ जाते हैं, पौधों की बढ़वार जो है वो भी रुक जाती है और जब अंदर के पार्ट को खाते हैं तो ये भी जो है डेड हर्ट जो मृत केंद्र बनाते हैं जिसे खींचने से आसानी से खींचा जाता है, ये इसकी पहचान है। और इसका बचाव के लिए मई जून महीने में गहरी जुताई कर देना चाहिए और ये लाइट ट्रैप जो है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक से बचाव हेतु ट्रैप भी लगाना चाहिए जो 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से इसको लगाना चाहिए। और अगर कीटनाशी का प्रयोग करना हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर में या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो मिक्सचर कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम लाही कीट की पहचान कैसे करें?
0: लाही कीट ये हरे काले रंग का जू जैसा उसको कहते हैं, ये पौधों का जू है और ये माहू मेचा एफिड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है अचानक से 6-7 दिन के अंदर में इसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि जो है ये 6 से 7 दिन में इसके वयस्क बन जाते हैं और फिर ये इस तरह से वो इसकी जो है वो अंडे नहीं देती है बल्कि मतलब शिशु ही पैदा करते हैं, इसलिए इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये तनों के निचले हिस्से में समूह में रहते हैं, तनों से रस चूसते हैं, पत्तियों से भी रस चूसते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। विकसित अवस्था में जब इसका प्रकोप होता है तो जब दाने सिकुड़ कर छोटे रह जाते हैं, दाने कभी कभी लगते भी नहीं हैं, इस तरह से इसका जो है वो हानि करते हैं। और इसका बचाव के लिए ये एक लेडी बर्ड बिटल जो कि नारंगी रंग का होता है।

0: है, इस पे काले धब्बे भी होते हैं या काले लहरदार धब्बे होते हैं, ये इस एफिड को खाते हैं। यानी ये लेडी बर्ड बेटल जो है वो मित्र कीट है, ये जो एफिड है, लाही है, जो चूसकर जो खा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, उनको ये खाते हैं। तो इनको देखने जब भी खेत में अगर रहे तो इसका बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए रासायनिक कीटनाशी का कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मित्र कीट ये जो लेडी बर्ड बीटल है जो इन लाहियों को खाते हैं वो मर जाएंगे। तो इसके लिए अगर छिड़काव करना भी है तो कोई भी नीम आधारित दवा का 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या येल्लो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, ये कोई डब्बा हो उसको पेंट करके और उसको लकड़ी गाड़ कर खेत में और उसके उस पर उल्टा लगा देना चाहिए, जिससे कि उस पर ग्रीस पे वो आकर जो है लाही सट जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा उपाय है
1: जी। मैम बाली मिर्च ये श्रीयन की फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: हाँ, ये जो मिज है वो ये भी छोटी मक्खी के जैसा होता है। छोटी मक्खी या मच्छर कहें, दोनों के बीच का जैसा वो छोटा होता है, और इस कीट का जो उदर भाग होता है वो चमकीला नारंगी रंग का होता है और पंख मक्खी जैसा पारदर्शी ही होता है। और ये जो मिज है वो फूले पर फूलों पर अंडे देते हैं और फूलों के पराग गिर जाते हैं, दानों से उजले पीपा के कोष दिखाई देते हैं, मतलब इस जो पिल्लू होते हैं वो बाद में पीपा बनते हैं तो उसका जो कोष होता है वो भी दानों के जगह दिखाई देता है, और जो पिल्लू दानों को खाते हैं वो दाने खकरी हो जाते हैं। और बाली मिर्च से बचाव के लिए लाइट ट्रैप भी लगाना चाहिए, नीम आधारित कीटनाशी नीम बीज चूर्ण अर्क का 5% का छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इंडोक्साकार्ब 14.5 SC का 0.5 ml यानी आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% दवा का जो कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, तो ये आपने जिस प्रकार से बताया कि श्रीयन में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा।
1: तो उम्मीद है हमारे किसान भाई बहन जो श्री अन्न की खेती करते हैं उनके लिए हमारी आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, जो भी बातें मैम ने बताई उन बातों का आप ध्यान रखें, और साथ ही जिस प्रकार से मैम ने कहा कि हमारे कुछ जो कीट होते हैं वो मित्र कीट भी होते हैं, तो उन कीटों का बचाव करते हुए ही आपको प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया,
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल

0: को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माता पीट पर रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं, और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं, उन्हें बता दें कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें, और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें, और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें, और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है, तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 FM ग्रीन पर और मैं हूं ईश्वर चंद्रा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसे हम आयुष्मान PMJAY के नाम से भी जानते हैं। यह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 9 करोड़ से ज्यादा परिवार इसके दायरे में आते हैं और हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। आयुष्मान PMJAY योजना गरीब परिवारों को महंगे इलाज के कर्ज से बचाती है और समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराती है। आज के एपिसोड में हम खास तौर पर जानेंगे कि बुजुर्गों के लिए इस योजना में क्या क्या सुविधाएं हैं। साथ ही बात करेंगे कि आशा और ANM जैसी स्वास्थ्य कर्मी इसमें क्या भूमिका निभा सकती हैं, अस्पतालों में क्या सहूलियत मिलती है और मरीजों को किस किस तरह की फॉलोअप केयर दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं टीकन भाभी।
1: आरजे ईश्वर, धन्यवाद। आज बुजुर्गों की बात हो रही है तो हमारे गांव के केदार बाबा की याद आ गई। बाबा की उम्र होगी 72-73 साल। कुछ समय पहले तक खेती करते थे पर अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता था। कुछ महीनों से सीने में दर्द रहता था, सांस भी जल्दी फूल जाती थी, पर बाबा सोचते रहे कि इलाज कैसे कराए, पैसा कहाँ से आएगा। एक दिन हालात ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। अस्पताल पहुँचते ही कार्ड स्कैन हुआ और तुरंत जांच शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि दिल की नसें ब्लॉक हो रही है। समय रहते उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई और 1 रुपया भी नहीं लगा। पूरा खर्च आयुष्मान योजना ने उठाया। बाबा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बिना पैसे के भी इतना बड़ा इलाज हो सकता है।
0: अरे टीकन भाभी, यहाँ एक बात और साफ कर दीजिए कि आयुष्मान PMJ में 70 वर्ष से उम्र की ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति को देखकर शामिल किया जाता है और बगैर शर्त इसका इलाज होता है।
1: देखिए, आयुष्मान PMJY

0: में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति देखे बिना ही लाभ दिया जाता है। मतलब चाहे बुजुर्ग गरीब हो या ठीक ठाक हाल वाले, उनकी उम्र 70 साल पार हो गई तो उन्हें सीधे आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल सकता है। तो 70 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों के लिए ये योजना किसी सहारे से कम नहीं है, बस उनका इलाज जल्दी और अच्छे अस्पताल में हो जाए, यही इस योजना का मकसद है।
1: ठीक है भाभी, बुजुर्गों की इस योजना में किन किन बीमारियों का इलाज होता है, साथ ही ये भी बताएं कि क्या इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में या फिर निजी अस्पताल में भी कराया जा सकता है।
0: आरजे ईश्वर, आयुष्मान पीएमजेवाई में बुजुर्गों का सिर्फ बुखार खांसी वाला इलाज ही नहीं होता, बल्कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की खराबी, मोतियाबिंद, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे कई गंभीर रोगों का भी इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। प्रोस्टेट का कैंसर, घुटना बदलवाना हो, कुल्हा रिप्लेस करना हो या फिर न्यूरो की बड़ी सर्जरी, ये सब भी इस योजना में शामिल है। और जहां तक अस्पताल का सवाल है तो इस योजना में देश भर के हजारों निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। मरीज को बस आयुष्मान कार्ड लेकर जाना होता है, अस्पताल में कार्ड स्कैन हुआ नहीं कि कैशलेस और पेपरलेस इलाज शुरू हो जाता है।
1: टीकन भाभी, एक खास बात तो पूछना ही भूल गया, छोटे बच्चों का आयुष्मान पीएमजेएवाई में इलाज कैसे होता है, क्या उनके लिए भी अलग कार्ड बनवाना पड़ता है?
0: अरे नहीं आरजे ईश्वर, छोटे बच्चों का अलग कार्ड नहीं बनवाना पड़ता। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे अपने माता पिता के आयुष्मान कार्ड पर ही इलाज करवा सकते हैं, यानी इस उम्र के बच्चे के लिए अलग कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती है। बस माता या पिता अपना आयुष्मान कार्ड दिखाएं और बच्चे का पूरा इलाज आराम से हो जाता है।
1: तो टीकन भाभी, अब अगला सवाल ये है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कौन कौन सी चीजें इस योजना में शामिल है, क्या सिर्फ दवाइयां मिलती हैं या टेस्ट, खाना, बेड वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत आता है?
0: असल में इस योजना की खासियत यही है कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो इलाज से लेकर दवा तक सब कुछ कवर होता है। मान लीजिए किसी को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई, अब भर्ती होने से 3 दिन पहले डॉक्टर का परामर्श, जरूरी टेस्ट और दवाई, ये सभी योजना के अंदर आ जाते हैं। मतलब मरीज को भर्ती होने से पहले जो जाँच करानी होती है उसका भी पैसा नहीं लगता। फिर जब अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं तो उसका पूरा इलाज योजना के तहत ही चलता है। टेस्ट हो, एक्सरे हो, खून की रिपोर्ट हो, दवाइयां हो, इंजेक्शन हो, सब आयुष्मान पीएमजेवाई में शामिल है। अस्पताल का बेड, आईसीयू या सामान्य वार्ड में रहना, नर्सिंग चार्ज, खान पान सब फ्री है। तो सीधी बात यह है कि पीएमजेवाई योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले, भर्ती के दौरान और इलाज चलने तक हर जरूरी खर्च उठाती है।
1: वाह, बहुत बढ़िया टिकन भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब एक बात और कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी क्या ये योजना मदद करती है?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल करती है। मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक फॉलो अप इलाज भी आयुष्मान पीएमजेवाई में ही मिलता है, जैसे दोबारा चेकअप, दवाइयाँ या कोई छोटी मोटी जाँच, यानी इलाज के बाद भी चिंता की कोई जरूरत नहीं है।
1: तो भाभी, क्या आयुष्मान योजना पूरे देश में चलती है, मतलब अगर कोई अपने राज्य से बाहर चला जाए तब भी इलाज संभव हो सकता है क्या?
0: अरे हाँ आरजे ईश्वर, बिल्कुल, यही तो इस योजना की खास बात है। आयुष्मान कार्ड वाले लोग भारत के किसी भी लिस्टेड अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, चाहे वे अपने राज्य में हो या किसी दूसरे राज्य में। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर या फिर जो रिश्तेदारों से मिलने बाहर जाते हैं और वहाँ बीमार पड़ गए। मसलन अगर उत्तर प्रदेश का कोई परिवार दिल्ली, महाराष्ट्र या तमिलनाडु कहीं भी हो तो वहाँ भी इलाज फ्री में करवा सकता है।
1: बिल्कुल। तो टिकन भाभी, एक और बात मेरे भेजे में आ रही है कि सेहत की रक्षा में ANM और आशा की अहम भूमिका होती है, तो क्या आयुष्मान पीएमजेएवाई में भी उनकी कोई भूमिका होती है?
0: देखिए, आशा और ANM की आयुष्मान पीएमजेएवाई में खास जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले तो ये अपने इलाके के सभी परिवार का रिकॉर्ड बनाती है जो आयुष्मान योजना के दायरे में आते हैं। ई कवच ऐप में एक परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रजिस्टर होता है, उसमें परिवार का नाम, उसकी आयुष्मान कार्ड वाली जानकारी सब कुछ भरना पड़ता है। फिर ANM और आशा दीदी घर घर जाकर लोगों को आयुष्मान PMJY योजना के बारे में समझाती है, कौन पात्र है, कार्ड क्यों जरूरी है, इसे इलाज कैसे मिलेगा, सब एकदम आसान भाषा में यही लोग समझाती हैं और लोगों को बताती हैं इनके महत्व के बारे में। गांव की मीटिंग में भी अक्सर ये बात

0: बातें बताती रहती हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ANM और आशा का सबसे जरूरी काम तो तब शुरू होता है जब किसी मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। ये दीदियाँ एक हफ्ते के अंदर किसी भी मरीज से मिलने जरूर पहुंच जाती है। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी है, विजिट की जो तारीख बताई गई है, सब चेक करती है और मरीज को ठीक से समझाती है सब कुछ। अगर किसी नवजात को स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट से डिस्चार्ज किया गया हो तो उसकी देखभाल में आशा दीदी तो और भी ज्यादा सतर्क रहती है। माँ को हर छोटी बड़ी बात समझाना बेहद जरूरी होता है। यदि मरीज को अचानक कोई समस्या हो जाए तो तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुँचाने का इंतजाम भी आशा दीदी ही करती है। इनका काम यहीं खत्म नहीं होता, ये हर मरीज का रिकॉर्ड रखती हैं, जैसे नाम, आयुष्मान कार्ड नंबर, किस अस्पताल में भर्ती था, कब छुट्टी मिली, अगला फॉलो अप कब करना है, सब लिख कर रखती हैं ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। वैसे भाभी, आजकल सब कुछ मोबाइल पर हो जाता है, तो आयुष्मान योजना में भी क्या कोई ऑनलाइन सुविधा है जिससे लोगों को घर बैठे मदद मिल सके?
0: हाँ राजेश्वर, आयुष्मान योजना तो ऑनलाइन सुविधा में भी बहुत आगे है। इसमें ऑनलाइन समाधान बहुत आसान बना दिया गया है। सबसे पहले तो 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर 14555 यानी कि 14555, किसी भी समय कॉल करिए और अपनी समस्या बता दीजिए, तुरंत जवाब मिल जाता है। फिर इसकी एक वेबसाइट भी तो है, www.pmjy.gov.in। आदमी घर बैठे मोबाइल से ही चेक कर सकता है कि उसका नाम इस सूची में है या नहीं है और कौन कौन से अस्पताल इसमें जुड़े हैं। वेबसाइट पर एक चैट बॉट भी है जिसमें बस आप अपना सवाल टाइप कीजिए और तुरंत जानकारी सामने आ जाती है, जैसे किस अस्पताल में इलाज मिलेगा, कौन सी बीमारी कवर की जाती है, आपके कार्ड की स्थिति क्या है, सब मिनटों में पता चल जाता है। यानी अब लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मोबाइल उठाइए और जरूरी जानकारी वहीं मिल जाएगी।
1: अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात। तो टिकन भाभी, अगर किसी को अपने आसपास आयुष्मान PMJAY का अस्पताल खोजना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है?
0: इसके लिए आयुष्मान सारथी मोबाइल ऐप है ना, ये सबसे बढ़िया ऐप है इसके लिए। इस ऐप में सब कुछ है। पहले ऐप खोलें, इसके बाद अपनी पसंद की भाषा चुन लें, फिर जिस तरह की बीमारी के लिए विशेषज्ञ चाहिए वो विशेषज्ञता चुन लें। अब आप चाहें तो जिले के आधार पर खोजें या फिर अपने आसपास की दूरी के आधार पर अस्पताल चुन लें। जैसे ही आप अस्पताल चुनते हैं तुरंत गूगल मैप्स खुल जाता है। अब आप रास्ते का पालन कैसे करेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, ये मैप आपको बता देता है। आयुष्मान सारथी ऐप हर समय हर जगह नजदीकी अस्पताल दिखाकर लोगों की मदद करता है।
1: हाँ, तो भागलपुर से जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें लागू होती है। वो भी अपने आसपास के कौन से अस्पताल इसमें रजिस्टर्ड हैं, कौन से अस्पताल तक उनको सुविधा मिल सकती है, किस इलाज का कहाँ पर आयुष्मान कार्ड के तहत आपको इलाज संभव है, ये सब कुछ इन्हीं विधि द्वारा आप देख सकते हैं। तो टिकन भाभी, एक और बात कि आयुष्मान PMJAY तो बड़ी अच्छी योजना है, जैसा कि आपने इसके पूरी व्याख्यान की। आप तो रोज लोगों से मिलती हैं, तो लोगों को इससे क्या फायदा हुआ, मतलब जमीनी स्तर पर इस योजना से क्या बदलाव आया, कुछ इसके बारे में बताएंगे क्या?
0: हाँ, इस योजना ने गरीब लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां दूर कर दी। सबसे पहले तो जो परिवार महंगे इलाज के डर से अस्पताल जाने की सोच भी नहीं पाते थे, आज वही लोग बिना झिझक बड़े अस्पताल में जाकर आराम से इलाज करवा रहे हैं।
1: सही बात भाभी, गांव में तो लोग पैसे की चिंता में इलाज टालते रहते थे और आज के समय में बड़े बड़े अस्पताल, चाहे मेदांता हो, पारस हो, पटना तक जाकर के इलाज करवा रहे हैं।
0: ठीक कहा आपने आरजे ईश्वर, और अब वही लोग समय पर ऑपरेशन करा लेते हैं, दिल का हो, कैंसर का हो या हड्डी का हो। बहुत से बुजुर्ग जिनका सालों से इलाज अटका था अब अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आराम से इलाज करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार कर्ज में डूबने से बच गए। आयुष्मान PMJAY ने भरोसा दिया है कि गरीब आदमी भी सम्मान के साथ बिना डर के बड़े से बड़ा इलाज करवा सकता है।
1: तो दोस्तों, आयुष्मान PMJAY योजना ने वाकई लाखों परिवारों की मदद की है। कई लोग जो पहले महंगे इलाज के नाम सुनकर ही घबरा जाते थे, आज बिना पैसे बड़े अस्पतालों में भर्ती होकर शान से सर्जरी करवा रहे हैं। और तो और, जिन अस्पतालों को देखकर जी घबराता था कि ये होटल है या हॉस्पिटल, आज उन्हीं बड़े अस्पताल में आप वहां पर सीना तान कर जाते हैं और अपना PMJAY के तहत आयुष्मान कार्ड निकालकर इलाज कराते हैं। तो श्रोताओं, हमारा मकसद भी यही है कि आप तक वो

सारी बातें पहुंचे जो आपकी जिंदगी में काम आए, आपकी सेहत सुरक्षित रखे और वक्त पर सही फैसला लेने में मदद करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड के साथ, भरोसेमंद और काम की जानकारी लेकर। पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे

0: उन्नत कृषि।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: हेलो नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ स्वस्थ रहे हम में। जी हाँ, स्वस्थ रहे हम में हम बातें करते हैं स्वस्थ रहने की, आपके फिट एंड फाइन रहने की, ताकि हमारे श्रोता खुश रहेंगे तो हम रहेंगे खुश और लेकर आएंगे उनके लिए नए नए कार्यक्रम। जी हाँ, कुछ ऐसे ही कार्यक्रम हम आपके लिए पेश करते हैं। तो आज की इस कड़ी में आइए, आज इस स्वस्थ रहे हम कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मशरूम की कुछ बातें। जी हाँ, मशरूम का नाम सुनते ही मुझे पता है कि आपके मुंह में पानी जरूर आया होगा, क्योंकि मशरूम एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके नई नई रेसिपीज हम बना सकते हैं। सिर्फ रेसिपीज ही नहीं, टेस्ट ही नहीं, बल्कि इसके स्वास्थ्य के लिए कई फायदे हैं। जी हाँ, हेल्थ के लिए बहुत फायदे हैं। तो आज का हमारा विषय ही है मशरूम और उससे जुड़े हमारे हेल्थ के फायदे। तो आपको मैं बता दूं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शारदा मैम, और ये है वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र बाट से। मैम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में स्वस्थ रहे हम में।
1: थैंक यू।
0: और इसके साथ ही मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि मशरूम जो है डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जब हम जाते हैं तो प्रोटीन की कमी रहती है तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई तुम ये मशरूम लिया करो डाइट में। हम संतुलित आहार लेते हैं तो उसमें भी शामिल करने के लिए कहते हैं डॉक्टर साहब हमें मशरूम को। तो सबसे पहले मशरूम के फ़ायदों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले उसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो ये मशरूम कितने प्रकार के होते हैं?
1: वैसे तो मशरूम की करीब 200 प्रजातियां हैं, लेकिन 200 जो इसकी प्रजातियां हैं उसकी खेती जो प्रयोगशाला स्तर पर भी की जाती है। और जहां तक हमारे बिहार की बात है तो बिहार में 4 तरह के मशरूम उगाए जाते हैं और पाए जाते हैं, जिसमें जिसको पहला बटन मशरूम, जिसको आप हर चौक चौराहे पे देखती होंगी, बटन के आकार का होता है ये बटन मशरूम,
0: हमारे इर्द गिर्द भी ये मतलब पाया जाता है।
1: और इसकी खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये टेम्परेचर जो तापमान इसके लिए चाहिए वो 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड उगने के लिए चाहिए, और ऐसा तापमान खास करके नवंबर से फरवरी तक ही हो पाता है। इसलिए बिना कंट्रोल, बिना नियंत्रित वातावरण के नवंबर से फरवरी, या ज़्यादा आप कह सकते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती की जा सकती है।
0: अच्छा, तो ये बात बटन मशरूम की बात।
1: और दूसरा जो हुआ वो प्लूरोटस मशरूम या ढींगरी मशरूम या एस्टर मशरूम के नाम से जाना जाता है। और ये इस एस्टर मशरूम की खेती आप अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक, या यूं कहें कि इसकी विशेष जो प्रजातियां होती है उसकी खेती आप पूरे साल तक कर सकती हैं।
0: अच्छा,
1: जैसे कि प्लूरोटस सजार काजू है, फ्लोरिडा है, फ्लेविलेटस है, CO2 है, डायजामोर है, तो ये कई प्रजातियाँ हैं जो तापमान का कुछ कम और कुछ ज्यादा पर। तो आप ढींगरी मशरूम या प्लूरोटस मशरूम या जिसको एस्टर मशरूम भी कहते हैं, इसकी खेती आप पूरे साल कर सकते हैं बिना किसी खास व्यवस्था के।
0: अच्छा, और मशरूम की एक खास बात है मैम कि जो भूमिहीन किसान है हमारे,
1: हाँ,
0: वो भी इसे उपजा सकते हैं।
1: और एक और है तीसरे तरह का जो मशरूम, जो दोनों के बीच में, जिसको उगाने का तरीका

0: का जो है वो बटन मशरूम और ढेंगरी मशरूम या प्लूरोटस मशरूम के बीच का है, क्योंकि लगाने का तरीका उसका एस्टर मशरूम या ढेंगरी मशरूम वाला होता है। और उसमें खास बात है कि केसिंग की जाती है।
1: अच्छा, ये केसिंग क्या होता है?
0: केसिंग की जाती है मतलब उसका जो सबस्ट्रेट जो होता है उसको कवर कर दिया जाता है। केसिंग अच्छा, मतलब कवर कर देना। क्यों? जब तक केसिंग नहीं करेंगे तब तक ये दूधिया मशरूम या मिल्की मशरूम या जिसको बोटेनिकल नेम उसका कैलोसाइबी इंडिका है।
1: अच्छा,
0: तो ये तीसरा तरह का मशरूम हुआ। और इसको उगने के लिए 25 से 38 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और ये हमारे यहाँ अप्रैल से लेकर के अगस्त तक इसकी खेती की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के हम जो ये तीनों प्रकार का मशरूम बहुतायत में उगाया जाता है। और एक और मशरूम है जो पैडी स्ट्रॉ मशरूम जिसको कहते हैं या धान पुआल मशरूम कहते हैं या उसी को चाइनीज मशरूम भी कहा जाता है
1: जी।
0: और उसकी खेती ज्यादा तापमान पर की जाती है, 35 से 45 डिग्री जब तापमान होता है तब भी उसकी खेती हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में ये बिहार में इसकी खेती नहीं होती है। खास करके ये जो बटन मशरूम जो एगेरिकस बायोस्पोरस है, दूसरा प्लूरोटस मशरूम या ढेंगरी मशरूम, और तीसरा जो मिल्की मशरूम या दूधिया मशरूम या जिसको कैलोसाइबी इंडिका कहते हैं, इसकी खेती होती है। और ये तीनों प्रकार की खेती जो होती है हमारे यहाँ, वो इसके लिए आप मशरूम तो जान रहे हैं आप लोग कि ये एक कवक है और ये खाने योग्य कवक है। और इसकी खेती जो होती है वो जिसमें सेलुलोज या लिग्निन पाया जाता है वैसे पदार्थ पे इसकी खेती की जाती है, उस सबस्ट्रेट पे इसकी खेती होती है। और इसके लिए ना तो बहुत लागत की जरूरत है, ना ही बहुत कौशल की जरूरत है,
1: भूमि की जरूरत,
0: और ना ही भूमि की जरूरत है। और इसीलिए इसको हवा की खेती भी कहते हैं, बिना खेत की खेती भी कहते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि खेती बिना खेत का, तो ये मशरूम के लिए ही कहा जाता है। तो इसकी खेती की जाती है और घर बैठे जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं वो भी इसको रोजगार का जरिया बना सकते हैं।
1: अच्छा मैम, आपने एगेरिकस मशरूम के बारे में बात की थी, तो मैंने सुना है कि एगेरिकस मशरूम के औषधीय फायदे भी हैं।
0: हाँ,
1: तो उसके बारे में बताएं।
0: जहाँ तक मशरूम की बात है, ये मशरूम में और कुछ औषधीय मशरूम भी होता है, जैसे
1: जी, उनके नाम बताएं, उनके बारे में बताएं।
0: हाँ, जैसे शीटाके मशरूम जिसको कहते हैं, और ये खाया भी जाता है, ये बहुत स्वादिष्ट भी होता है। और दूसरा एक ऋषि मशरूम है जिसको गैनोडर्मा लुसिडम कहते हैं।
1: अच्छा,
0: और लेकिन इसका सिर्फ औषधीय उपयोग होता है, जो कैप्सूल बनाया जाता है, दवाइयां बनती है या फोर्टिफिकेशन में काम में आता है
1: जी।
0: तो ये ऋषि मशरूम है। और जहाँ तक आप एगेरिकस बायोस्पोरस मतलब बटन मशरूम की बात कर रही थी, तो हम ये कहेंगे कि प्रोटीन का ये मुख्य स्रोत होता है,
1: भंडार
0: जो जो मशरूम है वो प्रोटीन का भंडार है, खास करके सब्जियों में, जिसमें कि 3.1 कच्चा में, और अगर इसको सुखा दिया जाता है तो 28 से 30% तक प्रोटीन पाया जाता है। और इसके इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी जो शरीर में उपलब्ध होने की अवस्था में होते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा इसमें विटामिन B1 कहिए जिसको थायमिन कहते हैं, B2 राइबोफ्लेविन या नियासिन जो B3 है, पेंटोथेनिक अम्ल, ट्रिप्टोफान, ये सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं।
1: अच्छा,
0: और जहाँ तक कहते हैं कि सोडियम की मात्रा इसमें कम होती है। अच्छा। और पोटासियम की मात्रा ज्यादा होती है, और यही कारण है कि जो रक्तचाप वाले लोग होते हैं, उच्च रक्तचाप वाले, वो भी इसका सेवन करते हैं, और जो मधुमेह वाले रोगी होते हैं वो भी इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इसमें रेशे की अधिकता होती है। और जैसे सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से विटामिन डी पाया जाता है, जो धूप में कहते हैं ना कि बैठने के लिए विटामिन डी लेने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तो ये विटामिन डी भी इसमें
1: उपलब्ध
0: पाया जाता है। और इसमें कहने का मतलब है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल शून्य होता है, नहीं होता है, और कोलेस्ट्रॉल के बदले इसमें इर्गेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि जब अवशोषण होता है तो विटामिन डी में बदल जाता है। तो ये मशरूम विटामिन डी का भी एक मशरूम अच्छा से विटामिन डी भी पाया जाता है
1: जी। वैसे मैम अभी हम बात कर लेते हैं वेजिटेरियंस की, तो कहा जाता है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन
0: है,
1: और इसके मतलब खाने में स्वाद भी कुछ ऐसे ही लगते हैं। तो मशरूम के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, और अगर मैं यहाँ पर खाने के फायदे की बात करूँ मैम, तो इससे खाने से हमें क्या

0: फायदा हो सकता है, वैसे हम सभी जानते हैं, लेकिन आप विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं तो और ज्यादा अच्छा होगा।
1: बिल्कुल, तो जैसे ये प्रोटीन का स्रोत हुआ, और आप जानते हैं कि हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और फाइबर
0: जी
1: होना चाहिए। और ये जब ये सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं आहार में, तभी वो संतुलित आहार होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: और मशरूम में जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, आयरन भी है, और आयरन है तो एनीमिया को दूर कर सकता है। तो ये सारे विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और इसमें कैलोरी, जो मोटापा से ग्रसित होते हैं लोग, इनको कहा जाता है कि कम खाना खाइए, कम कैलोरी वाला खाना खाइए, वो भी 100 ग्राम में सिर्फ 22 कैलोरी ही इससे मिलता है। और जो रेसे हैं वो उनके होने से कम खाइए और लगता है कि पेट भरा भरा है। और कब्जियत तो दूर होता ही है, साथ ही रेसे होने के कारण ये मधुमेह रोगियों के लिए भी लाभदायक होता है।
0: तो मैम यहाँ पर अभी आपने कहा कि इसमें जो है एनीमिया से बचने की शक्ति होती है, तो महिलाओं और बच्चों के लिए कितना हद तक फायदेमंद हो सकता है?
1: बिल्कुल, क्योंकि खास करके जो एनीमिया से ग्रसित होते हैं, जो
0: इसमें आयरन पाया जाता है,
1: जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं माहवारी
0: अनियमित होता है, मतलब
1: माहवारी के दौरान जो खून निकल जाता है वो
0: मतलब हैवी ब्लीडिंग जो होता है
1: या प्रेग्नेंट जो है उनमें भी खून की कमी हो जाती है, या दूध पिलाने वाली माँ है उनमें भी खून की कमी होती है, किशोरियां हैं उनमें खून की कमी होती है, तो इन लोगों के लिए ये प्राकृतिक आहार बहुत ही उपयुक्त और संतुलित आहार है, जो उनको इस तरह से खून की कमी से, जिसको रक्ताल्पता कहते हैं या एनीमिया कहते हैं, उसको दूर करने में बिल्कुल सहायक है।
0: बिल्कुल सही कहा मैम ने। श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनके अंदर और भी ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर एक नया जो शिशु है वो बनने यानी कि बनने की क्रिया में रहता है, तो इसलिए अगर खून अच्छी मात्रा में उनके अंदर हो तो आपका जो शिशु है वो भी स्वस्थ पैदा होगा। तो इसलिए जब भी आप आहार की बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, तो आप सप्ते में एक या दो दिन मशरूम उन्हें ज़रूर दें आहार में। फिलहाल तो यहाँ पर इसके लाभ की बात हो गई मैम, और इसका उपयोग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं?
1: इसका हर तरह से उपयोग करते हैं, जैसे बटन मशरूम जो है उसको हम जो ताजा है उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसको सुखा करके इस्तेमाल नहीं करते, उसकी कैनिंग की जाती है, मतलब डिब्बाबंदी करके रखा जाता है। तो डिब्बाबंद मशरूम है उसका इस्तेमाल करते हैं
0: जी।
1: और जो प्लूरोटस मशरूम है या मिल्की मशरूम जिसको दूधिया मशरूम कहते हैं, ऑयस्टर मशरूम या दूधिया मशरूम जो है उसको हम सुखा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके विभिन्न उत्पाद बना करके और उसको परिरक्षित करके भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि परिरक्षण आप जानती हैं कि जिस मौसम में होता है उसमें तो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको दूसरे मौसम में भी, जैसे इसको अचार के रूप में, चटनी के रूप में, और डिब्बाबंदी तो कर ही सकते हैं, सुखा करके रख ही सकते हैं, और इसको हम लोग जो नमक के घोल में भी, जैसे एक महीने तक हम रख सकते हैं अगर नमक के घोल में रख दें तो हम मशरूम को इस तरह से ताज़ा रूप में और सुखा करके उसका पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब जब पाउडर फॉर्म में हो जाता है तो हम उसे समोसा बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, केक बनाते हैं, और जब ताज़ा होता है तो उसकी हम सब्जियां बनाते हैं, या जो पुलाव बनाते हैं उस रूप में, या कटलेट बना करके, और जो मशरूम है उसका हम रायता के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका खीर बना सकते हैं, उसका पेड़ा बना सकते हैं, कई मिठाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जो मशरूम हम डालते हैं, दूसरे उत्पाद जो बनाते हैं उसमें उसकी मात्रा, जो बेस मटेरियल होता है, जैसे मान लीजिए कि केक बना रहे हैं
0: जी जी,
1: तो केक बना रहे हैं अगर 100 ग्राम हमको मैदा लेना है तो उसमें 20 ग्राम ही हम मशरूम का पाउडर लेंगे, और ये पाउडर मशरूम जो है वो करीब इसमें 90% पानी होता है, तो हम 100 ग्राम सुखाएंगे तो 10 ग्राम पाउडर तैयार होगा
0: जी।
1: तो ये पाउडर के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस जो मशरूम है, चाहे बटन मशरूम हो या फ्लोरोटस मशरूम हो, आप कोई भी, जो हम तीनों प्रकार के मशरूम की बात करते हैं कि दूधिया मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम, तीनों से हम अचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी चटनी बना सकते हैं, उसकी डिब्बाबंदी कर सकते हैं, और बटन को छोड़कर बाकी मशरूम को हम सुखा करके भी इस्तेमाल करेंगे दूसरे उत्पाद बनाने के लिए, जो अपने यहाँ लिट्टी बनती है
0: जी,
1: उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रोल बनाते हैं, जो

0: ब्रेडरोल बनाते हैं उसके अंदर भी, या पराठे बनाए तो उसमें भी हम स्टफ करने के लिए, भरने के लिए हम मशरूम का उपयोग कर सकते हैं। और खास करके इसका अचार जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक भी होता है, चूंकि वो नमक और सिरके में मिला करके बनाया जाता है, तो ये बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
1: कहने का मतलब है कि हम इसे संवर्धित तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, मूल्य संवर्धित उत्पाद इसका हम बना सकते हैं। जैसे हम लोग इसका केक बना लें, अचार बना लें, या अचार बना लें, या बिस्किट बना लें, तो इसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे इसका जो पोषक मूल्य है वो भी बढ़ जाएगा और आमदनी भी हो सकती है अगर हम उसको रोजगार के रूप में लें तो।
1: अच्छा मैम, देखा गया है कि हर जो किसी भी चीज का दो पहलू होता है, एक तो लाभ और एक हानि।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या इसके कुछ एलर्जीज हैं या फिर कुछ हानि भी हैं?
0: अभी तक जो रिसर्च हुआ है, जो अनुसंधान हुआ है, उसमें मशरूम की हानि कहीं भी नहीं पाई गई है, कहीं नहीं देखी गई है। सिर्फ जिसको ज्यादा प्रोटीन न खाने के लिए दिया जाता है वैसे लोग थोड़ा कम
1: से परहेज कर सकते,
0: थोड़ा परहेज करें। लेकिन जहाँ तक यह है मधुमेह वाले, वो इसका इस्तेमाल करेंगे और बहुत आसानी से, और उनका ये रोग रोधी का काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना और हमारे श्रोताओं आपने जाना कि कैसे मशरूम हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो फिलहाल तो इसके कुछ भी हानि नहीं है, इसलिए आप आराम से अगर खाना चाहते हैं इसे तो बिल्कुल घबराएं नहीं, आप अपने घर में इसे लाएं, किचन में लाएं और बनाएं इसके अलग अलग रेसिपीज। मैम ने जैसे बताया कि आप इसे संवर्धित, मूल्य संवर्धित तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों को अगर जो है आप देना चाहते हैं रोल्स वगैरह तो आप उसमें भी इसे डाल सकते हैं। प्रोटीन के साथ उन्हें अच्छी जो पोषक तत्व है वो भी मिल जाएंगी और साथ ही उन्हें खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे हमें हर दिन कुछ अच्छी अच्छी बातें, आपकी स्वस्थ रहने की बातें, हेल्दी बातें लेकर मैं हाजिर होंगी। सुनते रहिए मुझे, आरजे अनु को।

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।

0: भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
1: खांसी?
0: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया,
0: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
0: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो

0: मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है,
0: टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
8: हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आम का मौसम लगभग जा चुका है और फल तोड़ाई भी लगभग हो चुकी है, और फल तोड़ाई के बाद भी जरूरी होता है कि आप बागों का उचित प्रबंधन करें ताकि अगले वर्ष अधिक फल हो, अगले वर्ष भी आपको मुनाफा अच्छा हो। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि फल तोड़ाई उपरांत आम के बागों का प्रबंधन किस प्रकार करें। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर उद्यान विभाग फल से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद उमा।
9: मैम, सबसे पहला सवाल यही है कि अभी आम के बागों से सभी किस्मों के फल तोड़ाई हो चुकी है, तो अभी प्रबंधन कैसे करना चाहिए जिससे कि अगले वर्ष अधिक मात्रा में फल हो?
10: सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ कि फल तोड़ाई के बाद पौधों में खाद एवं उर्वरक का कमी हो जाता है, एवं पौधों के समुचित विकास एवं फलन के लिए नियमित रूप से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर वृक्षों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनसे कम उपज प्राप्त होता है तथा फलों की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की हो जाती है। पानी के जरिए ही वृक्षों के अंदर पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जल जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन इत्यादि कामों में आवश्यक होता है। इसके बिना ये सब कार्य जो है अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के अभाव में वृक्षों की बढ़वाड़ एवं फलत पर गहरा असर पड़ता है। पौधे भूमि से पोषण एवं जल के माध्यम से ही लेते हैं तथा यह जल पौधों को पाले से भी बचाता है। समुचित सिंचाई एवं उर्वरक से फलों का उपज, स्वाद, मिठास, गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। जल एवं पोषक प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि कब दी जाए, कहाँ दी जाए एवं कितनी मात्रा में दी जाए, ताकि जल एवं पोषक का अधिकतम उपयोग तथा मिट्टी एवं पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। जल एवं पोषक प्रबंधन के साथ साथ डालियों की हल्की कटाई छटाई भी आवश्यक है। यह कार्य भी फल तुराई के तुरंत बाद ही करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता युक्त फल एवं अधिक फलन के लिए आवश्यक है कि पौधे के मांग के अनुरूप उसका पोषण प्रबंधन किया जाए। पौधे की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए सभी 16 अनिवार्य पोषक तत्वों की पूर्ति आवश्यक है। सही समय पर सही उर्वरक

0: एवं सही मात्रा का प्रयोग करके गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: तो मैम, उचित समय क्या होता है जब आम के पौधों में पोषण की मात्रा देनी चाहिए?
0: आम में पोषण देने का उचित समय जुलाई अगस्त माह है, लेकिन पोषक तत्वों का अधिक वर्षा से होने वाली क्षति को देखते हुए कंपोस्ट की पूरी मात्रा एवं उर्वरक की 75% मात्रा जुलाई में और शेष मात्रा का प्रयोग अप्रैल के प्रथम माह में करना लाभप्रद है।
1: मैम, जब हम एक वयस्क पौधे की बात करते हैं तो आम के एक वयस्क पौधे में कुल खाद की कितनी मात्रा होनी चाहिए?
0: आम के वयस्क पेड़ में अनुशंसित खाद एवं उर्वरक की मात्रा इस प्रकार है, जैसे प्रति पौधे खाद एवं उर्वरकों की मात्रा में 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 1.5 किलोग्राम म्यूरियट ऑफ पोटास एक वयस्क पेड़ के लिए अनुशंसित है। यह मात्रा 10 साल के बाद स्थिर हो जाता है। 10 साल के ऊपर जो पौधे हैं उसमें यही मात्रा प्रत्येक वर्ष प्रति पेड़ लगेगा। इस तरह से उर्वरक का डोज दिया जा सकता है।
1: अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन की, तो मैम आम के बागों में जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: पौधों की सिंचाई के समय हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई कब करनी चाहिए और कितनी मात्रा में की जानी चाहिए। अब सबसे पहला है सिंचाई कब करें। उद्यान की सिंचाई की आवश्यकता स्थान विशेष की वर्षा के परिणाम एवं वितरण, मिट्टी के प्रकार एवं बनावट, वातावरण की आर्द्रता और तापमान पर निर्भर करती है। चिकनी मिट्टी को बलुई मिट्टी की अपेक्षा एक बार में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, परंतु बलुई मिट्टी में लगे हुए बाग की सिंचाई कम अंतराल पे और कम मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। एक बार में इतना ही पानी दिया जाए जो संपूर्ण जड़ क्षेत्र को अच्छी तरह नम कर सके। जहां वर्षा कम होती है और इसका वितरण भी अनियमित हो तो सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। सिंचाई जल की आवश्यकता वृक्ष की आयु पर भी निर्भर करता है। आम के वृक्ष फल देने की स्थिति में आने के बाद बाग की सिंचाई का व्यवस्था बदल जाता है। फल देने वाले वृक्षों को नवंबर से मार्च तक आमतौर पर सिंचित नहीं करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह इस अवधि में फूल धारण करने के लिए आवश्यक आंतरिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसलिए इस अवस्था में सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस अवधि में सिंचाई करने से संभव है कि वृक्षों में मंजर कम आए या फूल आने के बाद झड़ जाए। अतः यह जान लें कि फलने वाले वृक्षों की सिंचाई, फल निकलने एवं स्पष्ट रूप से दाने लग जाने के बाद ही करना लाभकारी होता है। फलों के लगने तथा विकास के दौरान किसी भी अवस्था में पानी की कमी से फलों का विकास प्रभावित होता है तथा फल झड़ने की समस्या भी आती है। फल लगने के उपरांत 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि फल पूर्णतया विकसित ना हो जाए। एक बार की सिंचाई में इतना पानी अवश्य देना चाहिए कि वृक्षों का संपूर्ण जड़ क्षेत्र नम हो जाए। आम जैसे बहुवर्षीय वृक्षों की जड़ें काफी गहराई तक जाती है, परंतु प्रभावी रेशेदार जड़ों का अधिकांश भाग मिट्टी की सतह से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक होती है। सिंचाई इतनी अवश्य करनी चाहिए ताकि जड़ क्षेत्र में पर्याप्त पानी बना रहे और पौधे का विकास ठीक प्रकार से हो। आवश्यकता से ज़्यादा या कम सिंचाई पौधे के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब सिंचाई किस प्रकार करें, तो सिंचाई करने का है जैसे कि पारंपरिक सिंचाई विधि है या आधुनिक सिंचाई विधि है। अब पारंपरिक सिंचाई की बात करें तो इसमें फ्लड इरिगेशन है या क्यारी विधि से है, नाली विधि से है और रिंग विधि से है, थाला विधि से जिसको बोलते हैं।

0: इन सबों में थाला विधि सर्वोत्तम पाया गया है। इसके लिए वृक्ष के चारों तरफ दो से तीन फीट की दूरी पर थाला बनाकर उसकी सिंचाई करनी चाहिए। आधुनिक सिंचाई पद्धति में ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर मेथड से पौधे का सिंचाई किया जा सकता है। इस विधि से करने पर जो सिंचाई जल का बहुत सेव होता है, बचता है। इस तरह से किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं अपने बगीचे का।
1: तो किसान भाई बहनों, जो बागवानी करते हैं और आम के फल की तुड़ाई हो चुकी है, तो इस प्रकार से आप अपने बगीचों का प्रबंधन जरूर करें तो अगले वर्ष भी अच्छी गुणवत्ता वाले और अधिक फल आएंगे। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना

0: 98 ग्रीन एफएम पर।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की वीएलएम 389, आरयू 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना

0: जाता है।
1: सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: each with a tennis ball next to the cones. On the bottom of this page, there is an image that depicts a playground in which there are three students. The students on the left and right side are kicking tennis balls and one in the center is kicking football. A cone is also placed in front of the student on the left side. Page number 39. Place three students at a distance of 5 to 7 meters from the cone on both sides and provide three footballs to each team. The students standing at the cones will roll the tennis ball across the cones and the students with the football will try to hit the moving tennis balls. If a student hits a tennis ball, that student will exchange places with the student rolling the ball and the game will resume. Purpose: develop a sense of space with respect to moving objects and accuracy. Variation: vary the number of students in each team, vary the size of the rolling targets, vary the pace of rolling. On the bottom left of this page, there is an image which depicts a playground in which there are two students. One of them is kicking the football and the other one is trying to catch the tennis ball. Circle time. Share the difficulties you faced while hitting the moving target and how you dealt with them. The teacher will give a target to students to kick the ball into one of the squares.
1: Khel Yog. You were just listening to this audiobook, textbook of physical education and well-being for class 5. Narration: Meha Kheda. Sound recordist: Manju Kumari. Assistance in production: Chetna Sharma. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: अरे यार फिर पिट गया. बेल देना. इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था. इसकी यही प्रॉब्लम है.
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से.
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक.
2: खांसी?
3: हाँ.
2: इसको तो एक आध महीना हो गया.
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप. चलिए चलिए चलिए.
2: डॉक्टर खांसी तो है.
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए. दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है.
2: टीबी?
3: हाँ. तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए.
2: ठीक है.
3: टीबी किसी को भी हो सकता है. अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए. नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है. समझ गए भाई साहब आप? आइए. दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए. टीबी हारेगा देश जीतेगा.
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद.
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार.
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना.
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ. माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ. तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल. अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल.
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात. अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ. टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है.
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें. मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
8: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर

0: किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं। और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है, तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं। और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
2: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
4: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
2: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
4: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है। लेकिन अब हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है। इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज्यादा पानी क्या मात्रा बारिश हो जाती है तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से, अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
2: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी, उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
4: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहां जहां पानी, जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहां बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियां हैं उसमें खरीफ में सबसे

0: जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
1: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया, तो बुआई का उचित समय क्या है?
0: बुआई का तो उचित समय, जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद, यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भुट्टे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, एक भुट्टा 10 रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भुट्टा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
1: जी सर, सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
0: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
1: और बुआई की विधि क्या?
0: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है तो हमारा, और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
1: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में।
0: देखिए, जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM 1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है।

0: गजेंद्र मक्का 3 है, ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि डीएपी दे रहे हैं तो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका डीएपी से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया, उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन, उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या डीएपी से दें या एनपीके से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप डीएपी से दें या जो भी सोर्स है उससे दें, और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर, बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है, तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े, और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें, ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है, फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है, ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भूटे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
1: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
0: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है, तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पे बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं, उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिस पे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से

25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें,

0: खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: हाँ, विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए, फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं, वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहाँ पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है, तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें, इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें, बीज पैकेट खरीदें उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है, तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है, पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है, आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है, तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है। और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं पौधा घना करते हैं तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है, इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें, समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही, और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है पौधा है उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है, इससे बचने के लिए जो हमने 2 दवा बताया सिर्फ दो ही दवा दीजिए।

0: विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए। और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भूटा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफला टॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 के पाठ 7 मेरी किताब के अभ्यास बातें किताबों की पर आधारित ये कार्यक्रम।

0: बच्चों, कहानी सुनना तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? हाँ, रानी को भी बहुत अच्छा लगता है। रानी के दादाजी ने आज उसे राजा रानी की कहानी सुनाई और फिर रानी से बोले,
1: तो बताओ रानी, राजा रानी की कहानी कैसी लगी?
2: बहुत अच्छी लगी दादाजी। दादाजी, एक और कहानी सुनाओ ना।
1: नहीं बेटा, अब तुम मुझे कहानी सुनाओ।
2: नहीं दादाजी, आप सुनाओ।
1: मुझे भी तुमसे कहानी सुनने का बड़ा मन करता है। ठीक है, कहानी ना सही तो अपनी मनपसंद किताब के बारे में बताओ।
2: किताब? हाँ, मुझे अपनी हिंदी की किताब बहुत अच्छी लगती है।
1: अच्छा, ऐसा क्या खास है तुम्हारी हिंदी की किताब में?
2: दादाजी, मेरी हिंदी की किताब में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविताएं और चित्र हैं।
1: अच्छा?
2: हाँ, ये सब मुझे बहुत पसंद है।
1: तो फिर बेटा, किताब से कोई कहानी या कविता सुनाओ ना।
2: ठीक है, कौन सी सुनाओ? वैसे तो मुझे सभी कहानियाँ पसंद है। क्यों ना मैं आपको भालू ने खेली फुटबॉल ये कहानी सुनाऊं।
1: भालू ने खेली फुटबॉल?
2: हाँ।
1: वही ना जिसमें भालू शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लेता है और अपने पैरों से उसे ऊपर उछाल देता है।
2: दादाजी, वही वाली।
0: जब दादा और पोती बात ही कर रहे थे, तब रानी ने एक मुखौटा पहना जो बादल की तरह बना हुआ था। मुखौटा पहनकर रानी बोली,
2: गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़।
1: अरे ये क्या, मेरा बेटा तो बादल का मुखौटा पहनकर बादल बन गया। ये किसने बनाया?
2: दादाजी, ये मुखौटा मैंने बनाया है। किताब में रंग बिरंगे चित्र हैं। उन्हीं चित्रों को देखकर मैंने ये मुखौटा बनाया है। और दादाजी, मेरे कई दोस्तों ने भी मुखौटे बनाए हैं।
1: अच्छा
2: दादाजी, मुखौटे, मिट्टी के नमूने और खिलौने हम सब बनाते हैं और अभिनय करते हैं, तो हमें बहुत मजा आता है।
1: अच्छा, ला दिखाओ अपनी किताब, देखूं तो कितने मुखौटे बने हैं तुम्हारी किताब में।
2: ये लीजिए दादाजी।
1: हाँ, अरे ये तीनों मुखौटे बड़े बड़े जानवरों के हैं। हाथी, शेर, भालू के मुखौटे।
2: अच्छे लग रहे हैं ना दादाजी?
1: अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुखौटा रूपी बादल भी हमें कुछ सुनाए। क्या सुना रहा है मेरा छोटा सा बादल?
2: गड़ गड़ गड़ गड़। मैं हूँ बादल। काले मेघा पानी दे, गुड़धानी दे, बरसो खूब जमा जम जम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे।
1: शाबाश बेटा, बहुत अच्छा।
0: तो बच्चों, तुम भी कोई मुखौटा बनाओ और सुनाओ मुखौटे पर आधारित कविता, ठीक है?
3: बातें किताबों की। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आचार्य शिक्षा शास्त्र CIET NCERT, विषय संयोजन सह आचार्य डॉ. रमेश कुमार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग NCERT, आलेख डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा, कलाकार वैभव श्रीवास्तव और सुनील लोहिया, बाल कलाकार रितिका, ध्वनिंकन बटिलैंग लिंगडो और मयंक कुमार, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की वीएलएम 389, आरयू 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और

यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आपको अपने स्कूल का पहला दिन तो याद होगा। पता है, मुझे भी अपने स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छे से याद है। आपके स्कूल की भी कुछ यादें आपके साथ होंगी, मेरे स्कूल की भी कुछ यादें मेरे साथ हैं। तो क्यों ना हम आज अपने अपने स्कूल की यादों को साझा कर ले। कुछ आप कहें और कुछ मैं कहूं, और फिर कुछ मैं कहूं और फिर कुछ आप कहें। तो शुरू करें आपके और हमारे स्कूल का पहला दिन। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे नन्हे मुन्ने श्रोता हैं जो अभी तक स्कूल ही नहीं गए। ये लीजिए, ये बात तो मैं भूल ही गई, न जाने कैसे ये दिमाग से बात निकल गई। तो कोई बात नहीं, जो स्कूल कभी नहीं गए वे ये भी जान लेंगे कि स्कूल में होता क्या है और क्या क्या होता है, कौन कौन लोग स्कूल में होते हैं, और टीचर या दीदी बच्चों के साथ कितनी मस्ती मारती हैं। तो हम शुरू करें आपके और हमारे स्कूल का पहला दिन। तो क्या मैं शुरू करूं अपनी बात? ठीक है, तो आपने इजाजत दी है तो फिर आपका हुक्म मैं सिर आंखों पर रखती हूं और शुरू करती हूं अपने स्कूल के पहले दिन से। ये जुलाई का समय था और तारीख मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन शायद 1 या 2 जुलाई रही होगी। नहीं, शायद हमारे जमाने में स्कूल खुलता था शायद 15 या 16 जुलाई से। चले छोड़िए तारीख में क्या रखा है, मजा तो इस बात में है कि स्कूल का पहला दिन कैसा गया। स्कूल का पहला दिन था और मैं अपने पापा के साथ स्कूल गई। मम्मी घर में थी, वो भाई को संभाल रही थी। तो स्कूल के पहले दिन मुझे मेरे पापा ने स्कूल छोड़ा, पैदल पैदल नहीं, साइकिल पर। मुझे अपने पापा के साथ साइकिल पर बैठने में बड़ा मजा आता है, तो जब तक मुझे मौका मिलता है मैं कूदकर उनकी साइकिल में पर बैठ जाती हूँ और फिर हम घूमने निकल जाते हैं। तो पापा और मैं बतियाते गपियाते स्कूल की ढेर सारी बातें करते करते स्कूल पहुंच गए। तो मैं और मेरे पापा क्लास में गए। क्लास में माधवी दीदी बैठी हुई थी। माधवी दीदी ने मुझसे मेरा नाम पूछा, वे मुस्कुराई और उन्होंने मुझे एक टॉफी दी। तो मैंने मन ही मन सोचा कि भाई भी तो घर पर है, तो क्यों ना एक टॉफी मैं भाई के लिए ले लूं। तो मैंने माधवी दीदी से कहा, दीदी क्या आप मुझे एक और टॉफी दे देंगी? पापा ने मेरी तरफ घूर

के देखा कि एक टॉफी तो मिली गई है, ये दूसरी टॉफी क्यों मांगी जा रही है। तो माधवी दीदी ने कहा, तो आपको दो टॉफी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो एक ही टॉफी चाहिए। तो माधवी दीदी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, आपको तो एक टॉफी मैंने पहले दे दी है। तो मैंने कहा, हाँ, मेरे पास तो एक है, तो मुझे एक टॉफी अपने भाई के लिए चाहिए। माधवी दीदी खूब जोर से हंसी और उन्होंने हंसते हंसते मुझे एक और टॉफी दे दी। तो ऐसा कुछ था मेरा स्कूल का पहला दिन। तो बच्चों, आपका स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? आपको कौन छोड़ने गया था स्कूल में, कुछ याद है? और आप स्कूल के लिए तैयार कैसे हुए थे? स्कूल जाने के लिए तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं, सुबह का नाश्ता करना पड़ता है, बस्ता संभालना पड़ता है और फिर हम स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर जिनकी अभी उम्र नहीं हुई है स्कूल जाने की, लेकिन सबके मन में स्कूल की कोई ना कोई तस्वीर तो होती ही है। प्यारे बच्चों, आपका स्कूल का पहला दिन कैसा गुजरा, आप हमसे जरूर साझा कीजिए। तो क्यों ना हम स्कूल में चले? ठीक है, तो हम चलते हैं एक स्कूल में। ये स्कूल पता है किसका है? ये स्कूल है कल्याणी का। कल्याणी कौन? वही कल्याणी जो मेरे पड़ोस में रहती हैं। छोटी सी चुलबुली सी कल्याणी हमेशा इधर उधर न जाने कहां कहां भागती रहती हैं। कहीं टिककर बैठती ही नहीं है। उनकी माँ को ये लगता है कि कल्याणी जब स्कूल जाएंगी तो क्लास में ये बैठेंगी कैसे। पर कल्याणी को स्कूल जाकर खूब मजा आया, क्योंकि दीदी ने कभी टोका ही नहीं कि तुम इधर उधर क्यों दौड़ रहे हो। दीदी ने पता है क्या कहा बच्चों से? कि सारे बच्चे जाकर मैदान में खूब खेलो, जिसको जो करना है वो करो, दौड़ो भागो, एक दूसरे के पीछे दौड़ो, एक दूसरे को पकड़ो, स्टापू खेलो, जो खेलना है वो खूब मजे से खेलो। मैंने तो ऐसा स्कूल कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं तो अपने स्कूल को ही देखकर ये बात कहूंगी ना, लेकिन मुझे मालूम है बच्चों, आपका स्कूल बहुत अच्छा है। वहाँ खेलने की तरह तरह की चीजें हैं जिनसे आप खेलते हैं। झूले भी तो हैं आपके स्कूल में। ये बात तो किसी ने मुझे बताई ही नहीं, लेकिन मुझे तो सब पता है कि आपके स्कूल में क्या क्या है। आपके स्कूल में झूले हैं, आपके स्कूल में खूब सारी खेलने की चीजें हैं, एक खूब बड़ा सा मैदान है, और कल्याणी ने तो मुझे ये भी बताया कि एक ऐसा बड़ा सा कमरा है जहाँ पर खूब सारे शीशे लगे हैं देखने के लिए, आईने लगे हैं, और हारमोनियम है, तबला है, सितार है, ड्रम है, और हम खूब नाचते और गाते हैं। तो कल्याणी ने अपने स्कूल का पहला दिन कैसे बिताया पता है बच्चों? नहीं पता? तो जो मुझे कल्याणी ने बताया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कल्याणी जब अपने पापा के साथ स्कूल पहुंची तो नंदिनी दीदी ने कहा, कल्याणी आपका ही नाम है ना? कल्याणी ने नंदिनी दीदी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद नंदिनी दीदी ने कल्याणी का हाथ पकड़ा और वो उसे प्यार से क्लासरूम में ले आई। पता है क्लासरूम में और क्या क्या था? क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। और क्या कर रहे थे बच्चे? सारे बच्चे आपस में खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे, एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे। आप जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप भी तो नाम पूछते हैं। तो सारे बच्चे एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे, नाम जान रहे थे, कौन कहाँ रहता है ये भी पूछ रहे थे, और वो कहाँ रहते हैं अपने बारे में बता रहे थे। तो कल्याणी ने सारे बच्चों को देखा
और सारे बच्चों ने कल्याणी को

सारे बच्चों ने तालियां बजाई कल्याणी के आने पर। तो कल्याणी बहुत खुश हुई और कल्याणी जाकर बैठ गई बबली के पास। बबली उनके पड़ोस में रहती थी। कल्याणी ने बबली को देखा और बबली ने कल्याणी को देखा, तो बबली ने कहा, कल्याणी तुम किसके साथ आई हो? कल्याणी ने कहा, मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। अच्छा, तो अंकल आपको छोड़ने आए हैं स्कूल? कल्याणी ने कहा, हाँ। तो क्या वे चले गए? मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो नंदिनी दीदी क्लास में ले आई थी, शायद चले गए हो, उन्हें ऑफिस भी तो जाना है। देखो कल्याणी, हमारी क्लास कितनी अच्छी है, तुमने देखा इस क्लास में कितनी सारी किताबें हैं? तो बच्चों, उस क्लास में ढेर सारी किताबें रखी हुई थी, तरह तरह की किताबें, रंगीन चित्रों वाली किताबें और कहानियों की किताबें, कविताओं की किताबें, और कुछ किताबें ऐसी थी जिसमें कोई कहानी कविता तो थी ही नहीं, केवल चित्र ही चित्र थे, केवल तस्वीरें ही तस्वीरें थी। और मुझे तस्वीरों वाली किताबें बहुत पसंद आती हैं। तो सारे बच्चे नंदिनी दीदी को घेर कर बैठ गए। अच्छा सोचिए बच्चों, आगे क्या हुआ होगा? नंदिनी दीदी ने कोई पाठ शुरू किया होगा पढ़ाने के लिए, जैसा आमतौर पे होता है? नहीं, नंदिनी दीदी की क्लास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंदिनी दीदी ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया, सबका एक एक करके नाम पूछा और फिर उन्होंने अपना नाम बताया। तो इस तरह से बीत रहा था हमारे स्कूल का पहला दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन इस क्लास में तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है बच्चों। नंदिनी दीदी ने सब बच्चों से पूछा, उन्होंने बच्चों की पसंद पूछी कि वे आज क्या करना चाहते हैं। हमेशा नंदिनी दीदी ऐसे ही करती हैं, वे बच्चों से ही पूछती हैं कि अच्छा बताओ हम क्या करें आज। तो बच्चे बताते हैं, नंदिनी दीदी आज हम कोई गीत गाएं। तो बच्चों, नंदिनी दीदी ने सब बच्चों को एक गीत सुनाया। तो हम भी सुने वो गीत। ये गीत कुछ ऐसा था।

गए। कैसा लगा गीत आपको? ये गीत तो मुझे लगता है सब बच्चों ने सुना होगा। नंदिनी दीदी ने सब बच्चों के साथ ये गीत गाया और बच्चों ने भी नंदिनी दीदी के साथ इस गीत में खूब आनंद लिया, खूब मजे किए। और पता है उसके बाद जॉन ने नंदिनी दीदी से क्या कहा? जॉन ने कहा, दीदी दीदी अब हम एक और गीत गाएंगे। अच्छा बताओ कौन सा गीत गाएंगे? वही जो आपने पहले उस दिन सुनाया था। मैंने कब सुनाया था? नन्नी दीदी आपको याद ही नहीं आ रहा, जब आप मुझे स्कूल के बाहर मिली थी तो एक गीत गुनगुना रही थी, वही गीत सुना दीजिए ना। तो नंदिनी दीदी ने अपने दिमाग पे जोर डाला और सोचा उन्होंने कि मैंने कौन सा गीत गाया था, मैं कौन सा गीत गुनगुना रही थी। तभी नंदिनी दीदी को वह गीत याद आ गया। तो बच्चों, नंदिनी दीदी ने बच्चों के साथ मिलकर एक और गीत गाया, तो लीजिए सुनिए आप वह गीत।

0: कैसा लगा आपको गीत? भाई मुझे तो बहुत मजा आया। तो मुझे मालूम है कि हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं को भी यह गीत बेहद पसंद आया होगा। आप भी ऐसे गीत गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। देखिए भाई, गाना हो तो जी भर के गा लीजिए। अब उसमें सुर है, लय है, ताल है, इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप तो जी भर के गाइए, खूब मजे से गाइए, आनंद के साथ गाइए। अब जब हम अपने दिल से गाते हैं गाना तो वो सबको पसंद आता है, पर हम तो अपने लिए गाते हैं ना गाना, तो बस आपको जो गीत आता है आप गुनगुनाइए। अभी ये गीत खत्म ही हुआ था तो रूबीना ने कहा, नंदिनी दीदी क्या आप एक और गीत सुना सकती हैं? तो पता है बच्चों क्या हुआ? नंदिनी दीदी ने कहा, ठीक है हम एक और गीत गाते हैं। तो फिर सब ने मिलकर एक और गीत गाया और ये गीत आप भी सुनिए।
1: घंटी बजती, तबला बोले, घुंघरू छनके,

तो कैसा लगा आपको ये गीत? अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो बस गीतों के सहारे ही आज स्कूल का पहला दिन बीत रहा था। तभी अचानक अमरजीत की नजर गई दरवाजे पर। पता है वहाँ कौन था? वहाँ एक छोटी सी बिल्ली झांक रही थी। कहाँ? अरे भाई, क्लास के अंदर। लेकिन ये बिल्ली क्यों आई क्लास के अंदर? क्लास में तो कोई चूहा नहीं था। कल्याणी ने कहा कि मुझे लगता है ये बिल्ली भी गाना सुनने आई है, तो इस बिल्ली को भी गाने का आनंद लेने देते हैं। तो बच्चों, बिल्ली झांक रही थी, सब बच्चों की नजर नंदिनी दीदी की तरफ थी, लेकिन कल्याणी की नजर कहाँ थी? उस छोटी सी बिल्ली पर। छोटी सी बिल्ली गीत खत्म होते ही भाग गई। तभी दीपक उठा और वह कहानियों की किताब के पास चला गया। उसने अपनी पसंद की खूब सारी कहानियों की किताबें देखी और एक किताब उठाकर वह नंदिनी दीदी के पास ले आया। अच्छा सोचो बच्चों, दीपक ने किताब क्यों उठाई और उसने वह किताब नंदिनी दीदी को क्यों दी होगी? सोचिए, क्यों दी होगी आखिर किताब उन्होंने नंदिनी दीदी को? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पहचाना। दीपक दरअसल वह कहानी सुनना चाहते थे नंदिनी दीदी से।

नंदिनी दीदी ने कहा, ठीक है अब हम गीत के बाद एक कहानी कहते हैं। और फिर नंदिनी दीदी ने बहुत मजे से एक कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते सब हूं हूं कर रहे थे। नंदिनी दीदी ने कहानी कहना शुरू किया। एक गांव था, गांव में एक किसान रहता था, किसान के दो बच्चे थे, वे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, बस नंदिनी दीदी कहती जा रही थी कहानी और सारे बच्चे हुंकारा भर रहे थे। ये हमारी आदत ही पड़ जाती है, जब हम कहानी सुनते हैं तो मुंह से ये निकल ही जाता है। इसका मतलब ये भी था कि सारे बच्चे बहुत ध्यान से नंदिनी दीदी की कहानी सुन रहे थे और कोई बच्चा सो नहीं रहा था। सोचिए, जब कोई बच्चा सो जाएगा तो वह हुंकारा कैसे भरेगा, और जब आवाज नहीं आएगी तो नंदिनी दीदी को ये पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कहानी नहीं सुन रहा और उसे नींद आ गई। लेकिन आप सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम सोते हैं कहानी सुनते हैं और कहानी सुनते सुनते हम गहरी नींद में सो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो खूब जोरदार से खर्राटे मारना शुरू हो जाते हैं तो दादी नानी को पता चल जाता है कि बच्चा सो गया। लेकिन स्कूल में ऐसा क्यों होता है कि हमसे ये उम्मीद रखी जाती है कि जब हम कहानी सुने तो बहुत अलर्ट होकर सुने, अटेंटिव होकर सुने, हुंकारा भरे और सोए नहीं। लेकिन अगर कहानी सुनते सुनते किसी को नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, तो नींद आनी थी तो हमें आ गई। इसका मतलब है कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुनाई जा रही है। तो बच्चों, स्कूल के पहले दिन यही सब कुछ हुआ। तो आपको याद है स्कूल में क्या क्या हुआ? मेरे स्कूल में नहीं, कल्याणी के स्कूल में। हम तो कल्याणी की बात कर रहे थे ना, तो फिर सोचिए कि कल्याणी का स्कूल का पहला दिन कैसे बीता। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले कल्याणी अपने पापा के साथ स्कूल गई। तो फिर उन्हें कौन मिला? उन्हें मिली नंदिनी दीदी। वही नंदिनी दीदी जो कक्षा एक को पढ़ाती हैं। फिर नंदिनी दीदी कल्याणी को क्लास में लेकर आई। अच्छा बताइए बच्चों, क्लास में क्या था? क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। अच्छा तो बताइए बच्चों कि बच्चे क्या कर रहे थे? शाबाश, सारे बच्चे आपस में हंस बोल रहे थे, एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे। तो बच्चे नाम क्यों पूछ रहे थे? अरे भाई, बच्चे पहली बार मिले थे एक दूसरे से, इसलिए परिचय और दोस्ती बढ़ा रहे थे। फिर क्या हुआ क्लास में? फिर सब बच्चों ने फरमाइश की नंदिनी दीदी से कि हम गीत गाएंगे, आप हमें अच्छा सा गीत सुना दीजिए। तो फिर नंदिनी दीदी और बच्चों ने मिलकर गीत गाया। अच्छा, फिर नंदिनी दीदी ने कहानी क्यों सुनाई? याद है आपको प्यारे बच्चों, नंदिनी दीदी ने दीपक की कहानी सुनाई। वही दीपक जो कहानी की किताब उठाकर लाए थे, उन्होंने नंदिनी दीदी को किताब दी और कहा कि दीदी हमें ये कहानी सुना दीजिए। तो फिर नंदिनी दीदी ने बच्चों को कहानी सुनाई, और इस तरह से आज का स्कूल का पहला दिन कल्याणी का समाप्त हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी स्कूल का दिन पहला बीत गया। ऐसा नहीं है, हमने तो आपको सिर्फ नंदिनी दीदी के साथ बिताया हुआ स्कूल का पहला दिन बताया है। अभी तो स्कूल में बहुत कुछ हुआ। टन टन टन टन टन टन घंटी बजी और सब बच्चों ने अपना अपना टिफिन खोला और भोजन किया। जो बच्चा भोजन नहीं लेकर आया था, सारे बच्चों ने अपने हिस्से का भोजन उनको देना शुरू किया। उसमें एक बच्चा था नंदू। तो नंदू आज भोजन लेकर नहीं आया था, तो सब बच्चों ने नंदू से कहा, ये लो नंदू, तुम मेरे साथ भोजन कर लो। कल्याणी ने कहा, अमरजीत ने कहा, रोहित ने कहा, बबली ने कहा, दीपक ने कहा और झुमके ने कहा। तो नंदू सबके साथ भोजन करने लगे और फिर सब बच्चों ने अपने हाथ धोए, खाना खाया और फिर उसके बाद वे खेलने के लिए चले गए। खेलते खेलते एक घंटा बीत गया और फिर
टन टन टन टन टन टन की आवाज आई और सारे बच्चे

0: बच्चे वापस क्लास में आ गए। यहाँ क्या देखते हैं, क्लास में एक बहुत बड़ी सी दरी बिछी हुई है और एक हारमोनियम है, तबला है। नंदिनी दीदी के साथ दो और नए लोग आए हैं। बच्चों, आपको पता है ये नए लोग कौन थे? नहीं पता? तो मैं बता रही हूँ कि दो नए लोग थे उसी स्कूल के संगीत शिक्षक। एक का नाम था गर्वित और दूसरे का नाम था मयंक। तो गर्वित और मयंक ने, एक ने हारमोनियम संभाला और एक ने तबला संभाला। और फिर नंदिनी दीदी ने कहा कि आज हम सिर्फ गीत गाएंगे। तो सारे बच्चे मिलजुल कर गीत गाने लगे, लेकिन इस बार गीत गाने के लिए लय ताल का सारा सामान क्लास में मौजूद था। तो सब बच्चों ने मिलकर तबले की ताल पर गीत गाए। और पता है बच्चों क्या हुआ? गीत गाते गाते बहुत सारे बच्चे उठे और नाचने लग गए। और इसके बाद जो धमाल मचा क्लास में, सारे बच्चे गीत पर नाचने लगे। नंदिनी दीदी देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि आज बच्चे इतना खुश हैं। तो उन्होंने, पता है मनी मन क्या सोचा? उन्होंने बच्चों मनी मन ये सोचा कि ये सारे बच्चे हमेशा ऐसे ही स्कूल में हंसते रहें, गाते रहें, खुश रहें। और ऐसे करते करते वे धीरे धीरे पढ़ना लिखना भी सीख जाएंगे। तो ऐसा था कल्याणी का स्कूल का पहला दिन। आपको कल्याणी के साथ स्कूल का पहला दिन बिताया हुआ कैसा लगा? मुझे मालूम है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप भी कल्याणी के स्कूल की बातों को अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, दादी को, नानी को, सबको बताइएगा कि कल्याणी का स्कूल का पहला दिन कैसा रहा। ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं और फिर हम आपके साथ दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को उषा दीदी का नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क

0: करें।
1: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
2: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
1: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
3: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
4: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
5: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं, और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है, और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर

सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: खतरनाक इतनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई

0: फैलने वाली बीमारी।
1: यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, यानी कि मीठे मक्के के बारे में। मीठा मक्का क्या है और कब इसकी बुआई की जाती है, क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमारी रश्मि। आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार। मैं आज आपको मीठी मक्का की वैज्ञानिक खेती की विधि के बारे में बताऊंगी।
1: तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि स्वीट कॉर्न क्या है? मक्का तो हम जानते हैं, पर स्वीट कॉर्न क्या है?
2: मीठी मक्का मीठी और स्वादिष्ट एक विशेष प्रकार की मक्का है जिसका दाना अधिक मीठा होता है। इसे सब्जी और अनेक तरह के पकवान जैसे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। और हरा भुट्टा तोड़ने के तुरंत बाद हरे पौधे को काटकर हरे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए हम स्वीट कॉर्न को गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर आदि के साथ इसका रबी में और मौसम में अंतर्वर्ती फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी जलवायु के बारे में मैं बताना चाहूँगी। स्वीट कॉर्न की बुआई के समय मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और भूमि के चयन को लेकर हम बात करें तो आम तौर पर इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल में इसका उपयुक्त खेती नहीं हो सकता है। खेत में जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। स्वीट कॉर्न की बुआई जिस खेत में करनी होती है उसमें 400 मीटर तक अन्य किसी दूसरी वैरायटी की किस्म नहीं लगानी चाहिए। और जब हम बात करें कि 400 मीटर की दूरी के अंतर्गत मक्का किसी और किस्म का नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी ने लगा दिया है 400 मीटर के सर्कल में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप अपनी बुआई करें, ताकि नरमंजर आने में 15 दिन का इंटरवल होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात हम करें तो खेत की जुताई को पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई के 20 दिन पहले लगभग 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिला देना चाहिए। बुआई के समय को हम लेकर बात करें तो उत्तरी भारत में खरीफ में जून से जुलाई और रबी में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई की जानी चाहिए।
1: और बुआई के साथ मैम ये सवाल भी आता है कि बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
2: जी, बीज की मात्रा के बारे में मैं बताऊंगी कि सामान्य मिठास वाली, इसे स्टैंडर्ड स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसके लिए बीज की मात्रा है 9 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। और अधिक मिठास वाली मक्का, जिसे सुपर स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसे 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। जहाँ तक पंक्तियों और पौधों से पौधों की दूरी की बात हम करें बुआई के समय, तो स्वीट कॉर्न की बुआई 60 से 75 सेंटीमीटर कतारों से कतारों के बीच तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों से पौधों के बीच की दूरी रखनी चाहिए। पौधों की संख्या, उपयुक्त पौधों की संख्या 66 से 67,000 प्रति हेक्टेयर मेंटेन करनी चाहिए और बीज उपचारित करके इसे लगाना चाहिए। जहां तक बीज उपचार की बात है, बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को थिरम 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए तथा तना छेदक से बचाव के लिए फिप्रोनिल 6 ml प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई का सही तरीका अगर हम बात करें तो बीज कतारों में और मेड़ों पर बोने चाहिए। स्वीट कॉर्न की सभी किस्मों के बीज की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर की जानी चाहिए, परंतु अधिक मिठास वाली सुपर स्वीट वैरायटीज को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं। आरंभ में प्रत्येक स्थानों पर 2 बीज डालें, ताकि गर्मी में अंकुरण के 10 दिन एवं सर्दी में 15 से 20 दिन के बाद प्रत्येक स्थानों पर एक ही पौधा रहने दें।
1: और मैम, बीज की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी बता दीजिए।
2: उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं बताऊंगी। स्वीट कॉर्न की खेती के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र की प्रचलित जो भी वैरायटीज हैं इनका चुनाव करें। जैसे भारत में स्वीट कॉर्न की कुछ प्रचलित किस्में हैं, इनमें माधुरी, प्रिया, अल्मोरा स्वीट कॉर्न, विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न और सिंजेंटा की सुगर 75 है, इसे आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी उपज देने वाली किस्में मैंने आपको बताई हैं और इनकी मिठास भी 15 से 20 प्रतिशत मतलब सामान्य मक्के से ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए स्वीट कॉर्न को लोग खाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं।

0: और ये कहाँ लगाई जाती हैं? अनुमोदित क्षेत्र के बारे में मैं बताऊंगी। खरीफ में संपूर्ण भारत में तथा रबी में प्रायद्वीपीय भारत में इसे उगाया जा सकता है।
1: और मैम, कटाई का क्या समय होता है? क्योंकि जब हम स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो कटाई का समय बेहद विशेष हो जाता है।
0: खरीफ में इसे 70 से 75 दिन में हम ये तैयार हो जाता है, इसकी हम कटाई कर सकते हैं। और रबी में 80 से 85 दिन में ये तैयार हो जाता है, आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो 110 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे भुट्टे को हम तुड़ाई कर सकते हैं, और 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका चारा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये हमारे, अगर आपके पास पशु है तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं स्वीट कॉर्न की खेती करके। और उर्वरक प्रबंधन की बात हम करें तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक हेक्टेयर खेत में 150 से 170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 से 80 किलोग्राम पोटास डालनी चाहिए। खेत में अगर जिंक की कमी हो तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डालना चाहिए। फास्फोरस, पोटास, जिंक सल्फेट की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डालें तथा नाइट्रोजन को 5 भागों में बांटकर विभिन्न अवस्थाओं में डालें। और 10% नाइट्रोजन बुआई के समय, 20% नाइट्रोजन 4 से 5 पत्तों की अवस्था पर डालें, 30% नाइट्रोजन 8 पत्तों की अवस्था पर एवं 30% नाइट्रोजन पुष्पन की अवस्था पर डालें जब उसमें नरमंजरी, मादा मंजरी आने लगती है, और 10% नाइट्रोजन भुट्टे की दूधिया अवस्था में, जिस समय दूध बनता है उस अवस्था में डालें। उर्वरक को बीज के 7 से 8 सेंटीमीटर के करीब डालना चाहिए।
1: और मैम, खरपतवार का कैसे प्रबंध करना चाहिए, उसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
0: जी, खरपतवार प्रबंधन के लिए चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और अन्य खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एट्राजीन 1 से 1.5 केजी को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर एक हेक्टेयर में बुआई के तुरंत बाद, लेकिन अंकुरण के पहले छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है, हल्की मिट्टी में 7 से 8 सिंचाई एवं भारी मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
1: किस तरीके से फसल कटाई करनी चाहिए और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सिंचाई में हमें ये भी ध्यान रखना है कि पौधे के में जब पुष्पन और दाना भराव का समय होता है उस समय हमें नमी बरकरार रखनी है खेत में, और सर्दी में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जमीन में नमी बरकरार रखें। एवं कीट प्रबंधन की मैं चर्चा कर लूं, कीट प्रबंधन के लिए आप तना छेदक कीट है इसे नियंत्रित करने के लिए पौधा जमने के 10 दिन बाद 85% वेजिटेबल पाउडर वाला कार्बोलिल को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गोब में छिड़काव करें। और अंतर्वर्ती फसलें भी इसमें ली जाती हैं, विभिन्न प्रकार की ये खासियत है। तो इसमें आप सर्दी में स्वीट कॉर्न के साथ गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर, गोभी, पालक, धनिया इत्यादि सफलतापूर्वक आप उगा सकते हैं। और स्वीट कॉर्न को मेड़ के दक्षिणी भाग में एवं अंतर्वर्ती फसल को मेड़ के उत्तरी भाग में लगाना चाहिए। स्वीट कॉर्न के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी अंतर्वर्ती फसल की लगाने की स्थिति में 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अंतर्वर्ती फसलों की खेती शहर के आसपास के क्षेत्रों में करने से किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। और फसल कटाई की बात आपने छेड़ी थी तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगी कि बीज के अंकुरण के लगभग 45 दिनों के बाद नर मंजरी आती है एवं इसके 2 से 3 दिनों के बाद मादा मंजरी आती है। और गर्मी के मौसम में परागण के 18 से 22 दिनों के बाद स्वीट कॉर्न के भुट्टे की तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद जब आप इसकी तुड़ाई करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसे रेफ्रिजरेटेड वैन में ही हम ट्रांसपोर्ट करें। और सर्दी के मौसम में परागण के 25 से 30 दिनों के बाद भुट्टे की तुड़ाई की जा सकती है। इस अवस्था में तुड़ाई की अवस्था को पहचानने के लिए हम ये देख सकते हैं कि ऊपरी भाग यानी सिल्क के सूखने से मादा मंजरी के सूखने की अवस्था में इसे हम पहचान सकते हैं कि ये मैच्योर हो गया है। और जब हम छिलका हटाते हैं तो दाने में दूध भरा होता है, इसे दबाने से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, तो इस अवस्था में हम इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। हरे भुट्टे के तोड़ने के बाद बचे हुए हरे पौधे के चारे को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। भुट्टे की तुड़ाई सुबह या शाम में करें ताकि जो नमी है वो बरकरार रहे और ये ज़्यादा मॉइस्चर लॉस ना हो, ताकि मिठास बनी रहे। कटाई उपरांत प्रबंधन की बात करें तो भुट्टे की तुड़ाई के बाद इसे तुरंत मंडी में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे लकड़ी के डब्बे या कार्टून आदि में रखना चाहिए। कमरे के तापमान पर 24 घंटे के अंदर स्वीट कॉर्न के भुट्टे का 50% शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रो कूलिंग एवं पैकेजिंग कर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का ही प्रयोग करें। और ये सारी खास

0: खासियत है स्वीट कॉर्न में। स्वीट कॉर्न की खेती से किसान भाई काफी लाभान्वित हो सकते हैं। इसे काफी चाव से खाया जाता है, इसके विभिन्न व्यंजन बनते हैं तो, और इसका सीड भी काफी ज्यादा कॉस्टली मिलता है। तो किसान भाई इसका बीज को बेच सकते हैं, बीज बनाकर, या इसकी खेती करें और इसे काफी लाभान्वित हों।
1: यानी कि स्वीट कॉर्न उगाने के बाद तो फायदे होते ही हैं और साथ में बीज भी बेचकर किसान भाई बहन बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि जो भी मक्के की खेती करने की सोच रहे होंगे वो स्वीट कॉर्न के बारे में भी सोचेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी।
0: धन्यवाद।
1: आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
3: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
10: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
9: और लाइट बिल के,
10: अब 0 रुपए कैसे दूं?
9: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
11: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की वीएलएम 389, आरयू8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब

0: एक डैम बंडिंग रिचार्ज पिट कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम ज्योति D96 पंतशुभ्रा इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: prší. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। आज के समय में मिट्टी की जरूरत और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है हमारी कि हम जैविक खेती को अपनाएं। और बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती को अपना भी रहे हैं और ऐसे में उनके मन में सवाल आता है कि जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा। आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैविक खेती क्या होता है।
1: देखिए, आज की जरूरत है। जैविक खेती को विषमुक्त खेती भी कहते हैं, यानी जो बिना जहर वाली जो खेती है, जिसमें ऐसे उत्पाद पैदा हो जिसमें कोई जहरीला चीज ना हो, उसको हम जैविक खेती कहते हैं। हाँ, परिभाषा के रूप में यदि जानना चाहे तो यह है कि कृषि की वह विधि जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कृत्रिम कीटनाशकों या आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जैविक पदार्थ है उसका ही हम प्रयोग करते हैं और उससे जो खेती होती है उसको हम जैविक खेती कहते हैं।
0: जी, तो सर, जैविक खेती के फायदे क्या क्या है?
1: बहुत समचीन प्रश्न है। जैविक खेती आज की नीड है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है, आने वाली जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है, तो मिट्टी को ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम 140 करोड़ के आसपास हैं, उम्मीद करता हूं कि 2050 तक हम बढ़ करके लगभग 170 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। और इस 170 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करवाना, वह भी ऐसी मिट्टी से जिस मिट्टी में कि लगभग 6 पोषक तत्व हमारी मिट्टी में कम हो गया है, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वह तो हर एक किसान लगभग प्रयोग कर रहा है। यूरिया, DAP, पोटास तो प्रयोग ही कर रहा है। बहुत सारे किसान जिंक भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं बोरन भी प्रयोग करते हैं बोरेक्स के रूप में। साथ ही साथ यदि आप देखें तो कहीं कहीं सल्फर का प्रयोग करते हैं। यानी 6 तत्व तो किसान भी जान रहा है कि वो लिमिटिंग फैक्टर है। साथ ही साथ जो शोध हुआ है, जो मिट्टी की जांच हुई है, उसे यह भी पता चला है कि हमारा जो लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, मॉलिब्डिनम है, यह भी जल्दी ही कम होने वाला है। और उस सारी चीजों के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि कार्बन हमारी मिट्टी में कम हो गया हुआ है। आज से 70 साल पहले लगभग हमारी मिट्टी में 1% के आसपास कार्बन था, जो घट करके अब बामुश्किल 0.3-0.4% रह गया है। और यह इतना जल्दी कार्बन बढ़ता नहीं, 4-5 साल तक यदि हम ढांचा पलटते हैं तो बामुश्किल 0.1-0.2% कार्बन हमारी मिट्टी में बढ़ता है। हम चाहते हैं वायुमंडल में कार्बन कम रहे, मैं चाहता हूं कि मिट्टी में कार्बन बढ़े, लेकिन हो गया है उल्टा। हमारे वायुमंडल में कार्बन बढ़ता चला जा रहा है, हमारी मिट्टी में कार्बन कम हो रहा है। और यह तभी दूर होगा जबकि हम ऐसी चीजों को अपनी मिट्टी में डालें जिसमें कार्बन हो, चाहे वह हरी कोई चीज, यानी कि कहने का मतलब हरी खाद पलटे, या चाहे जो हमारे जैविक खाद हैं, चाहे वो कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे नाडेप कंपोस्ट हो, इन सारी तरह की चीजों को हम अपने मिट्टी में डालें जिससे कार्बन बढ़े। यह निहायत ही जरूरी है और आने वाली जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा यदि हम चाहते हैं कि उसका सुनिश्चित हो सके तो इसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें करें।
0: जी सर। सर, अगर हम मिट्टी की उर्वरता के बारे में बात करें तो जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
1: अब यह पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ये है कि जैसे आपने एक चीज पूछा था कि जैविक खेती के क्या फायदे, तो एक तो पहली बात कि हानि रहित शुद्ध और पौष्टिक भोजन हमें मिल सकता है तो जैविक खेती से मिल सकता है। पर्यावरण

0: पर्यावरण का यदि संरक्षण होना है, वह भी जो हमने अभी पद बताया भी, वह भी हो सकता है तो जैविक खेती से हो सकता है। और लंबी अवधि तक यदि उपजाऊ जमीन चाहते हैं तो वह भी हमें मिलेगा तो जैविक खेती से मिलेगा। अब यह है कि जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे होता है? तो एक तो पहली चीज कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पूरी तरह बंद होता है इसमें। हालांकि कुछ रसायन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, ये सारी चीजें अलाउड हैं, कुछ केमिकल्स अलाउड हैं, लेकिन जिसका कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं है वही सिर्फ केमिकल्स हमारे लिए अलाउड हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें पूरी तरह बंद होता है। इससे क्या होगा कि रासायनिक उर्वरकों के चलते जो हमारी मिट्टी में कोई विषाक्त चीजें आ रही हैं वो विषाक्त चीजें नहीं आएंगे। दूसरी बात, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इन सब का प्रयोग उसमें होता है, जिससे क्या होता है कि ये लंबे समय तक हमारी जो है उर्वरता बनी रहती है। साथ ही साथ जो एक चीज है, जो लाभदायक जीव जीवाणु हमारे मिट्टी से कम हो गए हुए हैं उनकी संख्या बढ़ती है। एक चीज मैं बताऊं कि जितने लाभदायक जीवाणु हैं उनको एनर्जी सोर्स के रूप में कार्बन चाहिए, और कार्बन मिलेगा तभी जब कोई कार्बनिक पदार्थ उसमें हम डालेंगे। तो वह कार्बनिक पदार्थ जब उसमें आ जाता है तो उससे वह लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, यदि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पिताजी या दादाजी हैं, उनसे पूछिए कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया था, कभी एजोटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग किया था, कभी पीएसबी कल्चर का प्रयोग किया था, तो कहेंगे नहीं, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि ये लाभदायक जीव जीवाणु हमारी मिट्टी में थे। और क्यों थे? क्योंकि इसमें कार्बन था, कार्बन ज्यादा होने से उसकी जल धारण क्षमता भी ठीक ठाक होती है। साथ ही साथ उसमें जो दूसरा फायदा होता है वह यह है कि उसको जो खाने के लिए चाहिए एनर्जी सोर्स जो चाहिए, वो एनर्जी सोर्स भी वहां से मिल जाता था, इसीलिए लाभदायक जीव जीवाणु वहां पर थे। यहां केचुआ आपके मिट्टी में खूब थे, किसानों के मित्र कहे जाते हैं, लेकिन आज या तो तालाब तक सिमट के रह गए हैं या बगीचा तक सिमट करके रह गए हुए हैं। तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उनकी संख्या भी कम हो गई है। और तीसरी बात, जो फसल चक्र हम अपनाते हैं जैविक खेती में, उसमें बीच में कहीं ना कहीं दलहनी फसल को जरूर रखते हैं, और ये दलहनी फसल बड़ी अच्छी चीज है। ये समझिए अपने आप में यूरिया बनाने की फैक्ट्री है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ला करके हमारी मिट्टी में डालता है। भाई हम क्या करते हैं, बुश एंड हैबर प्रोसेस से जो हम यूरिया वगैरह बनाते हैं वहां पर भी तो यही करते हैं। और यहां पर यदि हम इस चीज को देखें तो यहां पर भी यह काम जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं और उसके शरीर में जो एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, उसके कारण यह सामान्य तापक्रम में हो जाता है। जबकि यूरिया के फैक्ट्री में देखिएगा तो 300-400 डिग्री टेम्परेचर वहां पैदा किया जाता है और उससे बनता है, लेकिन यहां पर सामान्य तापक्रम पर ही बन जाता है। तो ये सारे फायदे हमारे हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जैविक खेत में मिट्टी की उर्वरता, तो इनसे उर्वरता हमारी काफी बढ़ती है।
1: जी सर। सर अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात करें तो जैविक खेती जब हमारे किसान भाई बहन अपनाते हैं तो उस क्रम में क्या क्या कृषि कार्य करने चाहिए जिससे पोषक तत्व का प्रबंधन हो सके?
0: तो एक चीज तो अभी हमने बताया कि फसल चक्र का चयन बहुत ही बढ़िया करना चाहिए। क्या बढ़िया होगा? जब बीच में हम कोई दलहनी फसल लेते हैं तो फसल चक्र हमारा ठीक ठाक है। तो इसीलिए एक तो पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। अब आप लोग ढैंचा वगैरह वगैरह का प्रयोग करते हैं, आप जान के ताज्जुब होगा कि ये जो है कम से कम 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल देता है, मोटा मोटी 100 किलोग्राम डाल देता है, यानी कि 220 किलोग्राम के आसपास यूरिया हमारी मिट्टी में डाल देता है। जी तो सोचिए कि कितना फायदा का काम कर रहा है। तो पहली तो बात हमने कहा कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। दूसरी बात, खेती में हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, निश्चित रूप में करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम छोटे थे उस समय हल से खेती होती थी, बैल से खेती होती थी, तो उस समय जो बैल का गोबर था वो हमारी खेती में जाता था, लेकिन अब बैल से तो खेती हो नहीं रही है। तो अब क्या है कि हर एक किसान के पास गोबर नहीं है जो गोबर का खाद बनाने की बात करेंगे, तो इसीलिए उनको चाहिए कि कम से कम हरी खाद का प्रयोग करें। तो हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा कि बायोमास, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधा कार्बन को अपने शरीर में रखा और उसको जब हमने मिट्टी में पलट दिया तो वो कार्बन हमारी मिट्टी में आ गया, तो यह भी हमको फायदा हो गया कि कार्बन मिल गया। और साथ ही साथ यदि वो दलहनी फसल है, वह जो हरी खाद वाला फसल है वह भी यदि दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी किया, साथ ही साथ उसकी जड़ नीचे स्तर तक जाती है तो जो नीचे स्तर में हमारे पोषक तत्व हैं उसको भी खींच

0: करके ऊपरी सतह में ला देता है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी है, फसल सामान्यतः उसी से पोषक तत्व लेकर के अपना काम चलाता है और आगे बढ़वार करता है।
1: जी सर। सर अभी आपने हरी खाद के बारे में बात की, तो हरी खाद में कौन कौन से फसल हमारे किसान भाई बहनों को लगाने चाहिए और कब लगाने चाहिए, साथ ही उसके फायदे के बारे में आप हमें विस्तार से बता दीजिए।
0: देखिए ऐसा है कि जो हरी खाद के रूप में है, सनई का भी प्रयोग होता है, धैंचा का भी प्रयोग करते हैं, उर्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, मूंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लोबिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं ग्वार का प्रयोग किया जाता है, ज्वार का भी प्रयोग किया जाता है, बाजरा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सामान्य रूप से है जो अच्छी बात होगी वो ढैंचा का प्रयोग होगा। ढैंचा का प्रयोग सामान्यतः अप्रैल से जुलाई के महीने में इसकी बुआई की जाती है और इसका बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर आपको बायोमास दे देगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि अभी हमने पहले भी जिक्र किया था कि 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यह स्थिरीकृत करता है। आप वायुमंडल में देखिए तो लगभग 78-79% हमारा नाइट्रोजन है, लेकिन वह नाइट्रोजन फसल के लिए किसी काम का नहीं है। तो अब उस फसल को उसके उपलब्ध रूप में जब तक हम परिवर्तित नहीं कर देते हैं, जैसे हम धान नहीं खाते हैं, धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात पकाते हैं तब खाते हैं, इसी तरह से यह नाइट्रोजन जो वायुमंडल में गैस के रूप में है वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसको जब हम नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में परिवर्तित करते हैं तभी वह पौधे को उपलब्ध हो पाता है। तो यह उपलब्ध करवाने का काम भी करता है, इसलिए ढैंचा सबसे बढ़िया होगा। वैसे तो हमने बताया कि ये कई चीज हैं, सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, लोबिया, ग्वार, ये सब के सब प्रयोग किए जाते हैं।
1: जी सर। सर जो जैविक खेती अपनाते हैं वो कई तरह के जैविक खादों का भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में, हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि उसमें कितना एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है।
0: देखिए एक चीज बात बताऊं कि वास्तव में कहीं बाहर से नहीं लाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट ही बनाया तो वह केचुआ कहीं बाहर से नाइट्रोजन को लाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो कुछ भी आप जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं उस सबस्ट्रेट में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, इसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस होगा, पोटास होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, यदि सामान्य जो कंपोस्ट प्रयोग किया जाता है उसमें 0.4 से लेकर 2% तक नाइट्रोजन होता है, 0.4 से 1% के बीच में लगभग फास्फोरस होता है और 0.5% से लगभग 3% तक लेकर के पोटास होता है। इसी तरह से जो नाडेप कंपोस्ट है इसमें आपको 0.75% यानी 0.25% से लेकर 0.25% तक नाइट्रोजन होगा, 0.7 से लेकर 0.9% तक फास्फोरस होता है, 1.2 से लेकर 1.4% तक पोटास होगा। खली भी प्रयोग में लाया जाता है, तो खली को यदि देखिए तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, 2.5% से 8% तक नाइट्रोजन होगा, 1 से लेकर 3% तक फास्फोरस होगा, पोटास भी 1.2 से लेकर 2.2% के बीच में होगा। कहीं कहीं जो हड्डी का चूड़ा है उसका भी प्रयोग किया जाता है, तो जो हड्डी का चूड़ा है उसमें 3 से लेकर 4% तक नाइट्रोजन होता है, 20 से 25% तक फास्फोरस होता है। जो मछली का खाद बनाते हैं उसमें यदि देखिएगा तो 4 से लेकर 10% तक नाइट्रोजन होता है और 3 से लेकर 9% तक फास्फोरस होता है और 0.3 से लेकर 1.5% तक पोटेशियम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग चीजों में अलग अलग है, लेकिन जो हमारा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है, सामान्य वर्मी कंपोस्ट में तो उतना नहीं होता है। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वह भी कहता है कि यदि इसमें 1% नाइट्रोजन है तो ठीक है जी, 1% या उससे ज्यादा होना चाहिए, फास्फोरस 0.8% या उससे ज्यादा होना चाहिए, पोटास 0.8% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारा जो विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो बनाता है वह समृद्ध केचुआ खाद बनाता है और समृद्ध केचुआ खाद में आपको खुशी होगी जान करके कि 2% के ऊपर ही रहता है, 0.25% या उससे ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन होता है, साथ ही साथ इससे फॉस्फोरस भी 2.5% से लेकर 3.5% तक होता है, साथ ही साथ इससे पोटास भी 1% के ऊपर होता है। तो यह जो वर्मी कंपोस्ट है वह चूंकि समृद्ध केचुआ खाद है इसीलिए इसमें ज्यादा होता है और किसानों को इसका निर्माण भी करना चाहिए और इसका प्रयोग भी करना चाहिए।
1: जी सर। सर अब हम गोबर की सड़ी खाद की बात करते हैं और साथ ही इसकी तुलना में अगर हम वर्मी कंपोस्ट, हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें और उसका प्रयोग करें तो उसके क्या फायदे होते हैं?
0: देखिए जो गोबर की खाद है, गोबर का खाद कौन बनाता है? जो भी सूक्ष्म जीवाणु है वही बनाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एक्नोमाइसिट्स हो, यही सब बनाते हैं। तो वह बनाया कौन? सूक्ष्म जीवाणु। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है उसको सूक्ष्म

0: जीवाणु भी बना रहा है, साथ ही साथ केचुआ भी बनाता है। तो एक मोटी सी बात समझिए, जो केचुआ के शरीर से जो कुछ भी निकल रहा है, जैसे पेट ट्रॉफिक झिल्ली निकला, तो वह क्या है कि जलवाष्पन को रोकने का काम करता है। तो वह जो आपने बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया, तो वह ज्यादा पानी को ऊपर नहीं जाने दिया, वह मिट्टी में ही रखा। इसी तरह से जो उसमें एंजाइम्स या हार्मोन्स इस सब चीज का जो सिक्रीशन करता है, उसका जो श्रावण करता है, वह भी हमारे वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो गोबर के खाद की तुलना में हमारा वर्मी कंपोस्ट ज्यादा बढ़िया होता है। अब यदि हम पोषक मान के आधार पर आते हैं, तो गोबर के खाद में देखिएगा तो उसमें लगभग 0.5% नाइट्रोजन होता है, और अभी ही हमने बताया कि वर्मी कंपोस्ट में 2.25% समृद्ध केचुआ खाद में नाइट्रोजन होगा। फॉस्फोरस ही उसमें 0.2% यानी 0.25% के आसपास है, जबकि हमारा जो समृद्ध केचुआ खाद है उसमें 2.5 से लेकर 3% है। पोटास भी वहां सिर्फ 0.5% है, यहां पर लगभग 1% के आसपास है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां पर यदि 0.5% है, तो 4 क्विंटल मुझे गोबर का खाद का प्रयोग करना पड़ता था, उसके स्थान पर यहां पर मुझे सिर्फ 1 क्विंटल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान को जब कम मात्रा में प्रयोग करना होगा तो वह उसका प्रयोग कर पाएगा, और यदि ज्यादा मात्रा में हम उसको कह दें तो उतना उसके पास उपलब्ध ही नहीं है, तो प्रयोग नहीं हो कर पाता है, और इसीलिए इसका प्रयोग घटता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है।
1: जी सर। सर अब हम बात करते हैं जैव उर्वरक के बारे में, तो जैविक खेती में जैव उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, और किस किस जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके क्या फायदे होते हैं?
0: देखिए, जैव उर्वरक ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाए, उर्वरक किसके लिए करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करने के लिए करते हैं, तो ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग हो उसको जैव उर्वरक कहते हैं। तो अब इसमें देखिए कि जैव उर्वरक के रूप में जो नाइट्रोजन कौन कौन देगा, तो दलहनी फसल में देता है राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम, राइजोबियम ही समझिए, किसान भाई हमारे ये राइजोबियम के नाम से ही ज्यादा जानते हैं, तो राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसमें दलहनी नहीं है, जिसकी जड़ में गांठ नहीं बन रहा है, उसमें अजोटोबैक्टर या एजोस्पर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में है, एक है सिम्बियोटिक यानी सहजीवी, तो सिम्बियोटिक में जड़ में गांठ होता है, तो उसका फायदा क्या होता है कि वह जो रहने का मकान है और खाना है उसने दलहनी फसल ने दे दिया, इसके एवज में इसने नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, तो यह ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स करता है, यानी 36 किलो से लेकर के 600 केजी पर हेक्टेयर या वो कर सकता है, उसका फिक्सेशन कर सकता है, स्थिरीकरण कर सकता है। इसी तरह से दूसरा हो गया आपको जो अजोटोबैक्टर या पीएस इसकी एजोस्पर्म की बात किया, तो उसके जड़ से जो रस निकलते हैं उससे करता है। तीसरी बात कि जहां पर मान लीजिए वह भी बात नहीं है, तो वहां फ्री लिविंग होता है, यानी जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो उसको खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना। यदि खाने की व्यवस्था खुद कर लिया, जैसे नीलहरी शैवाल हरा होता है तो अपना खाना खुद बना लेता है, तो जो खाने की व्यवस्था खुद कर ले रहा है वो नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा फिक्स करेगा, 25 केजी से लेकर के 40 केजी तक वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा। लेकिन जो जैसे ड्रग्सिया है, बजरंगिया है, ये सब खाना नहीं बना सकता है, तो ये बहुत कम मात्रा में करता है। इसी तरह से अजोला है, अजोला जो है यह आपको एक फर्न होता है अजोला नाम का, उसी के बीच में नीलहरी शैवाल रहता है, तो ये काफी नाइट्रोजन आपको फिक्स करता है। तो ये कई तरह के आपके ये हैं, तो ये तो मैंने नाइट्रोजन की बात कहा। इसके अतिरिक्त यदि देखिए तो जो फास्फोरस हमारी मिट्टी में है वो काफी है, लेकिन पौधे उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो फास्फोरस उसका प्रयोग यदि नहीं ये नहीं कर पाते हैं वो जो हमारी मिट्टी में, तो कुछ फास्फोरस घुलनकर जीवाणु आते हैं, पीएसवी या पीएसएम के नाम से लोग कहते हैं, तो ये फास्फोरस घुलनकर जीवाणु जो है वो फास्फोरस को घुलाने का काम करते हैं। इसी तरह से पोटास मोबिलाइजर है, पोटास को घुलाने का काम करेंगे। इसी तरह से जिंक मोबिलाइजर भी आ गया हम मार्केट में, तो जिंक को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखिए तो जैव उर्वरक कई तरह के हैं, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम भी करते हैं, फास्फोरस को घुलाने का भी काम करते हैं, पोटास की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं, जिंक को भी की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं। अब लेकिन सबके प्रयोग का मोटा मोटी तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तरीका क्या अलग है, एक तो बीज उपचार आप करते हैं, तो जब बीज उपचार आप करते हैं, अब मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए राइजोबियम का कोई प्रयोग करता है, तो 50 से 100 ग्राम उसने गुड़ को लेकर के 0.5 लीटर पानी में उसको घोल लिया, गरम कर लिया, गरम करके फिर ठंडा कर दिया। अब जब ठंडा हो गया तो उसमें 200 ग्राम कल्चर आपने प्रयोग कर दिया, अब प्रयोग करके उसको 10 किलो बीज पर आपने डाल दिया, अब उसको हल्के हाथ आपने मिला दिया जिससे कि वह कल्चर का उसके ऊपर लेप लग जाए, बस यही काम करना है, और लेप लग गया तो छाया में ही उसकी बुआई कर लिया। ये काम आप एजिटोबैक्टर में भी कर सकते हैं।

0: ये काम आप एजोस्पर्म का थोड़ा तरीका अलग होगा तो आप इसमें भी कर सकते हैं, एजोटोबैक्टर में भी कर सकते हैं, इवन पीएसवी का भी प्रयोग इस ढंग से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मिट्टी में सीधा प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, कम से कम 3.5 से 4 केजी पर एकड़ की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। हाँ, कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि वह बिचड़ा का प्रयोग उपचार करते हैं, तो बिचड़ा का यदि उपचार करना है तो आप 4 लीटर पानी में 1 केजी कल्चर डाल करके उसी में जो बिचड़ा है उसकी जड़ को भिगा करके 15 मिनट आपने रख दिया और उसको रख करके उसके बाद आप बाहर निकाल करके तब उसको आप रोपाई कर दिए। लेकिन यदि कोई कंद का प्रयोग करता है, जैसे कंद है, आलू ही है, उसको यदि उपचारित करना चाहता है तो वहां 15 लीटर पानी में आप 1 केजी कल्चर डालिए और उसको डाल करके 15 मिनट के लिए उसको डुबा करके छोड़ दिया, फिर छाया में निकाल करके रख दिया, उसके बाद उसकी आपने रोपाई कर दी। तो ये सब तरीके हैं, जो तरीके का प्रयोग करते हैं तो काफी हमारा नाइट्रोजन भी बच जाता है और हमारी मिट्टी में जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या भी बढ़ती है। और विशेष विस्तार में जानने के लिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय उनके बगल में है, उनके लिए हर समय तैयार है, वो यहाँ आए और जो संबंधित वैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में आकर के उसको विधिवत प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली सीखें, तब जा करके वो ज़्यादा विधिवत उसको कर सकते हैं।
1: जी सर। सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: हमने तो संदेश दे दिया कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। भैया मेरे, अब यह बताओ कि यहाँ बीकानेर से एक ट्रेन चल रही है, यहाँ से पंजाब से बीकानेर के लिए, उसमें इतने कैंसर पेशेंट्स रहते हैं कि उसमें उसका नाम ही लोग कैंसर ट्रेन रख दिया है। तो यदि आप खेती करते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपनी पत्नी को यदि बिना जहर की खेती नहीं फसल दे सकते हैं, ऐसा अनाज नहीं दे सकते हैं जो बिना जहर वाला है, तो खेती करने से क्या फायदा मेरे भाई? कम से कम मेरे लिए न सही, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए बिना जहर की खेती करो। यही मेरा संदेश है कि कम से कम यदि अपने लिए भी बिना जहर का यदि नहीं कर सकते हैं तो खेती में फायदा नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं खेती छोड़ दो, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि यदि टाटा बिरला को भी कोई कहता होगा तो विश्वास पर खाता होगा कि ये बिना जहर वाला है, ये जैविक है। लेकिन आपने खुद खेती किया है, आपको मालूम है ये बिना जहर वाला है या नहीं है। ये सौभाग्य टाटा बिरला अंबानी को भी नहीं होगा, जो सौभाग्य आपको है। इसीलिए आप थोड़ी सी मेहनत जरूर करें। कितना खाते होंगे भाई मेरे, छोटा सा परिवार चलता है, पहले की तरह 25-30 आदमी का तो परिवार होता नहीं है, मियां बीवी भी 2-4 बच्चे रहते। यदि आप 10 कट्ठा उपजाऊ जमीन अपने लिए चिन्हित कर लीजिए कि हम अपने लिए बिना जहर का पैदा करेंगे, तो आराम से कितना खाते होंगे, 2-3 क्विंटल चावल खाते होंगे, 3-4 क्विंटल गेहूं खाते होंगे, कुछ क्विंटल 1.5 क्विंटल दलहन तिलहन खाते होंगे, वह 10 कट्ठा जमीन में बहुत अच्छी तरह से उपज हो जाएगा। इसलिए उपजाऊ जमीन अपने लिए 10 कट्ठा चिन्हित करें और जरूर से जरूर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बिना जहर का पैदा कीजिए और उनको खिलाइए। यही मेरा संदेश।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपने जैविक खेती के बारे में बताया, उसके फायदों के बारे में बताया, साथ ही पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी आज हमने चर्चा की, तो हमारे किसान भाई बहनों को आज के इस चर्चा से काफी कुछ जानने के लिए, समझने के लिए मिला होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो।

0: में जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि,
2: किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में, और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
8: जैसा कि आप, हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नज़र आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
2: संक्रमण होने की
8: संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS

0: हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नजर आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2 साल 3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
1: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है?
0: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
1: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज्यादातर देखा जाता है,
0: ज्यादातर पाया ही जाता
1: है। और सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है?
0: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-6 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है,
1: अच्छा,
0: और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
1: और गला
0: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
1: और सर, एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
0: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
1: तो इसके लक्षण क्या?
0: ये नाम से ही स्पष्ट है लंगड़ी, अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांघ वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है शरीर का तापक्रम वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है, और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
1: टीकाकरण पर विशेष बल देना है, और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग भी होते हैं।
1: खुर और मुँह,
0: हाँ, तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
1: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
0: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है,
1: अच्छा।
0: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है, और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का

0: हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुरपका और मुंह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है, किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशु पालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
1: उनको नुकसान होता है,
0: दूध में काफी कमी आ जाती है और चलने में पैर के पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
1: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मायने रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे हम आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती हैं ये?
0: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
1: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
0: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी, जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो और ऊंचे स्थान पर रखें। वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें। उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वहाँ नमी की कमी रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियाँ हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती है?
0: जी, ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग हैं और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
1: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
0: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
1: अच्छा।
0: और

के रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहां जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी

0: एमडी, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
1: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज्यादा अच्छा होगा। आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु है उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं, अगर उनके पशु को बीमार फैल चुकी है, तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
0: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
1: जहां पर सभी पशु,
0: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहाँ पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें, या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल, जो जल जमाव है, वहाँ का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं, तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
1: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
0: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
1: अच्छा।
0: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
1: कृमिनाशक दवा
0: बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये, इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
1: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से, यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो हैं वो बीमार ना पड़े। और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटे मोटे उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
0: यहाँ तक है, जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको, जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, हाँ, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडिन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडिन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूँकि HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूँकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो इनिशियल सबको, सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है, तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क

0: हैं। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्टेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है, वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई जरूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का, तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ सबसे जरूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव। तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं, और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें, अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है, और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
1: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की, जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
1: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अजोला की खेती आप कैसे

0: रहा है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
1: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
4: FM Green, हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

आज अंग उमंग में हम बात करने वाले हैं भागलपुर के बारे में। जी हाँ, भागलपुर के नामों के बारे में। आपको पता तो होगा ही कि भागलपुर को अंग प्रदेश, अंग देश जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी भागलपुर के कई सारे नाम हैं और आज हम उन सारे नामों के बारे में बातें करने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं भागलपुर के बारे में, भागलपुर के नामों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम भागलपुर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भागलपुर बिहार के पूर्वी भाग में बसता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो सभी को पता है, यहाँ गंगा माता को कितना पूजा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और नाले हैं, लेकिन बात करें कोशी की, हालांकि ये सीधे भागलपुर से नहीं गुजरती है, पर कोशी का प्रभाव भागलपुर पे जरूर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भागलपुर के अलग अलग नामों के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भागलपुर आज के समय में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी मानी जाती है कि है ये एक लोक मान्यता है। इस नाम को समझे तो इसका मतलब होता है भाग्य का नगर, समृद्धि का नगर। और अभी यानी कि आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई नाम है तो वो भागलपुर ही है। इसके अलावा देशों में हम एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है सिल्क सिटी। जी हाँ, सिल्क सिटी बहुत ही प्यारा सा नाम है। और सिल्क सिटी इस नाम से क्यों जाना जाता है ये तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सिल्क से जुड़े हुए जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वो हैं। और यहाँ के जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं अपने देश भर में तो जाते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बड़ी डिमांड रहती है। इसी वजह से भागलपुर को लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम की, तो वो है चंपापुरी, चंपा नगरी, चंपावती। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चंपा के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जगह को चंपावती या चंपा भी कहा जाता था। अगर हम बहुत सारी किताबों में, लिटरेचर में देखें तो चंपावती नाम से भी इस जगह को जाना गया था। और अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में चंपापुरी को एक बहुत ही पवित्र जगह माना गया है। और साथ ही संस्कृत की कविताओं में और कालिदास के लेखों में अक्सर इस जगह को अक्सर मालिनी स्थित चंपा भी कहा गया है। तो ये कुछ जो नाम है बहुत ही रिलीजियस नाम है, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही लिटरेचर से जुड़े हुए नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो अंग देश के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है। और अभी भी कई जगहों पर हम भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो पहले 16 प्राचीन महाजनपद थे उनमें से एक हमारा ये अंग देश था। और यहाँ पर राज कौन करते थे? जी हाँ, यहाँ पर राज करते थे कर्ण। और इन्हीं के राज से जो अभी हमारे भागलपुर का नाम है ना वो पनपा था, वो बना था। आप सभी को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजा कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। मतलब उनसे उनका कवच मांग लिया गया था तो उन्होंने वो भी दे दिया था, वो भी युद्ध से पहले। जो भी राजा कर्ण के देश में यानी कि अंग देश में आता था उसके भाग्य उदय हो जाते थे। इसी वजह से तब इस जगह का नाम पड़ गया था। जो कुछ बाहर की नगरी से, बाहर के देशों से आकर यहाँ बसे, अंग देश में बसे या उनका यहाँ पर उद्धार हुआ तो उन्होंने अंग प्रदेश को भगदत्तपुरम कहना शुरू कर दिया। भगदत्तपुरम यानी कि जो जहाँ पर किसी का भाग्य उदय हो जाए, भाग्य बन जाए। तो भगदत्तपुरम से बाद में ये भगदत्तपुरम थोड़ा बिगड़ता हुआ, थोड़ा बनता हुआ भागलपुर बन गया और अब हम इसे भागलपुर कहते हैं, यानी कि जहाँ लोगों के भाग्य उदय हो जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नामों की बात करें ना तो वो जो कुछ नाम है वो मालिनी है। जी हाँ, ये बहुत ही पोएटिक सा नाम है। कवि अपनी कविताओं में भागलपुर को, अंग प्रदेश को मालिनी नाम से संबोधित करते थे। मालिनी एक नदी का नाम है और जिसके किनारे चंपा बसता था। तो इसी वजह से संस्कृत की कविताओं में, ग्रंथों में पोएटिक रेफरेंस के तौर पर मालिनी नाम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मालिनी कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं बना, लेकिन कुछ कवियों ने मालिनी नाम से भी भागलपुर को संबोधित किया। इसके अलावा हम बात करें तो भागीरथपुर, जी हाँ, भागीरथपुर नाम से भी भागलपुर को जाना गया था एक वक्त पे। अगर हम बात करें ना तो अभी हमारे पवित्र धरती को जो पवित्र बनाती है यानी कि गंगा नदी को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाता है लोक मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में, तो वो भागीरथ ऋषि को दिया जाता है। और इसी वजह से लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना उन्हें कभी कभी भागीरथपुर भी कहा गया, क्योंकि हमारा जो भागलपुर है वो गंगा नदी के किनारे

बसा हुआ है। और कई बार होता है ना कि हम किसी शब्द को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई और उसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है, लिखता है। उसी का एक उदाहरण है भोगलपुर। जी हाँ, जिसे हम भागलपुर के नाम से जानते हैं ना, मुगलकालीन दस्तावेजों को आप अगर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इसे भोगलपुर के नाम से संबोधित किया गया है, भोगलपुर लिखा गया है, जो कह सकते हैं कि उच्चारण करने का सिर्फ एक भिन्न तरीका है। कुछ मुगल के लेखकों ने भागलपुर को भोगलपुर बोला और भोगलपुर लिखा, तो कुछ दस्तावेजों में आप भोगलपुर भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बात करें ना, तो एक ऐसा भी वक्त था जब भागलपुर को प्राची देश भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र था ना, वो प्राची देश के पूर्वी भाग में आता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना अंग प्रदेश के नाम के पीछे, अगर हम कुछ पौराणिक कथाओं को समझे, मान्यताओं को समझे, तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंग, और वो इस जगह पर राज किया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंग प्रदेश, यानी कि राजा अंग का प्रदेश। हमने आपको बताया कि कुछ कवियों ने, लेखकों ने हमारे इस अंग प्रदेश को मालिनी नाम से भी संबोधित किया है। मालिनी नगर का ही मतलब होता है, जहाँ पर सौंदर्य हो, फूल हो, वृक्ष हो। रामायण और महाभारत में भी भागलपुर अंग प्रदेश का बहुत जिक्र मिलता है। तो हमारी ये जो अपनी धरती है, भागलपुर की धरती है, और इसका जो नाम है भागलपुर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग दस्तावेजों में भागलपुर के नाम को दिखाया गया है, लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने भागलपुर के लगभग, जी हाँ, या तो फिर कह सकते हैं कि सारे नामों के पीछे की वजह को समझ लिया होगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि तुम्हारे शहर का नाम अजीब सा क्यों है भागलपुर, तो उसे बहुत अच्छे से बताइएगा भागलपुर का मतलब होता है जहाँ लोगों के भाग्य उदय होते हैं। आज के अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड?

0: कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आरजे अनु और हाजिर हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। और आज विशेष विषय है हमारे पास और ये विषय है मुर्गियों का आवास और खाने पीने का प्रबंधन। जी हाँ, यहाँ पर खेती की बात तो हम करते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे पशुपालक भाई हैं और जो समेकित कृषि प्रणाली में भी इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जैद हुदा जी और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि विज्ञान केंद्र से और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले जहाँ तक हमारा विषय है वो मेन फोकस चाहता है कि आवास और खाने पीने का प्रबंधन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि मुर्गियों का आवास कैसा होना चाहिए।
6: किसान भाइयों, मुर्गियों के लिए आवास प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप मुर्गियों को आप तीन तरीके से पालते हैं, जैसे आप फ्री रेंज सिस्टम में पालते हैं, जब आप मुर्गी पालन बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के रूप में करते हैं तो उसमें आपको मुर्गियों की आवाज़ की कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी होती है। आप घर में किसी भी साइड में एक छोटा सा घर बना लेते हैं और शाम में मुर्गियों को उसमें बंद करते हैं और सुबह खोल देते हैं। इस तरह के मुर्गियों के पालन में कोई आवास, विशेष आवास व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। मुर्गी पालन जब हम डीप लीटर सिस्टम में करते हैं और केज बैटरी सिस्टम के अंतर्गत करते हैं तो इसमें आवास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आप मुर्गी पालन डीप लीटर सिस्टम में करते हैं या आप ब्रॉयलर मुख्यतः उसमें हम लोग ब्रॉयलर मुर्गी पालन काम करते हैं तो हम इस बातों का ध्यान देंगे कि हमेशा आवास के लिए जगह का चयन हमेशा ऊंची जगह हो जहां पानी न जमा होता हो। दूसरा, वो बिल्कुल आप घर बनाएंगे तो कोशिश करें कि वो हवादार हो। दूसरा कि जो अगर आपके पास ज़मीन उपलब्ध है तो आप मुर्गी का घर ऐसे बनाएं कि उसका लंबा सिरा जो है पूरब और पश्चिम की तरफ रखें। कोशिश करें कि वहाँ पर कोई छायादार नहीं हो, हवा पूरी तरह से जाए, आगे एक तरफ से दूसरी तरफ जाए। आवास में आपको ये ध्यान देना है कि इस तरह का प्रबंधन चाहे घर की दरवाजे का हो चाहे खिड़की का हो, जिससे कि कोई जंगली जानवर आपके घर में नहीं जा पाए। आवास में हम लोग जब डीप लीटर सिस्टम में मुर्गियों को पालते हैं तो हम लोग ध्यान रखते हैं, जब हम ब्रॉयलर फार्मिंग की बात करते हैं तो प्रति वयस्क मुर्गी एक स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है ज़मीन को। तो आपको जितनी ब्रॉयलर मुर्गियां पालनी हो उस हिसाब से उतने स्क्वायर फीट का घर आप आसानी से बना सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखें कि मुर्गी पालन चाहे आप अंडा उत्पादन के लिए कर रहे हों चाहे आप मांस उत्पादन के लिए कर रहे हों, तो ये आप ध्यान देंगे कि अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अगर आप अपने आवास के अंदर मेंटेन कर सकते हैं तो ये सर्वोत्तम उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, चाहे अंडा देने की क्षमता हो चाहे उसके मांस की क्षमता हो। तो आप आजकल बहुत सारे ऐसे घर बन रहे हैं जहाँ वातानुकूलित तापमान को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कोल्ड स्टोरेज में कैसे आप तापमान को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह बहुत सारे आजकल मॉडर्न तरीके से घर बन रहे हैं जिसमें बड़ा बहुत सरल विधि से आप तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं, थर्मोस्टेट लगा के पानी का फ्लो दे करके। और एक रहता है वो आप देख लेंगे तो उसमें 25 डिग्री के आसपास से तापमान जहाँ अधिक होता है उसमें पानियाँ चलने लगते हैं और धीरे धीरे एयर फ्लो आवास के अंदर जाता है। तो ऐसा करने से आप बहुत कम खर्च में ये तकनीकी अगर आप सीख लेंगे तो अपने मुर्गियों के घर का जो तापमान

0: हैं वो 25 डिग्री के आसपास कंट्रोल
1: कर
0: सकते हैं और उसकी अपनी मुर्गियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर जानते हैं आहार प्रबंधन यानी खाने पीने की जो बात हो रही है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हम मनुष्य की बात कर लेते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कहा जाता है 6 महीने तक दूध पीने के लिए, और उसके बाद 6 महीने के बाद जो हल्के फुल्के भोजन है वो देने के लिए। तो जब मुर्गियों की बात आती है तो मुर्गियों के लिए भी मुझे लगता है कुछ ऐसे ही आहार प्रबंधन होंगे, जैसे कि मुर्गी का बच्चा है या फिर वो थोड़ा बड़ा होता है या फिर वो वयस्क हो चुका है, तो उसके लिए क्या कुछ अलग अलग आहार प्रबंधन है?
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुर्गियों के बच्चे जब अंडे से चूजे बाहर निकलते हैं तो उसको लगभग 48 से 72 घंटे तक उसको किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। और क्योंकि जहां वो बच्चे निकलते हैं अब तक आने में कभी 24 घंटे, कभी 48 घंटे, कभी 72 घंटे तक उनके अंदर जो एक योग सैक होता है उसी से उसको एनर्जी और पोषण मिलता रहता है। लेकिन 48 घंटे या 72 घंटे के बाद आपको ये ध्यान देना है कि उस क्यों जब आपके घर पर आए तो कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है कि आप उसको, वो बिल्कुल भूखा रहता है जब आप लाएं तो कोई अपने लकड़ी के बुरादे के ऊपर, फर्श के ऊपर, मैंने 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान, अगर ठंडा है तो उसको मेंटेन रखें, ऊपर पेपर बिछा दें और उसके ऊपर पहली बार आप बिल्कुल मक्के का दर्रा, पतला दर्रा ही प्रयोग करें पहले दिन। और कोई भी अगर गर्मी का मौसम है तो आप उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर हो, गुड़ का घोल बनाकर ये ज़रूर दें। और दूसरे दिन से मुर्गियों के खाने में भी 3 तरह के खाने होते हैं, एक प्री स्टार्टर राशन होता है, दूसरा स्टार्टर राशन होता है और तीसरा फिनिशर राशन होता है। तो आप आजकल मुख्य रूप से हमारे मुर्गी पालक मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं या फिर अंडा उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं, तो प्री स्टार्टर भोजन बिल्कुल आवश्यक है। दोनों अवस्था में आप पहले कम से कम 2-3 दिनों तक प्री स्टार्टर राशन आप अपनी मुर्गियों के बच्चों को दें, उसके बाद फिर ग्रोअर या स्टार्टर राशन जिसे हम कहते हैं उसको आप, अगर मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसको 26 से 30 दिन के आसपास आप ग्रोअर राशन दें, और 30 दिन के बाद ब्रॉयलर उत्पादन में आप फिनिशर राशन दें जो ग्रोअर राशन से थोड़ा कम महंगा होता है, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी होगी और वजन भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि, और मुर्गी का खाना आप खुद भी बना सकते हैं, मुर्गी का खाना बनाने में बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते होंगे कि मुख्य रूप से मुर्गियों के भोजन में मक्के का बहुत बड़ा रोल है, 45 से 55% तक मक्का लोग मुर्गी के खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सोयाबीन की खल्ली है, राइस चूर्ण है, मछली का चूर्ण है, और ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ हैं जो आप अगर सीख सकते हैं तो आप अपने बगल के विशेषज्ञों से इसको सीख लें। और जो आप बाज़ार से दाना खरीदते हैं उसकी अपेक्षा कम से कम 2 से 3 रुपए प्रति केजी कम से कम आपको ज़रूर सस्ता राशन आप बना सकते हैं, जिससे आपके उत्पादन क्षमता में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यकीनन आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक इनके आवास प्रबंधन की बात है यानी घर बनाने की, तो हम देखते हैं कि कई बार किन्हीं किन्हीं घर में जो बालकोनी है या फिर छत के ऊपर जो छज्जे होते हैं उन पर वो लकड़ियों से घेर कर उनका जो घर है वो बना देते हैं, लेकिन जहाँ तक व्यवसाय के तौर पर अगर इनका पालन किया जा रहा है तो आप बताएं हमें कि घर बनाने के समय जो हमारे किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, घर अगर दो मुख्य रूप से दो वजहों से हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, एक तो मीट के लिए और दूसरा अंडे के लिए। तो अगर मांस उत्पादन के लिए बात करते हैं तो आप जरूर डीप लीटर सिस्टम लकड़ी के बुरादे पर मुर्गी पालन करते हैं और मुख्य रूप से उससे 30 से 35 दिनों के अंदर हम लोग उसको बेच देते हैं। और उसमें हम लोग को बस ध्यान रखना है कि आप घर बनाते हैं तो ऊंची जगह ही हो और 2 फीट के आसपास ज़मीन से नीचे से ईंटे की जुराई कर लें और आप पूरा जाली डाल करके बहुत कम लागत में आप डीप लीटर सिस्टम में ब्रॉयलर उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जब हम केज बैटरी सिस्टम, जब हम लेयर उत्पादन की बात करते हैं तो लेयर उत्पादन और ख़ास करके कॉमर्शियल लेयर उत्पादन जो अंडा का हम लोग आजकल कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके लिए केज बैटरी सिस्टम काफ़ी माने रखता है। और जो केज बैटरी सिस्टम है और डीप लीटर सिस्टम में, दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। केज बैटरी सिस्टम में आपको इनिशियल लागत ज़्यादा आएगी क्योंकि एक 14 बाई 21 इंच के एक

0: में आप 5 लेयर बर्ड्स को रख सकते हैं, जिससे में आपको काफ़ी, आप 130 फीट बाई 35 फीट के लंबे चौड़े शेड में लगभग 5,000 मुर्गियों को केज बैटरी सिस्टम में आप पाल सकते हैं, लेकिन इतने छोटे से स्पेस में आप इतने ब्रॉयलर मुर्गियों को नहीं पाल सकते हैं। तो शुरुआती लागत तो केज बैटरी सिस्टम में जब हम अंडा उत्पादन के लिए बात करते हैं तो ज़्यादा आती है, लेकिन जब आप लंबी अवधि के लिए उसमें करेंगे तो उसमें लेबर का मैनेजमेंट कम हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रोग के प्रबंधन में कमी आ जाती है, बीमारियों के रोकथाम में आसानी होती है, मेडिकेशन देने में आसानी होती है, वैक्सीन देने में आसानी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लंबी अवधि में जब हम अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो केज बेस्ड सिस्टम बड़ा अच्छा रहता है और आप इसको कर सकते हैं, कम जगह में बहुत ज़्यादा मुर्गियों का पालन कर सकते हैं।
1: ओके तो यहाँ पर आपने जाना है घर बनाने समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके बाद अब आवास प्रबंधन की बात है तो आवास व्यवस्था, जो मुर्गी पालन अगर जो कर रहे हैं वो उन्हें बताएं कि आवास व्यवस्था कितने तरह के होते हैं।
0: देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मुर्गी पालन के लिए आवास व्यवस्था 3 तरह से आप कर सकते हैं। फ्री रेंज सिस्टम में, जिसके लिए कोई विशेष रूप से मुर्गी पालन जो छोटे किसान हैं करते हैं, 4-5 मुर्गियां रखते हैं, उसके लिए कोई विशेष आवास बनाने की आवश्यकता नहीं होती। डीप लीटर सिस्टम, जो आप लकड़ी के बुरादर पर मांस उत्पादन या फिर अंडा उत्पादन का कार्य करते हैं, तो वो डीप लीटर सिस्टम में आप अपने घर को बना सकते हैं मुर्गी पालन के लिए। और तीसरा, सेमी इंटेंसिव या केज बैटरी सिस्टम, जो बड़े अंडे उत्पादन के लिए हम लोग काम करते हैं, तो केज बैटरी सिस्टम का घर हम लोग बना सकते हैं। घर में हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके पास ज़मीन है तो एकदम, मैंने पहले ही कहा है कि मुर्गियों के लंबा सिरा जो आप घर बनाते हैं वो पूरब और पश्चिम की तरफ हो, सीधे सूरज की रोशनी जाने से आपको दिक्कत होगी, तो ऐसा होगा घर के अगल बगल लंबे पेड़ ना होने दें। कोशिश करें कि आप अगर गर्मियों का दिन है तो घर के ऊपर थोड़ा पानी का फव्वारा लगाएं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम है तो आप अपने जालियों पर जूट का बोरा लगाकर उसको भिगोएं, और सबसे बेहतर है कि आप अगर कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड आप पोल्ट्री फार्मिंग बड़े स्केल पर कर रहे हैं तो आप अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए तकनीकी सीखें और उसको करें।
1: तो सुना आपने हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों की किस तरीके से आप मुर्गियों का जो आवास प्रबंधन कर सकते हैं, साथ ही आहार प्रबंधन कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, आशा है कि आप इन बातों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, यानी कि अगर आप मुर्गी पालने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर इसे, इन बातों को शामिल करें और ध्यान रखें जिन जिन बातों को कहा गया है यहाँ पर। और आज डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक

0: चाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो

0: कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करेंगे एक ऐसे अल्प उपयोगी सब्जी के बारे में जो स्वाद पोषण और स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी बहुत ही मदद करता है, यानी कि बहुत अच्छी संभावना है आय बढ़ाने में। इस फसल का नाम है गार्लिक चाइव। किसान भाइयों, आज के समय में खेती के सामने कई सारी चुनौतियां आती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, तापमान में भी अक्सर आप देखते हैं कि उतार चढ़ाव होता है, पानी की कमी तो बहुत बड़ी समस्या है, और खेती की बढ़ती लागत, बाजार में अच्छी कीमत वाली फसलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। और ऐसे समय में हमें ऐसी फसलों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कम क्षेत्र में उगाई जा सकती है और बार बार उपजते, पोषण से भरपूर हो और बदलती जलवायु में भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन कर सके। और गार्लिक चाइव एक ऐसी ही संभावनाशील फसल है, और इसके बारे में यानी कि गार्लिक चाइव के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे डॉक्टर राजकुमारी आशा देवी से। मैम आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, BAU सबौर से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा। ये आज के श्रोताओं के लिए, जैसे किसान भाइयों बहनों, आपके लिए एक नया क्रॉप है। आपने पहली बार सुना होगा इस गार्लिक चाइव के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम ट्यूबरोसम, और यह प्याज और लहसुन वाले कुल जैसे एमिलडेसी, इसकी एक महत्वपूर्ण बहुवर्षीय सब्जी है। इसकी हम लोग देखा जाए तो पत्तियाँ इसकी लंबी होती है, पतली होती है और हरी होती है, जिस तरह से लहसुन और प्याज का होता है। बट इसमें क्या होता है, ये हम लोग बार बार इसको काट कर हम लोग खाया जा सकता है, और इसका सुगंध एवं एकदम से लहसुन की तरह लगता है, जिसके वजह से इसको गार्लिक चाइव बोला गया है। इसको हम लोग तड़के पे खाते हैं, आलू चोखा में आप डाल सकते हो, सूप में डाल सकते हो, चटनी बना सकते हो, नूडल्स वगैरह में, यानी कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और इसकी एक विशेषता यह है कि इसकी पत्तियों की कटाई के बाद पौधे पुनः बढ़ते हैं, तो इसीलिए उचित प्रबंधन के साथ एक ही खेत से कई बार हरी पत्तियों की उपज प्राप्त की जा सकती है।
1: जी मैम, अगर हम पोषण की दृष्टि से बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है?
2: जी बिल्कुल उमा। तो और देखा जाए कि आज उपभोक्ता केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं चाहता, बल्कि ऐसा भोजन चाहता है जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो। इसी कारण पोषण युक्त सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो इनमें से जो गार्लिक चाइव है, इसकी जो हरी पत्तियां है, इसमें विभिन्न विटामिन, खनिज तत्व, आहार फाइबर तथा जीव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा पे उपलब्ध है, कैरोटीनॉइड्स तथा विभिन्न सल्फर भी भरपूर मात्रा में पाए गए हैं, जिससे हम लोग देखा जाए कि लहसुन के पत्तियों से भी ज़्यादा इसमें मात्रा पाया जाता है।
1: जी, और अगर हम बिहार के दृष्टि से बात करें तो ये बिहार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है?
2: बिहार में सब्जी उत्पादन की अच्छी संभावना है, ये सब हम सब जानते हैं। यह छोटे और सीमांत किसान बड़ी संख्या में है, और कम क्षेत्र में अधिक मूल्य प्राप्त करने वाली फसलों की आवश्यकता रहती है। तो गार्लिक चाइव को खेत के साथ साथ हम लोग किचन गार्डन, पोषण वाटिका और छोटे व्यवसायिक प्लॉट में भी उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ताजी विशिष्ट और स्वस्थ वर्धक सब्जियों की मांग बढ़ रही है। यदि किसान स्थानीय बाजार, होटल, रेस्टोरेंट और प्रत्यक्ष उपभोक्ता बाजार से जुड़ते हैं, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे, यहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से विशेष सब्जियों से अतिरिक्त आय प्राप्त करने की संभावना बन सकती है।
1: और मैम, हमने जलवायु अनुकूल के बारे में भी बात की, तो जलवायु अनुकूल कितना है गार्लिक चाइव?
2: जलवायु परिवर्तन के दौर में हमें केवल अधिक उत्पादन देने वाली फसलों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जलवायु सहिष्णु और विविध

0: अपेक्षाकृत फसल प्रणालियों को अपनाना चाहिए। गालिक चाय अपेक्षाकृत मजबूत फसल है और उचित संभव प्रबंध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। इसकी बार बार पत्तियों की कटाई की क्षमता किसान के लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सकती है। हालांकि देखा जाता है कि किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फसल की सफलता के लिए सही किस्म, उपयुक्त मौसम, मिट्टी, सिंचाई, पोषण और स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए बिहार के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसके वैज्ञानिक परीक्षण और स्थानीय उत्पादन तकनीक का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिशा में हमारे बीएयू साबौर में भी इसका शोध शुरू हो चुका है।
1: जी मैम, मैम अब हम इसकी खेती की बात करते हैं, तो अगर हमारे किसान भाई बहन गार्लिक चाय की खेती करते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: अगर देखिए, जैसे कि गार्लिक चाय है, इसके लिए हम लोग को अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त रहती है। खेत में पानी का लंबे समय तक जमाव नहीं रहना चाहिए। जैविक खाद या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग मिट्टी का संरचना और उर्वरता सुधारने में सहायक हो सकता है। पौधों की स्थापना के लिए स्वस्थ रोपण सामग्री का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी के बाद उचित दूरी पर पौधे को स्थापना करनी चाहिए। जैसे हमको पता है कि इसमें क्लोफ नहीं बनता है, तो इसका होता है नीचे का जो एक राइजोम रूट्स होता है उसको हम लोग कट करके लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लम्प। तो इससे हम लोग लगाते हैं 15-10 के दूरी में। तो सिंचाई आवश्यकता के अनुसार हम लोग को करनी चाहिए इसमें, और खेत में अधिकतम पानी जमा नहीं होना देना चाहिए। तो फसल में खरपतवार नियंत्रण, संतुलित पोषण और रोग कीट की नियमित निगरानी आवश्यक है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर ही और अनुचित मात्रा में ही करना चाहिए, जबकि इस फसल में पाया गया है कि बहुत ही कम किसी कीटाणु या कोई बीमारी का प्रभाव पड़ता है।
1: जी मैम, आजकल हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई बहन और हम लोग भी जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं और जैविक खेती को ही अपनाना चाहते हैं, तो गार्लिक चाय में जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस हद तक किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, आज किसान खेती की लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में भी सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो गार्लिक चाय की खेती में हम लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक और अन्य जैविक स्रोतों के समन्वित उपयोग पर ध्यान दिया जा सकता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में, पोषण तत्व की उपलब्धता बढ़ाने और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली विकसित कराने में भी मदद मिल सकती है।
1: जी मैम, अगर हमारे किसान भाई बहन आमदनी बढ़ाना चाहें गार्लिक चाय की खेती की मदद से, तो क्या मूल्य संवर्धन भी किया जा सकता है?
0: देखिए किसान भाइयों, केवल उत्पादन बढ़ाने ही पर्याप्त नहीं है। आज आवश्यकता है कि हम उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक पूरी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान दें। तो गार्लिक चाय की ताजी पत्तियों को साफ करके छोटे पैकेटों में बाजार में बेचा जा सकता है और इसको हम लोग अलग दूसरे देश में भी भेज सकते हैं। तो स्थानीय मांग, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, इसमें अधिकतम इसका मांग ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर अन्य राज्यों से भी लोग रहते हैं और वहाँ पर इसकी डिमांड जो होता है वो ज़्यादा रहता है। तो इसके अनुसार हम लोग इसको उपयोग मसाला मिश्रण, सूखी पत्तियों या अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों में भी इसको किया जा सकता है। इससे किसान, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे उद्यमी मिलकर स्थानीय स्तर पर रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा कर सकते हैं, और इसको हम लोग इसी में ही नहीं, पोषण वाटिका में भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। गार्लिक चाय केवल व्यवसाय किसानों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक परिवार के लिए उपयोगी है, हो सकता है। इसको हम लोग घर की पोषण वाटिका में लगाया जा सकता है, थोड़ी सी जगह में इसे उगाकर परिवार को ताजी हरी पत्तियां उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे भोजन में विविधता आती है और परिवार के आहार में भी हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
1: जी मैम, तो क्या गार्लिक चाय में अभी भी अनुसंधान की जरूरत है?
0: बिल्कुल, गार्लिक चाय को बिहार में एक संभावनाशील अल्प उपयोगी सब्जी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसके विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। इसी दिशा में हमारे बीएयू साबौर में इसकी शोध शुरू हो चुका है, जिससे बिहार के अलग अलग कृषि जलवायु परिस्थितियों में

0: की किस्मों की मूल्यांकन, रोपण समय, पौध दूरी, सिंचाई, पोषण प्रबंधन, मल्चिंग, जैव उर्वरक, जैविक खाद को तथा कटाई प्रबंधन पर व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही इसके पोषण गुणवत्ता, बाजार मांग, उत्पादन लागत, लाभ लागत अनुपात और उपभोक्ता पसंद का भी हम लोग अध्ययन शुरू किया गया है
1: जी।

0: यही संभव नहीं है। समय की मांग है कि हम फसल विविधीकरण को अपनाएं और बाजार तथा पोषण की मांग के अनुरूप नई एवं अल्प उपयोगी फसलों को अपनी खेती में स्थान दें। गार्लिक चाय ऐसी ही एक फसल है जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, फसल विविधकरण, जलवायु अनुकूलन और अतिरिक्त आय, इन सभी क्षेत्रों में संभावनाएं दिखाई देती है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि किसी नई फसल को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले किसान भाई स्थानीय स्तर पर छोटे क्षेत्र में इसका परीक्षण करें, बाजार की मांग को समझे और कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग की सलाह जरूर ले।
1: जी मैम, तो किसान भाई बहन, जैसे कि मैम ने कहा, बाज़ार की मांग को समझना चाहिए और जो नई फसल है उसमें भी आपको चाहिए कि आप बिल्कुल शोध करें, यानी कि नई फसल, नई सोच और नया बाज़ार, यही भविष्य की टिकाऊ खेती का आधार है। गार्लिक चाय जो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, जैसे अल्प उपयोगी गार्लिक चाइप जैसी अल्प उपयोगी सब्जी फसलें हमारे खेतों में विविधता ला सकती है, हमारे भोजन को अधिक पौष्टिक बना सकती है और किसानों के आय के लिए नए अवसर खोल सकती है। आइए हम ऐसी फसल को बढ़ावा दें जो पोषण से भरपूर हो, बदलती जलवायु के अनुकूल हो और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बने। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हमारे किसान भाई बहनों को एक नई फसल के बारे में जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं।
0: धन्यवाद उमा, मुझे भी आपने ये अवसर दिया है।
1: जी मैम, तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक

बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना

जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंतशुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

ಮನ್ನತ್ ಕೃಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में. किस प्रकार से परवल की खेती की जाती है और क्या समस्याएं आती है, किन

0: बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी ही बातों के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आरवी वर्मा सर। आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर BAU सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि परवल के क्या फायदे होते हैं।
1: देखिए परवल जो है जिसको कुकुरबिटेसी कहते हैं या लतेर वाले जो है फैमिली जो कहते हैं, उस फैमिली का एक ऐसा पौधा है जो लगभग 7 से 8 महीने तक फल देता है, और यह फल समझिए इमरजेंसी पीरियड में भी देता है, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर जब पानी आता है उस समय और अन्य सब्जियां सब खत्म जब हो जाती हैं तो उस समय भी मार्केट में आपको जो है परवल मिलता है। और परवल की उपयोगिता ही बहुत ही ज़बरदस्त है। परवल एक ऐसा फ्रूट है, समझ लीजिए फ्रूट इस वेजिटेबल में आता है ये, कि इसमें जो है एक तो सबसे पहले कि इसमें विटामिन ए बी और सी पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स है जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एनर्जी इसमें बहुत कम होती है जिससे आप शुगर फ्री के शुगर वाले पेशेंट को भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें फैट की मात्रा बिल्कुल कम 0.3% के आसपास होती है, इसलिए जो मोटापा जो है उसको भी कम करता है। ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी जो होती है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं लो एनर्जी के कारण जो है, तो ये लो एनर्जी कारण जो बहुत सारे रोगों में कभी कभी आप देखते हैं जॉइंटिस सब हो जाता है, तो उसमें भी हम परवल का चोखा या परवल की जो है सब्जी हम रिकमेंड करते हैं कि आप परवल की सब्जी लीजिए तो ये हल्की होती है। इसके तमाम इसके एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी वेट को आपको रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। तो परवल की आप देखते हैं स्वीट्स भी बनते हैं आजकल, जो परवल की मिठाई बनती है, तो परवल की ये तमाम सारी उपयोगिताएँ हैं। और ऐसी फसल भी है जो आपको 7 से 8 महीने तक फल भी देती है, तो इन सब सारी उपयोगिताओं को देखते हुए परवल का स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है। और परवल की खेती हमारे ख्याल से किसान भाइयों के लिए ज़्यादा लाभदायक है, इसकी खेती सफलतापूर्वक आप करें इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं।
0: जी सर लाभदायक होती है लेकिन कई बार कुछ समस्याएं भी आती है, तो परवल की खेती में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं?
1: हाँ देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परवल की खेती में। देखिए एक तो होता है सेक्स की प्रॉब्लम उसमें, कि उसमें जो है नर और मादा दोनों जो है अलग अलग होते हैं। ये डायोसियस प्लांट होता है, डायोसियस प्लांट मतलब जिसमें एक पौधे पर होगा तो केवल नर ही होगा और दूसरे पर होगा तो केवल मादा ही होगा, और हमेशा फल जो होता है वो मादा पुष्प पे ही आता है, नर पुष्प पे नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसान भाई के खेत में ऐसा भी पौधा दिखाई पड़ता है कि जिसमें केवल फूल तो आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है, तो किसान भाई क्या करते हैं उसको खेत से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, जब नर पौधा नहीं रहेगा तो पोलिनेशन की समस्या हो जाती है, और पोलिनेशन नहीं होगा तो पता चला आपके पौधे में फूल तो आ रहा है लेकिन वो फूल जो है पीला होकर के फिर से सूख जा रहा है। इसका कारण यही है कि वहाँ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये डायोसियस पौधा है और जब भी लगाना है इसको तो नर और मादा दोनों ले जाके लगाना है, और दोनों को लगाने का एक जो अनुपात होता है वो 9:1 का अनुपात होता है, यानी 9 पौधे अगर मादा आप ले जाते हैं तो 1 पौधे नर आप ज़रूर ले जाइए, इससे उसका रेशियो मेंटेन रहता है और परागण के लिए पौधे को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि इसका जो है बहुत दूर 1.5 किलोमीटर तक दूर तक इसका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, बट उतना दूर से परागण आएगा और परागित करने में उसको समय लगेगा, फिर जो है नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वहाँ आपकी जो प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि 9:1 का रेशियो आप उसमें रखें, 9:1 रेशियो रखेंगे तो उसका जो है पोलिनेशन अच्छा होगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी और आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरी बड़ी समस्या इसमें ये होती है, एक तो ये आ गई प्लांटिंग रेशियो कि 9:1 में आप प्लांटिंग करिए, इससे आपको नर और मादा का जो है 9 मादा और 1 जो है नर, तो इसे आपके ऊपर। दूसरा ये होता है इसमें कि देखिए इसमें सीड प्रोपोगेशन हम नहीं करते हैं, कभी कभी ये किसान भाई कहते हैं कि उन्हें हम बीज से ही कर लें, तो बीज से करने में समस्या ये होती है कि जो आप एक तो पहले बीज इसका ऐसा होता है कि आप जैसे पकने के बाद इसको निकालिएगा 2 मिनट के लिए हवा में छोड़िएगा तो फिर जमेगा ही नहीं, तो उसमें ये होता है कि तुरंत उसका फल पका हुआ निकालिए, तुरंत उसको जमीन में लगाना होता है, एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि इसके बीज को अगर लगाते हैं तो उसमें 50% नर आ जाता है और 50% मादा आ जाती है, और ये नर और मादा का अनुपात जो 50-50% जो हो जाता है लगभग जो है, यह आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि उसमें फ्लावर या फूल नहीं आ जाता है। तो फूल आने के लिए आप साल भर इंतजार करिएगा, साल भर आप खेत को फंसा

0: रखिएगा, और तब जब फूल आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो नर है और ये मादा है, तो आपके खेत की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा चीज ये कि ये लंबा समय लेता है, क्योंकि एक साल भर की बताया हमने कि इसको ये पूरा साल भर चलता रहता है, ये बायनियल मतलब ये जो है पेरेनियल पौधा है, एक बार लगाइएगा तो 3 साल तक इससे काटिएगा, कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो है लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी जो हमको बीज से इसका जो है प्रोपेगेशन नहीं करना है, इसका प्रोपेगेशन हमेशा कटिंग से करना है जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो उपयुक्त मतलब प्रजाति हो उसी को लेना है, अन्यथा आपकी जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और पैदावार घट सकती है।
1: तो सर हमें विस्तार से बताइए कि प्रवर्धन कैसे करें।
0: हाँ, इसके प्रवर्धन के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमने बता दिया कि एक जो है 9:1 रेशियो में आपको नर और मादा लेना है, अब नर और मादा में अब क्या लेना है, एक तो इससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, सीड से प्रोपगेशन नहीं करते हैं, तो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो इसमें हम उसकी वाइन लेते हैं, और वाइन कैसी होगी, एकदम मेच्योर वाइन हो जो साल भर पुरानी हो गई हो, ऐसा नहीं कि टेंडर वाइन लीजिएगा, टेंडर वाइन लीजिएगा तो वो जो है सूख जाएगा, तो हमेशा आपको मेच्योर, जो मेच्योर वाइन होती है उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा जब मेच्योर वाइन हो जाती है जनरली जो जड़ से निकलती है, देखिए जब खूब मेच्योर हो जाती है तो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, हल्की सी व्हाइटिश हो जाती है, जो ग्रीनिश रहती है उसका रूप बदल के हल्का सा लाइट व्हाइटिश कलर में आ जाता है, तो समझिए कि वाइन पूरी तरह से मेच्योर हो गई है। तो सबसे तो पहले कि आपको 1 ईयर ओल्ड मेच्योर वाइन सेलेक्ट करना है, दूसरी बात उस वाइन को अगर काट लीजिए, काटने के बाद उसको कितना लंबा रखेंगे, तो कम से कम जो है उसको 50 टू 60 सेंटीमीटर उसको लंबा रखिए, और उसको क्या करिएगा, उसको अंग्रेजी का 8 जो होता है उसके आकार में आप उसको मोल्ड कर लीजिए, 8 के आकार का बना लीजिए, और दोनों सिराओं को फिर मोड़ दीजिए, 8 के आकार के जो दोनों लास्ट की सिराएं हैं उसको आपस में मोड़ दीजिए, और बीच में उसे मिट्टी डाल करके जो है बीच में मिट्टी से उसको एक गड्ढा खोद करके, गड्ढा खोदने के लिए एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप इसका कल्टीवेशन करें तो सॉयल आपकी एकदम सैंडी लोम सॉयल हो, जिसमें बालू की मात्रा बढ़िया हो, उसमें इसकी उपज जो है ज्यादा अच्छी होगी, कड़ी मिट्टी लेंगे तो उसमें इसकी उपज थोड़ी कम हो जाएगी, और उसमें अगर बालू कड़ी मिट्टी है या लोमी मिट्टी है तो इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि आपको जो उस मिट्टी में जो है बालू, गंगा बालू अगर मिलता है तो गंगा बालू और आपका जो है बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, थोड़ा सा फ्यूराडान मिला करके उसको बढ़िया से उसका पिट बना लें, फिर उस पिट में लगाएंगे, तो वो जो है आप जो है 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा जो वाइन लिए थे उसको 8 के आकार में बना लिया, और उसके दोनों को वाइन्स को आप ऊपर ले लेते हैं छोर को जो है, और साइड से जो है मिट्टी में दबा करके उसको पूरी तरह से उसको दबा देते हैं, हल्का हल्का सा वो दिखाई पड़ता है जो सूर्य की रोशनी उसको मिलते रहे, हल्का सा ऊपर से दिखाई पड़ता है, उसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दें, लगाते समय एक बार का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिट्टी में लगाते हैं तो उसके साथ कोई मरोगत मत करिए, अगर उसमें मान लीजिए आपने प्रेस नहीं किया है, बढ़िया से दबाया नहीं है, तो होता क्या है कभी कभी जब आप पानी देते हैं तो उसमें होल बन जाता है, तो जब होल बन जाएगा तो वहां से हवा चला जाएगा, और हवा जाएगा तो उसके सूखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, पौधा लगेगा, आप कहेंगे कि हमने पौधा लाया था स्वस्थ लगाया लेकिन चला नहीं, तो इससे देखना है लगाते समय उसकी वाइन्स को खूब बढ़िया मिट्टी से दबा दिए, ताकि मिट्टी का संपर्क उससे खूब अच्छी तरह से हो जाए और उसका जो नमी बराबर मिलती रहे, तो ये करना, लगाने के बाद आप उस पर मल्च डाल दीजिए, मल्च डालने के बाद उसको जो हल्की सी सुबह शाम सिंचाई करते रहिए, तो ये तो इससे हम प्रोपेगेशन करते हैं वाइन से, सीड से हम नहीं करते, जैसा पहले बता दिया था, तो इसका प्रोपेगेशन हम वाइन से ही करते हैं, वाइन 1 ईयर ओल्ड वाइन्स लेते हैं, मेच्योर वाइन लेते हैं, 50 से 60 सेंटीमीटर लगते हैं, जिसमें 7 से 8 कम से कम नोड हो, इसको ध्यान में रखना है कि इसलिए कि नोड से ही जो है जड़ें निकलती हैं, तो जब नोट्स नहीं रहेगा तो जड़ें नहीं निकलेंगी, अगर एक नोट्स लगाइएगा तो एक नोट्स मान लीजिए वीक हो गया या खत्म हो गई तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए 6 से 7 उसमें नोट रखिए, जिससे कोई भी नोट्स उसमें चलेगी, रूट्स निकल जाएगी तो पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दूसरी चीज़ ये थी कि हमने बताई, तो ये बता दिया वाइन से आपको लगाना है तो आप अक्टूबर में लगाइए, अक्टूबर वो भी 15 अक्टूबर के आसपास लगाए जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर स्प्राउट नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने डारमेंट रहती है, अक्टूबर लास्ट अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने डारमेंट रहती है, इसमें आप लगाएंगे तो नहीं चलेगा। दूसरा इसका तरीका एक और है, मान लीजिए आपके पास जो है सैपलिंग, दूसरा तरीका है सैपलिंग तैयार करना। आप कुछ नहीं है, मान लीजिए आपकी वाइन खत्म हो रही है, तो आप क्या करिएगा, आप अक्टूबर

0: या सितंबर या जनवरी, सितंबर या अगस्त, कभी भी जो है आप उसकी सैपलिंग तैयार कर लीजिए। सैपलिंग तैयार करने के लिए दो तरीके हुए, एक तो आप पोली बैग ले लीजिए, पोली बैग में दो से तीन नोड लेकर के उसको जो है अंदर जो है पोली बैग मिट्टी भरे रहते हैं उसमें आप उसको दबा दीजिए, तो उससे वो स्प्राउट कर जाएगा, स्प्राउट कर जाएगा तो वो चलेगा। उस आप जो है सैपलिंग को आप रखे रहिए, उसके देख रेख करते रहिए। जैसे मान लीजिए आप नहीं लगा पाए, आपका खेत खाली नहीं है, तो आप फरवरी में आपका खेत खाली हो तो आप उसको फरवरी में सीधे उस सैपलिंग को खेत में ले जाइए और उसमें लगा दीजिए, वो बहुत बढ़िया चलेगा। उसमें स्प्राउटिंग बहुत फास्ट होगी और बहुत फास्ट ग्रोथ कवर करेगा, आपका फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप जो है सैपलिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें दो से तीन नोट जरूर रखिए, एक नोट पे मत लगाइए उसको, और दो से तीन नोट रहेगा तो उसमें रूटिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो सैपलिंग से आप जो है फरवरी में भी आप इसको लगा सकते हैं और फ्रूटिंग ले सकते हैं
1: जी सर। तो अब आप हमें ये बताइए कि प्रबंधन का सही समय क्या है।
0: हाँ देखिए, इसका जो है जब ये हम इसको जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो बहुत अच्छा महीना है, इसमें स्प्राउटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर काट करके बाइन वैसे भी लगा दीजिएगा, उसको दबा दीजिएगा तो चल जाएगी, लेकिन इस समय चूंकि परवल जो है एकदम अपने पीक फ्रूटिंग स्टेज पे होता है, इसलिए कोई भी किसान अपने खेत से वाइन आपको नहीं देगा। लेकिन ये आपका मार्च से स्टार्ट हो करके और अक्टूबर तक फ्रूटिंग देता है, देखिए 7 से 8 महीने फल देता है। तो जब सितंबर के लास्ट तक जो है समझिए इसकी फ्रूटिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वीक हो जाती है, इकोनॉमिक नहीं रहती है। अक्टूबर में इसको लगाने का समय जो है सबसे बढ़िया क्या होता है कि अक्टूबर में आप जो है जो वाइन्स जैसे हमने बताया, लगाने की विधि जैसे हमने बताई है, आप जो इसको खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार करके इसमें दो तरीके से, एक तो आप पंडाल विधि से भी आप लगा सकते हैं, मचान विधि जिसको कहते हैं, पंडाल बना लीजिए, और या तो एक ऐसे पोल गाड़ करके सीधा 2-2 मीटर की दूरी पे आप पोल गाड़ करके उस पर रस्सी तान करके वैसे भी लगा सकते हैं, या ओपन फील्ड कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं। अब ये लगाने के लिए मान लिए हम कह रहे हैं कि 2-2 मीटर दूरी पर लगाइएगा, तो 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइएगा। अगर फील्ड में लगाना है तो आप 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइए बेहिचक, इसलिए कि इसकी वाइन जब फैलती है तो जगह जगह पे अपनी रूट्स को जमीन में पकड़ती जाती है, तो जो एरिया खाली रहता है उसको आसानी से वो कवर कर लेता है। लेकिन जब आप जो है पोल पे लगाइएगा तो पोल पे हमेशा जो है 2 मीटर पोल से पोल की दूरी होगी और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होगी। तो इन दोनों केसेस में अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं तो कम से कम आपको जो है 5,000 कटिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पोल पे लगाते हैं तो 5,000 कटिंग जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं इसे ओपन में 2x2 पे लगाते हैं तो लगभग 2,500 आपके कटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये देख लेना हमको कि किस विधि से आप लगा रहे हैं उसमें कितनी हमको कटिंग मिल रही है, कितनी अगर नहीं भी मिली है, कम भी मिली है जो है, तो आप फील्ड में लगा दीजिए, आप उससे अगले साल उसको प्रोपगेट कर लीजिए, उससे आप वाइन बना लीजिए अगर अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है तो।
1: जी सर, अब बात करते हैं खाद और सिंचाई की। तो
0: हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न है, इसमें जो है जितनी भी कुकुरबिटेसी सब्जी होती है, लतेर वाली सब्जियां होती है, एक जनरल फंडामेंटल बता दें कि इन सब्जियों में जो है नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं देते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा देंगे, और लेकिन इसके देने से पहले हम 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद भी इसमें देंगे। उसके अतिरिक्त ये होगा आपका 100-60-60 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा होगी। इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन, इसलिए हम जनरली कुकुरबिट्स में 80 के आसपास चलती है, लेकिन इसमें हमने 100 इसलिए कहा कि चूंकि ये लंबे अवधि की क्रॉप है, हमने बताया कि एक बार आप मार्च में लगाते हैं या अक्टूबर में लगाते हैं तो चलती है, फिर अक्टूबर तक चलती है, तो ये लंबी अवधि की क्रॉप है, इसलिए मैं थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो 100 किलोग्राम है। इससे ज़्यादा जहाँ भी नाइट्रोजन की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो समझिए उसमें नर पुष्प की संख्या ज़्यादा आती है। हालांकि नर इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि नर अलग ही होता है और मादा अलग होता है, लेकिन जनरल कुकुरबिट्स में प्रॉब्लम आती है। तो आप खाद जो है 20 से 25 टन FYM, 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस एंड 60 kg पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें देंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास संभव है तो इसमें आप जो है नीम की खली नीम की खली ये थोड़ा सा जो है नहीं ज्यादा मिलता है तो 50 ग्राम या 100 ग्राम के

0: आस पास जो प्रति प्लांट नीम की खली से मिला दें, ये ज्यादा अच्छा होता है। खास करके जो है परवल में निमेटोड की एक समस्या आती है, जो लगातार 2-3 दिन तक आप छोड़ दे, 2-3 साल तक छोड़ देते हैं, तो वो सब समस्याओं से समाधान इसका होता रहेगा।
1: सर अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं?
0: अब देखिए इसमें वैसे तो बिहार में जो है इसकी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब तमाम तरह की जो है प्रजातियां हम उगाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है उपजाऊ प्रजातियां हैं, जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, उसमें जैसे राजेंद्र परवल 1 अपने यहाँ बहुत ज़्यादा, राजेंद्र परवल है, राजेंद्र परवल 2 है, अभी नई वेराइटी अभी गवर्नमेंट से रिलीज हुई अपने यहाँ की जो है सबौर परवलन है, जो सफ़ेद रंग की होती है, उसमें धारी नहीं होता है, उसमें सीड्स कम होते हैं, मिठाई के लिए भी अच्छी है और जो है सब्जी के लिए भी अच्छी है। तो एक सबौर परवल 1 है, दूसरा स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण रेखा है, तो ये सब जो है प्रजातियां जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, इन सब उन्नतशील प्रजातियों को लेकर के आप इसका कटिंग प्राप्त कर लें और इनको लगा करके इसकी आप खेती करें, ये ज्यादा उपजाऊ हैं और ज्यादा आपको उपज देंगे, आपके लिए लाभदायक होंगे।
1: सर अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कीट और व्याधि कौन कौन से होते हैं परवल में और कैसे बचे?
0: देखिए जनरल जो है एक जो है शुरू में जो सबसे कीट लगता है जिसको हम बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल, ये तो सारे कुकुरबिट्स का एक पेस्ट हम इसको बोलते हैं, तो ये रेड पम्पकिन बीटल होता है, ये जो जैसे हालांकि इसमें तो कॉटिलेडन नहीं निकलता है, इससे निकलता है स्प्राउटिंग होती है, तने से स्प्राउटिंग होती है इसके, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुकुरबिट्स में एक प्रॉब्लम होती है, रेड पम्पकिन बीटल आता है जो कॉटिलेडन निकलती है उसी को खा जाता है, पौधा मर जाता है। लेकिन इस खेत में चूंकि हमारा चलता है स्टेम से निकलता है, इसलिए इसमें उसकी इनिशियल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम इसकी नहीं रहती। इसकी प्रॉब्लम फ्रूटिंग स्टेज में आकर के एक फ्रूट फ्लाई की समस्या सबसे जबरदस्त रहती है। ये फ्रूट फ्लाई क्या करती है, कभी कभी किसान भाई के प्रश्न आते हैं कि भाई हमारे फल तो लग रहा है लेकिन वो सड़ जा रहा है, पक जा रहा है, तो उसकी समस्या में हमने बताया कि जो फ्रूट फ्लाई है ये भी एक कारण है। एक तो कारण ये है कि हमने बताया कि आपने जो प्लांटिंग रेशियो अगर मेंटेन नहीं किया है, नर और मादा का अनुपात अगर मेंटेन नहीं किया है, तो एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं रहा, वो भी एक समस्या है, और दूसरी समस्या जैसे ये फ्लावर आपका फ्रूट जब लगता है उसमें ये जो है फ्रूट फ्लाई उसमें डंक मार देता है और फिर उसमें जो है सड़न पैदा होने लगती है, पीला पड़ जाता है, तो ये दोनों समस्या है। इसके निदान के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है फिरामोन ट्रैप, एक फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप ले लीजिए, 5-6 ट्रैप ले लीजिए, 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है, और उसको जो है चारों कोने पे बीच में लगा दीजिए। वो क्या करता है कि जितने भी जो है ये जो है मेल जितने भी आपका जो है फ्रूट फ्लाइज है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, और उस फिरामोन ट्रैप में ल्यूर जो होता है वो जो है पॉइजनस होता है, ये जैसे उसमें मेल जाता है उसी में वो मर जाता है, तो इससे होता क्या उसकी प्रजनन जो है रुक जाती है और फिर बाद में वो फैल नहीं पाता है। तो एक तो फ्रूट फ्लाई की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या उसमें फ्रूट फ्लाई की आती है, दूसरा कभी कभी ये स्टेम ब्लाइट की भी समस्या आती है, स्टेम ब्लाइट कर स्टेम रॉट की जो है कभी कभी उसका तना भी सड़ने लगता है, रोग के बारे में अगर कहें तो कभी कभी उसके गमोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तने निकल जब पुराने हो जाते हैं तो वहां से गम जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में किसान भाई जो है कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लें, कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% यानी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उस पर 2-3 छिड़काव कर दें, उसका जो है कंट्रोल हो जाएगा, वो पौधा आपका अच्छी तरह से चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तीसरी इसमें जो है निमेटोड की है, ये हमने बताया कि ये पेरेनियल क्रॉप है, तो पेरेनियल क्रॉप है तो चूंकि 1 साल लगाते हैं और ये ऐसी फसल है कि 1 साल लगाते हैं और इसको 3 साल तक काटते हैं। देखिए बड़ी अच्छी चीज है कि 1 साल लगाइए 3 साल काटिए, लेकिन 3 साल का और पहले साल की तुलना में दूसरे और तीसरे साल फलत ज्यादा अच्छी आती है, तो ये बात हमको ध्यान देखनी है कि जो है अगर पहले साल हम इसको लगाते हैं तो दूसरी साल उसका मेंटेनेंस करें, और दूसरी साल से जनरली जब 2 साल से ज्यादा होता है तो निमेटोड की समस्या शुरू हो जाती है। निमेटोड क्या होता है, उसके अंदर गांठ बना लेता है, उसके जड़ों में गांठ बना लेता है, और पौधे का जो सिस्टम होता है जो उस पर जिससे पानी ऊपर जाता है वो पूरा ब्लॉक कर देता है, जिससे खनिज लौड़ ऊपर जाता है सब उसको ब्लॉक कर देगा तो पौधे को मिलेगा नहीं, तो अंत में क्या होता है पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो इस तरह की समस्या जब आती है तो ये निमित्त, तो इसके लिए

0: सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो नीम वाला जो है, हमने बताया कि नीम की खली उसका आप प्रयोग करते रहें। फ्यूराडान भी समय समय पे जो है पर पौधे आप 10 से 15 ग्राम या 2 से 3 ग्राम आप जो है देते रहिए समय समय पे, ताकि उसमें इस तरह की समस्या ना आए। और उसके मिट्टी को हमेशा उसके थोड़ा सा कभी जाँच करते भी रहिए कि इसमें नेमेटोज की समस्या ना ही आ रही है। तीसरा है उसको रोटेशन भी करते रहे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए तो 3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक वहीं छोड़े रह रहे हैं। आप 3 साल के बाद फील्ड को बदल दीजिए, क्रॉप रोटेशन कर लीजिए। इसे करने से क्या होता है कि वो निमेटोड अपना घर नहीं बना पाता है और उसमें जो निमेटोड की समस्या नहीं रहती है। तो क्रॉप रोटेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये भी हमको देख लेना है। तो ये सब थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो इसमें जो आती हैं, बाकी तो ये जो है पेरेनियल क्रॉप है, चलती रहती है।
1: सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो परवल की खेती करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए परवल की खेती के लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा, पहली चीज तो ये है कि ये पेरेनियल क्रॉप है और एक बार जब लगाते हैं तो 8 से 9 महीने तक ये फसल देती है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहूंगा कि जब भी आप इसको लगाइए तो इसमें सेक्स रेशियो, इसका प्लांटिंग रेशियो जो है जरूर मेंटेन रखिए, जो 9:1 के अनुपात में होगा। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जब भी आप जो है इसको लगाते हैं तो 3 साल के बाद एक खेत से दूसरे खेत में इसको ट्रांसफर जरूर कर दें, और संभव है तो 100 ग्राम जो है नीम की खली उसमें जरूर दिया करें। इस तरह से अगर आप तकनीकी अपनाते हैं तो आपको जो है इससे लगभग जो है 250-300 के आसपास आपको उपज पैदावार मिल जाएगी, जो आपको 8 महीने तक देती है और इमरजेंसी क्रॉप के रूप में भी आपको ये फ्रूट देती है, फल देती है, सब्जी देती है। तो इससे आप जो ज़्यादा से ज़्यादा आय कमा सकते हैं।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, अगर आप परवल की खेती करते हैं तो जिस तरीके से सर ने बताया उस तरीके से खेती कीजिए और कुछ बातों का ध्यान रखिए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम

0: उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें। और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
0: तो मैम, खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
0: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
1: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में

में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों

0: दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
1: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटैश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की एक तिहाई तथा स्फूर, पोटैश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में दो बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
0: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
1: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी दो बारिश के मध्यम ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
0: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
1: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी, खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित

0: करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं, जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काट कर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
6: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
5: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में

वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की वीएलएम 389, आरयू 8 और वाकुला इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंतशुभ्रा इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है, लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते, इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है, और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी

भी मददगार साबित होता है और हमारी स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, जुड़िए जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं और खास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है। तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है। और साथ ही सोने पे सुहागा, ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले। अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो ले। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे। जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहे। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना, तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर।
तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का

आनंद उठाइए, ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: क्या कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
8: कब से?
7: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
8: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
7: खांसी?
8: हाँ।
7: इसको तो एक आध महीना हो गया,
8: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
7: डॉक्टर, खांसी तो है।
8: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो TB हो सकता है।
7: TB?
8: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
7: ठीक है।
8: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। TB हारेगा, देश जीतेगा।
0: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
9: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
10: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं विषय आप सभी के लिए खास, और वो है जलवायु अनुकूल खेती में तिल एक अच्छा विकल्प। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा सिन्हा, जो कि वैज्ञानिक हैं, पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर।

0: से। मैडम स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद मैडम। सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगी तिल की खेती जलवायु अनुकूल कैसे अच्छा एक विकल्प है। क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है कुछ 5-7 सालों से कि हमारा जलवायु बहुत निश्चित तौर पे नहीं होता है, कभी थोड़ी बारिश जल्दी हो जाती है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, या जिस समय में जो हो रहा था पहले वो अब नहीं हो रहा है। ऐसे मौसम में हम कौन सा खेती करें जिसमें हमको किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, और उनका जो जीविकोपार्जन का एक साधन कृषि है जो खास के उनको वो मेंटेन कर सकें और उसमें वो काम कर सकें। तो उसी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि तिल एक अच्छा विकल्प है जलवायु अनुकूल। आखिर ऐसा क्यों? उसका कारण है कि तिल गर्मा के अगर मौसम में थोड़ा आपको इरिगेशन देने में लेट हो जाए, कोई बात नहीं, वो मौसम आपका तिल जो है पौधा कुछ उस पर असर नहीं होगा, वो आराम से सह लेता है। वो तिल एक थोड़ा हार्डी टाइप का प्लांट है। साथ ही तिल एक ऐसा चीज़ है जिसको आप थ्रू आउट ऑफ द ईयर ग्रो कर सकते हैं, मतलब पूरे मौसम में, खरीफ में, गर्मा में, और हम रबी की बात तो बिहार में नहीं करेंगे, लेकिन जैसे साउथ बिहार में होता है वहाँ पे गर्मा में भी, रबी में भी ये फसल उगाया जाता है। तो गर्मा हमारे बिहार क्षेत्र के लिए, खरीफ और समर दो समय में हमारा तिल की खेती की जाती है मुख्य रूप से। और अभी किसान भाइयों को मैं गर्मा तिल के बारे में बताऊंगी, बिकॉज अभी गर्मा तिल जो लगा चुके हैं किसान भाई 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, उनका अभी हार्वेस्टिंग का समय आ रहा है। तो वो सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि किसान भाइयों, तिल में आप लोग मुख्य रूप से उजले तिल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, काले तिल की तरफ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुणवत्ता के ख्याल से काला तिल उजले तिल से ज़्यादा बेहतर है। उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है, न्यूट्रिशनली मेडिसिनली ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा अच्छा है। और सफ़ेद तिल देखने में ज़्यादा अच्छा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है। काले तिल को आप अगर रखना चाहेंगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, किसी तरह का कीटाणु नहीं लगेगा, वो काफ़ी दिन तक चलता है। लेकिन आप अगर सफ़ेद तिल रखेंगे तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है, उसके रख रखाव में ज़्यादा व्यवस्था की बात है। और दूसरी बात जहाँ तक आपके सामने है कि हम लोग समर तिल जिसको गर्मा तिल कहते हैं उस पर ज़्यादा आजकल ध्यान दे रहे हैं। खरीफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ बारिश ज़्यादा हो गया तो फसल का काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है, कुछ कीट आ जाते हैं, कुछ रोग व्याधि आ जाते हैं, उससे फसल का उतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। तो हम लोग आजकल गर्मा तिल के, आज के दिन में हम लोग गर्मा के बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, आप लोग जो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में तिल लगाए हैं उनका काटने का समय आ चुका है, और वो सभी किसान भाई अपने खेत पे देख पा रहे होंगे कि उनकी फसल किस तरह से है। अगर ज़रूरत है तो एक सिंचाई लगा के उसको छोड़ दें बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर वो अपना उसको हार्वेस्टिंग करा लें। दूसरा जो बात है कि गर्मा तिल लगाने का समय अभी बहुत किसान भाइयों को पता नहीं है, तो वो मैं बताना चाहूँगी, जो नहीं लगाए हैं इस बार वो अगली बार अवश्य लगाएं, और 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में लगाएं। साथ ही इस तिल की खेती के पहले जो आप खेत की तैयारी करते हैं उसको तैयारी में आप की मिट्टी कैसी है वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। साथ में आप देखें तिल जो है आपको अगर जल जमाव वाली स्थिति जहाँ है ज़मीन में वहाँ तो बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि थोड़ा ये जल जमाव से, वाटर लॉगिंग से जल्दी अफेक्टेड हो जाता है, पौधा का बढ़वार उतना अच्छा नहीं होता है, उतनी अच्छी फसल नहीं होती है, या कभी कभी तो जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ मर भी जाता है पौधा और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो हम लोग पहले ऐसे जगह में लगाएंगे गर्मा तिल भी जहाँ की जल जमाव नहीं होता है। तो पहले हम लोग खेत को तैयार कर लेंगे, उसमें आप लोग 5 kg बीज अगर उपलब्ध है तो 1 hectare के लिए अच्छी तरह से वो 1 hectare ज़मीन को कवर कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में इसको ये भी ध्यान रखना है कि बीज जो है बहुत गहराई में ना रोपें, ज़्यादा गहराई होने से छोटा बीज है।

0: दब गया मिट्टी से ज़्यादा, तो फिर उसको निकलने में समस्या आ सकती है। तो इस दो चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है कि वाटर लॉगिंग नहीं हो, जमीन में पानी का ये नहीं जमाव नहीं हो, दूसरा ज़्यादा जमीन के नीचे तिल की बुआई नहीं हो। तीसरी बात हम लोग आते हैं कि इसमें खाद, ये तो जनरली मुख्य रूप से जो बचे हुए ज़मीन या मार्जिनल लैंड होते हैं उसी में अभी तक किसान भाई करते आ रहे हैं, कोई अपने मुख्य ज़मीन में नहीं करते हैं। तो इसमें थोड़ा खाद, हम लोग ज़्यादा खाद देते भी नहीं हैं, 40 kg आपको नेत्रजन, 20 kg फास्फोरस एंड 20 kg पोटास देते हैं 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए। और ये इसमें गर्मा मौसम में तो कीड़ों का और कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन एक हमारे यहाँ आपको मुख्य रूप से आपको बताना चाहेंगे कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में थोड़ा सा आपको भुआ पिल्लू जिसको बोलते हैं वो उसका प्रकोप आता है। अगर आप शुरू के दिनों में देख लिए और आपकी ज़्यादा रकवा नहीं है तो हम तो नहीं चाहेंगे कि आप कोई रासायनिक का उपयोग करें और उसको हाथ से तोड़ के डिस्कार्ड कर दें, कुछ प्लांट ज़्यादा जो डैमेज है उनको हटा दें, यही सबसे अच्छा है जो आपको ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाएगा और रसायन का उपयोग कम से कम हो पाएगा। तो इसकी उत्पादकता भी हमारे यहाँ गर्मा में आप कोई भी प्रभेद लगाएं 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। और इसकी जहाँ तक बिक्री की बात है और जहाँ तक इसके मार्केटिंग की बात है तो आप लोग सभी जानते हैं हाथों हाथ कैश क्रॉप की तरह है, और ये करीब 110 से 140 केजी पर 140 रुपये पर केजी मतलब ये बिक्री हो जाता है मार्केट में। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा आमदनी है। कुछ किसान तो गया क्षेत्र के लोग काफ़ी मात्रा में लगा रहे हैं गर्मा तिल, और वो लोग काफ़ी खुश हैं अपने तिल के बेचने के बाद जो उनको आमदनी हो रही है, तो उनके चेहरे पे खुशी है कहीं भी। और कुछ मैं प्रभेद की बात करूं तो कुछ प्रभेद हैं जो अच्छे साबित हो रहे हैं। अगर काला प्रभेद आप लोग उपयोग करना चाहते हैं, मैं तो कहूँगी काला आप लोग कम से कम अपने खाने के लिए या तेल के लिए ज़रूर करें, बहुत न्यूट्रिशियस है, अपने बच्चों को मालिश के लिए या घर में खाने के लिए उपयोग करें। तो सबौर तिल 1 एक प्रभेद हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया ही प्रभेद है, उसका उपयोग करें, उसके भी वही गुणवत्ता है। तिल 5 kg प्रति हेक्टेयर इसका बीज दर लगेगा आपको, और उत्पादकता 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और ये कुछ किसान भाइयों के द्वारा ही पता चला है, GJT5 एंड GJT6 जो गुजरात की वैरायटी है, ये उजला तिल है, और ये कुछ जगहों पे लगाया जा रहा है और हमने भी पाया है काफ़ी अच्छा इसका भी उत्पादन है और इसको लोग लगा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आप लोग के लिए तो तिल की खेती अब वरदान की तरह है, इस पे सरकार का भी काफ़ी ये सरकार का काफ़ी ध्यान है, और सरकार इसके लिए चाह भी रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएं और इसको लगाएं। और ये हमारे तेल अपने खाने के लिए या मार्केट में ये भेजने के लिए, और इसके कई तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं जो हम लोग हर वर्ष खासकर ठंड के मौसम में उपयोग करते हैं, नवंबर दिसंबर से फरवरी तक जो गया का तिलकुट नरसा और भी कई उत्पाद हैं। और आजकल तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े दुकानों में भी इसका उपयोग हो रहा है, मिठाइयों को बनाने में, चिक्की बनाने में। तो ऐसे आप लोग अब मार्केटिंग से ना घबराएं कि मार्केटिंग नहीं होगी या इसकी बिक्री नहीं हो पाएगी, हमारी आमदनी घट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसान भाइयों, आप लोगों से मेरा आग्रह है कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पौष्टिक चीज़ है, इस तिल के तेल को आप लोग खाएं, तिल का उपयोग करें अपने खाने में और अपने बच्चों को दें, इससे उनके भी न्यूट्रिशंस का भी पूरा होगा। तो आप लोगों को किसान भाइयों, इस तरह से एक मैंने तिल की बताया।
1: किसान भाइयों, यहाँ पर आज आपने जाना जलवायु अनुकूल खेती में तिल की खेती एक अच्छा विकल्प, और इसमें बहुत सारी बातें मैडम ने बताई हैं। तो आशा करते हैं आज का यह वार्ता आप सभी के लिए लाभदायक होगा। अगले दिन आप सभी से मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
10: किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं। यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से, कैसे इसे उगाते हैं उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है। वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियाँ जो हैं, जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियाँ हैं, उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की, उस समय नहीं उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनके सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, और आज हम जानेंगे कि क्या है बेमौसमी सब्जियाँ और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है। तो आज का विषय है हमारा, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें। तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर RB वर्मा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर।

0: वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं?
1: देखिए सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है जाड़ा गर्मी और बरसात और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं। जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं। परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियां। जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें। तो जो अपने सीजन से हट के अगर हम कोई चीज उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है। मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता है, जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता है उस सीजन में और ज्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
0: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाजार सब्जियों को खरीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज्यादा होते हैं, यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में खरीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं हम उन्हें खरीदने के लिए तो दाम कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके।
1: बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर साहब यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी?
1: हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आज भारत जो है विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा सब्जी उत्पादक देश है।
0: जी
1: इसके दूसरा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो है इसकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन में अभी हम पीछे हैं और देश की बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या भी आप समझ रहे हैं कि 132 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है।
0: जी जी।
1: इनके सब्जी की खपत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारी खेती का जो है आंकड़ा जो है सिकुड़ रहा है, हमारे सारे संसाधन जहां सिकुड़ रहे हैं वहां और एक तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सीमित संसाधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी एक ही सब्जी की भरमार हो जाती है।
0: जी जी।
1: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
0: प्राइस कम
1: हाँ उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं।
0: हाँ।
1: कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे ज्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता जैसे कॉलीफ्लावर फूल गोभी है।
0: जी जी।
1: फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर अगेती कर लेते हैं
0: पहले।
1: तो ये हाँ थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं मौसम से थोड़ा सा पहले कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि 50 रुपए 60 रुपए गोभी बिक जाती है।
0: हाँ, यानी कि उसके मौसम आने से
1: हाँ,
0: थोड़े महीने
1: थोड़ा
0: पहले।
1: सा पहले आपने कर लिया तो भी आपको जो उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाजार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये जरूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाएं और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है। इस संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की जरूरत है और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन पर डे पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पे जाना हमारा जो है वो ज्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों

0: के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
1: बिल्कुल सही, देखिए जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीजन बेस्ड होती हैं, गर्मी के समय गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियां उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी, और वो तकनीकी एक तरह से जो आपका जो संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ ले जाती है। और वो तकनीकी अपना करके जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं।
0: जी जी।
1: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें बेमौसमी सब्जियों का एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे तो उसमें हमारे अनुकूल, अब तक हम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो है आधारित हैं, जैसा वो चाहता है वातावरण, जैसा हमको प्रोवाइड करता है वैसे हम सब्जी उगाते हैं। लेकिन अभी जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और हम जैसा
0: चैलेंजिंग हो जाता है,
1: चैलेंजिंग होता है, और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है, और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंजेज है, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जैसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
0: अच्छा।
1: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, और जिस क्रॉप के लिए, जमने के लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
0: होती है,
1: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ट
0: नहीं
1: कर सकते हैं। तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ट कर सकते हैं तो उसको एफर्ट, मतलब उसको एडाप्ट करें, जो किसान भाई उसको एडाप्ट नहीं कर सकते हैं, एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सके, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली, और जो कूलिंग, हाँ ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर है, हम उसको ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर है हम उसको हटा देते हैं।
0: अच्छा।
1: तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
0: लो
1: हो जाती है। तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं तो उसको ले जा करके अपना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा ये होता है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो इस
0: हमारे छोटे किसान,
1: छोटे किसान है, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का।
0: अच्छा।
1: एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे अभी हमने फूल गोभी की बात की, वैसे
0: हाँ।
1: हम अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी, कद्दू की जिसकी हम बात करते हैं, कद्दू को
0: ठंडी के मौसम,
1: ठंडी के मौसम
0: आने से पहले कुछ
1: ठंडे गर्मी आने से पहले।
0: अच्छा,
1: कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च, मार्च में तो सबके, मार्च से अप्रैल में जो है सारा का सारा कद्दू जो है मार्केट में आ जाता
0: जी
1: है। जब सारा का सारा कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल

0: में कद्दू का रेट जो है ₹2 ₹1 हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च ये दो महीने तक अगर निकल गया, फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू ₹20 ₹25 ₹30 लौकी तक
1: मौसम में उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती है।
0: तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें, थोड़ा सा हमने किया कि ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया दिसंबर में ही लगा लिया
1: जी।
0: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस जो किसान भाई जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उसको आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
1: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उस ज्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज्यादा उचित रहेगी?
0: हाँ, ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई है उनके लिए सबसे ज्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये लो टनल पॉली हाउस को इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और इस लो टनल पॉली हाउस को अडॉप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
1: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या फिर उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को गाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में और उस इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु के, जैसा कि हमारे सर ने बताया यहाँ पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा है, कहें तो दुगुना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें, तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियाँ कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई प्रोटेक्टेड या संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहते हैं, बेमौसमी सब्जियां उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत तो दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की। थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
1: मिट्टी चाहिए।
0: हाँ, अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज,
1: नवसिखिए नहीं होना चाहिए बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए,
0: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
1: जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हें उगाइए।
0: दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, हाई प्राइस वैल्यू जिसको कहते हैं, लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट जो है जो वैल्यू कहते हैं, जिसको इसे मान लिया आपका इसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफ़ी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है, टमाटर है, तो कुछ मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
1: जी, जी, जी।
0: नहीं मिलता है, तो ऐसे हाई
1: हर साल मतलब पूरे साल वो बिकती है,
0: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों को कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
1: नहीं है,
0: नहीं होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे और सीमित बढ़ वाली सब्जियां में आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे

नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा। तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं, और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इससे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप

0: तो वही होगी कि आप जो है कुछ भी मतलब कुछ भी हाँ आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको
1: नहीं
0: कुछ नहीं हुआ। तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहां भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है गवर्नमेंट संस्थानों में भी, आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है।
1: जी जी।
0: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, को आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है।
1: जी।
0: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जी कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहां लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपए का उस पर खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी।
1: जी।
0: 15,000 रुपए आपको लगाना है। जहां 2-2.5 लाख रुपए खर्च आते हैं,
1: 50% सब्सिडी सरकार की, 50%
0: सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। आपको बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
1: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है। 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहां जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी कि बेमौसमी सब्जियां अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हैं इसके?
0: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है, जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती है, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले आते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गई, दूसरी उसी सब्जी से सेम सब्जी को अगर आपने बेमौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है और कम क्षेत्रफल से। देखिए ना, आप कितना जो है लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं, और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना कम क्षेत्रफल में, आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर 1 एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है, 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पोली हाउस बनाया है, उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है, उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती है,
1: जी जी,
0: बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं, जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं तो मेन सीजन में हमारे फूड की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं, तो इसमें आपका जो है क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज्यादा होता है। जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके प्रोडक्ट का जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल गया, आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त
1: पैसा
0: निकाल लिया जो है। ये तमाम सारे फायदे हैं इसके जो है।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना ना क्या क्या फायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फायदे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं। और उन्होंने फायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके, और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना, जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाइयों और

0: हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के।
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरी बेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर।

थी। पायरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंतशुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
3: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
1: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
1: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
3: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
1: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
3: राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
3: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
3: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
3: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
3: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं के, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
3: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cii

0: www.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ आपको टाइप करना है।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे।

0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
1: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
1: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
1: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान है। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं।

0: सबसे ऊंचा है?
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमो लुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए

0: पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
1: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
0: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
1: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
0: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
2: Marvelous.
1: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
3: ये किस तरह की मूर्ति है?
4: ये किस तरह की मूर्ति है?
5: ऐसी मूर्ति तो मैंने
6: वाओ वंडरफुल।
0: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
1: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
0: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
1: लोग सोचने लगे, भलाई कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
0: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
3: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
4: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
1: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
0: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
1: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
2: ग्रेट, मार्वेलस।
4: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
2: वंडरफुल।
8: हाँ, हम सहमत हैं।
1: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
7: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है। यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
1: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय।

0: तय की तरह होता है। यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
1: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
0: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो

0: पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: FM ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज उन किसान भाई बहनों के लिए बातें होने वाली है जो श्री अन्न की खेती करते हैं और वो परेशान होते हैं कि श्री अन्न में बहुत अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं और किस प्रकार से उन कीटों को पहचाने, उनका प्रबंधन कैसे करें। ये सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण कुमारी। आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: बहुत बहुत धन्यवाद।
9: मैम आप हमें ये बताइए कि श्री अन्न के कौन कौन से कीट होते हैं?
10: श्री अन्न में जो कि काफ़ी ही पोषक अनाज है और इसमें जो है ज्वार, बाजरा, रागी और कंगनी इत्यादि फसल आते हैं और लगभग इन सभी पर एक ही प्रकार के कीट लगते हैं। और ये जो कीट हैं वो ज्वार का तना छेदक, प्ररोह मक्खी, बाली बग, पत्र लपेटक, गुलाबी तना छेदक, लाही एवं बाली मिर्च, ये जो कीट हैं। और ये सारे कीट जो हैं जितने भी श्री अन्न हैं वो उन पे इसका प्रकोप होता है।
9: जी मैम, तो जो आपने अभी कीटों के नाम बताए उन कीटों के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। और मैम शुरुआत करते हैं ज्वार के तना छेदक कीट के बारे में, आप हमें बताइए शुरुआत में।
10: ज्वार का तना छेदक कीट, वो उसका भी जो वयस्क होता है वो मौत होता है, जिसे पतंगा भी कहते हैं। और ये हल्के पीले भूरे रंग का होता है, इसके अगले पंख तिनके के रंग के होते हैं यानी क्रीम कलर का, और इसके जो पंख होते हैं उसके अंतिम छोर पर

0: दो पंक्ति में काले बिंदु पाए जाते हैं और इसका जो नर है उसके पिछले पंख पर जो धुएंधार कलर का मतलब थोड़ा डल कलर का होता है और मादा में सफ़ेद कलर का होता है और मादा के उदर भाग के अंतिम भाग में बालों का एक गुच्छा होता है। इस तरह से इसकी वो पहचान करते हैं कि ये ज्वार तना छेदक है और इसका ये जो ज्वार तना छेदक है उसका जो पिल्लू है वही इसको हानि पहुंचाता है और इस जो ये पिल्लू है वो पत्तियों को खुरच खुरच कर खाता है, बाद में फिर यही सुई के समान छेद करके खाते हैं और फिर ये धीरे धीरे जो तना है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ज़मीन के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और इस तरह से बीच का जो होता है भाग उसको खाते हैं और जिससे कि पत्तियां सूख जाती हैं और जिसे खींचने पर सूखी हुई जो पत्ती होती है बीच वाली उसको खींचने पर वो आसानी से खींचा जाता है। ये इसको डेड हर्ट कहते हैं या मृत कल्ला भी इसको कहते हैं और ये जो इस तरह से जो डेड हर्ट बन जाता है और तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये गांठ के से टूटकर गिर जाते हैं और इसके बचाव हेतु जो है कीट ग्रस्त पौधों को जिसमें डेड हर्ट दिखाई दे रहा है उसको उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फिर फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए ठूठ हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि उसी में उसके जो पिल्लू हैं और पीपा हैं वो उसमें रहते हैं। इसलिए कटाई के बाद जिस खेत में अगर इसका प्रकोप हो गया है तो कटाई के बाद जो बचा हुआ रेजिड्यू है ठूठ है उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो इसके वयस्क हैं उस पर आकर्षित हों और वो चूँकि लाइट ट्रैप के नीचे पानी आप रख दें तो उसमें वो गिरकर मर जाएंगे। फिर तना छेदक का जो ये कीट से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप भी जो 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं और प्रकोप अधिक हो जाए तो 2 से 3 पत्ती का जब पौधा हो जाए तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करें या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और इस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं।
1: जी मैम, अब मैम आप हमें प्ररोह मक्खी के बारे में बताइए कि प्ररोह मक्खी की क्या पहचान होती है और इसके प्रबंधन के लिए क्या करें।
0: हाँ, ये जो प्ररोह मक्खी है इसे सूट फ्लाई भी कहते हैं और ये एक तरह की मक्खी है जो घरेलू मक्खी होती है उससे आकार में थोड़ी छोटी होती है और इसमें जो है इसके बॉडी के ऊपर स्पाइन नहीं होता है, थोड़ा मोटा बाल घना बाल पाया जाता है और इसका जो नर होता है उसका एंटीना जो है पीला कलर का होता है, ये इसकी पहचान है। और ये इसका जो पिल्लू होता है वो तना में छेद कर वो खाता है और ये भी तना में अंदर जाकर बीच के पार्ट को खाता है और जिससे कि ऊपर वाली पत्ती सूख जाती है जो ऊपर में जो बीच की पत्ती है तो इसलिए ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, ये ज्वार तना छेदक जो है वो भी डेड हर्ट काउज करता है और प्ररोह मक्खी ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो प्ररोह मक्खी है वो जब पौधे करीब 6 से 8 इंच तक के रहते हैं तभी तक उसका प्रकोप होता है, उसके बाद नहीं होता। और ज्वार तना छेदक का थ्रू आउट द पूरे फसल तक इसका प्रकोप होता रहता है। दोनों में यही अंतर है। और इस कीट से बचाव हेतु जिन पौधों में जो डेड हर्ट पाया गया हो तो उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और बीजोपचार भी करना चाहिए इस कीट से बचने के लिए। तो क्लोरपाइरिफॉस 3 ml या इमिडाक्लोप्रिड दोनों में से कोई एक कीटनाशी से बीजोपचार कर सकते हैं। तो अगर इमिडाक्लोप्रिड लेंगे तो इमिडाक्लोप्रिड का 48 FS का 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए और प्रकोप खड़ी फसल पर अधिक हो जाए तो रासायनिक कीटनाशी में फ्लुबेंडामाइड